ओम शांति। भगवान उवाच, तुम्हारी सर्वश्रेष्ठ साधना है बुद्धि को स्थिर करने की। हम सब जानते हैं कि आज मनुष्य ने अपनी बुद्धि को जितना भटकाया है उतना पहले कभी नहीं भटकाया था। मनुष्य बहुत एजुकेटेड हो गया, उसके पास बहुत सांसारिक ज्ञान हो गया, लेकिन उसकी बुद्धि उतनी ही ज्यादा भटक गई और कहीं ना कहीं अटक गई। तो हम ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त करने वाली ब्राह्मण आत्माओं को, जो राजयोग के श्रेष्ठ पथ पर चल रहे हैं, उन श्रेष्ठ आत्माओं को अब अपनी बुद्धि को एक परमात्म स्वरूप पर, अपने स्वरूप पर स्थिर कर देना है। ये स्थिरता हमें अनेक शक्तियां प्रदान करेगी। ये सबसे बड़ी कला है और ये कला आ जाने के बाद अनेक कलाएं स्वतः ही जीवन में आ जाती हैं, क्योंकि एकाग्रता बीज है अनेक कलाओं को संपन्न करने का, उनमें संपूर्ण बनने का। तो हम चेक कर लें हमारी बुद्धि कहाँ कहाँ भटकती है, हमारी बुद्धि किधर किधर चिपकी हुई है, किन संबंधों में, किन पदार्थों में, किन इच्छाओं में, किन लालसाओं में हमारी बुद्धि फंस गई है, वहाँ वहाँ से उसको निकालें। ये काम हमें ज्ञान के बल से स्वतः ही करना है। दूसरी चीज, हमें अपनी बुद्धि को स्वच्छ भी बनाना है। याद करें, बाबा ने कहा, जब हाथ की सफाई दिखाने वाले जादूगर कमाल दिखा सकते हैं, तो बुद्धि की सफाई करने वाली तुम सब महान आत्माएं कितने बड़े चमत्कार करोगी। तो ये सच है कि जो आत्माएं अपनी बुद्धि को पूरी तरह स्वच्छ करके, पवित्र करके, उसमें ईश्वरीय खजाने भर लेंगी, उसको वरदानों से संपन्न करेंगी, ऐसी आत्माएं इस स्थापना के कार्य में बहुत बड़ा योगदान करेंगी। तो हम चेक कर लें बुद्धि को स्थिर कैसे करना है। लेकिन इम्पोर्टेंट बात यह भी है कि हम साधनाएं भी बहुत करें, हम अभ्यास भी बहुत करें। बिना अभ्यास के बुद्धि को स्थिर नहीं किया जा सकता। अभ्यास क्या? अपने पांच स्वरूपों को विजुअलाइज करना, परमात्म स्वरूप पर बुद्धि को स्थिर कर देना। ब्रह्मलोक में हमें सिवाय सर्वशक्तिवान के और कुछ भी दिखाई ना दे। यही अभ्यास आज सारा दिन भी हम करेंगे। लेकिन आगे चलते हैं थोड़ा। बहुत अच्छी बात बाबा ने कही है, यदि तुम्हें विश्व महाराजन बनना है तो विश्व को सकाश दो। हमने अपने लिए भी बहुत कुछ कर लिया, परिवार के लिए भी बहुत कुछ किया, लेकिन अब हमें करना है इस महान देश भारत के लिए और सारे संसार के लिए, जो आत्माएं दुखों में, अशांति में, समस्याओं में उलझी हुई दुख पा रही हैं, जिनको कोई सहारा और ठिकाना नजर नहीं आता, वो शिव बाबा की ओर और हम सब की ओर प्यासी नजरों से निहार रही हैं। हम अपने को ये श्रेष्ठ संकल्प दें कि मुझे अब रोज विश्व को सकाश देनी है, 6 बजे सवेरे, 6 या 7 बजे शाम को, 10-10 मिनट योगयुक्त होकर शक्तियों की, पवित्रता की, शांति की किरणें चहुं और फैलानी है। तो आज सारा दिन हम अपनी बुद्धि को स्थिर करने के लिए पहला अभ्यास करेंगे। मैं आत्मा बहुत तेजस्वी भ्रकुटी सिंहासन पर विराजमान हूँ, अपने स्वरूप को विजुअलाइज करेंगे, देखेंगे, बुद्धि को
स्थिर कर देंगे, अर्थात जैसे हम अपने को देख ही रहे हैं, हमसे चारों ओर किरणें फैल रही हैं, एक एक संकल्प भी साथ में रख लें, फिर शिव बाबा को परम धाम में देखेंगे, उस पर बुद्धि स्थिर करेंगे और धीरे धीरे उसकी महिमा को स्मृति में लाएंगे। इस तरह बार बार ये अभ्यास करने से हमारी बुद्धि स्थिर होती जाएगी। ओम शांति।

0: हेलो, हाँ हाँ पहुँचा दूंगा, समय से पहुँचा दूंगा।
1: इधर आ। भाई क्या पहुँचा दोगे? हैं भाई कहाँ पहुँचा दोगे? भाई मुझे तो लगता है ऐसे ही बीच रोड पे मोबाइल लेकर घूमोगे तो तुम ही ऊपर पहुँच जाओगे। भाई सड़क क्रॉस करते समय मोबाइल जेब में रखो और जहाँ मन किया वहीं से रोड क्रॉस कर लोगे। हैं भाई ये जेबरा क्रॉसिंग क्या जेबराओं के चलने के लिए बनाई है? भाई जब भी रोड क्रॉस करना है तो जेबरा क्रॉसिंग से ही करना, क्या समझे? हाँ, मुझसे गाड़ी वाले तो क्या पैदल वाले भी नहीं बच सकते, क्योंकि ये है मेरी सड़क और मुझे कहते हैं हवलदार कड़क।
2: पैदल यात्री सड़क क्रॉस करते समय हमेशा जेबरा क्रॉसिंग का इस्तेमाल करें। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।
3: सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सुप्रभात में आपका स्वागत रेडियो मधुबन पर। जो इंसान काम से हार मान जाते हैं, काम करने से थकावट महसूस करते हैं, वे कैसे इंसान हो सकते हैं? इंसान का तो काम ही संघर्ष करना है, संघर्ष ही तो जीवन है। कुछ लोग तो ऐसी मिट्टी के बने होते हैं कि वे हारना नहीं जानते, हार स्वीकार ही नहीं करते, नहीं वे काम न करने के लिए बहाने बनाने पर विश्वास रखते हैं, वे केवल काम करने पर विश्वास रखते हैं। घर में बैठकर उबासियां लेने से उनका काम नहीं चलता, वे तो आगे बढ़ने की बात सोचते हैं। किसी का सहारा लेना उन्हें पसंद नहीं होता। कुछ लोगों को यह शिकायत करते सुना है कि हमें तो जीवन में आगे बढ़ने का अवसर ही नहीं मिला। ऐसा कहकर वे अपनी कमजोरी को छुपाने का प्रयास करते हैं, जबकि इससे ही उनकी सुस्ती, लापरवाही और उनके खोए हुए आत्मविश्वास का साफ पता चल जाता है। उन्हें अक्सर यही रोना रोते देखा गया है कि इन परिस्थितियों का मुकाबला करने की उनमें शक्ति ही नहीं। सच बात तो यह है कि हर असफल आदमी यही कहता नजर आता है, भैया क्या करें, हमें तो आगे बढ़ने का अवसर ही नहीं मिला, हमें किसी ने चांस ही नहीं दिया, यदि हमें कोई मौका देता तो हम भी कुछ करके दिखा देते, किसी ने हमारी सहायता ही नहीं की, नहीं किसी ने हमारा उत्साह बढ़ाने का प्रयास किया। जिधर भी देखते हैं उधर ही लोगों का मेला लगा हुआ है। एक जगह के लिए नौकरी की मांग होती है तो सैकड़ों लोग वहां पर पहुंच जाते हैं। नौकरी देने वाला भी भूल भुलैया में फंस जाता है, वह सोचता है किसे नौकरी दूं, किसको न दूं। जब एक स्थान के लिए इतने सारे लोग होंगे तो हमें कौन पूछेगा? अच्छा पद मिलेगा तभी तो हम नौकरी करेंगे। छोटी मोटी नौकरी करने से तो हमारी बेइज्जती होती है, अच्छे पद हमारे जाने से पहले ही लोग हत्या चुके होते हैं। जब सिकंदर एक शहर पर विजय प्राप्त कर चुका तो उससे किसी ने पूछा, यदि अवसर मिलेगा तो आप आगे वाले शहर को भी जीतने का प्रयत्न करेंगे? सिकंदर क्रोध से भरा भूखे शेर की भांति दहाड़ा, अरे यह अवसर क्या होता है, कौन किसे अवसर देता है, मैं तो अपने लिए अवसर स्वयं बनाता हूँ। यह बात न भूलें कि जो भी व्यक्ति स्वयं अवसर का निर्माण करते हैं, सफलता उन्हीं के पांव में आकर गिरती है। तो आप भी अवसर की प्रतीक्षा न करें, बल्कि अपने अवसर स्वयं बनाएं।

जो लोग अवसर की प्रतीक्षा में अपना समय नष्ट करते हैं, वे कभी भी उन्नति नहीं कर सकते। धीरे धीरे अवसर की प्रतीक्षा में ही अपने भविष्य को अंधकार में विलीन कर देते हैं, क्योंकि अवसर की प्रतीक्षा करने से परिश्रम करने की शक्ति नष्ट हो जाती है, आगे बढ़ने की भावना भी कम होनी शुरू हो जाती है। वे अवसर की प्रतीक्षा में आंखें बिछाए बैठे रहते हैं, मगर अवसर खुद कहाँ चलकर आएगा। अवसर का निर्माण करने वालों के लिए कहीं भी अवसर की कमी नहीं होती। ऐसे लोगों के जीवन में कोई निराशा भी नहीं आती, उनकी हर इच्छा पूरी होती है। कुछ लोग अपने जीवन की नैया को भाग्य के सहारे चलाने का प्रयत्न करते हैं। वे सदा यही कहते नजर आते हैं, अरे भाई, नसीब में जो लिखा है उसे कोई नहीं छीन सकता, वह तो हर हाल में मिलेगा ही, हम क्यों अवसर ढूंढते रहें। ऐसे लोगों को कभी अवसर नहीं मिलता, भले ही वे सोने की खान के पास से होकर निकल जाएं, वह खान भी उन्हें दिखाई नहीं देगी। इसके विपरीत कुछ ऐसे साहसी लोग भी हैं जो बंजर भूमि में भी फसल पैदा कर लेते हैं। जंगल में लकड़ी काटने वाले बालक ने पढ़ाई के लिए क्या नहीं किया, स्कूल जाना तो बहुत दूर की बात थी, उस बेचारे के पास तो किताबें तक खरीदने का प्रबंध नहीं था। परंतु उसे जब पढ़ने का शौक पैदा हुआ तो उसने आसपास के लड़कों से किताबें मांगकर पढ़ना शुरू कर दिया। जैसे तैसे वह एक से दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी कक्षा तक की पढ़ाई कर चुका, तो उससे आगे की पढ़ाई करने के लिए उसे जिन किताबों की जरूरत पड़ती थी उन्हें मांगने के लिए उसे कई कई किलोमीटर की दूरी तक जाना पड़ता था। मगर उसने हिम्मत नहीं हारी, नहीं अपनी पढ़ाई बंद की। उसकी मेहनत का यह फल था कि वह एक दिन वकील बन गया। और फिर आपको यह जानकर अत्यधिक आश्चर्य होगा कि वही जंगल में लकड़ी काटने वाला, किताबें मांगकर पढ़ने वाला बालक एक दिन अमेरिका का राष्ट्रपति बन गया। क्या आप उसका नाम जानते हैं? वह निर्धन और किताबें पढ़ने वाला बालक था, अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन। क्या आप भी ऐसी हालत में इतने बड़े आदमी बनने का साहस रखते हैं? क्या आप भी ऐसी कल्पना कर सकते हैं? मैं समझती हूँ आजकल के बच्चों में ऐसा साहस ही नहीं है। ऐसे महान लोगों से प्रेरणा लेकर आप कुछ भी बन सकते हैं।

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: मेजोरिटी पीपल सिर्फ अगर अपने जीवन और अपने मन की एक्सरे करनी है उस क्षण चेक करें जब सुबह उठते हैं। अगर सुबह उठते ही फर्स्ट थॉट आती है कि मुझे थोड़ा और सोना है, इसका मतलब मेरी जो 6 घंटे के 8 घंटे की नींद थी मेरी उसमें रेस्ट और रिचार्जिंग नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? शरीर सो रहा था लेकिन मन अभी भी कंटिन्यूअसली चल रहा था। मन की बात का समाधान नहीं मिला उसको। अब हमारा मन अगर उसको उसकी बात का समाधान नहीं मिलता है तो वो 5 दिन नहीं 5 साल चल सकता है उस प्रॉब्लम के साथ, 50 साल चल सकता है उस प्रॉब्लम के साथ। और अगर फिर भी समाधान नहीं मिला तो आत्मा शरीर छोड़ेगी, दूसरा शरीर लेगी और वो ही सोच और संस्कार अपने साथ लेकर जाएगी।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।

जब आप यह कहते हैं कि अब मेरे लिए तो कोई अवसर ही नहीं है, अथवा मैं इतना बड़ा काम कैसे कर सकती हूँ या कैसे कर सकता हूँ, ऐसा कहने वाले तो करोड़ों लड़के लड़कियां हैं जो खेल शुरू होने से पहले ही हारने को तैयार बैठे हैं। वे इस बात को भूल जाते हैं कि चांद पर मानव को उतारने की कल्पना करने वाले इंसान को लोगों ने पागल और सिरफिरा कहकर उसका खूब मजाक उड़ाया था। जो लोग स्वयं कुछ नहीं कर सकते, वे दूसरों का मजाक उड़ाकर ही अपना समय काट लेते हैं। वे तो तोते की भांति हर एक की रट लगाए रहते हैं। यह तो असंभव है, ऐसा कहां हो सकता है। यदि आप जीवन में सफल होना चाहते हैं, अपनी भावनाओं की पूर्ति चाहते हैं, तो अपने मस्तिष्क के शब्दकोश में से इस असंभव शब्द को ही निकाल कर फेंक दें। अक्सर युवकों को ऐसा कहते देखा गया है, जब कोई भी युवक किसी बड़े पद की नौकरी के लिए जाता है, तो वह अपने आप को उस योग्य न समझकर एक ठंडी आह भरते हुए कहता है, काश मैं भी इतना अधिक पढ़ा लिखा होता कि उस नौकरी के योग्य बन जाता। और कुछ युवक जब किसी कारोबार की बात सोचते हैं, तो निराशा की स्थिति में यही कहते हैं, काश हमारे पास भी इतना धन होता जिससे हम अपना कारोबार कर लेते। ऐसे विचारों के लोग उन लोगों के उदाहरण अपने सामने क्यों नहीं रखते जो बहुत कम पढ़े लिखे थे, मगर अपनी तीव्र बुद्धि, प्रबल इच्छा शक्ति और अथक परिश्रम से राष्ट्रपति तक बन गए। इस संसार में ऐसे हजारों लाखों कारोबारी लोग भी हैं जिन्होंने शून्य से काम शुरू किया, मगर अपनी बुद्धि और योग्यता के बल पर बहुत कुछ कमाकर करोड़पति बन बैठे। इस संसार में बहुत से लोग ऐसे हो चुके हैं जो बिना धन के ही बहुत बड़े धनवान बन गए। उनके पास कोई भी सहारा नहीं था, न धन था, न ही किसी और की सहायता, मगर उनके पास आत्मविश्वास था। उन्होंने इसी का सहारा लिया और इसी आत्मविश्वास के सहारे अनेक बाधाओं को ठोकर मारकर दूर फेंक दिया। शारीरिक कमजोरी या अंगहीनता उनके रास्ते की रुकावट न बन सकी। अंत में वही लोग सफल

0: रुका। हाँ जी, थोड़ा अपना प्यारा सा मुखड़ा दिखाना शीशे के बाहर झांक के। हैं
1: जी, कहिए। अरे ये क्या कर रहे हो?
0: और मेरे भाई, और जिस चीज का कोई फायदा नहीं उसको रखने का फायदा क्या? तो तेरे पास चश्मा होते हुए तेरे को रेड लाइट नहीं दिखती तो फायदा की?
1: पर रोड तो खाली थी, कोई था ही नहीं।
0: ये क्या बात हुई भाई? हैं? इसका मतलब तो ये है कि दुकान पर अगर मालिक नहीं होगा तो तुम बिना पूछे उसका सामान उठाओगे? और बॉस नहीं होगा ऑफिस में तो तुम उसकी कुर्सी पे सो जाओगे? और रोड पे कोई हो न हो, सड़क

0: नियम कायदे कानून कभी नहीं टूटेंगे, और वैसे भी ये तो है मेरी सड़क और मुझे कहते हैं हवलदार कड़क।
1: रेड लाइट होने पर हमें अपनी गाड़ी रोक लेनी चाहिए और उसे ग्रीन होने पर ही आगे बढ़ना चाहिए। ऐसा न करके हम अपनी और दूसरों की जान खतरे में डाल सकते हैं। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

किसी विद्वान ने गलत नहीं कहा कि ईश्वर जिस किसी मानव को शिक्षा देना चाहता है तो वह उसे धन के विद्यालय में न भेजकर संकटों के विद्यालय में भेजता है, उसे जरूरतों और चिंताओं के विद्यालय में भेज देता है। गरीबी के कारण ही उसके अंदर के छिपे हुए गुण बाहर आते हैं, ऐसे गुण जिनकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होती। यह बात सदा याद रखनी चाहिए कि गरीबी ही मानव जाति का महान विश्वविद्यालय रहा है। इस विश्वविद्यालय से निकले अधिकतर लोग महान बने हैं। इनमें कई राजनीतिक नेता, महान कलाकार, संगीतकार, चित्रकार बनकर उभरे हैं। आज तक का इतिहास इस बात का साक्षी है कि जिन लोगों ने भी महान कार्य किए हैं, वे भाग्यशाली और संपन्न घरानों में नहीं पैदा हुए थे। ऐसे महान लोगों के पास कौन से साधन थे? मानव जाति के इतिहास में इससे अधिक रोमांचक और आश्चर्यजनक घटना और कोई दूसरी हो ही नहीं सकती कि उन सब ने कठिनाइयों के बीच रहकर बड़ी से बड़ी सफलताएं प्राप्त की। उन सब का प्रारंभ कितना निम्न और अंत कितना महान था। इस महानता के पीछे छुपा हुआ है उनका अथक परिश्रम, अनगिनत बाधाओं को पार करना, संघर्ष और इस पर भी धैर्य को न खोना। इन लोगों को पहले कहां आशा थी कि वे इतने बड़े कामों को पूरा कर लेंगे। पहले तो उन्होंने सरल काम को प्रारंभ किया, जो धीरे धीरे काम करते करते स्वयं ही इतना महान बन गया कि उन्होंने इसकी कल्पना भी नहीं की थी। स्वयं ही प्रेरणा मिलती गई और उनका काम आगे बढ़ता रहा, और जब वे सफलता की ऊंचाई पर पहुंच गए तो जमाना उन्हें देखता ही रह गया। किसी ने यह कल्पना भी नहीं की कि वे किन कठिन परिस्थितियों के साथ संघर्ष करते हुए सफलता के आकाश पर पहुंचे थे। भाग्य पर उन्हें भरोसा नहीं था, नहीं उन्होंने भाग्य के सहारे अपने ये काम शुरू किए। ये तो उनकी भावना थी, उनकी बुद्धि और भावना ने उनका साथ दिया। भाग्य के सपने उन्होंने न तो देखे थे, नहीं इस पर उन्हें विश्वास था। उनके सामने एक ही लक्ष्य था जिसे पूरा करने के लिए प्रबल इच्छा शक्ति और गहरे आत्मविश्वास की जरूरत थी। प्रबल इच्छा शक्ति के साथ जरूरत होती है खून में गर्मी आने की। इस गर्म खून के साथ साथ अंग अंग में गर्मी आ जाए तो मन में भावनाओं के तूफान उठने लगे। जब तक वह प्रतिज्ञा न कर ले कि मैं अपनी आशा पूरी किए बिना चैन से नहीं बैठूंगा, तब तक वह अपने लक्ष्य की पूर्ति से वंचित ही रहते हैं। इसीलिए आपसे भी हम यही कहना चाहते हैं कि आप भी अपने मन में दृढ़ प्रतिज्ञा कर लें और पूरे आत्मविश्वास के साथ उस प्रतिज्ञा को पूरा करने का प्रयास करें, उस प्रतिज्ञा को पूरा करने का प्रयास करें जिसे आपने अपने लक्ष्य की पूर्ति के लिए किया है। आपको अपने लक्ष्य प्राप्ति में सफलता मिले, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। फिर मिलेंगे सुप्रभात में। रेडियो मधुबन सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: आप सुन रहे रेडियो मधुबन, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए। आप सड़क पर चलते समय अपनी गाड़ी को कंट्रोल रखें और अपनी गाड़ी को धीरे धीरे चलाएं और हमेशा हेलमेट पहनते रहिए।
1: रेडियो मधुबन।

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम। ये है कार्यक्रम सहज स्वास्थ्य। मैं हूँ आपका दोस्त आरजी श्री। दोस्तों, स्वास्थ्य जैसे विषय को क्या हम लोगों ने मुश्किल किया है या वास्तविकता में स्वास्थ्य सहज ही है? लोग अक्सर ये चीज कहते हैं कि प्रकृति ने आपको जैसे बनाया है, अगर आप प्रकृति के साथ उसी सहजता में रहते हैं तो फिर आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहता है। प्रायः हम ये चीज देखते हैं कि प्रकृति के नियमों के विरुद्ध व्यक्ति जब चलता है तो उसके स्वास्थ्य में गड़बड़ियां फेरबदल होना शुरू हो जाती हैं। आज हम एयर कंडीशन मकानों में रहते हैं, हमारे ऑफिसेज एयर कंडीशनड हैं, हम एयर कंडीशन गाड़ियों में घूमते हैं। हम जो प्रकृति के अंदर फेरबदल हो रहे हैं, जो बदलाव हो रहे हैं, ऋतुओं के अनुसार जो परिवर्तन हो रहे हैं, उन परिवर्तनों के अनुसार अपने आप को ढालने के बजाय हम अपने घर में ही एक कृत्रिम अप्राकृतिक वातावरण का निर्माण कर लेते हैं। ऐसे ही ये भी चीज देखने को मिलती है कि आज हम भोजन के लिए भी जो मौसमी चीजें हैं, प्रकृति जिस मौसम में जो चीज देती है उसे हटकर दूसरी भी चीजें खाने का प्रयास करते हैं। आज हम एक वैश्विक जगत में रहते हैं, यानी ग्लोबलाइजेशन इतना हो चुका है जिसकी वजह से हर जगह की सामग्री हर जगह मिलने लगी है। क्या इसका मतलब ये है कि जो चीज सुदूर किसी देश में उगा है वो सब मैं आज इस मौसम में भी खा सकता हूँ? कहीं दक्षिणी गोलार्ध में जब गर्मियां हो रही होती हैं तो ऊपरी गोलार्ध में यहाँ पर सर्दियों के दिन होते हैं। क्या ऐसे समय पर हमें सब्जियों, फलों और जो भोजन हम कर रहे हैं उसे ऋतु के अनुसार करने के ऊपर ध्यान नहीं देना चाहिए? ऐसी अनेक गलतियां आज हम करते हुए नजर आ रहे हैं और बड़े शौक से हम ये कहते हैं कि ये इम्पोर्टेंट फ्रूट है, हम विदेशों से इसे ले आए हैं और समय बेसमय हम इन चीजों को खा लेते हैं। क्या इसका कुछ असर हमारे स्वास्थ्य पर होता है? आइए इन्हीं सब विषयों पर आज हम चर्चा करते हैं। आज हमारे साथ चर्चा के लिए स्टूडियो में स्वास्थ्य जगत के एक ऐसे विशेषज्ञ जुड़ रहे हैं जो पेशे से एक एलोपैथी डॉक्टर हैं, भारत के जाने माने ऑस्टियोपैथ हैं, स्पोर्ट्स मेडिसिन के क्षेत्र में लंबा अनुभव रखते हैं और भारत के प्राचीनतम प्रकृति चिकित्सा केंद्रों में से एक आरोग्य मंदिर गोरखपुर में प्रैक्टिस करते हैं, जहां पर उनके परिवार की अनेक पीढ़ियों ने लोगों को स्वास्थ्य लाभ दिया है और आज भी दे रहे हैं। आज हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ रहे हैं डॉक्टर राहुल मोदी जी। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है।
1: नमस्कार, ओम शांति।
0: सर्वप्रथम तो मैं यही चीज आपसे पूछना चाहूंगा डॉक्टर साहब कि आज हम अपने जीवन में ये चीजें, कहा जाता है कि प्रकृति सहज रीति से जो चीज देती है, जैसा प्रकृति सहज गुण है उसके अनुसार हमें चलना चाहिए, ये चीज अक्सर बुजुर्ग कहते हैं, मगर आज हम देखते हैं कि हम बहुत ही अप्राकृतिक और कृत्रिम चीजें अपने कंफर्ट के लिए बना लेते हैं, अपनी सहूलियत के लिए। हम एयर कंडीशन में रहते हैं, बंद घरों में हम रहते हैं, गाड़ियां हमारी बंद हैं, साथ ही साथ हम मौसम के हिसाब से अपने आप को ढालने की बजाय हम अपने घरों में ऐसी व्यवस्थाएं कर लेते हैं जिसकी वजह से हमें ढलने की जरूरत नहीं पड़ी, और भोजन के लिए भी हम अनेक ऐसी चीजें कर लेते हैं जो ऋतु चक्र के हिसाब से तो नहीं होती, जो हमारे यहाँ उगती तो नहीं है मगर कहीं सुदूर क्षेत्र से आती, किसी और देश से इम्पोर्ट हुआ है, ऐसी भी चीजें हम मौसम बेमौसम खा लेते हैं। क्या इन सब चीजों का स्वास्थ्य पर कुछ असर होता है?
1: भैया, आपने कृत्रिमता की बात की, पहले ये व्यवस्थाएं नहीं थी, और आप श्री भैया अगर नोटिस करेंगे कि पहले अस्पताल जो थे, और ये मैंने देखा है कि वो 24 घंटे नहीं खुलते थे, और सिर्फ एक बहुत छोटा सा अस्पताल का जो एक पार्ट था, एक उसका एक विभाग था जो खुलता था, वो इमरजेंसी। और आप ये देखिए कि पहले सरकारी अस्पतालों में पेंट किया जाता था कि 24 घंटे की सुविधा उपलब्ध है, और अब आप देखिए कि जो नए अस्पताल बने हैं उसमें ये बहुत अच्छा पेंट नहीं, अब ग्लो साइन से दिखाया जाता है, इमरजेंसी 24/7, मतलब 24 घंटे इमरजेंसी की सुविधा उपलब्ध। तो जब स्वास्थ्य सेवाएं 24 घंटे सातों दिन मिल रही हैं, तो क्या हमको अपना वातावरण 24 घंटे सातों दिन कंट्रोल करने की व्यवस्था मिल चुकी है? और भोजन जो हमें चाहिए वो भी अब 24 घंटे सातों दिन 12 महीने 365 दिन आपको मिलेगा। पिछले ही हफ्ते मुझे आम खिलाया गया। मेरे एक पेशेंट ने मुझे आम भेजा और उस आम पे लिखा था इम्पोर्टेड फ्रॉम साउथ अफ्रीका। पूरा एक डजन का पेटी था और मुझे खा के अच्छा लगा, क्योंकि आम की ऋतु नहीं है जब ये आम मिला, तो इसलिए बहुत अच्छा लगा। पर फिर दिमाग ने खाने के बाद कहा कि क्या इसे खाने की मुझे जरूरत है, क्योंकि वो साउथ अफ्रीका से आया, वो किसी शिप या एरोप्लेन से आया होगा, पहले किसी पोर्ट पे बॉम्बे या गुजरात मुंद्रा कहीं किसी पोर्ट सिटी पे उतरा होगा, फिर वहां से वो सड़क रास्ते उनके पास गया होगा, फिर उन्होंने कोरियर से मेरे पास भेजा। और पता नहीं, इधर लोग मुझे जानते हैं कि मैं प्राकृतिक चिकित्सक को फॉलो करता हूँ, बहुत सारे फ्रूट और वेजिटेबल खाता हूँ, थोड़ा मिठाइयाँ कम खाता हूँ, तो आम भी मिला। और अभी दो दिन पहले मुझे चिली से किसी ने मुझे चेरी मंगा के दिया। तो आप देखिए कि विदेशी फल मेरे गोरखपुर जैसे छोटे शहर में भी पहुंच रहे हैं। स्वाद उनका बहुत अच्छा है, इसमें कोई दो राय नहीं, पर आप देखिए कि उनको यहां तक लाने में कितने केमिकल डाले गए होंगे, उनको किस तरीके से लाया गया होगा, उनको ठंडा करके लाया गया होगा, उनको संभाल के लाया गया होगा कि वो कहीं किसी तरह से खराब ना हो। तो क्या मुझे उसकी जरूरत थी? नहीं। क्या मेरे शरीर को उसकी जरूरत थी उस फल की? नहीं। हाँ, मेरी जीवा को बहुत अच्छा लगा कि मैंने बहुत अच्छा फल खाया। मैं सभी श्रोताओं को ये कहना चाहूंगा, और बहुत बार मैं कह चुका, ऋतु अनुसार फल, ऋतु अनुसार सब्जियां, थोड़ा व्यायाम, थोड़ा मेडिटेशन, थोड़ा प्राणायाम, थोड़ा टहलना, थोड़ा घूमना जरूर करिए, आपके शरीर को बहुत जरूरत है इसकी। और अगर आप ये सब नहीं करेंगे, एक कृत्रिम एनवायरनमेंट में रहेंगे, आप दरवाजा बंद करके रहेंगे, आप एसी में 24 घंटा रहेंगे, तो आप फिर कहीं बाहर निकलने लायक नहीं रहेंगे। देखिए बच्चे कैसे कितने आराम से सड़क पे घूम लेते थे, खेल लेते थे, कोई परेशानी नहीं होती थी। आज बच्चे थोड़ा सा बाहर जिस दिन ज्यादा चले जाते हैं, हमारा वातावरण भी बदला है, वो खांसने लगते हैं, उनको बीमारी होने लगती है। हम उनको इतना बचा के रख रहे हैं कि भविष्य में उनकी इम्यूनिटी भी ठीक से डेवलप नहीं हो पा रही है। तो प्लीज बाहर निकलिए, थोड़ा घूमिए, प्रोसेस्ड फूड से थोड़ा दूर रहिए, और अपने स्वास्थ्य, शरीर और मन तीनों का ख्याल रखिए।
0: किन चीजों से बचना है, किन चीजों का ध्यान रखना है, ये चीजें आपने बताई। पिछले दिनों हम ये चर्चा कर रहे थे मधुमेह के बारे में, डायबिटीज के बारे में, आम लोग इसे शुगर की बीमारी कह देते हैं, और खासकर डायबिटीज के लोगों के लिए चीज कहा जाता है, अरे इनको मीठा मत दीजिए, ये इनको शुगर की बीमारी है। ये बड़ा रोचक सा लग सकता है कि लोग प्रश्न पूछते हैं कि क्या ये नई बीमारी है, क्या ये यकायक हमारी आबादी के बीच घुस आई है, इस चीज को भी समझना जरूरी है, आखिर ये है क्या चीज।
1: भैया डायबिटीज, इंग्लिश में डायबिटीज मेलाइटस कहा जाता है, एक प्रकार की डायबिटीज, ये चयापचय या मेटाबॉलिज्म संबंधी एक रोग है। और इसमें जो मुख्यतः जो समस्या होती है कि शरीर की कोशिकाओं द्वारा जो ग्लूकोज है या चीनी है, उसका वो उपयोग नहीं कर पाती है। अगर नॉर्मल बोलचाल की भाषा में कहा जाए तो ये अमीरी में गरीबी की बीमारी है। मतलब आपके पास बहुत सारा धन है, जो मतलब हमारे शरीर में जो, अगर धन की बात करें या रुपए की बात करें, जो कोशिकाएं खर्च करती हैं उसको ग्लूकोज कहते हैं। और ये समस्या ऐसी है कि आपके पास तिजोरी में बहुत सारा धन है, बहुत सारा रुपया, बहुत सारा पैसा है, और आपको उस पैसे की जरूरत है, मगर आपकी जो तिजोरी है उसकी चाबी गायब हो गई है, और तिजोरी आप तोड़ नहीं पा रहे हैं, आप खोल नहीं पा रहे हैं। मतलब आपके पास धन है मगर आप उसका प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं। यही एकदम डायबिटीज में होता है कि आपके पास ग्लूकोज बहुत भरा हुआ है, आपके रक्त में ग्लूकोज बह रहा है, मगर वो ग्लूकोज जो है वो कोशिकाओं को मिल नहीं पा रहा है। और जब वो कोशिकाओं को मिल नहीं पाएगा, तो वो रक्त में घूमता रहेगा, पेशाब में निकलेगा, और जहां भी चीनी रहेगी वहां आप देखिए मक्खी, मधुमक्खी, कीड़े मकौड़े जरूर आते हैं। तो शरीर में यदि चीनी घूमती रहेगी, बहती रहेगी, इधर उधर जाएगी, तो शरीर के अंदर तो कीड़े मकोड़े नहीं घुस पाएंगे, मगर बहुत सारे बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, ये सारे के सारे आपके शरीर को बुरा अपना असर दिखाते रहेंगे। क्यों? क्योंकि उनको बहुत सारा खाना मिल रहा है, जरूरत इतना ग्लूकोज अगल बगल पड़ा हुआ है, शुगर पड़ी हुई है, जिसको वो खाए चले जा रहे हैं, और जब वो खा रहे हैं तो वो बढ़ते चले जाएंगे, और जब वो बढ़ते चले जाएंगे तो हमारे शरीर में नाना प्रकार के इन्फेक्शन और बीमारियां हमारे शरीर को देते चले जाएंगे।
0: डॉक्टर साहब, आप अभी अभी ये बात कह रहे थे कि मधुमेह या डायबिटीज कैसे होती है और ये लाइफस्टाइल से संबंधित हमारे पाचन तंत्र, हमारे शरीर में कैसे ये काम करता है, ग्लूकोज की मात्रा का बढ़ा रहना और खून में अधिक मात्रा में ग्लूकोज रहने से रोगों के प्रति हम कैसे ससेप्टेबल हो जाते हैं, कैसे रोगों को हम आकर्षित करते हैं, दूसरे कीटाणु जैसे आप बैक्टीरिया वायरसेस की बात कह रहे थे। इससे पहले कि मैं इन विषयों पर जानकारी लूं, पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा कि ये अचानक क्यों, अचानक हम क्यों?

0: कंजम्पशन भी बढ़ गया, प्रोडक्शन भी बढ़ गया। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि भाई पहले सन 1900 तक, 1850 से 1900 तक, ये मोटा मोटी माना जाता था कि एक व्यक्ति हर वर्ष करीब 8 किलो चीनी खाएगा, जिस तरह से विश्व में इसका डेटा हुआ। और फिर यूके में जब एक रिसर्च हुई, उसने कहा कि इस समय प्रति व्यक्ति साल का करीब 90 किलो चीनी खा रहा है। तो आप देखिए कहाँ 8 किलो, कहाँ 90 किलो। अच्छा, क्यों इतनी चीनी का कंजम्पशन बढ़ गया? पहली बात, गन्ने की पैदावार बढ़ी, तो उन्नत प्रकार का गन्ना बना, ऐसा गन्ना बना जिसमें ज्यादा रस निकला, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां बनी। अच्छा, चीनी का एक बाय प्रोडक्ट जो मोलासेस है, उसका प्रयोग और भी चीजों में होने लगा, तो इसीलिए गन्ने का खूब प्रोडक्शन हुआ। और उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, थोड़ा साउथ के स्टेट्स में इसको भयंकर किसानों ने उगाया और खूब गन्ना का प्रयोग किया और गन्ने को बेचा, और चीनी का प्रोडक्शन बहुत अच्छा बढ़ा। आपको एक बात और जान के आश्चर्य होगा कि सबसे कम डायबिटीज के मरीज, वो जब विश्व युद्ध चल रहा था पहला और दूसरा, तब हुए, क्योंकि उस समय सबसे ज्यादा चीनी खाने का जो प्रचलन था वो कम हुआ। आप भारत में ही देखिए, क्यों भारत चीनी का या डायबिटीज कैपिटल बना? हमारे यहाँ चीनी भी कंट्रोल में बिकती थी, कॉपरेटिव की दुकानों में बिकती थी, हर आदमी को आप चाहिए तो इतना ही आपको चीनी मिलेगा, आपका एक राशन कार्ड बनता था। हमारे पास चीनी का उतना प्रोडक्शन ही नहीं था कि हम सबको खिला पाए, सबको चीनी दे पाए। तो हम संयम में उस चीनी का इस्तेमाल कर रहे थे, संयम में चीनी का प्रयोग कर रहे थे, और हमारे शरीर में उतनी चीनी जा नहीं रही थी। दूसरा, हम जिस समय चीनी का प्रयोग कम था, चीनी हमको कम मिल रही थी, उस समय जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाने की जो व्यवस्था थी, उसमें अधिकतर पैदल था, साइकिल था, या आम जनमानस बसों से या ट्रेन से ट्रैवल कर रहा था। तो वो जाने अनजाने में बहुत टहल रहा था, वो जाने अनजाने में बहुत फिजिकल काम कर रहा था। आप देखिए, अब तो लोहे के वो बक्से खत्म हो गए जो बचपन में हम लोग ट्रेन में लेके चढ़ा करते थे, वो होल डाल जिसमें सारा सामान रखा जाता था, जिसमें रजाई थी, चद्दर थी, गद्दा था, जो ट्रेन में लोग बिछा के सोया करते थे, वो खत्म हो गया। अब तो जहां जाना हो फट से गाड़ी में बैठे चले गए, आपके घर से लेकर बस स्टैंड तक भी आप देखिए साइकिल रिक्शा गायब हो गए, जहां जहां फिजिकल लेबर की जरूरत थी वहां गायब हो गया। तो हमारा फिजिकल लेबर बहुत बुरी तरीके से कम हुआ, और हमारा चीनी का प्रोडक्शन और चीनी खाने की जो हमारी चीज है वो बहुत अच्छे से बढ़ गई। और हम, जो आपने एकदम शुरुआत में बोला, हम सब आलसी हो गए, हम सब एसी के कमरों में बैठने लगे, पसीना आना बुरी बात मानी जाने लगी, कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, और एक्सरसाइज करने के लिए कहीं जा रहे हैं, कहीं हम लोग बेसिक एक्सरसाइज छोड़ दिए। मैं जब बहुत सारे लोग मुझसे राय लेते हैं कि मैं रेगुलर जिम जा रहा हूं पर मेरा कोई वजन नहीं कम कर रहा है, तो मैं हंसते पूछता हूँ, जिम कैसे जाते हैं? वो बोलते मैं गाड़ी से जिम जाता हूँ। तो मैं कहता हूँ, सर आप अगर साइकिल से जिम चले जाइए तो आपका वजन बहुत अच्छा कम हो जाएगा, और साइकिल से चले आइए तो आपके फिटनेस भी हो जाएगा। और ये चेंज मैं देख रहा हूँ सोसाइटी में कि भैया अब भजन मंडलियां बन गई हैं, जो सबेरे सबेरे पूरे मोहल्ले में या सोसाइटी में या मल्टी स्टोरी सोसाइटी में सबेरे घूम के भगवान का भजन वो घूम रही हैं, साइकिलिंग क्लब बन गए हैं, मैराथन रनिंग ग्रुप्स बन गए हैं, लोग अपने शरीर के लिए सजग होना शुरू हुए हैं। और अगर आप सजग हो जाएंगे तो बहुत सारी बीमारियों से बच जाएंगे।
1: सजग होने की जब बात आप कहते हैं तो ये बात समझ में आती है कि चीनी हमेशा हमारे जीवन का इतना बड़ा हिस्सा नहीं था। आज जब जब हम देखते हैं कि जब लोग चाय पीते हैं तो कई जगहों पर हमें देखते हैं लोग कहते हैं कि भाई नहीं, हमारे चाय में चीनी नहीं डाली, और खास अगर शुगर के मरीज होते हैं तो वो खास मना करते हैं कि चीनी नहीं डालिए,

0: मगर वो चाय पियेंगे बिना चीनी का। तो न चाहते हुए अनेक जगहों पर चीनी ने हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में एक जगह बना लिया है। हम मीठा चाहे न चाहे दिन में दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, ये हमारे अंदर जा रहा है, शरीर में डाल रहे हैं। अब प्रश्न उठता है कि क्या खराबी है चीनी, नुकसान ही क्या है? अगर चीनी इतनी खराब होती तो चीनी बंद ही कर देनी चाहिए थी। अगर चीनी मिल रही है, पहले आप कह रहे थे कि हम राशन की दुकान से खरीदना पड़ता था, पहले चीनी मिलती नहीं थी, एक परिवार को बस इतनी ही चीनी मिलेगी, उसके ऊपर एक लिमिट होता था, एक कोटा मिलता था। तो यकायक आज समृद्धि आ गई है, अगर चीनी बिक रहा है, हम ले पा रहे हैं, हम उगा पा रहे हैं गन्ना, और खाने की हमारे पास कैपेसिटी है, तो खाया जाए। चीनी क्यों खराब है, क्या करती है अंदर जाके शरीर?
1: श्री भैया, आपके ही प्रश्न में आपका उत्तर है। आपने कहा क्यों नहीं खाया जाए चीनी, तो आप खाइए, कोई रोक नहीं है, मगर जो आप खाइए उसको जलाइए। अगर आप खाते रहेंगे और नहीं जलाएंगे तो वो आपको कष्ट देता चला जाएगा। शुरुआत में हम लोग ने बात की कि आप जब चीनी खाते हैं तो जो हम चीनी खाते हैं या हम कोई भी कमंड या स्टार्च का कोई भी शक्कर युक्त पदार्थ अपने भोजन में ग्रहण करते हैं वो कार्बोहाइड्रेट के नाम से जाना जाता है, और पाचन प्रक्रिया में उसको हम लोग ग्लूकोज में परिवर्तित करके शरीर में रख लेते हैं। यही ग्लूकोज जो है ये हमारी कोशिकाओं को जब काम करना रहता है तो इसकी जरूरत रहती है। ये समझ लीजिए कोशिकाओं का भोजन है। और जब हम बहुत मीठा या बहुत रिफाइंड या बहुत कार्बोहाइड्रेट रिच या शक्कर युक्त भोजन करते हैं तो हमारे शरीर में जो इंसुलिन है वो बढ़ जाता है, और वो बढ़ने के बाद जैसे ही हम खाते हैं, ये पचाने के बाद इन सब जितना भी ग्लूकोज पच गया होता है वो कोशिकाओं के अंदर उसको धक्का दे देता है। और जब आप ये सोचिए ना कि आपने एक घोड़ा पाल रखा है और उससे हम माल खिंचवा रहे हैं गाड़ी से, आपको अगर दो आदमी उसमें बैठाने हैं तो घोड़ा लंबा समय चलेगा, अगर आप उसमें चार आदमी बैठाएंगे तो कम, आप उसमें रोज 15 आदमी 20 आदमी बैठाएंगे तो घोड़ा बेचारा खींच कैसे पाएगा। यही ये घोड़ा हमारा इंसुलिन है, और व्यक्ति जितने बैठे वो चीनी है। आप रोज चीनी भरे चले जाएंगे अपने शरीर में भोजन के द्वारा, तो और कुछ काम खुद नहीं करेंगे, दौड़ेंगे भागेंगे नहीं, तो ये चीनी जलेगी कैसे, ये चीनी पचेगी कैसे? आपके पास पूरा सामर्थ है, आपके पास पूरा पैसा है, आपके पास पूरी व्यवस्था है भोजन करने की और खूब चीनी खाने की, मगर यदि आपके पास इसको खर्च करने की व्यवस्था नहीं है तो ये आपको बीमार करेगी, और बीमार नहीं बहुत बीमार कर देगी।
0: अपने आप में हम डायबिटीज को एक बीमारी के रूप में देखते हैं, मगर डायबिटीज हो जाने से क्या होगा? क्या डायबिटीज का मरीज, उसके रहन सहन में उसको कोई फर्क पड़ता है? लोग अक्सर ये पूछते हैं कि भाई ब्लड टेस्ट कराया तो उसमें बहुत ज्यादा शुगर निकला, और कई कई बार लोग कहते हैं अरे मैंने चेक ही क्यों कराया, चेक नहीं कराता तो ठीक रहता, चेक कराने पर तो पता चल रहा है। और कभी कभार लोग कहते हैं अगर 300 शुगर आ रहा है, 400 शुगर की रीडिंग आ रही है, तो भी लोग कहते हैं पर मेरे ऊपर तो कोई असर नहीं हो रहा है, शरीर पर तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है।
1: जो हमारी चीनी है, जो ग्लूकोज है, वो सभी अंग, सभी कोशिकाएं एवं जितनी भी हमारे शरीर में प्रतिक्रियाएं चल रही हैं, इसके लिए ईंधन के रूप में इसका प्रयोग होता है। और इंसुलिन ही वो हार्मोन है जो हमारे पैंक्रियास से निकलता है, और वो इस ईंधन को सारी कोशिकाओं के अंदर डालता है, और जिससे हम काम कर पाते हैं। आप ये समझिए कि ग्लूकोज हमारे दिमाग को भी चाहिए, हमारे हाथ को भी चाहिए, पैर को भी चाहिए, हृदय को भी चाहिए, जितनी भी मांसपेशियां अंग हमारे शरीर में हैं उन सब को ग्लूकोज चाहिए। और जब हमको मधुमेह या डायबिटीज हो जाती है, तो ये ईंधन जो है, ग्लूकोज जो है, वो हमारे शरीर के अंदर, हमारी कोशिकाओं के अंदर प्रवेश नहीं कर पाता है ठीक से, और जितनी भी कोशिकाओं की प्रतिक्रियाएं हैं, विभिन्न कार्य हैं, वो ठीक से नहीं हो पाते हैं, और इसी वजह से हम बीमार पड़ने लगते हैं।
0: बहुत ही सुंदर ये जानकारी समझ में आ रही है कि हम शरीर के अंदर चीनी इकट्ठा तो कर ले रहे हैं, वो ऊर्जा देने वाली चीज ग्लूकोज है जरूर, मगर शरीर उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहा, क्योंकि डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जो इसी चीज का नाम है कि शरीर के अंदर चीनी और ऊर्जा या ग्लूकोज की मात्रा बढ़ी हुई है, मगर शरीर की कोशिकाएं उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रही। और भी बहुत सारे प्रश्न हैं डायबिटीज से जुड़े हुए, मगर समय कहता है कि यहाँ रुकना होगा। मगर आज आपने हमारे सभी श्रोता मित्रों को डायबिटीज के विषय पर बहुत ही आवश्यक जानकारी दी है, और बहुत ही सरल भाषा में आपने समझाया कि कैसे हम इस बीमारी को समझें। आज के सहज स्वास्थ्य में दोस्तों, एक चीज जो हम सभी आज करना शुरू कर सकते हैं वो ये है कि हम अपनी चीनी की मात्रा को कम करें। जैसे डॉक्टर साहब उदाहरण दे रहे थे कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय पर, यानी आज से लगभग 70 साल पहले, लोग कम चीनी खाया करते थे, और आज हम उसके कई कई गुना ज्यादा चीनी एक साल में खा जाते हैं, और इसकी वजह से हम इस बीमारी के लिए और भी ज्यादा ससेप्टेबल हो जाते हैं। इस बीमारी को अपने अंदर लाने के लिए हम खुद ही कदम बढ़ा रहे हैं, ऐसा प्रतीत होता है। आज इन सभी जानकारियों को देने के लिए आप सभी श्रोता मित्रों की ओर से मैं डॉक्टर राहुल मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत आभार आपका डॉक्टर साहब।
1: नमस्कार, ओम शांति।
0: दोस्तों, आज के सहज स्वास्थ्य में डायबिटीज से संबंधित जानकारी हासिल की है। स्वस्थ रहने के लिए थोड़ा आहार पर ध्यान दें, चीनी को मना करना सीखें, मीठे से बचें, कम से कम मीठा खाएं, और जितना भी आप खा रहे हैं उतना खर्चना शुरू करें, यानी पाचन के लिए एक्सरसाइज करें, थोड़ा प्राणायाम, थोड़ा ध्यान, मेडिटेशन करें, घूमे फिरें, चलते फिरते रहें। जितना आप खर्चा करेंगे, जितना आप श्रम करते रहेंगे, उतना स्वस्थ रहेंगे। आज के सेहत स्वास्थ्य में इतना ही। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: रुक रुक रुक। तो सुनाई नहीं देती? और ये पुकार है आपकी गड्डी की, तो कह रही है कि बिना पिए मेरे को चलाओ। और ये पुकार आपके बच्चों की भी हो सकती है, तो जो सलामत घर पहुंचना हो तो बिना पिए गाड़ी चलाना, समझे? चलो निकल लो अब। और हाँ, हैप्पी जर्नी मेरी तरफ से अवलदार कड़क। हाँ, जो आपको कहता है डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव। और ठीक ना? ठीक।
1: ब्रह्मा कुमारीज के सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।
2: नमस्कार, स्वागत करते हैं आप सबका अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में। डिप्रेशन, क्या ये कोई बीमारी है या फिर हमारे मन का वहम? क्या डिप्रेशन मुझे आपको हो सकता है? क्या डिप्रेशन एक कॉमन बीमारी है, एक कॉमन प्रॉब्लम है, या हम ऐसे ही डिप्रेस्ड फील करते हैं? ज़रा सा लो हुए तो हम डिप्रेस्ड हो जाते हैं। ये कई सारी बातें हैं जो कहीं ना कहीं एक सवाल के रूप में कभी ना कभी हमारे दिमाग में उपजती हैं और फिर उसके सोल्यूशन भी तलाशने की कोशिश की जाती है। इस श्रृंखला में हमने ये जाना कि डिप्रेशन वाकई एक बीमारी के रूप में सामने आ रहा है और इसका इलाज भी संभव है। कई तरह के उपाय हैं, कई तरह के इलाज पॉसिबल हैं, चाहे वो मेडिसिन से हो, चाहे वो साइकोथेरेपी से हो, या फिर कई बार जब ज़्यादा सीवियर केसेस हो जाएं तो इलेक्ट्रिक शॉक्स भी दिए जाते हैं। किस तरह के ये इलाज हैं, आज इस पर कुछ और चर्चा करते हैं। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं जाने माने साइकोथेरेपिस्ट डॉक्टर गिरीश पटेल। डॉक्टर गिरीश पटेल, आपका स्वागत।
3: नमस्कार।
2: नमस्कार। और हर बार की तरह हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी, आपका भी स्वागत।
4: ओम शांति।
2: ओम शांति। डॉक्टर पटेल, अगर हम याद करें तो पीछे हमने जो छोड़ी थी बात, वो ये थी कि तीन तरह के ट्रीटमेंट्स हैं जो डिप्रेशन की इस वक्त संभव है। उसमें सबसे पहले आपने बात की थी ड्रग्स से, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाती है, बहुत ज़रूरी है। कई मिथ्स हमने दूर की थी जो ड्रग्स से जुड़ी हुई थी, कि दवाइयाँ लेना कितना ज़रूरी है और अगर दवाई सही वक्त पर नहीं लेते हैं तो इट कैन एक्चुअली सीवियर केसेस में लीड टू सुसाइड ऑल्सो। सो इतना ज़रूरी हो जाता है ड्रग्स या दवाई लेना। आज थोड़ा सा और उसके ऊपर बात करते हैं कि कई सारी बातें तो हमने कर ली हैं, लेकिन बात ये आ जाती है कि कितना लंबा इलाज करना चाहिए। क्योंकि कई बार हम ये सोचते हैं कि चलिए, आपने कहा था कि 2.5 से 3 महीने तो क्लिनिकली बहुत ज़रूरी ही है, उसके बाद क्या हमें लाइफ लॉन्ग ही वो दवाई लेनी पड़ेगी या फिर इलाज जो है वो संभव है, या हम अपने आप ही मान लेते हैं कि नहीं, हम ठीक हो गए हैं?
3: लाइफ लॉन्ग तो लेने की जरूरत नहीं है।
2: अच्छा, किसी भी डिप्रेशन में नहीं,
3: लाइफ लॉन्ग की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। नहीं, जो गलतियां हैं उसके भी मैं आपको बताऊंगा कि भी क्या गलती हम करते हैं। वास्तव में जैसे कहा कि उसे हर 5-6 दिन में मेडिसिन को बढ़ाते बढ़ाते एक क्लिनिकल डोज पर आना पड़ता है कि जब केमिकल जो इम्बेलेंस हुआ है वो ठीक होने लगे, और वह जब एक क्लिनिकल डोज पर आ गए फिर 2-2.5 मास में उसकी परफेक्ट इफेक्ट हो जाती है, जो पॉजिटिव इफेक्ट होनी चाहिए। अब अच्छा साइकेट्रिस्ट है उसे कम करना प्रारंभ करेगा कि हर 20 दिन या 1 मास में थोड़ी थोड़ी वो मेडिसिन को कम करता जाएगा, और फिर एक छोटा सा डोज जिसे मेंटेनेंस डोज कहा गया है वो बहुत ही मामूली होता है। वो एकदम जो मामूली डोज है उसे कम से कम 1 साल लेना चाहिए।
2: अच्छा, ये जो जब हम इस पे पहुंचेंगे वो कितना टाइम हो जाएगा? वो 6 महीने भी हो सकता?
3: नहीं,
2: है
3: वो करीब 2.5 मास वो होने, वहां तक पहुंचेंगे 15-20 दिन में पहुंचेंगे, फिर 2.5 मास और फिर उसे स्लोली कम करना चाहिए। बोले कुछ ऐसे किस्से हो सकते हैं कि जहां पर एक मेडिसिन ने काम नहीं किया तो उन्हें मेडिसिन को बदलने की जरूरत पड़े, परंतु अगर आप सचमुच रिलीजियसली साइकेट्रिस्ट को फॉलो कर रहे हैं, उनकी मेडिसिन ले रहे हैं, तो यह एक जो सिस्टम है वो काफ़ी है। अब गलती कहाँ होती है कि एक तो पेशेंट अपने आप मेडिसिन को कम कर देते हैं, और जैसे ही आपको पता चला ना कि भई ये साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन ले रहे हैं, कहेंगे एस्ट्रोलॉजर के पास जाओ। है ना, वो क्या कहते हैं कि भई ये विधि करा लो, फलाना भुआ है वो ये विधि करता है उससे ही तुम। और देखा है मैंने 60-70% लोग 8-10 दिन के बाद वो मेडिसिन बंद कर दे, फिर सेकंड अटैक आता है तो फिर से जाएंगे साइकेट्रिस्ट।
2: अच्छा, सबसे बड़े फक्र से ये कहा जाता है कि मैंने तो दवाई बंद कर दी। मतलब मुझे, मैं तो दवाई भी नहीं खा रहा हूँ, दवाई भी नहीं खा रही हूँ मैं, अब तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं वो ठीक नहीं हुए
3: है। और जब अभी सेकंड अटैक आए तो सेकंड अटैक में अब ठीक होना मुश्किल है, फर्स्ट से सेकंड में ज्यादा मुश्किल है, थर्ड में और मुश्किल है, और अगर फोर्थ अटैक आ गया तो फिर तो बस फिर 90% ठीक नहीं हो सकते।
4: अटैक मतलब
3: मतलब रिपीट हो, जिसको कहें ना कि रिलैप्स कहेंगे। कि एक बार आप डिप्रेस हुए, आपने कुछ समय मेडिसिन ली, थोड़े अच्छे हुए, आपने छोड़ दी कोई भी कारण से, 10-15 दिन के बाद फिर से डिप्रेस्ड हो गए, फिर से साइकेट्रिस्ट के पास गए, उसने और कुछ मेडिसिन दी और फिर से आप ठीक हुए, फिर से आपने कुछ समय ली उसको छोड़ दी, और ऐसा अगर जिसको रिलैप्स भी कह सकते हैं कि दोबारा बीमारी होने।
2: लॉन्ग टर्म इसके इम्पैक्ट क्या है डिप्रेशन के? एक्चुअली हम ये तो मान लेते हैं हार्ट की प्रॉब्लम अगर आ गई, हार्ट की हम दवाई रिलीजियसली लेते रहेंगे, डायबिटीज है तो डायबिटीज की दवाई रिलीजियसली लेते रहेंगे, ब्लड प्रेशर है उसकी सुबह उठ के दवाई ले लेंगे, थायराइड है उसकी दवाई लेंगे, लेकिन डिप्रेशन की दवाई क्योंकि हम उसे लॉन्ग टर्म उसके जो इम्पैक्ट्स हैं या फिर फिजिकल इम्पैक्ट इतने शायद नहीं नज़र आते हैं, तो वो इम्पैक्ट क्या है अगर हम मेडिसिन नहीं लेते हैं? ये बार बार अटैक्स जो आएंगे, हाउ विल इट यू नो इफेक्ट माय बॉडी?
3: डिप्रेशन में जो हम अगर ठीक से ट्रीटमेंट नहीं करते हैं तो एक तो वह बीमारी है वह लंबे समय तक चलेगी, उसके अंदर विकृति भी आ सकती है, जिसको कहा है डिप्रेसिव साइकोसिस, कि पागलपन भी आ जाए, डिप्रेशन के साथ साथ भी पागलपन, कि जो और भी बुरा है, और पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं कि वह सुसाइड तक की अगर नौबत आ गई तो बहुत ही मुश्किल हो सकता है। तो इसके कारण ठीक से ट्रीटमेंट लेना बहुत ही जरूरी है।
2: तो लाइफ के ऊपर भी एक्चुअली अगर हम शिवानी देखें तो कभी जब हम हार्ट की बात करते हैं तो हम इसलिए दवाई खाते हैं कि हमें पता है भाई हमारा दिल रुक गया तो सब रुक जाएगा, तो यहाँ पे भी तो कहीं ना कहीं लाइफ के ऊपर हमारी पूरी पूरा जीवन जो है जो हम जी रहे हैं उसके ऊपर आ सकती
3: और बीमारियां भी जो आपने बताया ना कि भी अगर लंबा समय डिप्रेशन चले तो आपको हार्ट का प्रॉब्लम होने की संभावना भी बढ़ सकती है, लंबा समय डिप्रेशन चले डायबिटीज हो सकता है, नहीं बैक के प्रॉब्लम, कैंसर तक हो सकता है, क्योंकि आप अपनी फीलिंग्स को सप्रेस कर रहे हैं लंबा समय। तो उसकी जो ट्रीटमेंट अवेलेबल है और जो सेफ है वो हमें ठीक से करना बहुत आवश्यक है।
2: दैट इज वेरी इम्पोर्टेंट,
4: क्योंकि सिंपल बीमारी का इलाज नहीं किया तो वो इतनी बड़ी बीमारी का फिर रूप ले लेगी ना,
2: और कहीं ना कहीं कॉम्प्लिकेटेड होती जाएगी,
3: आपने कहा बीमारियां होने की संभावना बढ़ जाएगी, इसके कारण नहीं होगी क्योंकि डिप्रेशन भी एक स्ट्रेस है बहुत बड़ा, तो स्ट्रेस से होने वाली जो बीमारियां हैं वो होने की संभावना बढ़ जाएगी।
2: स्ट्रेस आल्सो लीड्स टू डिप्रेशन, हमने जब कारणों की बात की थी तो जो लाइफस्टाइल हमारा है इतना स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल है वो भी डिप्रेशन की तरफ ले जाता है।
3: ये विशेष सर्कल है कि स्ट्रेस डिप्रेशन करेगा, डिप्रेशन से आपकी स्ट्रेस बढ़ेगी।
2: अच्छा डॉक्टर साहब, हम इस पे थे कि जब इलाज कर रहे हैं, आपने 2.5 से 3 महीने तक अपना एक प्रॉपर क्लिनिकल डोज ली उस लेवल पे लिया, उसके बाद आपने कहा था कि धीरे धीरे कम करते जाना चाहिए, तो वो कम करना और उस वक्त वो दवाई लेना, कई बार लगता है कि 0.25 mg की गोलियां ना ही लो तो चलो रहने देते हैं, यू नो कोई बात नहीं, चलो ठीक है, क्योंकि 0.25 mg तो यही होगा ना, इतना ही होगा छोटा सा, तो क्या वो कितना इम्पोर्टेंट है वो एक साल जो आपने कहा कि वो थोड़ी सी मात्रा में भी लेना, जिसे आप कह रहे हैं कि सर्वाइविंग के मतलब उसको एक मेंटेन करने के लिए?
3: एक तो क्योंकि वो केमिकल्स को मेंटेन करना है, इससे पहले एक बात बता दूं कि एक दिन भी मिस नहीं करनी चाहिए,
2: अगर हो जाए
3: तो क्या होगा कि केमिकल आपके स्लोली बिल्ट अप हो रहे हैं, आपने एक दिन नहीं ली फिर से डाउन आ गए, तो फिर से उस केमिकल को बिल्ट अप करने को और आपको ज्यादा टाइम लगे,
2: नहीं तो फिर अगले दिन डबल डोज तो ना ले?
3: नहीं नहीं बिल्कुल नहीं,
2: ये दीज आर द थिंग्स व्हिच पीपल,
3: दैट इज वेरी रॉन्ग राइट ना, फिर उसकी साइड इफेक्ट भी हो सकती है। ये संभव है कि आपको डॉक्टर ने कहा है कि भी सोने से आधा घंटा पहले आप मेडिसिन को लेना, बाई चांस आप भूल गए, आपको रात को 2 बजे याद आया तो बोले 2 बजे भी ले लो, अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि आपने थोड़े समय के बाद लिया है तो वो केमिकल्स की जो पॉजिटिव इफेक्ट होनी चाहिए वो पॉजिटिव इफेक्ट स्लोली होगी,
2: तो अगले दिन फिर उसी टाइम पे लेना चाहिए।
3: हाँ, उससे फिर उसी टाइम पर ले हम, और मिस ना करे, डबल डोज तो बिल्कुल नहीं लेना है, दैट विल बी स्टिल मोर हार्मफुल। और अब बात आई कि भी वो कैसे छोड़े, सबसे अच्छा था कि डॉक्टर को डिसाइड करने दो, आप अपने डॉक्टर नहीं बनो, फिर भी एक जनरल आइडिया जो देना मैं चाहता हूँ कि एक बार आपको बिल्कुल अच्छा हो गया, 2.5-3 महीने तक सचमुच आप डिप्रेशन से बाहर आ गए, एकदम नॉर्मल हो गए, आपको लग रहा है जैसे मुझे अभी कोई बीमारी नहीं है, फिर आप स्लोली स्टार्ट करते हैं डॉक्टर कि भी हर मास में या 20 दिन में स्लोली वो डोज को कम करते हैं, और एक जो फिर मेंटेनेंस डोज आएगा वह मेंटेनेंस डोज कम से कम एक साल लेना चाहिए और फिर भी एक तो एक्सपेरिमेंट करना है वास्तव में, कुछ लोगों को और भी 2-3 साल भी आवश्यकता हो सकती है कि तब हम छोड़ सकते हैं,
2: तब वो बहुत मिनिमल होती है।
3: और उसके बीच में फिर और चीजें भी करो जैसे मेडिटेशन करो, है ना, जीवन शैली को परिवर्तन में लाओ, पॉजिटिव थिंकिंग करो, रिलैक्सेशन करो, हाँ साइकोथेरेपी भी करो। दिस विल बी द टाइम
2: व्हेन साइकोथेरेपी विल हेल्प। डॉक्टर साहब अब ड्रग्स को तो हमने काफी डिटेल में
3: जाना। और एक बात मैं बताना चाहता हूँ इसमें, जो लोगों में मिथ है और कई लोग पूछते हैं ये कि भी क्या मेडिसिन कभी बंद नहीं हो सकती है, तो जो यंग है उनके लिए तो हम कहेंगे कि भी मेडिसिन जरूर बंद करो, ठीक से लो और फिर बंद करो। अंत में थोड़े समय दिक्कत भी हो सकती है छोड़ने पर, लेकिन फिर वह हमारी जो ब्रेन केमिस्ट्री है वो एडजस्ट हो जाती है, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओल्ड एज का जहां सवाल है, मैंने कहीं देखे जो बूढ़े पेशेंट है 70 इयर्स के 75 इयर्स के है, मेडिसिन लेने से वो एकदम नॉर्मल है, लेकिन फिर भी उनके मन के अंदर एक भूत सवार होता है कि छोड़नी है छोड़नी है, तो उनको मैं कई बार कहता हूँ कि भाई कितना जीना है अभी आपको, अगर आपको 20-30 साल भी जीना है तो इससे कोई सीरियस प्रॉब्लम नहीं होना।
2: अच्छा, और सबसे बड़ी बात खुद को भी तो नहीं पता होता कि हमने कितना लंबा जीना है अभी।
3: सोच भी लो, और सिर्फ मेडिसिन की जो थोड़ी सी इफेक्ट है, कोई ज्यादा साइड इफेक्ट नहीं, कि जो उनकी क्रिएटिव एबिलिटीज है, इनोवेटिव पावर्स है, हो सकता है कि सब मेडिसिन ने कुछ मेडिसिन की इनोवेटिव पावर्स क्रिएटिव एबिलिटी पर थोड़ी सी 5-10% इफेक्ट हो सकती है। इसलिए यूथ को एडवाइस देंगे कि आप इसके थोड़ा सा पुरुषार्थ करिए और प्रॉपर उसका जो रूट कॉज है वो भी दूर करना चाहिए। रूट कॉज दूर हो गया तो फिर वो मेडिसिन को बंद करने में मुश्किल नहीं होगी।
2: आपने जब कहा कि ओल्ड एज के जो लोग हैं उनको तो कंटिन्यू कर ही सकते हैं वो,
3: अगर आवश्यकता है, ये भी नहीं अगर वो छोड़ सकते भले छोड़िए, लेकिन आप समझते हैं छोड़ने पर आपको सीरियस प्रॉब्लम हो रहा है और मेडिसिन से आप एकदम नॉर्मल जीवन जी रहे हैं तो स्मॉल डोज में लेने में आपको डिफिकल्टी।
2: यहाँ लेकिन एक और क्लैरिफिकेशन ये चाहेंगे कि अगर हम डिप्रेशन में हैं और ऐसे में हम कोई योगा या मेडिटेशन की जो बात आप कह रहे हैं कि वो दैट रियली हेल्प्स, वहाँ पर जाते भी योगा करते हुए खासकर या इस तरह के फिजिकल एक्टिविटी में जाने के बाद लोग अक्सर छोड़ देते हैं, वो ये सोचते हैं कि अब तो हम ठीक ही हो जाएंगे ये सारी क्रियाएँ करके, क्या वो छोड़ना चाहिए?
3: नहीं नहीं, बहुत अच्छा कनुप्रिया जी, एकदम पावरफुल प्रश्न है आपका, जिसको मैं कहता हूँ फीलिंग गुड। जब व्यक्ति योग आसन आदि करता है ना उसको अच्छा लगता है और वो सोचता है कि अभी मैं दवाई को छोड़ दूं तो वह डेंजरस चीज है। ये केमिकल्स एकदम कम हो जाएंगे और सीरियस प्रॉब्लम होगा। छोड़ भी आप सकते हैं, एक बार आपने अगर प्रॉपर जो ड्यूरेशन मैंने का 3 महीने का ड्यूरेशन वह दवाइयाँ ले ली आपने, आप एकदम नॉर्मल है, फिर जो मेंटेनेंस डोज आपका है वो भले दूसरे पेशेंट को हम कहते हैं 1 साल के बाद बंद करो, आप ट्राई कर सकते 6 मास के बाद भी करो, अगर आप उससे आप बिल्कुल नॉर्मल रह रहे हैं तब तो ठीक है, परंतु अगर नहीं रह पा रहे हैं तो जरूर लेनी चाहिए और तुरंत लो, फिर रुको नहीं,
4: कई बार
3: फिर से डिप्रेशन सेट हो जाए तब तक रुको नहीं।
4: कई बार सेंटर पे भी कुछ भाई बहने आते हैं, सोचते हैं मेडिटेशन करने से अच्छा लग रहा है,
3: हाँ
4: तो मेडिटेशन करने के बाद दवाई अपने आप छोड़ देते हैं, वो भी शायद खुद नहीं छोड़नी चाहिए,
3: हाँ,
4: ना
3: डॉक्टर को पूछ कोई है, हाँ।
2: क्योंकि कहीं ना कहीं जो इम्बैलेंसेस क्रिएटेड हैं, इवन इफ वो मेडिटेशन से अगर ठीक हो रहे हैं तभी वो इम्बैलेंस तो है,
4: हाँ, लेकिन फिर भी एक ट्रीटमेंट तो फिनिश कर लेनी चाहिए ना, तो हम यही रेकमेंड करेंगे कि आप डॉक्टर जैसे
3: एडवाइस से ही करिए,
2: जैसे कि आपने कहा था कि साइकियाट्रिस्ट जो आपका डॉक्टर है उस पर 100% फेथ रख के ही हमें अपना इलाज कर, जैसे हम अपने हार्ट के डॉक्टर हैं या हमारे कोई और प्रॉब्लम चल रही है, इवन जनरल फिजिशियन है उसके ऊपर भी तो 100% फेथ रखते हैं, वो कहते हैं इतनी एंटीबायोटिक खानी है, इतनी चाहे कितनी भी हालत खराब हो आप वो 5 दिन का कोर्स खत्म करेंगे ही। आई हैव सीन रियली यू नो पीपल दे सेइंग कि आपको 5 दिन की दवाई खानी है चाहे आप बीच में ठीक हो जाएं, लेकिन वो 5 दिन का एंटीबायोटिक का कोर्स कंप्लीट करना ही है, और आई थिंक वो हर कोई करता है, तो फिर इसको भी पूरे कोर्स को करना जरूरी हो जाता है। एक और मिथ, आज हम मिथ्स को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, खासकर डिप्रेशन जैसा मुद्दा है उसमें जब यंगस्टर्स में डिप्रेशन की बात आती है तो चाहे वो लड़कियां हो या लड़के, पेरेंट्स के दिल में एक बहुत ये, क्योंकि हम साइड इफेक्ट्स की बात कर रहे हैं कि अगर दवाई देंगे तो उसके बाद ये नॉर्मल लाइफ नहीं लीड कर पाएंगे, इतने साइड इफेक्ट्स हो जाएंगे, तो यू नो चाहे वो अभी इलाज कर रही है चाहे वो कॉलेज में पढ़ते हैं तो उनके यू नो मैरिज के बाद कंसीव करने में, प्रेगनेंसी में ये प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। यहाँ हम ये चाहते हैं दैट हाउ डज इट रियली इफेक्ट,
3: ये भी मिथ ही है वास्तव में। बल्कि कुछ मेडिसिन इफेक्ट करती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल पर कुछ मेडिसिन इफेक्ट कर सकती है, प्रेगनेंसी में कुछ मेडिसिन नहीं देनी है तो डॉक्टर जानता है।
2: वो तो उस वक्त पे है ना कि जब वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वो मेडिसिन नहीं देनी है, लेकिन अगर कोई बच्ची या जो व्यक्ति है वो कॉलेज में पढ़ रही है या उस दौरान उसको वो डिप्रेशन,
3: कोई तकलीफ नहीं है, वास्तव में मेडिसिन देनी ही चाहिए। और अगर कोई थोड़ी सी साइड इफेक्ट हो रही है तो बहुत अच्छी नई दवाइयां हैं जो डॉक्टर उसको चेंज भी करेंगे।
2: और लॉन्ग टर्म इफेक्ट तो नहीं होते ना।
3: और यूथ में तो देनी चाहिए क्योंकि यूथ में कई बार सिम्टम्स अलग प्रकार के होते हैं और इसके कारण यूथ में अगर उनको जरूरत है तो सही ड्यूरेशन के लिए अवश्य ही उनको हम दवाइयां दे। और एक मिथ है वास्तव में, है ना, प्रेगनेंसी के दौरान भी कुछ मेडिसिन है वो दे सकते हैं।
2: तो चलिए ये पूरा एक यहाँ एक ये कंप्लीट चैप्टर ये होता है कि दवाइयां जरूरी है कहीं ना कहीं किसी मोड पर, अगर डिप्रेशन में हैं आप और कुछ देर के लिए ही चाहिए, जरूरी नहीं है कि हमें लॉन्ग टर्म ही करना है, मेंटेनेंस के लिए अगर साल भर है तो दैट्स ओके, लेकिन उसके बाद हम एक बेहतर जिंदगी, जो एक बोझ लेके हम डिप्रेशन का चलते हैं उससे बाहर निकल सकते हैं। अब हम शॉक की बात करते हैं कि शिवानी बहन ने भी उस टाइम पे, उस वक्त जब बात हो रही थी कि शॉक ट्रीटमेंट पे होता है, इलेक्ट्रिक शॉक्स या कन्वर्जन्स जिसे कहते हैं जो दिया जाता है फिल्मों में, अगर हम देखें तो वो एक सबसे खतरनाक चीज़ होती है, किसी को टॉर्चर करना है तो शॉक्स दिए जाते हैं। How important they become at times?
3: सबसे पहले मैं clarify करूँ, ये शब्द बड़ा डरावना है और ये शब्द सही भी नहीं है, नहीं इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। वास्तव में जो इसका नाम है, जिसको कहा है ECT, है ना, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी, कि जैसे हमको फिट्स आते हैं, किसी को कन्वल्जन्स आते हैं नेचुरली, वह इलेक्ट्रिकली इंड्यूस किए जाते हैं और उसके द्वारा ट्रीटमेंट होती है। एक तो कि भी वह रेयर है, आज वर्तमान समय इतनी अच्छी अच्छी दवाइयां है कि वह रेयरली आवश्यकता पड़ती है। कहेंगे कि भाई 1000 या 2000 पेशेंट में एक आध किसी को उसकी आवश्यकता पड़े, बार बार उसकी आवश्यकता नहीं है। और अच्छा साइकेट्रिस्ट पहले तो सभी दवाइयों का प्रयोग करेगा, अगर एक नहीं हुई तो सेकेंड जनरेशन की अच्छी दवाइयाँ हैं, थर्ड जनरेशन की है उसका भी प्रयोग करेगा। और अगर कोई भी दवाई काम नहीं कर रही है तब ही वो ECT का सहारा लेगा। और दूसरा एक होता है कि भी जिसमें सीरियस सुसाइडल टेंडेंसी है कि भी किसी भी क्षण या आत्महत्या कर लेगा, और ऐसे किससे हुए हैं, यहाँ तक कि वो साइकेट्रिस्ट के क्लिनिक में गए हैं, रिलेटिव्स बैठे हैं, पेशेंट ऊपर टेरेस में गया, उसने जंप लगाई। तो जहां पर ये पता है कि भी इनको मैनेज करना बहुत मुश्किल है, वहां कुछ किस्सों में ECT कार्य कर सकती है। और अब ये जो ट्रीटमेंट है वो डिफरेंट है, जैसे आपने वो शॉक ट्रीटमेंट, और लोग डरते हैं उससे। अब जो ये ट्रीटमेंट दी जाती है, पहले तो मैंने कहा रेयर है, इट्स मे बी 1000-2000 पेशेंट में एक आध को जरूरत पड़े। और दूसरी बात है कि अब जो देते हैं, जैसे हम ऑपरेशन के लिए बेहोश करते हैं, ऐसे एनेस्थीसिया देने के बाद, और अब जो नए मशीन आए दे आर सो सेफ, इसमें जो कन्वर्जेंस डिफरेंट वे टेक्निकल नहीं पाएंगे हो तो उसका भी पूरा सेट होता है कि हमें अराउंड 8 ECTs की अधिकतर आवश्यकता पड़ती है, तो उस अनुसार वह भी जो डिप्रेशन के पेशेंट में जरूरत है और डॉक्टर सजेस्ट कर रहे हैं, बोले आप दूसरा भी ओपिनियन ले लो, आपको ये लग रहा है कि भी आपके डॉक्टर ने सही सब मेडिसिन्स का उपयोग नहीं किया और वह यह राय आपको दे रहे हैं, तो दूसरे कोई साइकेट्रिस्ट के पास भी जाओ, वह भी समझता है कि यह सब दवाइयों का प्रयोग किया
2: क्या
3: गया
2: होता है। जैसे हमने ड्रग्स की जब दवाइयां ली तो हमें पता चला कि केमिकल इम्बैलेंस था, तो वो बैलेंस करने के लिए उसको कम्प्लीट करते हैं, दवाई ली जाती है। इसमें जो इलेक्ट्रिकल कन्वर्जेंस है, इसमें क्या होता है, क्या चेंज आता है?
3: ऐसा तो मैं एक्सेप्ट करूंगा, एक बात भी 100% पता नहीं, परंतु फिर भी इसमें जो दो बातें होती है कि भी केमिकल्स में भी परिवर्तन आता है, और दूसरा एक जो फायदा होता है कि कुछ जो उनकी नेगेटिव मेमोरीज है ना, वो व्यक्ति भूल जाता है, स्ट्रेस की मेमोरी, सर्टन ट्रॉमास, एब्यूज, समथिंग नो विच माइट हैव ट्रिगर्ड, कि जिसको व्यक्ति भूलता है और उसके कारण भी इम्प्रूवमेंट होता है। इसकी अगर हिस्ट्री को हम देखें ना, तो ईसीटी की शुरुआत वास्तव में पागल पेशेंटों के लिए हुई।
2: आने वाली थी कि क्या डिप्रेशन लीड्स टू मैडनेस आल्सो एट टाइम्स
3: इट कैन
2: वायलेंट जब हो जाता है तो
3: नहीं वायलेंट हो या तो वो ज्यादा समय रहे हमने आगे डिस्कस भी किया था कि डिप्रेसिव साइकोसिस होता है तो वो डिप्रेसिव साइकोसिस में मैडनेस होगा। मैं एक दूसरा पॉइंट यहाँ बता रहा हूँ कि जो शुरुआत हुई ईसीडी की वो सिजोफ्रेनिया के पेशेंट्स के लिए हुई जो पागलपन के पेशेंट्स है उनके लिए हुई परंतु फिर कभी कभी डिप्रेशन के पेशेंट को भी दिया गया और देखा कि सबसे फायदा इनको हो रहा है पेशेंट एकदम नॉर्मल हो रहे हैं और इवन मिरेकल्स हो सकता है कि जिस पेशेंट को आपने एक साल तक दवाइयां दी अलग अलग दवाइयां डॉक्टरों ने प्रयोग किया लेकिन वो ठीक नहीं हो रहा है और उसको आपने चार ईसीटी दिए एकदम मिरेकुलस एकदम वो नॉर्मल
2: डीप डिप्रेशन में जो गए हुए लोग
3: या तो जिनको आवश्यकता है कि भी उसके सुसाइडल थॉट्स एकदम खत्म हो गए जैसे लगा जादू हो गया तो रेयर किस्सों में अब ये जजमेंट लेना चाहिए कि भी कहां पर आवश्यकता है तो देने में हर्जा नहीं
2: क्योंकि कहीं ना कहीं आपने कहा कि बैड मेमोरीज को सप्रेस कर देता है निगेट कर देता है डिलीट कर पाता है अगर कोई हम मेमोरी में जाके उन मेमोरी अपनी मेमोरी बॉक्स में जाके उन बैड मेमोरीज को डिलीट कर पाए इससे अच्छा और कोई तरीका नहीं हो सकता लेकिन आई थिंक एक और इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट जो है वो है साइकोथेरेपी
3: बिल्कुल
2: विचारों का जो जनरेट जो बेसिक अगर हम कहें कि जहाँ से जन्मे वहीं अगर हम वहीं रोक लगा दें वहीं बदलाव ले आए
3: तो
2: वो हमारा आपके साथ और आपके साथ ज़रूर उस पर डिटेल में और डीप जाने की ज़रूरत है कि क्या होगा वहाँ पे लेकिन अभी समय कम है तो थोड़ा सा जल्दी से शुरू में पूछ लेते हैं कि एग्जैक्टली साइकोथेरेपी में किया क्या जाता है।
3: अच्छा अलग अलग प्रकार की साइकोथेरेपी है वास्तव में जो शुरुआत हुई आज तक भी कहीं इस नाम को जानते हैं जिसको कहा साइको एनालिसिस कि सेगमेंट फ्रॉइड ने इसकी शुरुआत की और वो सारी उसकी थियरी है कि जिसमें बचपन में उनका यह सोचना था कि भी कई ऐसी बातें हैं कि जो बड़े होने के बाद आपको बीमार करती है जिसको कहेंगे चाइल्डहुड कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं उनकी अपनी एक सारी पर्सनालिटी की थियरी है तो फ्रॉइडियन थियरी थी फिर उसमें भी बदलाव आया यूंग ने उसमें परिवर्तन करके एनालिटिक साइकोलॉजी नाम दिया उसका और भी कई एक्सपर्ट्स आए जिन्होंने वो जो थेरेपी थी उसमें कुछ कुछ चेंज करते लाए फिर एक जो दूसरी थेरेपी प्रीडोमिनेंटली यूज होती है जिसको कहा बिहेवियरल थेरेपी कि हमारे बिहेवियर में जो व्यवहार है उसमें परिवर्तन लाना उनको सिखाया गया कि जो भी कुछ हद तक इफेक्टिव होती थी और अभी वर्तमान में एक बहुत ही अच्छी थेरेपी है जिसको कहा है बिहेवियर कॉग्निटिव थेरेपी कॉग्निशन मतलब कि अपने विचारों में परिवर्तन लाना क्योंकि विचारों में मूड है और ये जो मूल कारण है वो मूल कारण को बचपन से ज़्यादा संबंध नहीं अगर हम अपने विचारों को चेंज कर सके तो उन मूल कारण को भी दूर कर सकेंगे प्रयोग भी हुए हैं कि ये कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी काफ़ी इफेक्टिव है
2: तो डॉक्टर साहब बिल्कुल बात यही सामने आती है कि जो अभी तक हमने बात की सिस्टर शिवानी इनफैक्ट चलते चलते कुछ आपसे हम बात ज़रूर करना चाहेंगे ये कि विचारों में परिवर्तन डॉक्टर साहब ने कहा वो सबसे इम्पॉर्टेंट और बहुत महत्वपूर्ण होती जा रही है उसमें मेडिटेशन किस तरह से हेल्प कर सकती है पूरा जो हमारा पूरा
4: पूरी तरह से शायद है ना मेडिटेशन में भी अलग प्रकार होती है ना जैसे आजकल बहुत सारी मेडिटेशन हम देखते हैं तो कई मेडिटेशन टेक्निक्स होती हैं जो बॉडी के ऊपर फोकस्ड हैं ब्रीदिंग टेक्निक पर एंड कोई आसन को भी योगा कहते हैं लेकिन राजयोगा मेडिटेशन एटलीस्ट स्पेसिफिकली इट डील्स ओनली विद द माइंड तो हाँ ओनली विद द माइंड एंड फिर माइंड थॉट्स चेंज होंगी तो एटीट्यूड अपने आप चेंज हो जाता है तो राजयोगा मेडिटेशन ब्रिंग्स अबाउट एन एटीट्यूडनल चेंज यू नो इट्स नॉट फोकस्ड ऑन ब्रीदिंग और फिजिकल पोस्चर वो पूरी तरह से मन और संकल्पों के ऊपर केंद्रित है तो इसलिए उससे जो परिवर्तन हम लाना चाहें हम अपने विचारों में ला सकते हैं
2: बिल्कुल तो साइकोथेरेपी एक वो थेरेपी है जो कहीं ना कहीं पूरे बदलाव की तरफ सिर्फ डिप्रेशन से पीड़ित व्यक्तियों के लिए नहीं मुझे लगता है हम में से हर व्यक्ति के लिए बहुत ज़्यादा
3: मामूली डिप्रेशन भी
2: मुझे लगता है हम में से हर एक को मुझे तो होगा ही इतनी सारी बातें मैं समझ रही तो ये हम जो है अपना सकते हैं और इसके बारे में डिटेल में आने वाली कड़ियों में हम ज़रूर बात करेंगे डॉक्टर गिरीश पटेल और सिस्टर शिवानी बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी परिचर्चा के लिए आज जो हमने जाना कि कितना इम्पोर्टेंट है मेडिसिन लेना, और उसके अलावा जो आपने ECT के बारे में बताया कि वो इलेक्ट्रिक शॉक्स ना रह के डिफरेंट तरीके से दिया जाने लग गया और कितना कई बार यूजफुल हो जाता है। थैंक यू सो मच। जी हाँ, बहुत सी बातें आपके पास भी होंगी, आप भी ये जानना चाह रहे होंगे कि किस तरह से साइकोथेरेपी को हम अपनी ज़िंदगी में भी अपना सकते हैं, किस तरह से मन से या अपने आप से खुद बातें करके क्या ये संभव है कि हम अपना ही एनालिसिस करके अपनी ही प्रॉब्लम को खुद सॉल्व कर पाएँ। हो सकता है ये पॉसिबल हो, आने वाली कड़ियों में इन्हें ज़रूर तलाशेंगे। अगर आपके पास कोई सवाल है, कोई ऐसी बात है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, आपका स्वागत है। आप हमें फ़ोन पर या ईमेल द्वारा संपर्क कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 9873666555 और हमारा ईमेल आईडी है omshantistudio@gmail.com। इसके साथ ही अब वक्त है आपसे विदा लेने का, लेकिन इसी दुआ के साथ, इसी उम्मीद के साथ कि अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में एक बार फिर खुद को तलाशने का ये प्रयास जारी रखेंगे। अब दीजिए इजाज़त। नमस्कार।

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: एक वाक्य ने मेरे थॉट्स को डिस्टर्ब किया, फीलिंग्स को डिस्टर्ब किया, मेरे शब्द डिस्टर्ब हुए, मैंने शायद वो चीजें बोल दी आपने जो बोलनी नहीं चाहिए थी, फिर आपका बिहेवियर डिस्टर्ब्ड हुआ, फिर रिलेशनशिप एनर्जी एक्सचेंज डिस्टर्ब हुआ एक घंटे के लिए। लेकिन मुझे अपने आप को ये चेक करना है कि ये जो मैं सोच रही हूँ, इज इट कम्फर्टेबल फॉर मी। एक चीज हमने मिस आउट की कि ये सारी थॉट्स एंड फीलिंग्स जो हमने क्रिएट की, उसका इफेक्ट हमारे शरीर पे भी पड़ा। व्हेन वी हैव अंडरस्टूड कि एवरी थॉट दैट वी क्रिएट, जस्ट द अदर डे एक डॉक्टर ने हमें एक्सप्लेन किया, एक साइकाइट्रिस्ट है, तो उन्होंने कहा ब्रेन के अंदर 10,000 crore सेल्स है, जस्ट द ब्रेन, ओके, 10,000 crore सेल्स। एंड फिर उन्होंने कहा ये 10,000 crore सेल्स आर, ईच सेल इज कनेक्टेड टू एटलीस्ट 10,000 मोर सेल्स इन द बॉडी, 10,000 crore सेल्स इन द ब्रेन इंटू 10,000, दिस इज द ह्यूमन नेटवर्क, सो मेनी स्विचेस कनेक्टेड टू सो मेनी स्विचेस। अब जब इतने स्विचेस से कनेक्टेड होते हैं, तो एक में भी अगर कुछ ऊपर नीचे होगा तो उसका इफेक्ट कितना लंबा जाएगा। तो जब ब्रेन में 10,000 crore सेल्स कनेक्टेड टू 10,000 सेल्स, ईच सेल कनेक्टेड टू 10,000 सेल्स इन द बॉडी, एंड हर थॉट जो हम क्रिएट कर रहे हैं उसका ब्रेन पर असर पड़ रहा है, ब्रेन से फिर वो केमिकल सिक्रेट होते हैं, फिर उसका असर शरीर पे पड़ता है, और हमने कितने आराम से एक घंटा डिस्टर्ब रहे। अब हम अगर इस इक्वेशन को सिर्फ चेक करें तो एक घंटे में कितना इम्पैक्ट आया होगा हमारे शरीर के ऊपर, उस समय याद नहीं रहता ना, क्योंकि हमें शायद नॉलेज नहीं है, अवेयर नहीं है, या हम अपने आप को अलाउ करते हैं वैसे करना।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

ओम शांति। नमस्कार, मैं हूं नीलम कंबोज, करनाल हरियाणा से, और आप सभी को आज के दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते

0: सुबह की कोमल धूप के साथ कुछ जानकारियाँ और मनोरंजन, ये है नई किरण।
1: ओए रुको, रुक।
2: हाँ कहिए।
1: अजी कहना सुनना, आपकी शादी में कर लेंगे, फिलहाल तो ये बताइए कि आपकी बेल्ट कहाँ है?
2: है तो ये देखिए।
1: ओए कमर की नहीं, मैं सीट बेल्ट की बात कर रहा हूँ। हवलदार कड़क से मजाक मत करो, बहुत महंगा पड़ेगा। हाँ, और उससे ज्यादा महंगा पड़ेगा ये बिना सीट बेल्ट की गाड़ी का चलान। ओए जल्दी ऊपर जाने का बहुत शौक है, हैं? ओए छोटू फाइन काटो इनका, 1200 रुपए सीट बेल्ट नहीं पहनने का और 2400 रुपए हवलदार कड़क से मजाक करने का। और ये है मेरी सड़क, मुझे कहते हैं हवलदार कड़क।
3: कार चलाते समय सीट बेल्ट का उपयोग करना चाहिए, इससे आप बड़ी दुर्घटना से बच सकते हैं। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।
4: नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के स्पेशल एपिसोड में। जी हाँ, नई किरण इस कार्यक्रम में स्वागत है आप सभी का। आशा करूँगा बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे। आइए, सोमवार का दिन है, हफ्ते की शुरुआत है, तो आप सभी को पूरे हफ्ते के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और श्रावण मास चल रहा है, तो श्रावण मास की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं और मंगल कामनाएं करते हैं। जी हाँ, 24 अगस्त 2026 आज का तारीख है और कल 25 अगस्त है। कल दादी डे है, अर्थात दादी प्रकाश मणि डे, जो खास ब्रदरहुड के रूप में मनाया जाता है, भाईचारे के रूप में मनाया जाता है पूरे विश्व में। तो कल विशेष इस शुभ दिन को और भी खास बनाने के लिए रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। तो माउंट आबू में ग्लोबल हॉस्पिटल में आबूराज में आप सभी का स्वागत है। और जो इच्छुक दानदाता है, रक्तदान देने वाले हैं, उन सभी का स्वागत है ग्लोबल हॉस्पिटल आबूराज में। तो याद रखिए, सुबह 9 से दोपहर 2 बजे तक ये कार्यक्रम चलेगा रक्तदान का। तो जो भी भाई बहने मुझे सुन रहे हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप ज़रूर 9 से 2 बजे के बीच में अवश्य पधार कर अपना जो है अमूल्य योगदान करके दादी जी के इस खूबसूरत दिन को यादगार बनाइए और रक्तदान महादान का पुण्य कमाइए। इन्हीं शुभ आशाओं के साथ आइए, 24 अगस्त आज का दिन है। तो राष्ट्रीय शके 1948, 2 गते 8 श्रावण सोमवार आज है। विक्रम संवत 2083 श्रावण शुक्ल पक्ष द्वादशी सोमवार पूर्वाषाढ़ आज है। इस्लामी इजरी 1448 10 रबी उल अव्वल पीर नाइम आज है। इसके साथ ही चतुरार्त श्रावण सोमवार व्रत आज है। और आप सभी को आज के इस मंगल दिवस की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं और मंगल कामनाएं करते हुए आइए शुरू करते हैं एक बहुत ही प्यारा सा गीत। सुनते हैं शिव परमात्मा की महिमा का और इस खूबसूरत दिन को याद करते हैं। आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM, सुनते रहो मुस्कराते रहो। हेलो जी, नमस्कार, स्वागत है आपका।
5: हेलो जी नमस्कार, बाबू जी सुबह से आज सोमवार के भजन सुन ही रहे हैं, उसको आनंद ले ही रहे हैं। और आप भी दूसरा और ऐलान कर दिया है, उस खुशी में हमारे को आपको मिलने से बहुत खुशी हो जाती है। आप आए बाहर आए, क्या कहना है आपके साथ में, हमेशा हमारे को रह करके अपने विचार को रह करके विचलित करने विचलित रहना है।
4: जी जी जी,
5: धन्यवाद सर, आपको प्यार भरा नमस्कार और सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार जी।
4: नमस्कार नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM, सुनते रहो मुस्कराते रहो।

भक्तों, भगवान शिव ने उस शुक को क्षमा किया एवं उसे ज्ञानी होने का आशीर्वाद भी दिया। उसके पश्चात शुकदेव जी के रूप में उस बालक का जन्म हुआ। 12 वर्ष की अवस्था में वो बालक बहुत ज्ञानी बना एवं भागवत सप्ताह की रचना भी की। भगवान शिव उसे वही गुफा में रहने का आशीर्वाद दिए जिसे अमरनाथ के नाम से जाना जाता है। वहाँ लोग दर्शन के लिए जाते हैं। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, भगवान भोलेनाथ।

भक्तों, आज मैं बहुत ही रोचक कहानी आप सबको बताने जा रही हूँ, जो भगवान शिव और माता पार्वती के बीच की है। सबसे उत्तम कथा जिसे अमर कथा कहा जाता है। भगवान शिव ने माता पार्वती के कहने पर कैसे उन्हें सुनाया, आइए आगे इस कथा में श्रवण करते हैं। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, भगवान भोले

भक्तों, त्रेता युग की बात है। कैलाश पर्वत पर पार्वती भगवान शिव के साथ प्रातः भ्रमण कर रही थी। अचानक पार्वती ने उनसे कहा, स्वामी आप बड़े ज्ञानी हैं, जन्म मरण और मोह माया के बंधनों से परे हैं। इन सभी बंधनों से छुटकारा पाकर मैं सदैव आपके साथ रह सकूं, ऐसा ज्ञान मुझे दीजिए। तो आगे क्या होता है, आइए इस कथा के माध्यम से श्रवण करते हैं। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, भगवान भोलेनाथ की।

0: नमस्कार, ओम नमः शिवाय। प्यारे भाई और बहनों, फिर से एक बार स्वागत है आप सभी का। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नई किरण। मैं हूँ आपका हम सफर आरजे रमेश। चलिए आगे बढ़ते हैं और बातें करते हैं। आज सोमवार का दिन है और विशेष श्रावण महीने का सोमवार का ये दिन है, तो खूबसूरत दिन। और आप सभी को याद करते हुए अभी सुरेश जी पिंडवाड़ा से आप सभी को याद कर रहे थे, श्रावण सोमवार की शुभकामनाएं दिए। और साथ में हमारे मदन जी ने भी याद भेजा है। मदन जी भी अभी रिक्शा में जा रहे हैं कहीं, और उन्होंने आप सभी को बड़े प्यार से याद किया है।
1: हेलो
0: जी, नमस्कार।
1: नमस्कार, ओम शांति, गुड मॉर्निंग।
0: गुड मॉर्निंग सुगना जी, बोलिए कैसे हैं आप?
1: बहुत अच्छे हैं
0: जी।
1: सोमवार है तो भोले बाबा की धुन सुनवा दीजिएगा।
0: बिल्कुल बिल्कुल जी,
1: वाला है ना। हर हर शंभु घोड़ा तुम्हारी धुन लागी, वाला है गुजराती।
0: अच्छा अच्छा, ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। ठीक है, ओम शांति, ओम शांति। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। ढेर सारी खुशियों के साथ आइए सोमवार के इस खूबसूरत दिन को हम शिव भजनों के साथ भरपूर आनंद के साथ सुन रहे हैं। और इसके साथ ही आज नर्मद जी का जन्मदिन है, और ये 24 अगस्त 1833 को सूरत में इसका जन्म हुआ था। इनका गुजराती भाषा के युग परिवर्तक माने जाते हैं नर्मद जी को, और एक अच्छे रचनाकार के रूप में आज भी उन्हें याद किया जाता है। जिस प्रकार हिंदी साहित्य में आधुनिक काल के आरंभिक अंश को भारतेंदु युग संज्ञा दी जाती है, उसी प्रकार गुजराती में नवीन चेतना के प्रथम कालखंड को नर्मद युग के नाम से भी जाना जाता है। तो भारतेंदु की तरह ही उनकी प्रतिभा भी सर्वतोमुखी थी, और नर्मद ने नए विषयों पर पद्य और गद्य लिखकर, रचनाओं को लिखकर बहुत ज़्यादा जो है सम्मान प्राप्त किया। प्राकृतिक स्वतंत्रता और अन्य विषयों पर रचनाएं आरंभ करने का श्रेय भी नर्मद जी को जाता है गुजराती साहित्य में। हेलो जी, नमस्कार।
2: अजी सर नमस्ते, गुड मॉर्निंग, ओम शांति।
0: ओम शांति सुरेश जी, बोलिए कैसे हैं? बढ़िया बढ़िया, आप सुनाइए।
2: अच्छे बैठे हैं, बातें सुन रहे हैं, आपकी कार्यक्रम सुन रहे हैं, और बहुत दिनों के बाद आप सभी बात हो रही है। हम तो आपका इंतजार करते ही रहते थे।
0: जी जी जी,
2: कब आप आओ और हमसे बात हो, दूसरे से बात हो जाए। तो चलो आप आ गए, बहुत अच्छा लगा। आज हमारे यहाँ भी दूसरा सोमवार है, भोले बाबा की कृपा सब पर बनी रहे, और इसका गुणगान जरूर गाइए, क्योंकि पूरा महीना ही एक भक्तिमय है कि सुबह से शाम तक बस एक ही नारा गुजता है कि जय बोले, जय बोले, जय बोले। सभी हमारे मित्रों को अच्छे दिन की शुभकामनाएं सर। हमारे सभी मित्र बहुत खुश होंगे, हमारे गुराराम जी है, हमारे बुरेलाल जी है, हमारे सगरा बहन जी ने भी अभी कॉल किया, भाई भी बहुत अच्छे है, कंचन भाई है, दयाराम भाई है, सबको हमारी तरफ से नमस्ते हैं। बस अच्छा धुन की जो परवाज की है हमारे सपना बैंक ने,
0: जी जी जी,
2: बोला तेरी धुन लागी, बोला तारी धुन लागी, सुना देना। शायद मिले तो वो गाना भी जरूर सुना देना कि सावन का महीना पावर करे शोर, भोले बाबा का।
0: ठीक ठीक
2: है सर,
0: ओके
2: जी सर,
0: नमस्ते, ओम शांति। आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम, नई किरण। इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं आप, तो चलिए नर्मद जी के बारे में सुनकर आपको अच्छा लगा होगा, तो आइए आगे बढ़ते हैं। और शिव महिमा का ये सुंदर गीत आप ही के नाम, अभी सुनते रहो, मुस्कराते रहो।

0: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। नर्मद जी के बारे में बातें कर रहे थे, जो नर्मद युग के नाम से जाना जाता है साहित्य जगत में। गुजराती भाषा के युग परिवर्तक माने जाने वाले नर्मद जी का जन्म सूरत के ब्राह्मण परिवार में 24 अगस्त यानी आज के दिन 1833 को हुआ। नर्मद जी के पिता लाल शंकर मुंबई में निवास करते थे। नर्मद जी की माध्यमिक शिक्षा वहीं के एल्फिस्टन इंस्टीट्यूट में संपन्न हुई। उनका पूरा नाम नर्मद शंकर लाल शंकर दवे था, लेकिन रचनाएं उन्हें नर्मद नाम से ही शुरू की थी। और इस तरह से उस समय की प्रथा के अनुसार 11 वर्ष की उम्र में ही नर्मद का विवाह हो गया था। सूरत की प्रारंभिक शिक्षा के बाद जब वे मुंबई में अध्ययन कर रहे थे, तभी अपने ससुर के आदेश पर गृहस्थी संभालने के लिए उन्हें वापस आकर सूरत में 15 रुपये मासिक वेतन का अध्यापन कार्य स्वीकार करना पड़ा था। नर्मद जी 22 वर्ष की उम्र में ही पहली कविता लिखी थी। तब साहित्य के विभिन्न अंगों को समृद्ध करने का पहला क्रम आरंभ हो गया। कुछ समय तक उन्होंने मुंबई में अध्यापन का काम किया, पर वहाँ का वातावरण अनुकूल न पाकर उसे त्याग दिया और 23 नवंबर 1858 को अपनी कलम को संबोधित करके बोले, लेखनी अब मैं तेरी गोद में हूँ। 24 अगस्त तक वे पूरी तरह से साहित्य सेवा में ही लग गए और पहले उनकी रचना के विषय ज्ञान भक्ति वैराग आदि से हुआ करते थे। धीरे धीरे उसमें काफ़ी बदलाव आया। फिर एक ऐसा दिन भी आया जहाँ पर नर्मद युग पूरा जो है उनके लिए एक दरवाज़ा बन गया। जिस प्रकार हिंदी साहित्य में आधुनिक काल के आरंभिक अंश को भारतेंदु युग संज्ञा दी जाती है, उसी प्रकार गुजराती साहित्य में नवीन चेतना के प्रथम कालखंड को नर्मद युग कहा गया। भारतेंदु की तरह ही उनकी प्रतिभा भी सर्वमुखी थी और गुजराती साहित्य को गद्य पद सभी दिशाओं में समृद्धता जो प्रदान की। काव्य के क्षेत्र में उनका स्थान एक विशेष स्थान बन गया। लगभग सभी प्रचलित विषयों पर उन्होंने काव्य रचना की। महाकाव्य और महाछंदों के स्वप्नदर्शी कवि नर्मद का व्यक्तित्व गुजराती साहित्य में बहुत ही ऊपर है और गुजरात के प्रख्यात साहित्यकार मुंशी ने नर्मद को अवर्षणियों में अवध कहा है। तो ये थी कुछ खास बातें नर्मद जी के बारे में। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। जी हां, नई किरण पर आप नई किरण सुन रहे हैं और रेडियो मधुबन। हेलो जी, नमस्कार।
1: नमस्कार, बोला हेलो। हेलो, सबको राम राम और आपको और मधुबन भाइयों को सबको मेरा राम राम
0: जी।
1: और अच्छे भजन लगाए थे सुबह सुबह, अच्छे अच्छे भजन सुन रहा था
0: जी।
1: मैं भी राम राम कर लो सुरेश भाई। गुजराती में भजन है एक, वो मेरे को याद नहीं आ रहा है, लेकिन गुजराती में मार्ग शंकर भगवान का सुनाएंगे तो अच्छा करेंगे।
0: जी जी जी,
1: ओके सर।
0: ओके, बुराराम जी बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका, थैंक यू। और चलिए आगे बढ़ते हैं। सोमवार का ये खूबसूरत दिन आप सभी के लिए खुशियों भरा आए और बारिश का जो है इंतज़ार है, तो चलिए एक बार फिर से बारिश का आह्वान करते हैं। बरस बरस इंदर राजा का ये गीत हमारे सावन को बुलाने के लिए, बारिश को बुलाने के लिए। सुनते रहो, मुस्कराते रहो।

0: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 FM पर आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। चलिए बरस बरस इंदर राजा के बाद आइए स्वागत है फिर से एक बार। नर्मद युग की बातें कर रहे थे, जिस प्रकार हिंदी साहित्य में भारतेंदु जी को याद किया जाता है, वैसे ही गुजराती साहित्य में नर्मद युग के नाम से नर्मद जी को याद किया जाता है। नर्मद जी मारी हकीकत नाम का उनका एक आत्मबोध को गुजराती की पहली आत्मक कथा होने का गौरव प्राप्त है। उनकी अधिकांश कविताएं 1855 और 1867 के बीच लिखी गई। गुजराती के प्रथम कोश का निर्माण उन्होंने बहुत आर्थिक हानि उठाकर भी कर दिया था, और जिसका लाभ आप सभी गुजरात के लोग आज ले रहे हैं। तो नर्मद का एक सामाजिक सुधारक भी थे और उनका बुद्धिवर्धक सभा की स्थापना की थी। नर्मद जो कहते उस पर स्वयं भी अमल करते, और एक विधवा से विवाह किया था उन्होंने, और सामाजिक बुराइयों का विरोध करने के लिए दंडियों नामक का एक पत्र निकाला। नर्मद को वीर तथा श्रृंगार के वर्णन में अधिक रुचि थी, और नर्मद का अपना विशेष स्थान है गुजराती साहित्य में। उनके समय को नर्मद युग के रूप में आज भी जाना जाता है। तो गुजराती साहित्य के अमूल्य रत्न नर्मद जी का मृत्यु 26 फरवरी 1886 को मुंबई में हुई थी। तो ये थी कुछ खास बातें नर्मद जी के बारे में। चलिए मित्रों, वक्त हो गया है समाचारों का, सीधे समाचारों की तरफ चलते हैं दिल्ली और सुनते हैं सीधा समाचार। अभी
1: अभी बजे हैं सुबह के 9। एक मिनट का समय स्वयं को दे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतरिक्ष क्षेत्र की वैश्विक प्रतिभाओं को भारत की ओर आकर्षित करने वाले पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण का आह्वान किया। गृहमंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन में भाग लेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज मॉस्को में व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की सह अध्यक्षता करेंगे। ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले जहाजों पर सेवा शुल्क लगाने का निर्णय लिया। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़, बिहार, ओडिशा और पूर्वी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया और शतरंज में भारत के ग्रैंड मास्टर प्रणेश एम ने हंगरी में कनिजा ओपन खिताब जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतरिक्ष क्षेत्र की वैश्विक प्रतिभाओं को भारत की ओर आकर्षित करने वाले पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण का आह्वान किया है। श्री मोदी ने अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ चर्चा की और उनसे निरंतर प्रयत्नशील रहने तथा अंतरिक्ष क्षेत्र का मजबूत इकोसिस्टम तैयार करने की अपील की।
1: दुनिया अब भारत के स्टार्टअप को खोजती होगी, वे कौन है इसमें, क्योंकि एक जब ब्रेक थ्रू होता है तो तुरंत लोगों का ध्यान जाता है। बहुत लोगों को हमें जोड़ना है, हमें ऐसा एक ऑरा खड़ा कर देना चाहिए कि इस फील्ड में दुनिया भर के लोगों को जिंदगी बनानी है तो हिंदुस्तान जाओ, भारत की कोई स्टार्टअप से जुड़ जाओ, भारत की कोई स्पेस एजेंसी से जुड़ जाओ। मैं पक्का मानता हूं जी, पूरा टैलेंट पूल जो है एक मैग्नेट की तरह आपके कारण हम खींच सकते हैं और वो हमारी एक बहुत बड़ी ताकत बन सकता है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसा अनुकूल माहौल बनाया जाना चाहिए जिससे दुनिया भर के लोग अंतरिक्ष क्षेत्र में अपना करियर तलाशने के लिए भारत को पसंदीदा गंतव्य के रूप में देखें। प्रधानमंत्री ने अंतरिक्ष क्षेत्र में युवाओं के काम की भी सराहना की। गृहमंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में आयोजित होने वाले 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन में भाग लेंगे। 2 दिवसीय ये सम्मेलन वर्चुअली भी आयोजित किया जाएगा। देश भर के विभिन्न सुरक्षा बलों और पुलिस

0: के 850 से अधिक अधिकारी सम्मेलन के दौरान राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित विभिन्न समकालीन मुद्दों और चुनौतियों पर विचार विमर्श करेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज मॉस्को में रूस के उप प्रधानमंत्री डेनिस मंतुरोव के साथ व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर 27वें भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की सह अध्यक्षता करेंगे। श्री जयशंकर अपने रूसी समकक्ष सर्गेई लावरोव से क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार विमर्श करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से 27 अगस्त तक जापान दौरे पर रहेंगे। वे टोक्यो, नागोया और ओसाका की यात्रा करेंगे और जापान में भारत के अब तक के सबसे बड़े व्यापार प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। इस प्रतिनिधिमंडल में 200 से अधिक व्यावसायिक प्रतिनिधि शामिल हैं। ये प्रतिनिधि विनिर्माण, सेमीकंडक्टर, स्वच्छ ऊर्जा और इस्पात से लेकर ऑटोमोटिव, वित्तीय सेवाएं, स्वास्थ्य सेवा और स्टार्टअप जैसे विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े हैं। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के अंतर्गत 18वें ब्रिक्स अकादमी मंच का शुभारंभ कल लखनऊ में हुआ और मंगलवार तक ये विचार विमर्श जारी रहेगा। लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण विषय पर आयोजित इस मंच में ब्रिक्स देशों के शिक्षाविद, शोधकर्ता, विशेषज्ञ और नीति निर्माता एक साथ आकर प्रमुख वैश्विक चुनौतियों पर चर्चा करेंगे। एक रिपोर्ट।
1: ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, रिसर्च एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर डेवलपिंग कंट्रीज और लखनऊ विश्वविद्यालय के सहयोग से इस फोरम का आयोजन हो रहा है। नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण विषय पर आयोजित इस मंच में ब्रिक्स देशों के शिक्षाविद, शोधकर्ता, विशेषज्ञ और नीति निर्माता एक साथ आएंगे और प्रमुख वैश्विक चुनौतियों पर चर्चा करेंगे। साथ ही सहयोग को मजबूत करने के लिए व्यावहारिक और नीति संबंधी रास्ते तलाशेंगे। इस फोरम को भारत सरकार के विदेश मंत्रालय में सचिव और ब्रिक्स शेरपा सुधाकर दलेला भी संबोधित करेंगे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: जनजातीय कार्य मंत्रालय आज से बुधवार तक कर्नाटक के मैसूरू में आदिवासी भाषाओं और संग्रहालयों पर 3 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन करेगा। ये सम्मेलन आदिवासी भाषाओं के प्रलेखन, संरक्षण और पुनरुद्धार पर राष्ट्रीय संवाद को बढ़ावा देगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। ईरान ने कहा है कि अधिकृत देशों के जहाजों को हॉर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने के लिए अब सेवा शुल्क देना होगा। ईरान के राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग के प्रवक्ता इब्राहिम रेजाई ने बताया कि ये शुल्क समुद्री, पर्यावरणीय और रसद संबंधी कई सेवाओं को कवर करेगा। इससे पहले प्रवक्ता मोहसिन रेजाई ने कहा था कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य बंद रहेगा और तब तक नहीं खुलेगा जब तक अमरीका अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा नहीं करता। दूसरी ओर अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य को नए अमरीकी क्षेत्र के रूप में दर्शाने वाली एक तस्वीर साझा करके इस महत्वपूर्ण जलमार्ग पर अमरीकी नियंत्रण के अपने दावे को दोहराया है। हॉर्मुज जलडमरू मध्य मौजूदा टकराव का केंद्र बिंदु बना हुआ है। ईरान का कहना है कि यह महत्वपूर्ण मार्ग बंद है और अनधिकृत टैंकर यातायात के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में भारत के युवाओं के लिए नए रोजगार के अवसर सृजित करना विषय पर एक परिचर्चा प्रसारित करेगा। परिचर्चा में कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की संयुक्त सचिव मानसी सहाय ठाकुर और राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के मुख्य परिचालन अधिकारी प्रशांत सिन्हा शामिल होंगे। कार्यक्रम के दौरान श्रोता स्टूडियो में मौजूद विशेषज्ञों से विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। राष्ट्रीय प्राणी उद्यान नई दिल्ली ने कल अपने 11वें संडे बर्ड वॉक के साथ ट्री वॉक एट NZP का दूसरा संस्करण सफलतापूर्वक आयोजित किया। ये कार्यक्रम चिड़ियाघर की चल रही नागरिक विज्ञान पहल का हिस्सा था, जिसका उद्देश्य जैव विविधता के प्रलेखन, निगरानी और संरक्षण जागरूकता में जनता की भागीदारी को प्रोत्साहित करना है। प्रकृति प्रेमियों, छात्रों, वन्यजीव फोटोग्राफरों, जैव विविधता शोधकर्ताओं, इंटर्न और स्वयंसेवकों के साथ प्रकृति और संरक्षण में रुचि रखने वाले नागरिकों ने कार्यक्रम में उत्साहपूर्वक भाग लिया। नीलसन IQ और वर्ल्ड डेटा लैब ने अपनी नवीनतम रिपोर्ट में भारत में 2036 तक 10 करोड़ 80 लाख धनी उपभोक्ता होने का अनुमान व्यक्त किया है। चीन में ये संख्या 10 करोड़ 30 लाख है। रिपोर्ट में प्रतिदिन $90 से अधिक खर्च करने वाले लोगों को धनी उपभोक्ताओं के रूप में परिभाषित किया गया है। 2026 में भारत में लगभग 2,60,00,000 धनी उपभोक्ता होने का अनुमान है। अगले दशक में इनकी संख्या में 8,20,00,000 की वृद्धि होने का अनुमान है। रिपोर्ट में बढ़ती आबादी और मध्यम वर्ग के आधार पर भारत को मात्रा वृद्धि वाला बाजार बताया गया है। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़, बिहार, ओडिशा और पूर्वी मध्य प्रदेश में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों तक तटीय आंध्र प्रदेश, तटीय कर्नाटक, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, झारखंड, केरलम, माहे, मध्य महाराष्ट्र और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में कुछ स्थानों पर तेज बारिश की संभावना जताई है। तमिलनाडु, पुदुचेरी, काराईकाल, तेलंगाना, उत्तराखंड, विदर्भ, पश्चिमी मध्य प्रदेश और उत्तर पूर्वी क्षेत्र में भी इसी तरह का मौसम रहने की संभावना है। मध्य प्रदेश में लगातार बारिश से कई नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है। प्रशासन ने बारिश और बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव कार्य तेज कर दिए हैं। एक रिपोर्ट।
2: मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में डिंडोरी और बालाघाट में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं विदिशा, सागर, रायसेन समेत 20 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी है। इसके अलावा भोपाल समेत प्रदेश के कई जिलों में कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश हो सकती है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कल शाम दिल्ली से रीवा पहुंचकर अतिवृष्टि और राहत कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने बाढ़ प्रभावित लोगों तक राहत पहुंचाने और राहत शिविरों में जरूरी इंतजाम के निर्देश दिए। गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि सच्ची खुशी करुणा, आत्मसम्मान और संतोष से मिलती है। उन्होंने सोशल मीडिया पर संस्कृत का सुभाषितम साझा करते हुए ये बात कही। श्री मोदी ने कहा कि ये भावना समाज में सहयोग और सद्भाव के बंधन को मजबूत करती है। उन्होंने कहा कि करुणा आत्मसम्मान को बढ़ावा देती है, जबकि संतोष इच्छाओं की पूर्ति की ओर ले जाता है। महाराष्ट्र में आज सुबह अमरावती जिला महिला अस्पताल की विशेष नवजात शिशु देखभाल इकाई में आग लगने की घटना में 3 नवजात शिशुओं की मौत हो गई। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार इकाई में समय से पहले जन्मे और गंभीर रूप से बीमार शिशुओं सहित लगभग 50 से 60 शिशुओं का इलाज चल रहा था। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में लिपुलेख दर्रे के रास्ते से पूरी होने वाली कैलाश मानसरोवर यात्रा 2026 कल सफलतापूर्वक संपन्न हो गई। 4 जुलाई को शुरू हुई इस यात्रा में 10 जत्थों में कुल 477 तीर्थयात्रियों ने कैलाश पर्वत और मानसरोवर के दर्शन किए। और अब खेल खबरों के साथ हैं वीरेंद्र कौशिक।
3: भारत आज कोलंबो में श्रीलंका के साथ दूसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच में अपनी पहली पारी में 5 विकेट पर 300 रन के स्कोर से आगे खेलेगा। इस पारी में देवदत्त पड्डीकल का लगातार दूसरा टेस्ट शतक और कप्तान शुभमन गिल का अर्धशतक शामिल है। श्रीलंका के असिथा फर्नांडो ने 3 विकेट लिए। भारत 2 मैचों की श्रृंखला में 1-0 से आगे है। बात शतरंज की। भारत के 19 वर्षीय ग्रैंड मास्टर प्रणेश एम ने प्रतिष्ठित कनिजा ओपन 2026 में शानदार प्रदर्शन करते हुए ग्रुप ए का खिताब अपने नाम किया। हंगरी के नागी कनिजा में आयोजित टूर्नामेंट 9वें और अंतिम दौर में प्रणेश ने सफेद मोहरों से खेलते हुए जर्मनी के वादिम पेट्रोवस्की को हराया। तमिलनाडु के कराईकुडी के इस खिलाड़ी ने इजराइल के और ब्रॉनस्टीन, यूक्रेन के आंद्रेई वोलोकितिन और भारत के कार्तिक वेंकटरमन के साथ बेहतर टाई ब्रेक के आधार पर खिताब जीता। हंगरी में भारतीय दूतावास ने प्रणेश को खिताब जीतने पर बधाई दी। हॉकी की बात करें तो भारतीय महिला टीम FIH हॉकी विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंचने से चूक गई है। दूसरे दौर के अंतिम दौर में भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया के साथ गोल रहित ड्रॉ खेला। ऑस्ट्रेलिया ने अधिक गोल के आधार पर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। नीदरलैंड्स और ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं और भारत पूल ई में तीसरे स्थान पर रहा। अब भारतीय टीम गुरुवार को वैगनर हॉकी स्टेडियम में 5वें स्थान के लिए प्लेऑफ खेलेगी।
0: गृहमंत्री अमित शाह ने कल नई दिल्ली में भारतीय दिव्यांग पुरुष क्रिकेट टीम से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने बताया कि टीम भारत इंग्लैंड पुरुष मिश्रित दिव्यांगता T20 अंतर्राष्ट्रीय सीरीज 2026 के लिए इंग्लैंड दौरे से लौट आई है। श्री शाह ने कहा कि देश के लिए गौरव हासिल करने के लिए टीम के प्रयास और दृढ़ संकल्प भारत के युवाओं को प्रेरित करते हैं। पवित्र श्रावण मास की अंतिम सोमवारी के पावन अवसर पर आज पूरा झारखंड शिव भक्ति के अनूठे रंग में डूबा हुआ है। एक रिपोर्ट।
4: हर हर महादेव। देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ धाम में सुल्तानगंज से पवित्र गंगा जल लेकर पहुंचे लाखों कांवड़ियों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। तड़के मंदिर के कपाट खुलते ही पारंपरिक सरकारी पूजा के बाद आम श्रद्धालुओं के लिए जलार्पण शुरू हुआ। अंतिम सोमवार के विशेष महत्व को देखते हुए देवघर प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के लिए ड्रोन निगरानी, AI आधारित कैमरे और डिजिटल हेल्पलाइन जैसी आधुनिक व्यवस्थाएं की हैं। इधर राजधानी रांची के ऐतिहासिक पहाड़ी मंदिर में भी मध्य रात्रि से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।

0: अब किसी पर निर्भर नहीं रहेगा भारत। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का ये बयान पंजाब केसरी में है। पश्चिम बंगाल में 5 रक्षा परियोजनाओं के शिलान्यास के अवसर पर कहा, भारत में वैश्विक पोत निर्माण का केंद्र बनने की क्षमता। अगले महीने नई दिल्ली में होने वाले 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन पर लोकसत्य का कहना है, पड़ोसियों पर भारत की नजर, आउटरीच सत्र के लिए नेपाल और बांग्लादेश को मिला न्योता। दोनों पड़ोसियों के साथ नई शुरुआत का बन सकता है अवसर। स्वाइन फ्लू के बढ़ते मामलों के बीच भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR का राहत भरा बयान दैनिक भास्कर में है, देश में H1N1 का कोई नया स्ट्रेन नहीं मिला। मोबाइल सिम पर आज से नए नियम, एक नाम पर 9 से ज्यादा कनेक्शन नहीं होंगे। नवभारत टाइम्स लिखता है, यूजर की पहचान का सत्यापन अब होगा जरूरी, सरकार ने पहचान का नया बायोमेट्रिक लॉक लगाया।
1: धन्यवाद मनोज। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतरिक्ष क्षेत्र की वैश्विक प्रतिभाओं को भारत की ओर आकर्षित करने वाले पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण का आह्वान किया। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन में भाग लेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज मॉस्को में भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की सह अध्यक्षता करेंगे। ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले जहाजों पर सेवा शुल्क लगाने का निर्णय लिया। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़, बिहार, ओडिशा और पूर्वी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। और शतरंज में भारत के ग्रैंड मास्टर प्रणेश एम ने हंगरी में कनिजा ओपन खिताब जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: नमस्ते जी, मैं अजय कांत रुइया बोल रहा हूँ बम्बई से। मुझे बहुत खुशी हुई कि रेडियो मधुबन के श्रोताओं से बात करने का मौका मिला और मैं अभी राजस्थानी लैंग्वेज में भाषा में सबना हार्दिक नमस्कार कर रहा हूँ और बोलना चाह रहा हूँ कि जब से मैं कई साल पहला ब्रह्म कुमारी का भाइयों और बहनों से मेरे संपर्क हुए, तब से मना जिंदगी को एक नयो दृश्य देखना मिलो है और मेरी कई प्रॉब्लम्स जो जिंदगी में आवा बिना हल करने के लिए इना सा मार्गदर्शन मिलो है। और मैं यही एक संदेश सारा लोगों ना बोलूंगा कि अपना जो भी काम आप करा मन लगा कर करो और खूब मेहनत से करो और कदे हार नहीं मानो और जिंदगी में आगे ही बढ़ाऊंगा। फिर नमस्ते, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। आप सभी का फिर एक बार स्वागत है ढेर सारी खुशियों के साथ। चलिए, फागुन का ये महीना आप सभी को बहुत सारी खुशियां लेकर आए, श्रावण का ये महीना आप सभी को बहुत सारी खुशियां लेकर आए और साथ ही साथ परमात्मा शिव की कृपा आप पर बनी रहे, ऐसी शुभ आशा के साथ आइए बात करते हैं राजगुरु के बारे में। जी हाँ, भारत के एक ऐसे क्रांतिकारी जिन्हें आज भी याद किया जाता है, बहुत ही पॉपुलर वीर स्वतंत्रता सेनानी, यह सरदार भगत सिंह और सुखदेव के घनिष्ठ मित्र थे। इस मित्रता को राजगुरु ने मरने तक निभाया। देश के आज़ादी के लिए दिए गए राजगुरु के बलिदान ने इनका नाम इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में अंकित करवा दिया। राजगुरु भगत सिंह और सुखदेव का बलिदान आज भी भारत के युवकों को प्रेरणा प्रदान करने वाला है। तो आइए बात करते हैं 24 अगस्त 1908 को पुणे महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ। खेड़ नामक एक गांव में इनका जन्म हुआ और इनके पिता जिनका नाम था श्री हरि नारायण और माता का नाम था पार्वती बाई। राजगुरु के पिता का निधन इनके पैदा होते ही कुछ दिनों के बाद हो गया, इसीलिए इनका लालन पालन इनकी माता और बड़े भैया ने किया। राजगुरु बचपन से ही बड़े वीर साहसी और मस्त मौला थे। भारत माँ से प्रेम तो बचपन से ही बहुत था इन्हें और इस कारण अंग्रेजों से घृणा तो स्वाभाविक रूप से था। ये बचपन से ही वीर शिवाजी और लोकमान्य तिलक के गाथाओं को सुनकर या उनकी बातें सुनकर बड़े हुए और उनके भक्त बने। संकट मोल लेने में भी इनका कोई जवाब नहीं था, किंतु ये कभी कभी लापरवाही कर जाते थे। राजगुरु का पढ़ाई में मन नहीं लगता था, इसलिए इनको अपने बड़े भैया और भाभी का तिरस्कार हमेशा सुनना पड़ता था। माँ बेचारी कुछ बोल ना पाती थी, क्योंकि उनके साथ रहकर ही ये अपना जीवन बिताया करती थी। और हुआ ऐसे कि जब राजगुरु बड़े हुए तो इनकी मुलाकात चंद्रशेखर आज़ाद से हुई थी। जब राजगुरु घर में तिरस्कार सहते सहते तंग आ गए, तब वे अपने स्वाभिमान को बचाने के लिए घर छोड़कर चले गए। फिर सोचा कि अब जबकि घर के बंधनों से स्वाधीन हूँ तो भारत माता की बेड़ियाँ काटने में अब कोई दुविधा नहीं है। वे कई दिनों तक भिन्न भिन्न क्रांतिकारियों से भेंट करते रहे और अंत में उनकी क्रांति की नौका को चंद्रशेखर आज़ाद ने पार लगाया। राजगुरु हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र संघ के सदस्य बन गए। चंद्रशेखर आज़ाद इस जोशीले नव युवक से बहुत प्रभावित हुए और बड़े चाव से इन्हें निशानेबाजी की शिक्षा देने लगे। शीघ्र ही राजगुरु आज़ाद जैसे एक कुशल निशानेबाज बन गए। कभी कभी चंद्रशेखर आज़ाद इनको लापरवाही करने पर डांट देते थे, किंतु ये सदा आज़ाद को बड़ा भाई समझकर बुरा ना मानते। राजगुरु का निशाना कभी चूकता नहीं था। बाद में दल में इनकी भेंट भगत सिंह और सुखदेव से हुई। राजगुरु इन दोनों से बड़े प्रभावित हुए और फिर धीरे धीरे एक भगत सिंह और सुखदेव, ये दोनों राजगुरु को अपना सबसे अच्छा साथी मानते थे और दल ने लाला लजपत राय की मृत्यु के जिम्मेवार अंग्रेज ऑफिसर स्कॉट का वध करने की योजना बनाई। इस काम के लिए राजगुरु और भगत सिंह को चुन बहुत ही तैयार कर लिया गया, चुना गया। और राजगुरु तो अंग्रेजों को सबक सिखाने का अवसर ढूंढ ही रहे थे और उन्हें ये मौका सुअवसर जो है जैसे गोल्डन चांस समझ लिया। और 19 दिसंबर 1928 को राजगुरु भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद ने सुखदेव के कुशल मार्गदर्शन के फलस्वरूप जेपी सैंडर्स नामक एक अन्य अंग्रेज ऑफिसर जिसने स्कॉट के कहने पर लाला लजपत राय पर लाठियां चलाई थी और उनको मार दिया था। कार्रवाई के पश्चात भगत सिंह अंग्रेजी साहब बनकर, राजगुरु उनके सेवक बनकर और चंद्रशेखर आज़ाद सुरक्षित पुलिस की पृष्टि से बचकर निकल गए। और इस तरह से भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के असेंबली में बम फोड़ने और स्वयं को गिरफ्तार करवाने के पश्चात चंद्रशेखर आज़ाद को छोड़कर सुखदेव सहित दल के सभी सदस्य गिरफ्तार कर लिए गए। केवल राजगुरु ही ऐसे बचे रहे। आज़ाद के कहने पर पुलिस से बचने के लिए राजगुरु कुछ दिनों के लिए महाराष्ट्र चले गए, किंतु लापरवाही के कारण राजगुरु भी छुटपुट संघर्ष के बाद पकड़ लिए गए। अंग्रेजों ने चंद्रशेखर आज़ाद का पता लगाने के लिए राजगुरु पर अनेक अमानवीय अत्याचार किए, किंतु वीर राजगुरु विचलित नहीं हुए। पुलिस ने राजगुरु को अपने सभी साथियों के साथ लाकर लाहौर की जेल में बंद कर दिया। सभी साथी मस्त मौला वीर मराठा राजगुरु को पाकर बड़े खुश थे, लेकिन लाहौर में सभी क्रांतिकारी और इनके ऊपर हत्याकांड का मुकदमा चला और मुकदमे को क्रांतिकारियों ने अपनी मस्ती से बड़ा लंबा खींचा। सभी जानते थे कि अदालत एक ढोंग है, उनका फैसला तो अंग्रेज हुकूमत ने पहले ही कर दिया था। राजगुरु भगत सिंह और सुखदेव जानते थे कि उनकी मृत्यु का फरमान तो पहले ही लिखा जा चुका है, तो क्यों ना अपनी मस्तियों से अदालत में अंग्रेज जज को धूल चटाई जाए। एक बार राजगुरु ने अदालत में अंग्रेज जज को संस्कृत में ललकारा। जज चौंक गया और उसने कहा, तुम क्या कहते हो? राजगुरु ने भगत सिंह की तरफ हंसकर कहा कि यार भगत, इसको अंग्रेजी में समझाओ, यही जाहिल हमारी भाषा क्यों समझेंगे, ये जाहिल हमारी भाषा क्यों समझेंगे। सभी क्रांतिकारी ठहाके मार कर हंसने लगे। अदालत में इन क्रांतिकारियों ने ये स्वीकार कर लिया कि वे पंजाब में आज़ादी की लड़ाई के एक बड़े नायक लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेना चाहते थे। अंग्रेजों के विरुद्ध एक प्रदर्शन में पुलिस की बराबर पिटाई से लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी, इसका वो बदला लेना चाहते हैं। इसके बाद फिर जेल में भगत सिंह के नेतृत्व में क्रांतिकारियों ने कैदियों के साथ होने वाले अमानवीय अत्याचारों के विरुद्ध भी आमरण अनशन आरंभ कर दिया, जिसको जनता का जबरदस्त समर्थन मिला, जो पहले से ही क्रांतिकारियों के प्रति श्रद्धा का भाव रखते थे, विशेष रूप से भगत सिंह के प्रति। इस आमरण अनशन से वाइसराय की कुर्सी तक हिल गई। अंग्रेजों ने क्रांतिकारियों की हड़ताल तुड़वाने का जबरदस्त प्रयास किया, किंतु क्रांतिकारियों की जिद के सामने वे हार गए। राजगुरु और आजीवन जतिन दास की इस अनशन से ये हड़ताल बिगड़ गई और राजगुरु और सुखदेव के अंग्रेज विशेष रूप से हार गए थे और फिर आमरण के कारण बलिदानी हो गए, जिस जनता बड़क उठी, विवश होकर अंग्रेजों को क्रांतिकारियों की सभी बातें माननी पड़ी। तो ये थी कुछ खास बातें राजगुरु के बारे में। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।
1: ये तंबाकू क्या होता है?
2: अरे तिकु नहीं पता क्या? इसमें पता है, लोग धुए में अपनी फिक्र उड़ा देते। अरे गाना नहीं सुना क्या तूने?
3: हर फिक्र को धुए में उड़ाता चला गया।
1: अच्छा तो फिर मेरे नंबर कम आए तो क्या मैं भी ऐसा कर सकता हूँ?
2: अरे कोई भी कर सकता है, तंबाकू तो बड़ा ही कूल होता है।
4: ऐसी बातें बचपन में होती हैं, युवावस्था में या और बड़े होने के बाद भी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि तंबाकू या धूम्रपान व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य के साथ शारीरिक सेहत पर बहुत बुरा असर डालता है? बीड़ी, सिगरेट, गुटखा इत्यादि के सेवन से कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं। धूम्रपान करने से धमनियां कमजोर होने लगती हैं और कोरोनरी हार्ट डिजीज या स्ट्रोक भी हो सकता है। सलाह लीजिए डॉक्टर की और हिम्मत बढ़ाइए अपनों की। रेडियो मधुबन द्वारा जानकारी जनहित में जारी।

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। आप सभी का फिर एक बार स्वागत है समाचारों के बाद। आशा करूंगा आप बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे। चलिए, राजगुरु जी को हमने याद किया और नर्मद जी को याद किया, जो बहुत ही अच्छे गुजराती साहित्यकार नर्मद युग से उनको आज भी याद किया जाता है। तो आइए, आपकी खुशी को बढ़ाने के लिए आज हमारे साथ विशेष स्टूडियो में मुंबई से मुकेश जी पधारे हैं, उनसे बातें करने वाले हैं। तो आप सभी की तरफ से मुकेश जी का बहुत बहुत दिल से स्वागत है।
1: थैंक यू
0: जी। मुकेश जी, कैसे हैं आप?
1: बहुत अच्छा, बहुत हैप्पी।
0: चलिए, मैं चाहूँगा कि आपको हमारे रेडियो मधुबन के माध्यम से बहुत सारे लोग सुन रहे हैं, गुजरात और राजस्थान का बॉर्डर एरिया में जो भी इलाके हैं जहाँ पर रेडियो नेटवर्क सुनाई दे रहा है वो रेडियो से सुन रहे हैं, और बाकी लोग जो इंटरनेट एप्लीकेशन से सुनते हैं वो भी सुन रहे हैं पूरी दुनिया में। तो मैं चाहूँगा कि आप अपना परिचय हमारे सभी श्रोता बंधुओं को ज़रूर दें।
1: हाँ, मैं एक्चुअली ब्रह्मा कुमारी इसमें एज 14 से हूँ।
0: अरे वाह,
1: तो अभी तो 35 इयर्स हो गए।
0: जी जी जी।
1: एंड बाय क्वालिफिकेशन आई एम एन इंजीनियर प्लस पोस्ट ग्रेजुएट इनटू मार्केटिंग। और करंटली मेरा अभी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का बिजनेस है।
0: अरे वाह।
1: व्हिच इज बेस्ड इन बॉम्बे। और वी सर्व क्लाइंट्स अक्रॉस द ग्लोब, तो हमारे क्लाइंट्स ऑलमोस्ट 26 कंट्रीज में हैं अभी।
0: जी जी जी।
1: तो ये है मेरा शॉर्ट में परिचय।
0: अच्छा, जब 14 साल यानी दो दशक पहले जब आप ब्रह्मा कुमारी से जुड़े, तो ऐसा क्या था जो आपको इस लंबे सफर तक, आज भी ब्रह्मा कुमारी इसको आप फॉलो कर रहे हैं, क्या ऐसा मेन अट्रैक्शन था जिन्होंने आपको मैग्नेट की तरह पकड़ के रखा है?
1: हाँ, मैग्नेट की तरह पकड़ने का बात है कि अचीवमेंट्स।
0: जी जी जी जी।
1: मतलब मैं आपको बताऊं, मैं जब 14 साल पहले मैंने फेब 1991 में कोर्स स्टार्ट किया था। और मेरा वो भाई ने कोर्स ऑलमोस्ट 2 महीने लिया।
0: अच्छा अच्छा अच्छा।
1: एंड आई कंप्लीटेड द कोर्स ऑन अप्रैल 30th 1991। तो उसके बाद मैं आपको बताता हूँ, आई वॉज इन 9th स्टैंडर्ड एट दैट टाइम। तो उसके पहले मैं जब पढ़ाई करता था तो मेरा तो पढ़ाई में मन ही नहीं लगता था।
0: जी जी जी, जी।
1: मतलब मुझे याद है, मेरे आज भी मेरे ग्रैंडमा वो टाइम पे मुझे 4 बजे उठाते थे कि पेपर है 7 बजे, पढ़ाई वढ़ाई करो।
0: बिल्कुल।
1: तो मैं उठ के बैठ तो जाता था बट सो जाता था। और एग्जाम के पहले ही मुझे पता था कि मैं पास नहीं होने वाला।
0: जी जी जी।
1: तो एवरी ईयर आप ऐसे समझो 4th स्टैंडर्ड में भी, जब से मुझे एग्जाम्स वेग्जाम सब पता थे टिल 9th स्टैंडर्ड, तो मैं ऐसे पास होता था कि मेरे प्रिंसिपल और टीचर्स को एवरी ईयर मेरे पापा मम्मी को मिलना ही था कि भाई इसका क्या करना है, कितनी लाल लाइनें हैं, कितने सब्जेक्ट्स में उसको पुश करें।
0: जी जी।
1: बट जब यहाँ पे आया और मैंने मेडिटेशन जब स्टार्ट किया
0: जी,
1: तो आप बिलीव नहीं करोगे, मैं 9th स्टैंडर्ड के बाद जब 10th में गया तो 10th में वो टाइम पे प्रीलियम्स होते थे। तो मैं प्रीलियम्स में मैंने मैथ्स और साइंस में 150 आउट ऑफ 150 स्कोर किया।
0: क्या बात है,
1: तभी वो टाइम पे 150 मार्क्स होते थे।
0: जी, जी।
1: तो मेरे स्कूल में भी, मतलब जो टॉपर्स भी थे मेरे से आगे, उन्होंने पूरे स्कूल में ऐसे बताया, तुमको पता है टॉपर कौन है मैथ्स में? तो सबने कहा कि नहीं, मुकेश है, मुकेश।
0: क्या बात है।
1: तो वो टाइम पे जब फ्रेंड्स से प्रेस मिला, एप्रिसिएशन मिला कि व्हाट अ सडन
0: चेंजेस, वो
1: क्या हो गया,
0: मैग्नेट की तरह पकड़ के रखा।
1: या दैट और मैं जब पास हुआ था, तो वो टाइम पे हमारे बिल्डिंग में कम से कम 8-10 बच्चे थे जो 10th स्टैंडर्ड में थे
0: जी।
1: तो सबको उम्मीद थी ये तो सिर्फ पास हो गया तो बड़ी बात है, पर मेरा वो टाइम पे 81.28%
0: क्या बात। चलिए, अभी हमारे बीच में कॉलर भी हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। हेलो जी, नमस्कार।
2: हेलो जी, नमस्कार।
0: जी जी जी, सुन रहे हो आपको, हेलो कीजिए उनको।
2: जन्मदिन है।
0: हाँ जी, हाँ जी।

0: क्या बात है, बिल्कुल बिल्कुल सुनाते हैं आपको। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। चलिए गुड़ीलाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया याद करने के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं। और आप सभी जानते हैं कि हम लोग जैसे ब्रह्म कुमारी से जुड़ने के बाद बहुत सारे लोगों के जीवन में कुछ ऐसे चमत्कार होते हैं जो उनके जीवन में काफ़ी लंबे समय तक वो फेलियर रहें, और अचानक उनको ये सीक्रेट पता चल जाता है कि हम अपने मन को कंट्रोल करके वो चीज़ें फेलियर को फिर से सक्सेस में बदल सकते हैं। तो जब वो प्रैक्टिस करते हैं और उनके जीवन में इस तरह के ड्रैफिक चेंज आ जाता है, तो वो चेंज उनको जो है हमेशा के लिए यहाँ पर पकड़ के रखता है। तो आज दो दशक से मुकेश जी जो है अपने बचपन के दिनों को याद करते हुए आज भी अब इंडस्ट्री लेजिस्ट है और ख़ास बिजनेस मैन है, तो इन सारी चीज़ों को करते हुए भी अपना जो एक ब्रह्मा कुमारी के जो लाइफ स्टाइल है उसको फॉलो कर रहे हैं, उनको जान रहे हैं, और ब्रह्मा कुमारी में जितनी भी सेवाएँ होती हैं उसमें भी बढ़ चढ़ कर वो अपना हिस्सा लेते हैं। तो ये एक बहुत ही सुंदर जो है अनुभव है मुकेश जी का। आइए एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हेलो जी नमस्कार।
1: हेलो जी नमस्कार। ओम शांति। ईश्वर विद्यालय में ब्रह्मा कुमारी में मुकेश जी का बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत है।
0: स्वागत स्वागत, धन्यवाद जी।
1: मैं दयाराम भाई बोल रहा हूँ, राजस्थान से, बाड़मेर से।
0: दयाराम जी बोलिए, स्वागत है आपका।
1: और बहुत ही अच्छी बातें भाई बता रहे हैं। भाई का बैंक में बिजनेस है तो बैंकें भी खुद की होंगी
0: जी।
1: और कई देशों में इनका जो ये शाखाएं चल रही है तो बहुत ही अच्छी जानकारी, धन्यवाद इनको भी बहुत, और हमको भी सुनने को कुछ अच्छा, जो हम बैंक सिस्टम का जो कार्य करते हैं उसमें भी हम कुछ जानने को मिलेगा
0: जी। बिल्कुल बिल्कुल।
1: और बहुत ही अच्छा, आप तो हमेशा सराहनीय कार्य करते हो, हमेशा कुछ न कुछ हमारे लिए ग्रेस दे के आते हो तो हमें कुछ जानकारी मिलती है। और रमेश भाई जी, आपको और मुकेश जी को और सभी मेरे मित्र जो सुन रहे हैं, हमारे प्यारे मित्रों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, ओम शांति। आज सोमवार है तो बाबा का वार है, तो एक भजन भी बाबा का सुना देना। और नमस्कार है सभी को, ओम शांति।
0: ओम शांति, मुस्कुराते रहो। क्या बात है, धन्यवाद दयाराम जी, शुक्रिया आपका, बहुत ही सुंदर बातें आपने बताया और मुकेश जी को याद किया। चलिए मैं शिव भजन तो सुनाऊंगा, दो भजन हमारे पास अभी आ गए हैं, बैक टू बैक मैं कोशिश करूंगा कि आपको सुना पाऊं। और मुकेश जी मैं चाहूंगा कि जैसे अभी सुरेश जी और ये हमारे गुड़ीलाल जी और दयाराम जी याद कर रहे थे, और दयाराम जी का कहना था कि एक प्रश्न उन्होंने पूछा कि आपका बैंकिंग सेक्टर में है, तो बैंकिंग में हम लोग जैसे कि मिडिल क्लास या फिर लोअर क्लास लोग हैं या बहुत कम उनका गरीबी रेशा के नीचे हैं, तो आदिवासी बेल्ट है यहाँ पर और राजस्थान का, तो उन सभी को एक बचत बैंकिंग सेक्टर के साथ जुड़कर अपने बचत को कैसे इम्प्रूव करें, अपने फाइनेंशियल कंडीशन को कैसे वो थोड़ा सा साउंड कर सकते हैं, इसके बारे में कुछ आइडिया हो तो बताइए।
2: हाँ देखिए, बैंकिंग सेक्टर तो अभी बहुत आगे बढ़ चुका है लास्ट 10-12-15 साल में
0: जी जी,
2: और एक फॉर्मलाइज चैनल है, मतलब सही तरीके से किसी ट्रैप में आप नहीं फंसो।
0: बिल्कुल
2: हाँ। और ऑब्वियसली इसमें हमारे आरबीआई भी है, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, वो बहुत अच्छे रेगुलेटर हैं। अगर आप देखो तो सारे वर्ल्ड की इतनी सारी बैंक्स हैं जो अलग अलग, जैसे फेड हुआ या आप यूरोपियन के ECB पकड़ो
0: जी जी,
2: तो अगर आप हमारे RBI को देखो तो जिस तरीके से हमारी पॉलिसीज आती हैं, जिस तरीके से हमारे गवर्नमेंट के सारे सिस्टम्स बने हुए हैं, वो इतने बेस्ट हैं। और ये एक बहुत अच्छी बात है कि अभी कॉमन मैन तक भी बैंकिंग पहुंच चुका है। तो मैं तो यही कहूँगा कि बैंकिंग चैनल को आप बहुत अच्छी तरह यूज़ करिए, हमारे भाषा में उसको कहेंगे बहुत ही लेजिटिमेट, बहुत ही सही तरीके का प्रोसेस है जिसमें आपका पैसा बहुत सेफ रहता है। और ऑब्वियसली आजकल तो बैंक्स में इंश्योरेंस भी आ गया है, मतलब अगर आप कोई बैंक के साथ FD भी रखते हैं तो उसमें मेरे ख्याल से भी 5 लाख तक है, जहाँ पे आपकी वो FD की सुरक्षा भी इंश्योर्ड है। तो ऐसे मेरे ख्याल से बहुत अच्छा चैनल, बहुत सही तरीके का ब्याज, गवर्नमेंट का सपोर्ट, तो हमें उसका फायदा तो हमेशा लेना चाहिए। तो हर एक को बैंक अकाउंट तो होना ही चाहिए।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मुकेश जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कैसे बैंकिंग सेक्टर्स जो है आज बहुत ही अच्छी तरह से काम कर रहे हैं और काफ़ी फ्लेक्सिबल और यूज़र फ्रेंडली है। आप हमेशा जो है बैंक सेक्टर में आप जाते हैं तो आजकल एप्लीकेशंस भी आ गए हैं, ऑनलाइन सिस्टम भी आ गया है और UPI जैसे बहुत सारे आसान तरीके हैं जहाँ पर आप बैंकिंग सेक्टर को यूज़ कर सकते हैं। तो थोड़ा सा आपको अपग्रेड होके इन सारी चीज़ों का जो फैसिलिटी मिल रही है उसका यूज़ करें। लेकिन अगर आपको फाइनेंशियली साउंड होना होगा तो एक जो सिस्टम है जैसे बैंकिंग में आपको किसी एक चीज़ को जो है कंटिन्यू रखना है। जैसे कोई छोटा बजट भी आप करते हैं, मंथली 100 रुपीज़ भी डालते हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए रखिएगा, तो वो चीज़ें जो है आपको कंपाउंडिंग इंटरेस्ट दे देता है और वो चीज़ आपके लिए एक 10 साल तक का अगर आप कोई भी चीज़ रेगुलर करते हैं तो वो आपको हमेशा के लिए आगे चल के फाइनेंशियली साउंड कर देता है। तो मिनिमम 100 या 200 ऐसे छोटे अमाउंट भी आप कर सकते हैं, 500 भी कर सकते हैं, जितना आप करना है। लेकिन एक रेगुलर लंबा इनकम करा अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं बैंक के साथ तो वो आपको कंपाउंडिंग इंटरेस्ट देकर बहुत ही साउंड आपका जो है फाइनेंशियल करता है। मुकेश जी इसके बारे में क्या बताएंगे आप?
2: हाँ नहीं, कंपाउंडिंग होना भी चाहिए और एट द सेम टाइम मेरे ख्याल से अभी तो भारत बहुत अच्छी इकोनॉमी बन रही है। अभी आप आज के जियोपॉलिटिकल सिचुएशन भी देखो
0: जी जी,
2: तो हमारा तो ऑलमोस्ट 80% तेल तो बाहर से ही आता है। बट अभी की जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज का भी इश्यू चालू है, बट जिस तरीके से भारत ने उसको हैंडल किया है वो बहुत ही सराहनीय है। मतलब आपको एक्सेप्ट करना है, वर्ल्ड भी उसे देख रहा है।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
2: हाँ, तो ये सारी चीजें हमारी इकोनॉमी की स्ट्रेंथ, हमारे बैंकिंग सिस्टम की स्ट्रेंथ। और मैं आपको ये भी बताऊं कि हमारे भारत की जो क्रेडिट ग्रोथ है,
0: बिल्कुल,
2: मतलब जिसपे बैंक्स लेंड

को गिफ्ट में मिल जाता है, तो अपने लाइफ को जो है थोड़ा सा एनहांस करे, ब्यूटीफुल करे और सुंदर बनाए, क्योंकि सत्यम शिवम सुंदरम के साथ जब आप कनेक्ट होंगे तो निश्चित तौर पे आपका जीवन सुंदर बन जाएगा। इन्हीं शुभ आशाओं के साथ चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बहुत ही प्यारा सा शिव अनादि है ये खूबसूरत गीत आपके नाम, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मधुबन 107.8 FM। चलिए कार्यक्रम के आखिरी मोड़ पे हम लोग पहुंच गए हैं और शिव अनादि है ये खूबसूरत गीत आपने सुना और सोमवार का दिन है और श्रावण सोमवार है। मुझे लगता है कि ये गीत आपको शिव की महिमा सुनाकर आपके दिन को बेहतर बनाया होगा अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो। चलिए इसी के साथ मैं आपसे चाहूँगा इजाज़त और फिर मिलता हूँ शाम को 4 बजे और सफ़र कार्यक्रम में आपसे होगी मुलाकात। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। सलाम नमस्ते खमा गणिसा। जय हिंद जय भारत ओम शांति।
1: ये है नई किरण।

आशियाना सुनने वाले सभी श्रोता बंधुओं को आपकी अपनी उषा का सादर नमस्कार। आप सुनने जा रहे हो ब्रह्म कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन। कार्यक्रम का नाम आप सभी को सुना चुकी हूँ। चलिए आज के कार्यक्रम आशियाना में कुछ इस प्रकार चलने वाले हैं। सबसे पहले तो आपको एक अच्छा सा विचार ही देंगे, फिर घरेलू नुस्खे भी जरूर देंगे, खुशनुमा जीवन में ढेर सारी बातें भी करेंगे, तो नए नए व्यंजन तो आपको हमेशा की भांति सिखाएंगे ही और देंगे सामान्य जानकारी। तो प्यारे श्रोता बंधुओं, बने रहोगे आशियाना में, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए रेडियो मधुबन

0: ये हंसते रहिए। आप सड़क पर चलते समय अपनी गाड़ी को कंट्रोल रखें और अपनी गाड़ी को धीरे धीरे चलाएं और हमेशा हेलमेट पहनते रहिए।
1: रेडियो मधुबन,
2: गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, पुनः आप सभी का स्वागत है आशियाना में। चलिए दिन की शुरुआत करते हैं एक सुंदर से विचार के साथ, और आज का सुंदर सा विचार इस प्रकार है, कंजूस सबसे बड़ा दानी होता है। चलिए आज के विचार का विस्तार करते हैं कि कंजूस सबसे बड़ा दानी कैसे होता है। दुनिया कहती है कि कंजूस कभी दान नहीं करता, परंतु देखा जाए तो कंजूस सबसे बड़ा दानी होता है। वह अपने ऊपर नाम मात्र को खर्च करता है और जब मरता है तो सारा धन उसके बच्चों व परिजनों को दान में मिल जाता है। कंजूस धन को जमीन में भी गाड़ कर रखता है। जब कंजूस मरकर जमीन में गड़ जाता है तब उसका घड़ा धन बाहर आ जाता है। देखा जाए तो कंजूस व उसका धन दोनों एक दूसरे के विरोधी है। कंजूस धन को कैद में रखना चाहता है और कैद का धन कंजूस को तृष्णा रूपी सूक्ष्म पिंजरे में कैद करता है। आज का विचार, चलिए सुन लीजिए एक प्यारा सा गीत। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रेडियो मधुबन

नमस्कार, मैं हूँ शिप्ला, डिस्ट्रिक्ट मोहाली, स्टेट पंजाब से। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहें, मुस्कुराते रहें।

में दर्द होता है, इसके रोगी को आराम करना चाहिए। तो ये सारे लक्षण है, चलिए मैं आपको उपचार बता रही हूँ कि अगर इस तरह की कंडीशन हो तो आप क्या करेंगे। एरंडी का तेल रात को गर्म दूध में पीजिए, ठीक है, 2 चम्मच। पेचिस में आंव के दस्त होते हैं, पेचिस में अगर आंव के दस्त हो रहे हो तो आप 2 चम्मच एरंडी का तेल रात को गर्म दूध में पीजिए, मिला करके शीघ्र लाभ होगा। एरंडी का तेल आंव और रक्त दोनों प्रकार के दस्तों में लाभ करता है, इसलिए आप इस उपचार को इजी वे में अपना सकते हैं। चलिए दूसरा और आपको अच्छा सा उपाय बता रही हूँ कि पके हुए बेल का शरबत पुराने आंव के लिए सफल चिकित्सा है, इसमें पेट साफ रहता है। अगर पुराना आंव हो ना तो आप पके हुए बेल का शरबत बनाइए और पीजिए, इससे पेट साफ रहता है और ये एक सफल चिकित्सा है। तो इसको आप इजी वे में आजमा सकते हैं। और भी सुनेंगे आप अगला उपाय कि अमोबाइसिस होने पर 1 गिलास गर्मा गर्म पानी खाने के बाद रोज पीजिए, इससे भी अमोबाइसिस की तकलीफ खत्म होगी। और लास्ट नुस्खा ध्यान से सुनेंगे, इसबगोल, ये अमीबिक पेचिस के लिए बहुत लाभदायक है, आंव को बाहर निकाल कर बनना बंद कर देती है। इसबगोल बहुत ही फायदेमंद है, यह अमीबिक पेचिस के लिए बहुत लाभकारी है, आंव को बाहर निकाल कर बनना बंद कर देते हैं। तो इस तरह इन नुस्खों को आजमा कर स्वयं को ठीक कर सकते हैं। चलिए प्यारे श्रोता बंधु, फिर से समय हो रहा है एक गीत सुनाने का, तो सुन लीजिएगा एक गीत, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

हृदय। तो प्यारे श्रोता बंधुओं, इन लाइनों से समझ गए होंगे कि किस तरह इशारा कर रही हूँ। जी हाँ, वैसे तो हम देशभक्ति की बातें करें तो बहुत कहते हैं समय ही कम पड़ जाएगा, लेकिन ये बातें भी जरूर करेंगे कल। लेकिन चलिए, खुशनुमा जीवन में रंग भरने की, जो जीवन में हम रंग भरते हैं उसकी सोच किस तरह की होनी चाहिए। कहते हैं कि सही सोच के द्वारा ही हम अपने जीवन में रंग भर सकते हैं। जहां भी दो चार व्यक्ति बैठते हैं बातचीत घूम फिर करके, आज की सामाजिक अव्यवस्था और नैतिक मूल्यों के हास पर आकर ठहर जाती है। इस अव्यवस्था के लिए कोई सरकार को कोसता है, तो कोई युवा पीढ़ी को, तो कोई सिनेमा को, तो कोई टीवी को। कुछ पढ़े लिखे लोग जहां इसके लिए शिक्षा प्रणाली को दोषी मानते हैं, वही कुछ इसे पश्चिमी सभ्यता का प्रभाव कह करके पल्ला झाड़ देते हैं। वर्तमान सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था पर यदि हम एक दृष्टि डालें, तो अपराधों का बढ़ता ग्राफ और मानव मूल्यों में आई गिरावट से यह स्पष्ट हो जाएगा कि दोष चाहे जिसका भी हो, लेकिन इतना अवश्य है कि आधुनिकता के इस दौर में जितना अधिक भौतिक विकास हुआ है, उतना ही अधिक नैतिक ह्रास भी हुआ है। भौतिक विकास के क्षेत्र में एक ओर जहां अच्छे अच्छे बंगले, कोठियां, भवन, फार्म हाउस, आलिशान होटल बने हैं, वस्त्रों का निर्माण हुआ है, स्वाद के लिए विविध प्रकार के भोज्य पदार्थों को सजाया सवारा गया है, टेलीविजन, कंप्यूटर, मोबाइल फोन, मोटर कारों वगैरह वगैरह के निर्माण से आदमी के बीच की दूरी कम हुई है, वही दूसरी ओर आध्यात्मिक दृष्टि से मन की सुख शांति दूर होती जा रही है। अगर हम आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो ये सारी सुख सुविधाएं तो हमें मिल रही है, लेकिन मन की सुख शांति दूर होती जा रही है। ढेर सारी सुख सुविधाओं के बाद भी हमारा जीवन अव्यवस्थाओं से गिरता जा रहा है। देर से सोना, नींद के लिए करवटें बदलते रहना, शराब या अन्य नशीले पदार्थ जैसे कंपोज आदि नींद की गोलियां खा करके सोना और नशे की खुमारी में सुबह देर तक सोते रहना, अनेक सभ्य लोगों की जीवन शैली बनती जा रही है। मुझे याद है स्कूल जीवन में डॉक्टर हजारी प्रसाद त्रिवेदी जी का एक लेख पढ़ा था, जिसमें जीवन में आ गई इस प्रकार की असंगति और असंतुलन का वर्णन करते हुए उन्होंने लिखा था, मेरे प्यारे श्रोता बंधुओं, कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले गिरह और भोले भाले श्रमजीवी पीस रहे हैं, झूठ और फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं, ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है, ये कैसी प्रगति है। द्विवेदी जी ने जिस असंगति की ओर संकेत किया है, वह आज हमारे चरित्र का हिस्सा बन गई है। कमाल तो यह है कि इस गलती को हम गर्व के साथ प्रगति समझ बैठे हैं। ये कैसी प्रगति है कि एक ओर ईमानदारी को मूर्खता या पर्याय समझे जाने की बात कही जाती है, तो दूसरी ओर प्रगतिशील समाज भौतिकता के प्रभाव में आकर दो घड़ी सुख की नींद के लिए तरस रहा है। ये कैसी प्रगति है कि निराशा और असुरक्षा में घड़ी के पेंडुलम की तरह लटकता मानव मन कहीं भी स्थिर नहीं हो पा रहा है। ये कैसी प्रगति है कि अव्यवस्था, अनुशासनहीनता, भ्रष्टाचार और असुरक्षा के घुमड़ते बादल में आज मनुष्य की अस्मिता दिन ब दिन असुरक्षित होती जा रही है। लेकिन खुशी की बात है कि भौतिकता की इस चकाचौंध में भ्रष्ट आचरण को कहीं भी सामाजिक मान्यता नहीं मिली है। देश के राष्ट्रीय चरित्र और लोकमत की उपेक्षा करने का दुस्साहस आज भी कोई नहीं जुटा पाता है। गले गले तक भ्रष्टाचार में डूबा व्यक्ति भी सार्वजनिक जीवन में अपने आप को पाक साफ समझता है। उसकी दृष्टि हमेशा अपने से बड़े भ्रष्टाचारी पर लगी रहती है। परिणाम हमारे सामने है। इस तथाकथित प्रगति के फलस्वरूप लोगों की तो लालसाएं, आकांक्षाएं, महत्वाकांक्षाएं बढ़ रही है ना। सामाजिक और आधुनिक जीवन में दूर दूर तक इनका कहीं कोई अंत दिखाई नहीं दे रहा है। इच्छाएं इस सीमा तक बढ़ रही है कि उनकी पूर्ति होना
असंभव सा होता जा रहा है। यह अनंत इच्छाएं और अपेक्षाएं इस अव्यवस्था का ही परिणाम है और यही आज हमारे सामाजिक जीवन की सबसे बड़ी समस्या है मेरे प्यारे श्रोता बंधुओं। तो इस समस्याओं से कैसे हम निपटेंगे ये भी आप सभी सोचिएगा। ऐसे तो भौतिक साधनों की हम तरक्की कर रहे हैं लेकिन मानसिक संतुलन का जो ह्रास होता जा रहा है ये विचारणीय है। अगर इसी तरह रहा तो फिर कैसे हम कह सकते हैं कि तनाव से मुक्त है, कैसे कह सकते हैं कि हम सभी खुश है। इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि किस तरह हम भौतिक सुखों के पीछे मानसिक तनाव को बढ़ा रहे हैं। अगर हम भौतिक सुख की जगह अगर हम थोड़ा सा आध्यात्मिक की तरफ ध्यान देना तो सचमुच हम जीवन को खुशनुमा बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे वो भी आपके साथ बात करेंगे लेकिन अभी सुना रहे हैं एक प्यारा सा गीत। तो सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रेडियो मधुबन।

0: हमेशा बाइक पर हेलमेट पहनकर निकलना चाहिए, इसमें आपका ही भला है। जीवन अनमोल है, इसे यूं ही व्यर्थ न गवाएं। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।
1: बातों ही बातों में विश्वास बदल जाता है, बातों ही बातों में विश्वास बदल जाता है, रातों ही रातों में इतिहास बदल जाता है। मुसीबतों से मत घबराना मेरे प्यारे श्रोता बंधुओं, मुसीबतों से मत घबराना मेरे प्यारे श्रोता बंधुओं, क्योंकि मेहनत से जमी तो क्या आसमां भी बदल जाता है, मेहनत से जमी तो क्या आसमां भी बदल जाता है। तो प्यारे श्रोता बंधुओं, गीत सुनाने से पहले आपके साथ बातचीत कर रही थी कि किस तरह भौतिक सुख साधन बढ़ते जा रहे हैं और मानसिक सुख शांति हमारी छिनती जा रही है। समस्या इसलिए कि जिस गति से इच्छाएं बढ़ी है ना, उसी गति से सहिष्णुता और सामंजस्य की कमी हुई है, तो समस्याएं तो बढ़ेगी ना। मानसिक तनाव में सब कुछ आ गया है, घर हो या ऑफिस, कक्षा हो या व्यापारिक संस्थान, जहां लोगों में परस्पर स्नेह और आत्मीयता होनी चाहिए थी, वहां अविश्वास की भावनाएं बढ़ी। पति पत्नी, बाप बेटे, माँ बेटी, भाई भाई में परस्पर स्नेह स्रोत सूख रहे हैं, दूरियां बढ़ रही हैं, परिवार का वातावरण तना तना सा, खींचा खींचा सा बना रहता है। यही तनाव अब घरों से निकलकर समाज में आ गया है, इसलिए लोगों को न घर में शांति है न बाहर होगी भी कैसे ना, न तो घर में है न बाहर, कैसे हो सकती है जब लोग घर में ही अशांत रहते हो, तो वे बाहर सामान्य कैसे हो पाएंगे। आखिर समाज भी तो एक बड़ा घर है। ईर्ष्या को छोड़िए, आत्मचिंतन करिए। दरअसल ये मानसिक अशांति दूसरों की देन नहीं, बल्कि लोगों की अपनी सोच की ही देन है। हम दुखी या फिर अशांत इसलिए नहीं है कि हम अभावग्रस्त है, विवेकहीन है, बल्कि इसलिए है कि दूसरे इतने सुखी, संपन्न और खुशहाल क्यों है। हमें अपनी प्रकृति की चिंता नहीं, बल्कि हमारी चिंता का विषय पड़ोसी की सफलताएं है। हमारी यह ईर्ष्याजन्य सोच आधुनिकता की ही देन है। वास्तव में हमारा अधिकांश समय दूसरों में दोष ढूंढने में व्यतीत हो रहा है। दूसरों के आलोचनाओं में हम अधिक समय देते हैं। हम जितना समय दूसरों की निंदा करने में लगाते हैं ना, यदि उससे आधा समय भी आत्मचिंतन में व्यतीत करें, तो स्थिति बिल्कुल बदल जाएगी। एक अत्यधिक व्यस्त महिला को स्वामी जी ने गुरु मंत्र दिया, तुम आज से सच्चे मन से संकल्प करो कि तुम दूसरों की निंदा में रुचि नहीं लोगी, जहां दूसरों की निंदा हो रही है वहां से उठ जाओगी। महिला ने पूरी इच्छा शक्ति के साथ स्वामी जी की आज्ञा का पालन किया। अब महिला के पास इतना समय बचने लगा कि उसके पास करने के लिए कोई काम ही शेष न रहता। अब उसकी समझ में आ गया कि उसकी व्यस्तता का मूल कारण क्या था। यही आपके जीवन का भी सच है मेरे प्यारे श्रोता बंधु। अपना मूल्यांकन करिए, देखिए निष्कर्ष तक पहुंचने में समय नहीं लगेगा। दूसरों को दुख देना भी हिंसा है। वास्तव में अपनी प्रगतिशीलता के अहम में हम सदैव ये सोचते रहते हैं कि दूसरे हमसे आगे ना निकल जाए। हमें दूसरे को नीचे दिखाने में जो सुखानुभूति मिलती है, वह एक प्रकार की हिंसा है। ये हिंसक विचार ही हमारी आधुनिक प्रगतिशील सोच पर हावी है, जो परिवार में अविश्वास, अशांति और विघटन के प्रमुख कारण बन रहे हैं। जीवन आदर्शों का मजाक उड़ाने वाले जब स्वयं विषम परिस्थितियों में फंस जाते हैं, तो इस प्रकार की सोच से तोबा तो करते ही है, साथ ही इन्हीं आदर्शों की दुहाई देकर समाज और परिवार में अपने लिए स्थान भी मांगते हैं। बड़े से बड़ा अपराधी भी अपने बच्चे को आदर्श चरित्र वाला व्यक्ति बनाना चाहता है, उसे अपराध जगत से दूर रखना चाहता है, उसे पढ़ा लिखा कर नेक इंसान बनाना चाहता है। तो सद्गुण ही मानसिक शांति दे सकते हैं। सामाजिक और पारिवारिक जीवन में वह व्यक्ति आज भी सुखी, संतुष्ट और प्रसन्न है, जो सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और साधनों की पवित्रता के साथ जुड़ा है। आज भी मानसिक रूप से वही परिवार सुखी है जो समृद्ध और सफल है, परस्पर स्नेह, सौहार्द और समर्पित भाव रखता है। समाज भी उन्हें ही सफल मानता है, स्वीकारता है, जो अपने अदम्य साहस, बुद्धिमत्ता, विवेक और चिंतनशीलता से जीवनादर्शों पर अनवरत रूप से अग्रसर है। तो समाज से पहले स्वयं को सुधारना है। समाज व्यक्ति से बना है, इसलिए सामाजिक जीवन में शुचिता लाने के लिए ये जरूरी है कि पहले हम स्वयं सुधरे। ये कार्य हम स्वयं अपने से ही क्यों न शुरू करें। हम सुधरेंगे जब सुधरेगा कि ये सोच मानसिक शांति, सामाजिक और पारिवारिक तनावों से मुक्ति के लिए एक सरल उपाय बन सकती है। मनुष्य प्रकृति की सर्वोत्तम कृति है। प्रकृति की ये उत्तमता तभी सार्थक है जब वह अपने मनुष्यत्व को बनाए रखे और मानवोचित आदर्शों को जीवन में उतारे। मनोबल हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। मनुष्य की शक्ति स्वयं उनका मनोबल होता है। उसे अपने अंदर ही शक्ति प्राप्त होती है। जो अपने अंदर से शक्ति प्राप्त नहीं कर पाता है ना, उसे संसार में कहां भी शक्ति नहीं मिल सकती है। इस एक विचार और चिंतन से ही लोगों की आंखें खुल जानी चाहिए। वास्तव में बाहर वस्तुओं के आकर्षण और प्रलोभन ही लोगों को कमजोर बनाते हैं, जबकि लोगों की आंतरिक शक्ति उसे संबल प्रदान करती है। आंतरिक शक्ति के विकास के लिए एकांत चिंतन बहुत आवश्यक है। हमारे मस्तिष्क को जितनी शक्ति एकांत में मिलती है ना, उतनी भीड़भाड़ अथवा शोर में नहीं। इसलिए सामाजिक और पारिवारिक जीवन में जो लोग अपना कुछ समय सुबह और सायंकाल घूमने में, एकांत में बैठकर चिंतन करने में, योग साधना में अथवा मौन धारण कर इस प्रकार की क्रियाओं में बिताते हैं, इतिहास साक्षी है कि महान व्यक्ति जीवन में त्याग, तपस्या, सदाचार, इन सभी को अपना कर ही महान बने हैं। सद्गुणों को धारण करने वाले व्यक्ति ही समाज और परिवार में मान सम्मान और प्रतिष्ठा पाते हैं। मेरे प्यारे श्रोता बंधुओं, हम उसी व्यक्ति को अपना मित्र बनाना चाहते हैं, उसी की निकटता प्राप्त करना चाहते हैं, जो जीवन में अपने आदर्शों के कारण समाज में कुछ विशिष्ट स्थान रखता हो। तो क्यों न ऐसे व्यक्ति हम स्वयं बने, ताकि दूसरे भी हमारे साथ मित्रता बनाए रख सके और हमारे निकट आने की कोशिश करे। तो ऐसे आदर्श व्यक्ति हमें भी बनना है, तभी हमारा जीवन, हमारे परिवार में खुशहाली बनी रहेगी और हमारा जीवन खुशियों से भरपूर रहेगा। तो चलिए प्यारे श्रोता बंधु, अब एक गीत सुनाने का समय हो रहा है, तो सुन लीजिए खुशियों भरा गीत। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रेडियो मधुबन

मैं हूं संजय कुमार और आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। सुनते रहो और मुस्कुराते रहो।

आप सुन रहे हो आशियाना और आशियाना में समय हो चला है आप सभी को नई नई व्यंजन सिखाने का। तो आशियाना के किचन में वेलकम है आप सभी का। पेन और डायरी लेकर के पधारिएगा क्योंकि आज मैं आपको सिखा रही हूँ हरी हरी भरी भरी शिमला मिर्च। अब हरी हरी तो आप सभी जानते हैं कि शिमला मिर्च हरी ही होती है, और भरी भरी कैसे होती है वो भी आप जानेंगे। तो चलिए, पेन और डायरी तो आपके हाथ में है ना, तो चलिए मैं आपको सामग्री लिखवा रही हूँ। शिमला मिर्च की सामग्री इस प्रकार है, 19-20 बड़े आकार की शिमला मिर्च लीजिए, ठीक है। देखिए, मैं बार बार आप लोगों को बोलती रहती हूँ, मात्रा आप अपने हिसाब से लीजिए। हम तो अपने अंदाज से बताते हैं, लेकिन उसके अनुसार आप मात्रा को घटा बढ़ा सकते हैं। जैसे 19-20 शिमला मिर्च लेते समय आप ध्यान रखिएगा कि घर में कितने मेंबर है। 2 मेंबर है तो 19-20 बहुत ज़्यादा होती है, 3 मेंबर है तो भी ज़्यादा है, 4 मेंबर है तो भी ज़्यादा है। इसलिए आप मात्रा को अपने हिसाब से लीजिए। 2-3 मेंबर है तो 5 या 6 शिमला मिर्च काफ़ी रहती है, ठीक है ना। तो चलिए, अब आपको अंदाजा आ गया ना कि किस तरह मेंबर के अनुसार मात्रा लेनी है। तो आप लीजिए 19-20 बड़े आकार की शिमला मिर्च। फिर भरने के लिए लीजिए 300 ग्राम पनीर और बारीक कटी हुई हरी मिर्च ले लीजिए 6-7। फिर 1 छोटा चम्मच कटा हुआ अदरक ले लीजिए। बारीक कटे हुए टमाटर लेना है आपको 2, ठीक है। और अदरक तो आप 1 छोटा टुकड़ा ले सकते हैं। फिर 1 छोटा चम्मच आपको लेना है कटा हुआ काजू, ठीक है, जो हम नाश्ता करते हैं ना, ऐसा चम्मच ले लीजिए आप भरा हुआ कटा हुआ काजू। फिर नमक, गरम मसाला, ये सब आप अपने अंदाज से ले लीजिएगा टेस्ट के हिसाब से। और हरा धनिया भी आप अपने स्वेच्छा से ले लीजिएगा। और फिर आप लीजिए 1/2 कप तेल, ठीक है, रिफाइंड तेल, जो भी आप तेल यूज़ करते हो वो ले लीजिए। तो ये तो हो गई सामग्री। ग्रेवी के लिए लेंगे हम 1/2 भर आलू। कितने लिए? 1/2 भर। फिर आप लीजिए 1 छोटा चम्मच बारीक कटी हुई अदरक, ठीक है। फिर 1 किलो टमाटर की प्यूरी, 2 चम्मच लाल मिर्च, 2 चम्मच पिसा हुआ धनिया, 1/2 चम्मच पीसी हुई हल्दी, हल्दी पाउडर तो आप सभी जानते ही हो, 1 चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला, थोड़ी सी रतन जोत लेनी है, थोड़ी सी हरा धनिया तो लेना ही है, कसूरी मेथी ले लीजिए 1/2 छोटा चम्मच, ठीक है, और तेल लीजिएगा आप अपनी आवश्यकता के अनुसार। तो ये हो गई हरी हरी भरी भरी शिमला मिर्च की सामग्री, जिसको मैं पुनः दोहरा रही हूँ। 19-20 बड़े आकार के शिमला मिर्च लीजिए सामग्री के लिए। फिर आप लीजिए 300 ग्राम पनीर। अब आप लीजिए 6-7 बारीक कटी हुई हरी मिर्च, 1 छोटा चम्मच कटा हुआ अदरक, 2 बारीक कटे हुए टमाटर ले लीजिएगा, 1 छोटा चम्मच कटे हुए काजू लेना है, नमक, गरम मसाला, कटा हुआ हरा धनिया, ये सब आप आवश्यकता के अनुसार ले लीजिए, ठीक है। और 1/2 कप लेना है आपको रिफाइंड तेल। अब ग्रेवी के लिए लेना है आलू 1/2 भर और 1 छोटा चम्मच लीजिए बारीक कटी हुई अदरक, 1/2 किलो टमाटर की प्यूरी लेनी है, 2 चम्मच लाल मिर्च लीजिएगा, 2 चम्मच पिसा हुआ धनिया लेना है, 1/2 चम्मच पिसे हुए हल्दी पाउडर लीजिएगा और 1 चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला लेना है, थोड़ी सी रतन जोत ले लीजिए और हरा धनिया ले लीजिए आवश्यकता के अनुसार, कसूरी मेथी लेनी है 1/2 छोटा चम्मच और तेल भी लीजिएगा अपनी आवश्यकता के अनुसार। तो ये सारी सामग्री इकट्ठी करिए। तब तक के लिए आपको एक अच्छा सा गीत सुना देते हैं, तो सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रेडियो मधुबन

0: ले बहू, इसे पी जा।
1: ये क्या है माँ जी?
0: ये काढ़ा है, इसे पीते ही तेरा गर्भपात हो जाएगा।
1: नहीं माँ जी, अब बस, मैं और गर्भपात नहीं होने दूंगी। इससे पहले भी आपने मेरी बच्ची की जान ली है, इस बार मैं आपको यह पाप नहीं करने दूंगी, और ना ही इस पाप को मैं स्वयं करूंगी।
0: जुबान चलाती है, एक तो पोता दे न सकी, ऊपर से जुबान चलाती है। पोते के आस में बैठी हूँ, न जाने कब मेरी आँख बंद हो जाए।
2: क्या हुआ माँ, क्यों गुस्सा कर रही है, क्या बात है?
0: ये महारानी काढ़ा पीने से इनकार कर रही है।
1: मैं ये काढ़ा पीकर अपनी बच्ची की अब और हत्या नहीं कर सकती। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपनी बच्ची को नहीं मरने दूंगी। लड़का लड़का सुन सुनकर मैं तंग आ गई हूँ, मुझे बस मेरी बच्ची चाहिए, वो भी जीवित।
2: माँ ठीक ही तो कह रही है तुम्हारी बहू, बस अब बंद करो ये जानलेवा खेल। मुझे भी बच्ची ही चाहिए, मुझे लड़का और लड़की में कोई फर्क नहीं दिखाई पड़ता। आज के दौर में तो लड़कियां लड़कों से भी ज्यादा सफलता पा रही हैं। बस अब बंद करो ये खेल, सब बराबर ही तो हैं आज।
1: भ्रूण हत्या करना मतलब आप स्वयं अपनी बेटी की हत्या का अपराध कर रहे हैं। क्या आप जल्लाद हैं? आप जल्लाद हैं? आप जल्लाद नहीं ना।
3: आप सभी आशियाना के किचन में हो और आशियाना के किचन में बन रही है हरी हरी भरी भरी शिमला मिर्च, जिसकी सामग्री मैं आप सभी को लिखवा चुकी हूँ, फिर भी एक नजर डाल दीजिएगा। सामग्री के लिए शिमला मिर्च, पनीर, अदरक, टमाटर, हरी मिर्च, काजू, गरम मसाला, हरा धनिया और तेल, अब और नमक है ना। और ग्रेवी के लिए आलू, अदरक, टमाटर, हरी मिर्च, धनिया, हल्दी, लाल मिर्च, गरम मसाला, रतन जोत, कसूरी मेथी, तेल, हरा धनिया। तो ये सारी सामग्री तो आपने इकट्ठी कर ही ली होगी। आइए अब हरी हरी भरी भरी शिमला मिर्च बनाते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, शिमला मिर्च की डंडियां अलग करके डंडी की तरफ से ही पिलर की मदद से सावधानी से बीज बाहर निकाल लेना है, ठीक है? अब क्या करेंगे, भरने की सारी सामग्री जो हमने ली है ना, कटा हुआ हरा धनिया, शिमला मिर्चन, पनीर, जो हमने सामग्री ली है वो सभी को मिला देना है, मिक्स कर देना है, ठीक है? फिर शिमला मिर्च में भर देना है। अब एक फ्राई पैन में, एक कढ़ाई में तेल गरम करिए और उसमें शिमला मिर्च रख करके ढक दीजिए, ठीक है? और मंदी आंच पर रख देना है। फिर थोड़ी थोड़ी देर में दो तीन बार पलट करके, चाहे तो इसे आप ओवन में भी रख सकते हैं या फिर गैस पर ही रखिए आप, मंदी आंच रखिएगा। याद रखिएगा, डार्क जो काले धब्बे जैसे चिपक जाते हैं और जले हुए का निशान नहीं होता है, तो इस तरह नहीं होना चाहिए। इसके लिए आप थोड़े से कंटिन्यू हिलाते रहिए, ठीक है? लेकिन चम्मच से नहीं, कढ़ाई का उछाला दे दीजिए। कढ़ाई को हंडासी से पकड़ के फिर आप उसको इस तरह उछाला देते रहिए। और इसके लिए क्या करना पड़ेगा, शिमला मिर्च पर तेल की जगह एक एक टुकड़ा जमे हुए घी या मक्खन का रख देना है। इससे चिपकेंगे नहीं और इस तरह ब्लैक धब्बे भी नहीं होंगे, और नरम होने पर गैस को बंद कर देना है। बस तो इस तरह शिमला मिर्च को करना है, ठीक है? अब हम क्या करेंगे, ग्रेवी के लिए आलू उबाल करके कद्दूकस कर लेना है, ठीक है? ताकि कोई गोली न रहे, गठाने रह जाती ना। फिर तेल गरम करके उसमें रतन जोर डालना है। जब तेल लाल हो जाए तो इसमें हरी मिर्च और अदरक की पेस्ट डाल दीजिए, ठीक है? और थोड़े से इसको फ्राई होने के बाद आप लाल मिर्च, नमक, हल्दी पाउडर, पिसा हुआ धनिया, गरम मसाला, ये सब डाल करके अच्छी तरह इसको फिर से फ्राई करिए। और फिर आप टमाटर की प्यूरी डाल दीजिए, और जब पानी सूख जाए, तेल ऊपर तैरने लगे, तो कसे आलू और अंदाज से थोड़ा सा पानी डाल करके मंदी आंच पर थोड़ी सी देर खदखदने दीजिए, ठीक है? खदकने लगे तो फिर आप आंच से उतार लीजिए। अब आप क्या करेंगे, परोसते समय एक शिमला मिर्च वाला फ्राई पैन गैस पर रख करके उन्हें जरा गर्म कर लीजिए, और ग्रेवी भी खूब गर्म होनी चाहिए। अब एक चौरस डिश में ग्रेवी डाल करके शिमला मिर्च सावधानी से बीच में रख दीजिए और गरम मसाला व धनिया या कसूरी मेथी छिड़क करके आप पिरसिए। ठीक है, कसूरी मेथी छिड़किए, पहले गरम मसाला या धनिया, गरम मसाला अंदर डाला ही है, अंदर थोड़े थोड़े कसूरी मेथी भी छोंक में डाल देनी है और धनिया से सजा देना है, ऊपर से कसूरी मेथी से भी सजा सकते हैं। तो इस तरह हरी हरी भरी भरी शिमला मिर्च तैयार है। तो भरमा का मतलब समझ गए ना, भरी भरी क्यों है, क्योंकि अंदर से भी भरी है तो ऊपर से ग्रेवी भी है। तो इस तरह शिमला मिर्च बनी जाती है, जिसकी विधि मैं पुनः दोहरा रही हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। क्या करेंगे हम, शिमला मिर्च की डंडियां अलग करके डंडी की तरफ से पिलर की मदद से सावधानी से बीज बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, फिर जो भरने की सारी सामग्री है उसको मिला करके शिमला मिर्च, तो अंदर भी भर गया मसाला, तो भरी भरी हो गई ना शिमला मिर्च, इसलिए हम कहते हैं भरी भरी शिमला मिर्च। अब हम क्या करेंगे, कढ़ाई में तेल रखना है गरम, तेल गरम हो जाए तो इसमें आप शिमला मिर्च रख करके ढक दीजिए और मंदी आंच पर रख देना है। ठीक है, आंच स्लो रखेंगे तो ही मसाला भी अंदर से अच्छा पक जाएगा और शिमला मिर्च भी बाहर से नरम पड़ जाएगी, इसलिए आंच को स्लो रखना है। फिर थोड़ी थोड़ी देर में 2-3 बार पलट देना है। ठीक है, चाहे तो इन्हें ग्रिल या ओवन में भी रख सकते हैं, लेकिन सभी के तो ओवन नहीं होता है ना, तो फिर आप गैस पे ही रखिए स्लो आंच पे। फिर इसके लिए शिमला मिर्च पर तेल की जगह एक एक टुकड़ा जमे हुए घी या मक्खन का रख दीजिए, नरम होने पर गैस बंद कर दीजिए। और अब ग्रेवी के लिए क्या करेंगे, आलू उबाल करके कद्दूकस कर लेना है, ताकि क्या होगा, घटाने नहीं पड़ेगी। बॉईल करके हम हाथ से मैश करते हैं ना, तो कहीं ना कहीं घटाने रह जाती है, तो इस तरह हमको कद्दूकस कर देना है। फिर तेल गरम करके उसमें रतन जोड़ डालना है, जब तेल लाल हो जाए तो उसमें फिर आप हरी मिर्च और अदरक का पेस्ट डाल दीजिए और अच्छी तरह फ्राई करिए। फिर फ्राई करने पर नमक, मिर्च, हल्दी पाउडर और पिसा हुआ धनिया, थोड़ा गरम मसाला भी डाल करके फिर से अच्छी तरह फ्राई करिए। अब टमाटर की प्यूरी डाल दीजिए। ठीक है, और जब पानी सूख जाए और तेल ऊपर तैरने लगे तो आप समझ लीजिए आपकी प्यूरी भी अच्छी मिक्स हो गई है, और तेल छूटने लगे तो आप आलू, कसे हुए आलू तैयार कर रखे हैं ना, इसको आप डाल दीजिए, अंदाज से पानी भी डाल दीजिए और अच्छी तरह खदकने दीजिए। ठीक है, और फिर अच्छी तरह खदकने के बाद आंच से नीचे उतार दीजिए। कढ़ाई में क्या करेंगे, आप इन्हें रख करके जरा गर्म कर लीजिए, और इसको गर्म नहीं करोगे तो ही चलेगा, क्योंकि फिर मसाला बाहर निकलने का खतरा रहता है। तो आप ग्रेवी को पिरसते समय ग्रेवी को गर्म कर दीजिए बस, क्योंकि गरम गरम ग्रेवी तो वैसे ही इसमें डालनी ही है। तो इस तरह हमारे हरी हरी भरी भरी शिमला मिर्च तैयार है। तो लीजिए एक चौरस डिश जिसमें आप ग्रेवी डाल दीजिए और ग्रेवी के बीचों बीच रख दीजिए एक शिमला मिर्च, और फिर इसको आप कसूरी मेथी और धनिया से सजा दीजिए। ठीक है ना, ऊपर से डाल दीजिए। और अब आप ये इस प्लेट को रखिए एक स्वच्छ थाली में, थाली में चपाती तो आपने बनाई ही होगी, तो बस रोटी के साथ वैसे ही शिमला मिर्च हरी हरी भरी भरी अच्छी लगती है, तो परोठा भी बना सकते हैं, दोनों के साथ अच्छी लगेगी। तो जो भी बनाया है थाली में रखिएगा, तुलसी पत्र रखिए, जल की स्वच्छ ग्लास भर के रखिए और आप अपने इष्ट देव को अब भोग लगाइए। भोग लगाने के बाद पूरे परिवार सहित आनंद लीजिएगा हरी हरी भरी भरी शिमला मिर्च का, और साथ ही साथ एक प्यारा सा चटपटा गीत भी सुन लीजिए। तो सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रेडियो मधुबन 90.4।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
1: आप सुन रहे हो आशियाना और आशियाना में आइए अब आपको देते हैं सामान्य जानकारी। डायबिटीज में करिए आप मशरूम का सेवन, मशरूम बहुत ही डायबिटीज में फायदेमंद है। तो चलिए इस बारे में आपको जानकारी देंगे कि किस तरह मशरूम फायदेमंद है। आमतौर पर डायबिटीज के रोगी के लिए भोजन में बहुत तेरे परहेज होते हैं, लेकिन अगर आपको मशरूम पसंद है ना, तो इसका सेवन आपकी सेहत के लिए और भी फायदेमंद होगा। हाल में एक शोध के दौरान इस बात का पता चला है कि मशरूम का डाइट में नियमित रूप से सेवन डायबिटिक रोगियों के लिए बहुत फायदेमंद है। हिमाचल प्रदेश एक अध्ययन के अनुसार पता चला है कि मशरूम का सेवन सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद है। इसमें न्यूट्रिशनल तत्व तो अधिक होते ही हैं, साथ ही इनमें शक्कर बिल्कुल नहीं होता है। डायबिटीज में इनका सेवन ब्लड शुगर को नियंत्रित करने में मददगार साबित होता है। एक अध्ययन के अनुसार ऐसा माना गया है कि मशरूम के फायदों पर कई तरह के शोध हो चुके हैं और अब ये बात प्रमाणित है कि मशरूम में कैंसर, HIV संक्रमण और कई गंभीर रोगों के उपचार के गुण मौजूद है। इतना ही नहीं, अगर आप वजन घटाने के लिए डाइटिंग और एक्सरसाइज को खास तवज्जो देते हैं, तो आपको डाइट में मशरूम का सेवन जरूर करना चाहिए। इसके सेवन से वजन कम करने में आसानी होती है। इन न्यूट्रिशनल तत्व तो होते ही हैं।

आप जानते हैं, साइबर फ्रॉडस्टर्स फिशिंग ईमेल को इस तरह से डिजाइन करते हैं कि वे वास्तविक दिखते हैं, लेकिन अगर आप उन ईमेल में दिए गए लिंक पर क्लिक करते हैं तो स्कैमर्स धोखाधड़ी कर सकते हैं। कभी भी असत्यापित लिंक पर क्लिक

0: न करें।
1: प्यारे श्रोता बंधुओं, समय हो चला है आप सभी से विदा लेने का। तो आज के कार्यक्रम तो आपने सुने ही है, बहुत ही अच्छे आपको घरेलू नुस्खे भी दिए हैं पेचिस के बारे में कि किस तरह आप अपने पेचिस को समाप्त कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे उपाय सुनाए हैं। खुशनुमा जीवन में बहुत ही अच्छी बातें की है कि किस तरह हम भौतिक सुखों के पीछे भागते हुए मानसिक सुखों से दूर होते जा रहे हैं, अपनी सुख शांति छीनती जा रही है। फिर आपको नई नई व्यंजन में हरी हरी भरी भरी शिमला मिर्च भी सिखाई, तो बहुत ही अच्छी आपको सामान्य जानकारी भी दी है। चलिए अब मैं आपको जानने योग्य बात बता रही हूँ कि खाने की आदतों में सुधार से कम हो सकता है वजन। केवल कम खाकर और ज्यादा एक्सरसाइज करके मोटापा कम नहीं कर सकेंगे। दुनिया भर में यही सर्वमान्य चलन है और दिनों दिन बढ़ रहा है। इसके बावजूद लोग मोटे होते जा रहे हैं। विशेषज्ञों की सलाह है कि वजन कम करना खाने की आदतों से जुड़ा मामला है और इसे उसी स्तर पर नियंत्रित किया जा सकता है। उसकी वजह विविधता, स्वाद, संस्कार और खर्च भी। अब मैं आपको आज के अनमोल वाक्य सुना रही हूँ जिसको जरूर जीवन में धारण करेंगे। जीतने के लिए मन, त्यागने के लिए ईर्ष्या, परखने के लिए बुद्धि, संग्रह के लिए विद्या, रखने के लिए मान, सफलता के लिए मेहनत और करने के लिए सत्कर्म। तो इन अच्छे सुयोग्य वाक्यों को अगर हम अपने जीवन में उतारते हैं तो सचमुच हमारा जीवन खुशनुमा बनेगा। अब मैं आपको गृहस्थ गीता के कुछ महावाक्य भी सुनाऊंगी, तो आप लेंगे गृहस्थ गीता के महावाक्यों का आनंद और मुझे देंगे इजाजत। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए राम राम सा, जय श्री कृष्ण सा, खमा घणी सा। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए रेडियो मधुबन। आतिथ्य ही घर का वैभव है, आतिथ्य ही घर का वैभव है, प्रेम ही घर की प्रतिष्ठा है, व्यवस्था ही घर का सुख है, व्यवस्था ही घर का सुख है, समाधान ही घर की शोभा है, सदाचार ही घर की सुवास है, सदाचार ही घर की सुवास है, ऐसे ही घर में सदैव प्रभु का वास है, ऐसे ही घर में सदैव प्रभु का वास है। ऋण हो ऐसा खर्च मत करो, ऋण हो ऐसा खर्च मत करो, पाप हो ऐसी कमाई मत करो, क्लेश हो ऐसा मत बोलो, क्लेश हो ऐसा मत बोलो, चिंता हो ऐसा जीवन मत जियो, चिंता हो ऐसा जीवन मत जियो, रोग हो ऐसा मत खाओ, रोग हो ऐसा मत खाओ, आतिथ्य ही घर का वैभव है, आतिथ्य ही घर का वैभव है।

फिर भी साइबर फाइनेंशियल फ्रॉड में फंस जाना तो कॉल 1930 पर लगाना। ऑनलाइन होने वाले धोखाधड़ी और साइबर फ्रॉड से पीड़ित होने पर गृह मंत्रालय भारत सरकार की अधिकृत वेबसाइट www.cybercrime.gov.in पर अपनी शिकायत दर्ज कराएं।

0: भारत को आजादी दिलाने में सैकड़ों गुमनाम क्रांतिकारियों ने अपना बलिदान दिया है। उन्होंने ना अपने मौत की परवाह की, ना देश से निकाले जाने की, ना वो जेल जाने से डरे और ना ही संपत्ति जब्त होने से। कमाल की बात ये भी रही कि आजादी की ये लड़ाई भारत के साथ साथ विदेशों में भी समान रूप से लड़ी गई। श्यामजी कृष्ण वर्मा, वीर सावरकर, मैडम भिकाजी कामा, बैरिस्टर सरदार सिंह राणा, वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय, सरदार अजीत सिंह, लाला हरदयाल, रास बिहारी बोस, राजा महेंद्र प्रताप और चंपक रमन पिल्लई जैसे लोगों ने अपना बहुमूल्य योगदान दिया। वंदे मातरम वो स्वर था जिसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को आत्मा दी। ये गीत प्रत्येक भारतीय के भीतर ये भावना जगाता रहा कि हमारी धरती केवल भूमि नहीं बल्कि हमारी माँ है। माँ भारती, यानी जिनके चरणों की रज भी हमारे लिए पवित्र है। इस गीत की गूंज ने क्रांतिकारियों को अपना सर्वस्व न्योछावर करने की प्रेरणा दी। यही कारण है कि गीत को सुनते ही हर भारतीय के भीतर गर्व, उत्साह और समर्पण की लहर दौड़ जाती है। वंदे मातरम के स्वर ने भारत को एक शक्ति दी जिससे वो अपने स्वाभिमान, अपनी अस्मिता और आजादी के लिए एकजुट होकर संघर्ष कर सके। देशवासियों को विश्वास दिलाया कि भारत सिर्फ एक भौगोलिक इकाई नहीं बल्कि भावनाओं से जुड़ा हुआ एक जीवंत राष्ट्र है। कालांतर में ये गीत उस चेतना का प्रतीक बना जिसने जाति, भाषा और प्रांत की सीमाओं से परे जाकर सभी को एक ध्वज तले एकत्र किया।
1: दीदी, मैंने सुना है एक क्रांतिकारी ऐसे भी थे जो महज 25 साल की आयु में देश की खातिर फांसी पर झूल गए थे।
2: हाँ बन्नो, बिल्कुल ठीक सुना है तुमने। वे एक जोशीले देशभक्त थे जिनमें अदम्य साहस था। उन्होंने आजादी की लड़ाई में अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। कैसे भूल सकती हूं मैं वो तारीख, 17 अगस्त 1909, जब लंदन के पेंटन विले जेल में उस 25 वर्षीय क्रांतिकारी को फांसी दी गई थी। फांसी पर चढ़ने से पहले उनके अंतिम शब्द थे, वंदे मातरम। वे महान क्रांतिकारी और कोई नहीं, मदन लाल ढींगरा थे। उनके लिए वंदे मातरम सिर्फ एक नारा नहीं बल्कि राष्ट्रभक्ति का सर्वोच्च मंत्र था।
1: दीदी, आपने ये तो बताया नहीं कि उन्हें फांसी दी क्यों गई थी।
2: बन्नो, मदन लाल ढींगरा ने लंदन में कर्जन वाइली की हत्या कर दी थी।
0: दरअसल साल 1908 के उस दौर में हिंदुस्तान की धरती पर स्वतंत्रता की चिंगारी धधक रही थी। शूरवीर क्रांतिकारी अंग्रेजी हुकूमत को उखाड़ फेंकने का प्रण ले चुके थे। उसी दौर में मदन लाल ढींगरा ने एक बड़ा कारनामा कर दिखाया। उन्होंने खुलेआम अंग्रेज अफसर कर्जन वाइली को गोली मार दी ताकि ये संदेश दे सके कि भारतवासी अब गुलामी बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस घटना से पूरा ब्रिटिश साम्राज्य हिल गया और मदन लाल को सिर्फ 46 दिनों में फांसी पर चढ़ा दिया गया। मगर उनकी शहादत ने हिंदुस्तानी युवाओं के दिलों में आजादी की आग और भड़का दी।
1: मुझे एक बात बताओ दीदी, आखिर इतनी छोटी उम्र में मदन लाल के भीतर इतना देश प्रेम पनपा कैसे?
2: लोग बताते हैं कि वे शुरू से इतने देशभक्त नहीं थे, लेकिन लंदन में पढ़ाई के दौरान कुछ ऐसा हुआ कि उनकी राह बदल गई। लंबी कद काठी और हंसी ठिठोली करने वाले इस नौजवान को उनके जीवन का एक उद्देश्य मिल गया।
0: दरअसल मदन लाल का जन्म पंजाब के अमृतसर के एक संपन्न परिवार में हुआ था। पिता नेत्र चिकित्सक थे। पढ़ाई में काफी तेज होने के कारण मदन लाल का लंदन के यूनिवर्सिटी कॉलेज के सिविल इंजीनियरिंग में दाखिला हो गया। रहने की व्यवस्था इंडिया हाउस में हुई, वही इंडिया हाउस जिसे श्याम जी वर्मा ने साल 1905 में खरीदा था, जिसके एक हिस्से में यूथ हॉस्टल था और जहां देश की आजादी की योजनाएं बना करती थी। तमाम छोटे बड़े क्रांतिकारी वहां बैठक करते थे। बताते हैं कि 1907 में ग्रेट ब्रिटेन में करीब 700 भारतीय स्टूडेंट्स थे, जिनमें अकेले लंदन में 380 स्टूडेंट्स थे।
1: ओ, समझ गई, मदन लाल को देशभक्ति की प्रेरणा कहां से मिली? इंडिया हाउस में आने वाले क्रांतिकारियों से? ठीक सोच रही हो ना?
2: अरे जरा ठहरो, ये प्रेरणा से कुछ अधिक थी।
1: क्या कह रही हो दीदी, मेरे पल्ले नहीं पड़ रहा।
2: मदन लाल का आकर्षक व्यक्तित्व था। कम समय में ही वे इंडिया हाउस में युवक युवतियों के आकर्षण का केंद्र बन गए थे। उनके दोस्त बड़े शोर शराबे वाले थे, अक्सर प्रेम गीत गाया करते थे। उन दिनों मदन लाल के मन में मातृभूमि की आजादी का विचार खास तौर पर नहीं था। एक दिन इंडिया हाउस में रविवार की बैठक चल रही थी, उसमें वीर सावरकर भारत की आजादी पर एक जोशीला भाषण दे रहे थे। वहीं दूसरी ओर मदन लाल और उनके दोस्त बगल वाले कमरे में खूब शोर शराबा मचा रहे थे। इससे सावरकर को अपना भाषण बीच में ही रोकना पड़ा। वे बगल वाले कमरे में गए, जहां मदन लाल और उनके दोस्त मौज मस्ती कर रहे थे। सावरकर ने उन्हें टोका और एक तरह से डांटते हुए बोले,
3: क्या बात है मदन, तुम काम और बहादुरी की बातें तो करते हो, लेकिन हमारी साप्ताहिक बैठकों में आने से कतराते हो। क्या यही वह बहादुरी है जिसकी तुम हमेशा बातें करते रहते हो?
0: सावरकर के शब्दों ने मदन लाल धींगरा को अंदर से हिला दिया। उन्हें बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। वो चुपचाप इंडिया हाउस से निकल गए। फिर कई दिनों तक सावरकर को अपना चेहरा नहीं दिखाया। समय गुजरा, उन्होंने हिम्मत जुटाई और दोबारा इंडिया हाउस लौटे। मन में कई विचार चल रहे थे।
4: मैं लौट तो आया हूं, लेकिन पता नहीं सावरकर जी अभी भी मुझसे नाराज हैं या नहीं।
0: मदन लाल अपने ख्यालों में खोए हुए थे कि अचानक उनका सावरकर से सामना होता है।
3: अरे डिंगरा, कहां थे इतने दिनों से, दिखाई नहीं दिए? मैंने कुछ लोगों से पूछा भी, किसी ने कुछ बताया नहीं। सब ठीक तो है ना घर परिवार में? पढ़ाई कैसी चल रही है?
0: मदन लाल को उम्मीद नहीं थी कि सावरकर उनसे इतने स्नेह से बात करेंगे, मानो उनके बीच कुछ हुआ ही ना हो। इससे हिम्मत पाकर ढींगरा ने सावरकर से पूछा,
4: क्या शहादत का समय आ गया है?
3: अगर कोई शहीद अपना मन बना चुका हो और तैयार हो, तो आम तौर पर यही समझा जाता है कि शहादत का समय आ गया है।
0: ढींगरा ने अब मन बना लिया था। ये जुलाई 1908 की बात होगी। उन्होंने जानबूझकर नेशनल इंडियन एसोसिएशन में शामिल होने का फैसला किया। ये एसोसिएशन भारतीय छात्रों को उग्रवादी रास्ते से दूर रखने की कोशिश कर रहा था। इस एसोसिएशन के कार्यक्रमों में ब्रिटेन के कई बड़े बड़े लोग शामिल होते थे। ढींगरा ने उनकी मौजूदगी में सावरकर और दूसरे क्रांतिकारियों की बुराई की। जल्द ही उन्हें नेशनल इंडियन एसोसिएशन की सेक्रेटरी मिस एमा जोसेफिन बेक का भरोसा जीत लिया। इस प्रकार उन्हें अलग अलग कार्यक्रमों में आने वाले खास अंग्रेजी मेहमानों के आने जाने के समय के बारे में पता चलने लगा। ढींगरा ने अपना मिशन तय करने के बाद इंडिया हाउस छोड़ दिया। दरअसल उन्हें दिखाना था कि वो सावरकर से सहमति नहीं रखते। इस तरह साल 1909 में ईस्टर के बाद मदन लाल मिसेस हैरिस के घर रहने लगे।
1: दीदी, जब मदन लाल सावरकर से अलग सोच रखते थे तो उन्होंने अंग्रेज अफसर को गोली कैसे मारी?
2: यही तो उनका मिशन था। इसके लिए हमें जानना होगा कि आखिर कर्जन वाइली थे कौन।
0: कर्जन वाइली एक बहुत ऊंचे औहदे के अफसर थे जो 1866 में ब्रिटिश सेना और 1879 में भारतीय राजनीतिक विभाग में शामिल हुए थे। उन्होंने 1879 से 80 के अफगान युद्ध, अवध, नेपाल, मध्य भारत और सबसे बढ़कर राजपुताना में अपनी काबिलियत का लोहा मनवाया था। 1901 में उन्हें भारत के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का पॉलिटिकल एडी कैंप चुना गया था। वो गुप्त पुलिस के मुखिया भी थे। बताते हैं कि कर्जन सावरकर और क्रांतिकारियों के बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने इंडिया हाउस में एक मुखबिर भी लगा रखा था।
5: मुझे सावरकर और उसके सभी क्रांतिकारी साथियों की पूरी खबर चाहिए कि वो क्या योजना बना रहे हैं।
6: जी सर, आपको सारी इन्फॉर्मेशन समय पर मिल जाएगी।
5: तुम थोड़ा जल्दी काम करो, वो इंडियंस कुछ ना कुछ जरूर प्लान कर रहे होंगे।
6: मैं जल्द से जल्द बताता हूँ।
0: कर्जन निश्चिंत था कि उसके मुखबिर की खबर क्रांतिकारियों को नहीं है, लेकिन सावरकर से कहां कुछ छुपने वाला था। उन्हें भनक लग चुकी थी कि इंडिया हाउस में कोई गुप्तचर है।
3: हमें थोड़ा खबरदार रहना है, हमारे बीच में कोई है जो अंग्रेजों तक सारी सूचनाएं पहुंचा रहा है।
7: आप ये क्या कह रहे हैं, हमारे बीच में कोई गद्दार है?
8: कौन है वो गद्दार? आप नाम बताइए उसका, छोड़ेंगे नहीं उसको।
3: धीरज रखो, जल्द ही पता चल जाएगा सबको।
0: इंडिया हाउस में एक आक्रोश सा फैल गया था। हर कोई सोचने लगा था कि आखिर वो गुप्तचर है कौन। तरह तरह की बातें होने लगी थी, लेकिन वहाँ एक शख्स था जिसके चेहरे के हाव भाव कुछ बदल से गए थे। वो एक मेडिकल का स्टूडेंट था।
9: कहीं सावरकर जी को मेरे बारे में पता तो नहीं चल गया? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। पता चलता तो वो मुझे छोड़ते क्या?
0: अभी वो छात्र ये सब सोच ही रहा था कि उसे सावरकर ने आवाज लगाई। कीर्तिकर, जरा बैठना मेरे साथ। भाव विहीन होने की कोशिश करता हुआ कीर्तिकर सावरकर के पास पहुंचता है।
9: जी बताइए, क्या सेवा है मेरे लिए?
3: बहुत बड़ी, इतना कि तुम सोच भी नहीं सकते। क्यों कर रहे हो ये सब और किसके कहने पर कर रहे हो?
9: मैंने क्या किया? कुछ समझा नहीं मैं।
3: अब ज्यादा बनने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी पोल खुल चुकी है।
0: फिर क्या था, अपनी जान पर खतरा पैदा होता देख कीर्तिकर ने ब्रिटिश पुलिस के ऑपरेशंस के बारे में उसके पास मौजूद सारी जानकारी सावरकर को दे दी। उधर ढींगरा कर्जन वाइली से व्यक्तिगत रूप से परिचित थे। 13 अप्रैल 1909 को मदन लाल के पास वाइली का लिखा एक पत्र पहुंचा, जिसमें उन्होंने मिलने की बात कही थी। कहानी में यही एक जबरदस्त ट्विस्ट आया जब मदन लाल ढींगरा ने अपनी योजनाओं के बारे में सावरकर से चर्चा की। इसके पश्चात सावरकर ने ज्ञानचंद वर्मा को बुलाया और उनसे कहा,
3: आप लंदन छोड़कर न जाए और इंपीरियल इंस्टीट्यूट में होने वाले कार्यक्रम में जरूर शामिल हो।
0: ढींगरा अपनी योजनाओं को अंतिम रूप देने लगे थे। उसी दौरान वो बिपिन चंद्र पाल के घर पर सावरकर से मिले। उस बैठक में निरंजन पाल भी मौजूद थे। मदन लाल काफी अच्छे मूड में थे। उन्होंने सावरकर से बड़े स्नेह के साथ बातचीत की।
3: आप ये बयान देख ले जो आपको कर्जन वाइली के हत्या करने के बाद देना होगा, निरंजन पाल ने इसे टाइप किया है।
4: ठीक है, मैं इसे याद कर लेता हूँ।
0: सावरकर ने मदन लाल को बेल्जियम में बनी एक ब्राउनिंग पिस्तौल भेंट की और बड़े स्नेह के साथ उनसे विदा ली। ढींगरा भावुक हो उठे। तब सावरकर ने कहा,
3: अगर इस बार तुम असफल रहे तो मुझे दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना।
4: आप निश्चिंत रहें, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा।
0: एक जुलाई को ढींगरा के सहेली मित्र सैंटियागो उनके आवास पर गए।
10: ढींगरा सामान्य बने रहे। इसके बाद वो गोरेगांवकर से मिलने गए, जिन्हें उनके साथ इंपीरियल इंस्टीट्यूट जाना था। उन्होंने 108 लीडबरी स्ट्रीट स्थित अपने ही घर पर समय से पहले दोपहर का भोजन और शाम की चाय ली। दोपहर 2 बजे वो एक रिवॉल्वर लेकर अपने घर से निकले। उन्होंने चमड़े के खोल वाली एक बिल्कुल नई कटार खरीदी और उसे अपनी जेब में रख लिया। फिर वो फनलैंड गए और 18 फीट की दूरी से 12 राउंड गोलियां चलाई। इनमें से 11 गोलियां निशाने यानी बुलजाई के बिल्कुल करीब लगी। इसके बाद उन्होंने अपनी रिवॉल्वर साफ करवाई। शाम 7 बजे मदन लाल ने लाउंज सूट और नीली पंजाबी पगड़ी पहनी। उन्होंने अपनी कोल्ट रिवॉल्वर लोड की और उसे अपनी कोट की दाईं जेब में रख लिया। उन्होंने एक एक रिवॉल्वर कोट की दूसरी जेब और अपनी वेस्ट में भी रख ली। क्योंकि वो सावरकर द्वारा लिखा गया बयान याद नहीं कर पा रहे थे, इसलिए उन्होंने उसे पेंसिल से कागज की एक शीट पर लिख लिया। उन्होंने अपनी जेब में 10-12 शिलिंग भी रखी और कार्यक्रम के लिए निकल पड़े।
2: मेरी बन्नो, तुम सुन रही हो ना, हमारे क्रांतिकारी किस कदर योजनाबद्ध तरीके से अपने मिशन पर जुटे थे।
1: हाँ दीदी, मुझे तो डर भी लग रहा है ये सोच सोच कर कि आगे क्या होगा। पकड़े जाने पर ब्रिटिश पुलिस मदन लाल जी के साथ कैसा सलूक करेगी।
2: बन्नो, क्रांतिकारी अपनी जान हथेली पर लेकर चलते हैं, तुम डरो मत बन्नो। बस इतना याद रखना कि स्वतंत्रता के इन वीर सेनानियों ने कितना कुछ देश के लिए कुर्बान किया।
1: बिल्कुल याद रखूंगी दीदी, भरोसा रखो।
10: आखिर वो दिन आ ही गया, 1 जुलाई 1909। इंपीरियल इंस्टीट्यूट की पहली मंजिल पर स्थित जहांगीर हॉल में नेशनल इंडियन एसोसिएशन की बैठक चल रही थी, जिसमें कर्जन वाइली समेत कई प्रमुख ब्रिटिश नागरिक और भारतीय शामिल थे। असल में ये एक स्वागत समारोह था, जिसे सर अल्फ्रेड लायल की पत्नी लेडी लायल के सम्मान में आयोजित किया गया था। मदन लाल इस एसोसिएशन के एसोसिएट सदस्य थे, तो वो भी वहां पहुंचे, लेकिन अपना निमंत्रण पत्र लाना भूल गए। हालांकि विजिटर्स बुक में हस्ताक्षर करने के बाद उन्हें प्रवेश मिल गया। बैठक में कोरेगांवकर भी एक पिस्तौल लेकर पहुंचे थे। जैसे ही मीटिंग खत्म होने वाली थी, कर्जन वाइली वहां से निकलने की तैयारी करते दिखे, तभी कोरेगांवकर ने ढींगरा को उकसाया।
11: अजय जाओ ना, क्या कर रहे हो।
10: ढींगरा बात करने के बहाने कर्जन वाइली के पास पहुंचे। दोनों ने शीशे का दरवाजा खोला और हॉल से बाहर निकल गए। जैसे ही वो सीढ़ियों के चबूतरे पर पहुंचे, ढींगरा ने अपनी आवाज धीमी कर ली, मानो वो कोई गोपनीय बात करना चाहते हों। कर्जन वाइली को ढींगरा के करीब आना पड़ा। मौका भांपते ही ढींगरा ने अपने कोट की जेब से कोल्ट रिवॉल्वर निकाली और बिल्कुल करीब से पॉइंट ब्लैंक रेंज से 2 गोलियां दाग दी। तब रात के 11:20 बजे थे। कर्जन वाइली लड़खड़ाने लगे, तभी ढींगरा ने 2 और गोलियां उन पर दाग दी। वहां मौजूद एक पारसी डॉक्टर कावस लाल काका ने बीच बचाव करने की कोशिश की।
12: ये क्या किया? He is bleeding.
13: आप बीच में ना पड़े वरना।
10: मदन लाल ढींगरा ने उन पारसी डॉक्टर पर भी गोली चला दी, खुद को भी गोली मारने का प्रयास किया जो असफल रहा। आसपास के लोगों से हाथापाई होने लगी। ढींगरा ने एक को जमीन पर गिरा दिया, जिससे उसकी पसलियां टूट गईं। लेकिन फिर किसी ने उन्हें जोर से पकड़ लिया और उनकी रिवॉल्वर छीन ली। हाथापाई में ढींगरा का चश्मा दूर जा गिरा था। उन्होंने शांत भाव से अपने पकड़ने वालों से कहा,
14: मेरा चश्मा दे दे।
10: घटना के पश्चात डॉक्टरों ने जब ढींगरा की नब्ज जांची, तो वो हैरान रह गए। इतनी बड़ी वारदात के बाद भी उनकी नब्ज बिल्कुल सामान्य थी। गिरफ्तारी के बाद पुलिस अधिकारी ने ढींगरा से पूछा,
5: क्या आप चाहते हैं कि हम आपके किसी दोस्त को आपकी गिरफ्तारी के बारे में सूचित करें?
13: इसकी कोई जरूरत नहीं है, उन्हें कल के अखबारों में मेरी गिरफ्तारी के बारे में पता चल ही जाएगा।
5: ये तो बड़ा सयाना है, मुंह नहीं खोलेगा।
1: आगे क्या हुआ गीत दीदी, क्या पुलिस ने उनसे मारपीट की?
2: असल में ढींगरा को एहसास था कि पुलिस उनके दोस्तों को भी इस मामले में फंसाने की कोशिश कर सकती है, इसलिए उन्होंने चतुराई से जवाब दिया। बाद में पुलिस उन्हें वॉल्टन स्ट्रीट पुलिस स्टेशन लेकर गई।
10: आप सभी को बता दें कि कर्जन वाइली की हत्या करने से कुछ हफ्ते पहले मदन लाल ढींगरा ने लॉर्ड कर्जन को भी मारने की कोशिश की थी। वो सभी वायसरायों में से सबसे ज्यादा अहंकारी माने जाते थे, लेकिन किस्मत ने कर्जन को दो बार बचा लिया। इनके अलावा मदन लाल ने बंगाल के पूर्व गवर्नर ब्रैमफील्ड फुलर की हत्या की भी योजना बनाई थी। हालांकि वो उस मीटिंग में देर से पहुंचे जहां इन दोनों को मौजूद रहना था, इसलिए मदन लाल अपनी योजना को अंजाम नहीं दे पाए। ये सब होने के बाद ढींगरा ने कर्जन वाइली को मारने का फैसला किया। सावरकर थोड़ा सशंकित थे कि पता नहीं इस बार ढींगरा सफल रहेंगे या नहीं। ये सिर्फ ढींगरा को ही मालूम था कि उन्हें हारना नहीं है। गिरफ्तारी के बाद का घटनाक्रम भी कम रोमांचकारी नहीं रहा। मामला अदालत में पहुंचा। वहां क्या क्या हुआ ये जानने के लिए आप श्रोताओं को करना पड़ेगा अगले एपिसोड का इंतजार। तब तक सुनते रहिए एक गीत एक नारा, राष्ट्रगीत हमारा, वंदे मातरम।

0: रेडियो मधुबन 107.8 FM सुन रहे हैं आप. कार्यक्रम है मधुबन अनप्लग्ड. मधुबन अनप्लग्ड यानी कि संगीत का वो सफर, यानी कि शेर व शायरी, क्रिएटिविटी और पंक्तियों का सफर. जी हाँ, जब एक गाना बनता है तो शब्द मोतियों की तरह पिरोए जाते हैं. बातें वही होती हैं, लेकिन कहने का अंदाज इतना अलग होता है कि वो दिल में घर कर जाते हैं. और ऐसी ही कुछ बातें, ऐसी ही कुछ पंक्तियां, ऐसी ही कुछ लाइंस आज आपको मिलेंगी कार्यक्रम मधुबन अनप्लग्ड में. और इसको और खूबसूरत बनाने के लिए आज हमारे समक्ष है एक ऐसी अतिथि, एक ऐसी हस्ती जिन्होंने लेखन जगत में अपना नाम ही नहीं कमाया बल्कि ऐसा कंट्रीब्यूशन दिया जो प्रेरणा का स्रोत है. जी हाँ, हमारे समक्ष हैं डॉक्टर अलका अग्रवाल सिकतिया जी, जिन्होंने बीएससी की, फिर अंग्रेजी में भी उन्होंने पढ़ाई करी, हिंदी साहित्य में गोल्ड मेडलिस्ट रही, पीएचडी की उपाधि भी उन्होंने प्राप्त की. उनका शोध रहा हरिशंकर परसाई पर, लघु शोध और प्रबंधन शोध उन्होंने किया. कई प्रकाशन उनके नाम है, वैसे तो हम कुछ के नाम आपको जरूर लेकर सुनाते हैं. मुर्दे इतिहास नहीं लिखते, अदृश्य, मेरी तेरी, सबकी, मीरा कूल, व्यंग संग्रह है ये. कई पत्र पत्रिकाएं भी उनकी प्रकाशित हुई और इसके साथ साथ उन्होंने लेखन क्षेत्र में बहुत कंट्रीब्यूशन दिया है. उनको कई पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया है, चाहे वो गोदरेज कंज्यूमर फिल्म फेस्टिवल सम्मान हो, दुष्यंत सम्मान हो, रचनाकार आयोग द्वारा बिस्मिल्ला खां पुरस्कार हो, ऐसे कई अवार्ड भी उन्हें प्राप्त है. वैसे तो उनके करियर की लंबी व्याख्या है, लेकिन चलिए पहले उनका स्वागत करते हैं और उनके बारे में और जाने का आज अवसर हमें मिलेगा. आपका बहुत बहुत हृदय से स्वागत है अलका जी.
1: जी बहुत बहुत आभार, और ये मेरे लिए हार्दिक प्रसन्नता का विषय है कि आज ब्रह्मा कुमारी के रेडियो मधुबन में मुझे ये अवसर मिला है. और बचपन से हम सुनते आए हैं, और मैं 90s में एक बार यहाँ पर आई भी थी.
0: अच्छा.
1: और उस समय बहुत से, हम जो मनुष्य होते हैं, जिज्ञासा तो हमारे भीतर होती है.
0: बिल्कुल.
1: तो बहुत से जिज्ञासाएं थी, तो मैं लगातार प्रश्न पूछती जा रही थी, क्योंकि उस समय छोटी भी थी थोड़ी सी. तो वो जो दीदी थे, तो उन्होंने कहा कि बहुत अच्छी बात है कि आपके भीतर इतनी जिज्ञासा है, आप कहाँ रहती. मैंने बताया मुंबई, बॉम्बे, तब तो बॉम्बे था
0: जी.
1: तो उन्होंने कहा कि हमारे सेंटर पर जाइएगा. और कुछ ऐसा होता है ना कि हम छोटी छोटी सी बातों को लेकर कई बार परेशान भी हो जाते हैं, तो वो कुछ कोइंसिडेंस ऐसा हुआ कि जिज्ञासा और परेशानी दोनों थी, और मुझे पता नहीं क्यों मैं, मेरे कदम उठ गए आपके जो मलाड में सेंटर है वहाँ उठ गए.
0: ओके.
1: और वहाँ पर फिर मुझे बहुत से प्रश्नों का उत्तर भी मिला और मेरे मन की परेशानियों का समाधान भी हुआ था. तो मैं लगातार कई बार गई, लेकिन फिर बहुत सी बातें होती कि अगर आपने परिवार चुना है तो कुछ प्रायोरिटीज हो जाती हैं कि वी कांट गो अगेंस्ट दैट. तो ठीक है, मतलब फिर मैं गई नहीं, लेकिन हाँ, मैं जो आपके सिस्टर बी के शिवानी जी हैं, उनको तो सुनना किसको अच्छा नहीं लगता
0: जी, जी.
1: तो बहुत बार जब हम कहीं अटकते हैं ना, तो हम जब उन सुनने लगते हैं तो हमको बहुत से प्रश्नों का समाधान मिल जाता है
0: जी.
1: और अभी शिव बाबा ने, पता नहीं उनकी क्या मंशा है, मुझे नहीं मालूम है, फिर से उन्होंने बुलाया. और यहाँ पर भी जो आपका आर्ट एंड कल्चर का, आप ये जो 3 दिन का पूरा कॉन्फ्रेंस होता है, राष्ट्रीय सम्मेलन, तो उसमें क्योंकि विषय इतना अच्छा था, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर आपको समाज को बचाना है, देश को बचाना है और विश्व को बचाना है, तो परिवार को बचाना सबसे अधिक आवश्यक है.
0: बिल्कुल.
1: तो जो विषय था, और मेरा विषय था संस्कृति, संस्कार और परिवार के मूल्यों के संवर्धन की कला, तो ये बहुत आवश्यक है कि जैसे मुझे ये लगता है कि हम अपनी संस्कृति से दूर जा रहे हैं और जो दूसरे देश के लोग हैं वो हमारी संस्कृति की ओर आ रहे हैं. तो खैर, ये तो मैंने बताया कि स्पीकर यहाँ आई थी, लेकिन आज आप सबसे रूबरू होने का मौका मिल रहा है और मेरी आवाज आप तक पहुँच रही है, तो उसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ.
0: वैसे तो बहुत सारे प्रश्न है मेरे मन में, लेकिन मैंने आपकी बहुत सुंदर प्रोफाइल जो पढ़ी, उसमें आप ये भी लिखा था कि आप फाउंडर हैं क्रिएटिव राइटिंग की.
1: सॉरी,
0: आप फाउंडर हैं क्रिएटिव राइटिंग.
1: जी जी, हाँ.
0: जी, तो अगर उसके बारे में कुछ बताएं.
1: जी जरूर. क्रिएटिव राइटिंग, देखिए क्या होता है, जो लेखक होता है ना, नजर और नजरिए का फर्क होता है. अब सामने ये पेड़ दिख रहा है मुझे, है ना, मैं भी देख रही हूँ, कोई और भी देख रहा है, किसी को सिर्फ लगेगा कि उसमें पत्तियां हैं, लेकिन एक जो लेखक होता है उसमें अलग दृष्टिकोण से देखता है. एक अलग पर्सपेक्टिव से देखता है. तो बहुत से लोग कोविड में खास तौर पर बहुत, क्योंकि कोविड में लोग अपने आप को एक्सप्लोर कर रहे थे, अंतर यात्रा कर रहे थे, और कई लोग जब बहुत परेशान थे तो कई लोगों ने हमसे संपर्क किया
2: जी.
1: मेरे साथ में दिनेश शाकुल जी हैं, जो चंद्रगुप्त बनते थे चाणक्य सीरियल में, और काफी बहुत अच्छे एक्टर हैं और बहुत नॉलेजेबल हैं
2: जी.
1: तो कई लोगों ने हमसे कहा कि लिखा कैसे जाता है, हम लिख तो रहे हैं. तो फिर हमने क्रिएटिव राइटिंग का जो है वो शुरुआत करी.
2: ओके.
1: और उसमें हमने कहा कि जो कविता क्या होती है, कविता में अलग अलग भाव होते हैं, नाद होता है, और उसमें किस तरह से आप उसको लिखते हैं. तो फिर हमने ये काफी सारी पूरा सिलेबस बनाया था. पांच मॉड्यूल्स थे, उसके पांच मॉड्यूल्स में हमने वो सिलेबस बनाया था.
2: अच्छा.
1: और उसमें हम उनको वो पूरी क्लासेस लेते थे और उसके बाद उनको हम होमवर्क देते थे. तो कई लोगों ने उसमें बहुत अच्छी कविताएं लिखना सीखा. और क्योंकि मैं महिला काव्य मंच है, अंतर्राष्ट्रीय है, जिसके फाउंडर है नरेश नाथ जी, तो उन्होंने मुझे महाराष्ट्र मकाम का अध्यक्ष बनाया. तो उसमें बहुत सी महिलाएं जुड़ी. और उसमें आरुषि जी क्या है कि मन से मंच तक.
2: अच्छा.
1: है ना
2: जी.
1: तो ये जो आपने कहा क्रिएटिव राइटिंग और मन से मंच तक, तो मन में बहुत से लोगों के भाव होते हैं ना. आप अनुभूति को जब अभिव्यक्ति में ढाल देते हैं, उसको उतार देते हैं कागज के कैनवास पर, तो वो कविता, कहानी, गजल कुछ भी बन जाती है
2: जी.
1: तो इसी तरीके से जब बहुत सी महिलाएं आई जिनको लिखना नहीं आता था और वो केवल कुछ भी या तो किसी की पढ़ देती थी, फिर हमने उनको थोड़ा सा और गाइड किया. तो इस तरह से एक जो क्रिएशन, क्योंकि देखिए कलाकार तो क्रिएशन करता है.
2: बिल्कुल.
1: और यहाँ पर एक चीज मैंने बड़ी अच्छी सुनी कि कलाकार यानी जो कल को आकार देता है.
2: क्या बात है.
1: तो मुझे बहुत अच्छा लगा. तो हम ये नहीं कहते कि हम सचमुच पूरा कल को आकार दे सकते हैं, एक चेतना जरूर पैदा कर सकते हैं. तो एक क्रिएटिव राइटिंग के क्रिएशन कैसे था, राइटिंग तो है लेकिन क्रिएशन क्रिएटिव कैसी हो, रचनात्मकता कैसे आए उसमें, तो ये जो है हमने पूरा मॉड्यूल बनाए हैं और उसको लेकर के हमने पूरी कविता के ऊपर क्रिएटिव राइटिंग की. इसी तरह से कहानी पर भी हम मॉड्यूल बना रहे थे लेकिन किसी अच्छा. कारण से छूट गया. क्योंकि मैं कहती हूँ कहानी एक घटना से नहीं होती. जैसे जब हम छोटे थे, मैं बहुत छोटी उम्र से लिख रही, पहले तो मैं बता दूं 6-7 साल के लिए जब से मैंने कुछ लिखना शुरू कर दिया था. उसके रीजंस भी हैं, अगर आप पूछेंगे तो मैं बता दूंगी.
2: बिल्कुल. खैर जानना चाहेंगे.
1: तो क्या होता है ना कि जैसे मैंने एक घटना कहीं देखी, दूसरी घटना कहीं देखी, तीसरी घटना कहीं देखी, तो हम जब सबको सिंक्रोनाइज करते हैं, क्योंकि जो रचनात्मकता होती है, रचनात्मक लेखन, क्रिएटिव राइटिंग होती है, वो रिपोर्टिंग नहीं होती है. उसमें आप यथार्थ के साथ में कल्पना का भी उसमें सम्मिश्रण रहता है.
2: बिल्कुल.
1: तो ये जो होता है, ये तो क्रिएटिव राइटिंग इज अ वेरी वास्ट फील्ड और उसमें ये वाली बात है. और एक बात बहुत आवश्यक है कि क्रिएटिव राइटिंग कोई मशीनी तो वो होती नहीं. उसमें आपको भावनाओं में जब तक पगी नहीं हो ना, तो उसमें वो बात नहीं आ पाती है. तो मुझे लगता है कि हर जो रचनाकार है उसके अंदर भावनाएं तो होनी चाहिए और वो अपने दुख के साथ दूसरे के दुख को भी उसी तरह से अनुभव कर सके,
2: संवेदनशील
1: कर सके. बिल्कुल. तो क्योंकि दुनिया तो बहुत बड़ी है और जिंदगी हमारे आसपास बिखरी पड़ी है, तो उस जिंदगी को जब आप रचनात्मकता में ढालते हैं वो क्रिएटिव राइटिंग.
2: क्या बात है. कितनी सुंदर डेफिनेशन दी है आपने.
1: थैंक यू.
2: आपने फिल्मों के लिए लिखा है, आप रेडियो की बात करें या फिर कविताओं की बात करें, आर्टिकल्स की बात करें, कहानी, मतलब बहुत बहुत कुछ लिखा है आपने. आपके कई पुस्तकें भी प्रकाशित हुई हैं. कुछ एक किसी प्रकाशन के बारे में आप जरूर बताएं. जैसे मान लीजिए, ये मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग टाइटल लगा, मुर्दे इतिहास नहीं लिखते, तो इसके पीछे का क्या कहानी है, ये कैसे लिखा या क्या, उसके बारे में कुछ
1: मैं बताती हूँ. एक तो आपने रेडियो की बात की, उस पर फिर मैं मुर्दे पे आऊंगी. तो रेडियो लेखन के लिए मैं आपको बताऊं कि क्योंकि जैसे मैं बॉम्बे से हूँ, तो एक बार किसी ने कहा कि बम्बई के में संयुक्त परिवारों पर आप कुछ एक लिखो.
2: अच्छा.
1: तो मुझे किसी ने चैलेंज किया कि आपको बॉम्बे में संयुक्त परिवार मिलने वाले ही नहीं है. लेकिन बोलते हैं ना, जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ, और मुझे तो करना था. आप मानेंगे नहीं आरुषि, जब मैं जब ढूंढने लग गई, 13 परिवार की जगह मुझे इतने परिवार मिलते चले गए. और वो मैं आज भी गूज़बम्प्स आते हैं मुझे जब मैं वो अनुभव शेयर करती हूँ. तो जिनके भी परिवार में गई, तो क्या होता है ना कि जैसे एक जगह अगर जब इकट्ठा होता जाता है पानी तो सड़ने लगता है. इसी तरह से ना परिवारों में भी कई कई बार कुछ भावनाओं में एक दूसरे से क्लैशेस होने लगते हैं. तो लेकिन जब मैं उनसे मिली, और एक परिवार अंधेरी का मैं आपको बताती हूँ, दुबे परिवार था, तो वहाँ बड़े भाई भाभी ने ही उनके पूरे मतलब छोटे भाई बहनों को बड़ा किया था और बहुत अच्छे से सारा कुछ उनका किया था. तो जब हमने ये किया तो वो लोग लिटरली रोने लग गए और मुझे गले लगा लिया और उनने कहा कि जैसे एक विरेचन होता है ना, जिसको कैथारसिस कहते हैं, एरिस्टोटल ने जो दिया था, कि उन्होंने कहा हमारे अंदर की सारी जो गलत भावनाएं आने लगी थी वो सब खत्म हो गई। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि इस तरीके से एक हमने जो काम किया, तो रेडियो लेखन में एक ये अनुभव मेरा बहुत अच्छा रहा। और ये रापा सीरियल अवार्ड होता है, रापा यानी जो टेलीविजन और दूरदर्शन में जो बेस्ट होता है, तो उसको बेस्ट रापा सीरियल अवार्ड भी मिला था।
2: क्या बात है
1: जी,
2: क्या बात।
1: अब आपने मुझसे मुर्दे इतिहास नहीं लिखते, तो आपको जैसे शीर्षक बहुत अच्छा लगा, तो दरअसल ये एक मेरे एक दोस्त हैं, तो वो पहले फिल्मों में एक्टिंग करते थे, अब वो बिहार में कहीं रहते हैं। तो क्या हुआ था कि मेरी कहानी पढ़ के उन्होंने मुझसे कॉन्टेक्ट किया कि मुझे बहुत अपनी अपनी सी वो कहानी लगी, बहुत मैं कनेक्ट हुआ हूँ उससे, तो फिर उनसे बातचीत होने लग गई। तो जो क्योंकि बॉम्बे में तो बॉलीवुड और बॉम्बे की लाइफ, तो बॉम्बे या तो मतलब ऐसे कहते गरीब से गरीब को भी भूखा नहीं सुलाता, अमीर से अमीर को भी। तो बॉम्बे एक ऐसी मिस्ट्री है कि जिसको हर कोई हल करना भी चाहता है, जिसमें जाकर फंस भी जाता है। तो ये हुआ कि वो रवि नाम है उनका, तो उनसे मेरी फिर अच्छी बातचीत होने लग गई। और वो फिल्मों में सीरियल्स में सब स्ट्रगल कर रहे थे, फिल्मों में स्ट्रगल बहुत ज्यादा है, बन गए तो बन गए, नहीं तो बहुत खत्म भी हो जाते। खैर तो वो जो बताते थे, फिर उनकी कविता थी मुर्दे इतिहास नहीं लिखते, और तो इस तरीके से तो वो फिर बाद में उनसे ही, क्योंकि उनकी लाइफ थी, तो वो स्ट्रगल करते हुए दो दोस्तों की कहानी है। फिर अंत में ये होता है कि जो दो दोस्त हैं, मतलब एक दोस्त दूसरे दोस्त को संभालता है, फिर दूसरा दोस्त जब परेशान होता है तो ये संभालता है, लेकिन कुछ सिचुएशंस ऐसी होती है कि वो कुछ ऐसा समझौता करने के लिए तैयार हो जाता है और रूम से चला जाता है। उस समय पेजर हुआ करते थे, जब मैंने ये कहानी लिखी थी, तो पेजर पर ये कबीर जो है पहला वाला दोस्त, वो आदित्य को मैसेज करता है कि मुर्दे इतिहास नहीं लिखते, इतिहास वो लिखते हैं जो धारा के विरुद्ध चलकर अपना रास्ता खुद बनाते हैं। तो अब मैं ये शीर्षक कैसे है, देखिए कई लोग कहते हैं मुर्दे, मतलब तुम्हारे शीर्षक मुझे समझ नहीं आए, जो समझ सकता है जैसे आपको अच्छा लगा। अब आप मुझे बताइए कि जो जीते जी मर जाएगा वो तो मुर्दा हो गया ना, और जीते जी जिसके अंदर जिजीविषा है, एक संघर्ष की कामना है, तो वो कभी मुर्दा नहीं हो सकता।
2: बिल्कुल,
1: इतिहास उनका ही लिखा जा सकता है,
2: और हार नहीं मानता
1: है ना, उसका इतिहास तो कभी नहीं लिखा जाएगा। तो ये बात है, और यही मैं अपने जिंदगी में भी कहती हूँ कि हार कभी मत मानो, है ना, जैसे वो है ना कि हार के आगे जीत है, तो यही वाली बात है कि अपने आप को हारने नहीं दो। और खास करके यहाँ आने के बाद इस डिवाइन में, कि मतलब जब हम अपने आप से संवाद करते हैं, परमात्मा से खुद को जोड़ते हैं और अपने असत्य को पहचानते हैं, तो हमको लगता है कि नहीं हार तो कहीं है ही नहीं। तो कुछ इसी तरीके से कि इतिहास आप लिख सकते हैं, आप अपने जीवन में अपने आप को एक हमेशा कर्मठ बना के रखिए।
2: जी बिल्कुल, ये जब कभी कभी बहुत बड़ी मुश्किलें आती हैं तो उसको जीवित रखना बहुत जरूरी होता है, जो हमारे अंदर की आग है, जो हमारे अंदर की भावनाएं हैं। मैं एक और प्रश्न आपसे जरूर पूछना चाहूंगी यहाँ पे, क्योंकि आप कई अपने उपन्यास भी लिखे, कई कहानी संग्रह हैं, तो कहानियां लिखने के लिए अगर मान लीजिए कोई इंटरेस्टेड है, कोई युवा है जो इस क्षेत्र में जाना चाहते हैं, तो अगर आप कुछ टिप्स दें, कुछ ऐसी बातें जो मदद करें, जैसा आपने कहा ना अनुभूति को अभिव्यक्ति मिलाने के लिए, आपकी ओर से कुछ ऐसे,
1: मतलब आपका प्रश्न है कि कौन सी बातें कहानी लिखने में मदद करें।
2: जी जी जी,
1: हमारा जो मैका है वो कटनी एमपी में है, और वहाँ एक फार्म हाउस है हमारा। तो मेरे पापा जो थे उन्होंने पूरी अपना सारा एकदम रात से लाइफ छोड़ के, उनको फार्मिंग बहुत पसंद आई, तो वो हम मतलब 400 एकड़ जमीन थी, बंगला था, तो हम लोग वहाँ रहते थे। तो वहाँ जो गांव की लड़कियां आया करती थी उनसे हमारी दोस्ती हो जाती थी, और वो लड़कियों को देख करके ना मेरे जहन मतलब वो अंकित होती चली गई। उस समय तो मैं बहुत छोटी थी, लेकिन फिर धीरे धीरे क्योंकि मैंने छोटी उम्र में कहानी भी लिखनी शुरू कर दी थी, तो वो कहीं ना कहीं मतलब जैसे एक शिवरात्रि नाम की लड़की थी, हाँ उसका नाम ही शिवरात्रि था, और आज भी मुझे वो वैसे की वैसे याद है, एकदम लंबी छरहरी सांवले रंग की, बड़ी बड़ी आंखें, तो वो कहीं ना कहीं मेरे जहन में अंकित हो गई, है ना। इसी तरह से हमारे यहाँ पर एक गाल बाबा थे, तो उनकी बेटी का नाम था अमसा था, अमसा। अब आप बोलेंगे अमसा कोई नाम होता है ना, है ना। अब वो उसका रीजन क्या था कि मेरी दीदी ने उनकी बेटी का नाम रखा था अंशा।
2: अच्छा।
1: अब अंशा तो वो नहीं बोल सकते थे तो अमसा बोलते थे, तो एक करेक्टर मेरी अमसा बनी, एक करेक्टर मेरी शिवरतिया बनी, और फिर उनकी कहानी दूसरों कहीं से आए, जैसे जैसे मैंने

0: घटना वो, तो ये जैसे कि जो मतलब मेरी कहानी में अमसा जो है वो गांव से शहर आती है, फिर वो इस तरह से उसकी और वो अमसा से मिलती है ये जो राइटर है, और वो चूने भट्टे के वहां जाती है, तो वो बोलती है कि दीदी हम ना कक्का भाई, क्योंकि मैं वहां की तो मुझे भाषा भी आती, दीदी हम कब ना चूने के भट्टे में काम करीबे। तो वो फिर बोलती है, लेकिन जब दूसरी बार जाती तो देखती कि वो अमसा खांस रही है बुरी तरीके से, तो वो बोलती है कि तुमको क्या हो गया, तब वो कहती कि दीदी हम कहे थे ना कि हम अम्मा वाला काम कभी ना करेंगे, लेकिन हमारे घर में खाने को नहीं बचा, दद्दा भूखे मर रहे हैं, दीदी भूखी मर रही, तो क्या करें, काम तो करवे को पड़ा था। तो वो सारी जो चीजें थी, तो वो मतलब वो मैंने वो भाषा वहां की, क्योंकि बचपन में उनके बीच में जाते थे, तो ये ना जो लेखक होता है ना वो बहुत ज्यादा ग्रहणशील होता है और उसका ऑब्जर्वेशन बहुत शार्प होता है और संवेदनाएं कहीं, और उस पर जो संवेदनाएं होती है ना, तो कहते हैं ना जैसे कि हीरे पॉलिश कर दिया है, तराशती हैं संवेदनाएं, इस तरह से कहानियां हमारी बनती हैं। जैसे आपसे ही मैं बात कर रही हूँ, अब आपकी स्माइल पर ही मैं कुछ कविता लिख दूंगी तो ये तो देखिए क्या होता है कि नजर की बात है,
1: नजर नजरिया जो आपने कहा,
0: बिल्कुल हाँ।
1: जैसा आपने कहा था कि आपने बहुत कम उम्र में ही लिखना शुरू कर दिया था, तो क्या ऐसी कहानियां थी जिन्होंने आपको इंस्पायर किया, या फिर क्या कोई ऐसा क्षण था जिसने आपको इंस्पायर किया, या कहां से लिखने की शुरुआत, कितनी कम उम्र में कैसे हो?
0: क्या हुआ था आरुषि जी कि बचपन में मतलब मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ था, अक्सर मैं साक्षात्कार में ये बात तो आती कि लोग पूछते हैं कि लिखना कैसे शुरू किया, क्या किसी ने, जैसे आपने पूछा क्या किसी ने इंस्पायर किया या कोई ऐसा क्षण आया, तो मेरे जीवन में एक बहुत बड़ी घटना घट गई थी। तो मतलब हम लोग पांच बहन थे और मैंने अपना बहुत, दीदी लोगों ने मेरा नाम जल्दी लिखा दिया था, तो मैं मम्मी पापा फार्म हाउस में रहते थे, तो मैं दीदी लोग के साथ यहाँ रहती थी और मैं बहुत छोटी सी थी, तो मेरी दीदी जो थी सबसे बड़ी वो खुद 18 साल की थी जब उनकी शादी हुई थी, और वो मेरे लिए माँ समान थी कि मम्मी फार्म हाउस पे रहते थे मम्मी पापा। तो उसके बाद मतलब उन्होंने मुझे डांस वगैरह, हम लोग का पिक्चर हॉल हुआ करता था तो डांस वगैरह करती थी, तो उनने कहा कि इसको डांस सिखाया जाएगा, तब तो लिखने जैसा कुछ सोचा भी नहीं था, मैंने नहीं सोचा ही नहीं था, मतलब 5-6 साल की बच्ची क्या सोचेगी ना उस वक्त। तो मैं क्या करती थी, पिक्चर हॉल से आती थी, फिर वो लैच लगा के फिर गा के अंदर, तो बोले करती क्या अंदर ये, तो दीदी लोग ने देखा तो इसको डांस सिखाया जाएगा, और वो वही गा के सिखाते थे मुझे, क्योंकि क्लासेस नहीं थी, कथक बेस है लेकिन मेरे डांस का। तो खैर फिर वो दीदी की शादी बहुत जल्दी हो गई, 19वें साल के पहले ही, मतलब कहते हैं डाउरी डेथ थी उनकी, तो वो मेरे लिए बहुत शॉकिंग था, मतलब आज भी कई बार आंसू आ जाते हैं उनकी बात करते हुए मेरे आंखों में। तो उनसे जो छोटी दीदी थी उन्होंने कहा कि तुम्हारे मन में जो आता है ना याद करके लिखा करो, और डांस, शशि दीदी नाम था शशि, तो उनने कहा कि शशि को मतलब उनका मन था कि तुम डांस करो, तो मेरी जो प्रभा दीदी वगैरह थी उन्होंने मुझे लगा था डांस, तो मतलब मैंने कई सारे डांस में भी अवार्ड, सर्वश्रेष्ठ बाल कलाकार बहुत सारे जीते हुए हैं, सरस्वती माँ की कृपा है जो उन्होंने मुझे कला दे करके भेजा, और मैं कहती हूँ लिखना मेरे लिए सांस लेने जैसा, अब बोलती हूँ क्योंकि तब तो मालूम नहीं था मुझे। तो मैं जो भी मन में कुछ भी आता था पेंसिल से लिखती जाती थी उसको, फिर धीरे धीरे 3 ईयर्स की जब हुई तब तक मैं कहानियां लिखने लगी थी जी। तो उस टाइम्स ऑफ इंडिया का एक पब्लिकेशन था सारिका, धर्मयुग अगर आपने सुना होगा, सारिका, ये दोनों टाइम्स ऑफ इंडिया पब्लिकेशन हुआ करते थे, तो सारिका में मेरी पहली कहानी छपी नवांकुर विशेषांक में। उसके बाद तमाम जगहों से पत्र आने लग गए और बात और मंगाई जाने लग गई कहानियां, और मतलब उस समय मुझे अब बहुत सेलिब्रिटी बन गई, इतने सारे लेटर्स के बीच में छोटी सी अलका बैठी हुई पत्र पढ़ रही है सारे। खैर फिर वो एक सिलसिला शुरू हो गया आकाशवाणी जबलपुर और फिर तमाम जगह, फिर बॉम्बे भी गई, तो मेरे साथ में अच्छा ये हुआ क्योंकि मेरे पति वैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं लेकिन वो मेरे लेखन को बहुत पसंद करते रहे हमेशा से, तो उन्होंने कहा कि तुम लिखना बंद मत करो, और मुझे कुछ वहां पर जनसत्ता में सब रंग उनका आता था, तो शादी के बाद भी मेरा लेखन कभी ना रुका नहीं। तो यही वाली बात है कि आप दुख से या तो अपने आप को बना लीजिए या दुख में अपने आप को खत्म कर दीजिए, तो दुख ने मुझे बनाया है जी, इस तरह में लिखने लग गई, शब्दों में ढाल दिया अपने दुख को मैंने।
1: ये जो सेंटेंस है जी, दुख से या तो अपने आप को बना लीजिए या खत्म कर दीजिए, यही से वो जो आपका जो पहला टाइटल है शायद वो सिद्ध हो जाता है कि मुर्दे इतिहास नहीं लिखते, इतिहास वो लिखते हैं जैसे आप जैसे लोग जो जिन्होंने दुख से अपने आप को बना लिया, मुझे लगता है लाखों लोगों को दुख से निकालने के निमित्त बन गए
0: जी।
1: क्या इसके लिए फिर आपको ऐसा कुछ लगा कि हाँ मुझे और ट्रेनिंग करनी है या और कहानियों को समझना है? किसको, मतलब आप पढ़ते किनको थे या कौन आपको बहुत पसंद, किसका लेखन आपको

0: पसंद था।
1: जैसे चित्रा मुद्गल जी का बहुत अच्छा लगता है मुझे। मधु काकड़िया इस समय जो है हमारे समय की, मतलब हम हमारे से बड़ी पीढ़ी की हैं, लेकिन मधु काकड़िया जी बहुत अच्छा लिखती हैं। उसके अलावा जैसे कि हरिशंकर परसाई जी को तो मैं खैर एक तरह से उनके लेखन को जीती हूँ। ज्ञान रंजन जी भी मुझे बेटी जैसे ही मानते थे और मेरा एक सौभाग्य रहा है कि मुझे इन सब से मिलने का मौका मिला है। मुक्ति बोध को मैंने पढ़ा है, अज्ञेय को मैंने पढ़ा है, तो कई बार जैसे बाबा नागार्जुन की कुछ कविताएं बहुत अच्छी लगती हैं। इसी तरह से अमरकांत मुझे बहुत पसंद थे, उनकी जिंदगी और जो क्या बहुत सारी। तो मतलब मैं ये नहीं बोल सकती कि मुझे एक कोई साहित्यकार पसंद है। कभी किसी की कुछ चीज अच्छी लगती है, कभी किसी की कोई चीज बहुत अच्छी लगती है। तो और आपको ना वो रास्ता जैसे बशीर बद्रे उनकी आप शायरी सुनेंगे कि आप सुने कि हम बचपन में थे ना तो वो रखते थे उजाले अपनी यादों के, हमारी साथ रहने दो न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। और बहुत सारे हैं कि मतलब उनकी मतलब बार बार हम उनके बहुत सारे शेर हमें याद आते हैं। तो जो भी अच्छा मिलता है, और कई बार ये भी होता है आरुषि जी की बहुत नाम नहीं होता है किसी का, लेकिन अचानक आप उठा के पढ़ते हैं तो अरे इतने ये लिख दिया, ये मैंने क्यों नहीं लिखा, तो ये होता है। और जैसे कि कई बार ये होता है कि जैसे ना जैसे अगर आप बोलेंगे तो मैं अपनी एक आध आपको रचना भी सुना दूंगी।
2: जी मैं एक्चुअली वो पूछने ही वाली थी कि कुछ पंक्तियां अगर आप सुनाएं अपने लेखन की हमें भी तो हमें बहुत अच्छा लगेगा।
1: तो पहले से मैं बताती हूँ कि ना बता जैसे मतलब हमेशा मुझे मेरे हस्बैंड कहते हैं, और मैं ना मतलब मुझे लगता है कि आपका भी मुझे लग रहा है आपके अंदर का भी बच्चा हमेशा जिंदा रखती है आप। तो अपने भीतर के बच्चे को हमेशा जिंदा रखना चाहिए। तो मेरे पति हमेशा कहते हैं मम्मी पापा ने तुमको बड़ा करके नहीं भेजा। तो मैं कहती थी कि कहते हैं वो कि हम बड़े नहीं हुए, कहते हैं वो कि हम बड़े नहीं हुए, बड़े होना मतलब झूठ बोलो शान से मक्कार हो जाओ। क्या करें इस परिभाषा पे हम खरे नहीं हुए, तो कहते हैं वो कि हम बड़े नहीं हुए।
2: वाह वाह वाह।
1: तो क्या हुआ कि मेरी बेटी अब तो बड़ी हो गई, तो जब वो 5 साल की थी ना तो एक बार मेरे साथ जा रही थी। अच्छा वो वैसे मम्मा बोलती है, लेकिन जब वो बहुत उसमें प्यार में होती है तो माँ बोलती है मुझे। और मुझे बहुत मतलब तो मैं लगती हूँ कि ना, और सचमुच मुझे लगता है कि जो रिश्ते आपको जो खुशी देते हैं ना वो कहीं नहीं मिलती है। और मैं आपको 2 कविताएं इसलिए सुनाऊंगी कि आपने अगर परिवार चुना है तो पहले मैं वो सुनाती हूँ, फिर मैं अपनी बेटी पे।
2: प्लीज प्लीज जरूर जरूर
1: जी। तो क्या सपने बन गए बोनसाई, कहते हैं कुछ लोग कि स्त्री जब बनती है माँ करती जाती है अपने सपनों को छोटा छोटा बहुत छोटा, मारती जाती है अपने सपनों को खुद बेमौत, या हो जाते हैं उसके सपने बौने, बन जाते हैं क्या बोनसाई, बन जाते हैं बोनसाई। सोच का बवंडर उठा अभी तर उसके, क्या ये सच उसका भी है, क्या ये सच उसका भी है, हो जाने दिया है उसने अपने सपनों को बौना, बना दिया हरे भरे वृक्ष से बोनसाई। विचार मंथन चल पड़ा अंतस में, अगर ऐसा होता तो मिट चुका होता कब का वजूद उसका, उसने टटोला खुद के वजूद को महसूस किया, अरे वो तो वहाँ है, मतलब उसका वजूद तो वहाँ है, बड़ा अजीब है व्यक्तित्व उसका, एक कोस्त्री विमर्श की बातें तमाम, पर झेलती है यातनाएं भी तो क्या छद्म है उसकी बौद्धिकता, लेखन में विरोध के स्वर है मात्र दिखावा, तर्कों की मथानी से फिर मंथन वो करती है, तब सांसारिक सच की सोच नवनीत से उतरती है, पत्नीत्व और मातृत्व का चुनाव उसका ही तो है, तो फिर शायद जायज है समझौते भी, यातना सहते हुए भी खुद को खुश रख पाती है, अपने वजूद से पहचानी जाती है, यानी नहीं होने दिया उसने अपने सपनों को बौना, जिजीविषा के पानी महत्वाकांक्षा की खाद और आत्मसम्मान की धूप से बचाया है उसने अपने सपनों को बोनसाई बनने से। तो अब मेरी बेटी मेरे साथ जा रही थी, एक बार 5 साल की थी तब, वो तो ऐसे आंख बंद करके एकदम बैठी थी, मैं उसको देख रही थी, अचानक उसने मुझे जो बोला तब ये कविता निकली। क्या बोला था इसमें आएगा, सुबह की सुहानी बयार सी है वो, अल सुबह की सी शीतल ओस सी है वो, उसे देखकर लगता है ऐसे भर ली हो भोर की भीनी खुशबू भीतर जैसे, उसका मीठा बोसा लगता है यूं सहला गया ठंडी हवा का झोंका जूं, चूमती जब मासूमियत से आंखों को मेरी, कितना नाजुक पिघलता सा है वो एहसास, उस रोज सुबह सुबह संग मेरे वो निकली, नन्ही परी ने आंखें बंद कर ली अपनी, खो गई एक प्यारी सी दुनिया में, एंजल सी चमकती चेहरे पे उसके, अपनी छोटी छोटी बाहों का घेरा मेरे गले में डाल, आंखों में सितारे भर कर कहा उसने, माँ माँ माँ मुझे सुबह बहुत अच्छी लगती है। अनहद ना सब बज उठा अंतस में मेरे, मंदिर में बज गई हूँ घंटियाँ जैसे। कैसे महसूस कर पाती है मेरी नन्ही सी कली सुबह की पावन खूबसूरती, कितनी मधुर है ये अनुभूति। बड़े प्यार से फिर वो मुझसे सटी, सीप सी पलकें बंद कर अपनी, झर झर झर झर झर झरते झरने सी आवाज में कहा उसने, सुबह कितनी अच्छी लगती है ना माँ, है ना माँ, सुबह कितनी अच्छी लगती है ना। खिल उठी भीतर मेरे खुशियों की बीतियाँ, कितनी प्यारी होती हैं बेटियाँ, आगोश में अपने भर कर पेशानी उसकी चूम कर कहा मैंने, बेटी मेरी मुझे तो तू खुद सुबह सी लगती है, तू खुद सुबह सी लगती है।
2: क्या बात, क्या बात है, क्या बात है। मतलब सच में ये जो आपने पंक्तियां कही हैं, हर माँ सुनेगी तो अपनी बेटी को, अगर वो उनसे थोड़ा सा भी दूर है तो मुझे लगता है वो उनके करीबी पल, वो उनकी आंखों के सामने वैसे तो रहते ही हैं, लेकिन वो आंखों में आंसू बन के बह जाएंगे। इतने खूबसूरत हैं ये पंक्तियां। आपकी बेटी क्या कहती है जब वो आपकी कविता सुनती है?
1: मेरी बेटी अभी, मतलब बेटा भी है मेरा, अभी जॉब कर रहा है, और बेटी अभी लॉ कर रही है और फोर्थ ईयर में है। और अभी मैं आपको बताऊं कि पता नहीं, मतलब कई बार हमको लगता है कि शायद पता नहीं वो उतना प्यार करती है, लेकिन अभी इधर में भोपाल में किसी कार्यक्रम से गई थी, यहाँ पर हूँ मैं 26 तारीख से, तो वो मुझे बहुत मिस कर रही है, तो रोज फोन करती है, तो मुझे लग रहा है कि काश मैं जल्दी चली जाती। खैर, तो वो ना लॉ कर रही है। अच्छा, एक बात अच्छी कि वो इंग्लिश में बहुत अच्छा लिखती है, मुझसे बेहतर लिखती है, और वो बहुत कम शब्दों में बहुत अच्छी बात कर लेती है। तो मैं कहती हूँ कि उसका नाम, वैसे हम लोग घर में मिष्टी बोलते हैं, वैसे उसका नाम शरण्या है।
2: अच्छा,
1: तो कई बार ना वो जब छोटी भी थी ना, तो जैसे मैं उसको लोरी सुनाया करती थी, तो वो मुझे अपनी गोद में सुला करके वैसे लोरी गाती थी। तो मैं कहती थी कि बेटी माँ बन जाती है, तो मतलब ये होता है। तो अभी भी ना कई बार मम्मा ऐसे नहीं करना, मम्मा वैसे करना है, तो मैं कई बार, मुझे लगता है, और मैं अभी उसको बोलने देती हूँ, क्योंकि मुझे भी लगता है कि हाँ वो मेरी माँ बन करके मुझे उस तरीके से वो कर रही है। तो बड़ी प्यारी सी, नाजुक सी है, और अच्छा लिखती है, और लॉ कर रही है। और उसका शुरू से ना बहुत ये मन था कि मैं इसमें रहूं, मतलब जो जासूसी जो सीरियल होते थे, हाँ, इस तरह के जो होते थे, वो देखा करती थी, तो उसको उसमें मतलब बहुत इंटरेस्ट आता था, तो उस तरीके से वो अब वो लॉ कर रही है।
2: क्या बात है। अच्छा, इसीलिए उन्होंने वो प्रोफेशन बनाया उसको, और समाज की मदद के लिए, जैसे वो एक उसको इंटरेस्ट को भी उन्होंने उसको इस्तेमाल किया। क्या बात है। तो वो क्या करते हैं, तो जब आपके घर वाले आपकी कविताएं सुनते हैं, तो क्या आपको फीडबैक देते हैं, कैसा लिखा है कहते हैं, या क्या महसूस हुआ, कैसा, मतलब पहले, सबसे पहले जब आप लिखते हैं तो किसको सुनाते हैं आप?
1: आपको बताऊं, मैं सबसे पहले अपने पति को सुनाती हूँ।
2: अच्छा,
1: ठीक है
2: जी।
1: वो मेरे सबसे बड़े क्रिटिक हैं, और वो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, लेकिन मैंने देखा कि साहित्य की समझ उनके बहुत अच्छी है, और मैं ना बहुत जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी अभी जैसे बोल के बता रही हूँ आपको, मैं बहुत जल्दी जल्दी बोला कर
2: जी।
1: तो मुझे कहते कि थोड़ा ना थम थम के
2: आराम
1: से, है ना। तो उन्होंने मुझे एक तो ये सिखाया, दूसरा वो कहते थे कि तुम्हारा जो फोर्टे है वो तुम्हारी भावनाएं संवेदनाएं हैं, तो तुम अपने किसी के बोलने से ना उसको बदलो नहीं। और वो कई बार मुझे कहते नहीं ये चीज ऐसे अच्छी नहीं लग रही है, तो वो मैं उनको बताती हूँ। अच्छा, कई बार ये भी होता था कि मैं अपने कुछ दोस्तों को भी बता देती थी, तो पता चलता था थोड़े दिन में मेरी चीज उनके नाम से आने लग गई। ये बहुत होता है आरुषि जी। मेरी तो आपको बताऊँ, ये कविता है जो बहुत ज्यादा फेमस हुई है, द्रौपदी तुम्हें उठाने होंगे शस्त्र, तुम्हें ही बनना होगा सशक्त, नहीं आएंगे अब कोई कृष्ण, उसको चुरा के लोगों ने कह लिया सुनो द्रौपदी श्रेष्ठ उठा लो अपना आएंगे गोविंद। ये मैंने लिखी थी कविता।
2: अच्छा, उसमें एक दो शब्द बदल के किसी
1: बदल के, और ये मतलब एक मिनिस्टर है, नाम नहीं ले रही हूँ मैं यहाँ रेडियो पे, एक मिनिस्टर है, उन्होंने फिर एक और, तो तमाम उसको बहुत सारे राजनेताओं ने उसको कोट किया। तो मेरा बेटा मुझे बोलता है कि मम्मा आप लिखते हो, आप इतना अच्छा लिखते हो, आप उसके लिए, तो मेरे पास में मेल है वो, जब मैंने पहले लिखी थी, भेजी थी, पेपर में छपी भी थी। अच्छा, मैं एक और काम किया करती थी, उस कविता को हम जो जाते थे, हम मार्शल आर्ट वालों को लेकर के जाते थे, तो मार्शल आर्ट वाले जो थे वो वहां पे मार्शल आर्ट सिखाते थे लड़कियों को, एक मेरे साथ वकील जाते थे मेरे दोस्त, और मैं एक कविता गाती थी, बोलती थी, तो हम पूरी लड़कियों को, मैं कहती थी कि आप लड़कियों को इतना ट्रेन कर दो कि दो चार लोगों को से अपने आप को सेफ तो कर सके वो।
2: बिल्कुल।
1: तो ये मैं, मेरा ये पूरा का पूरा मोटो था, लेकिन खैर उसके बाद मेरे एक सीरियल को मेरा, मैंने लिखी थी कहानी, तपस्या वाला था वो, क्या था, तपस्या थी उस सीरियल में, अब मैं सीरियल का नाम पता नहीं कैसे अचानक से अभी बात करते, तो उस पर सीरियल बन गया, और वो मेरी कहानी की चोरी थी। तो खैर, मुझे फिल्म राइटर एसोसिएशन में, मुझे मेरे फेवर में डिसीजन भी आया, पर बहुत कुछ ऐसा हुआ, पर ठीक है, क्या किया जा सकता है। तो बहुत कुछ होता है, लेकिन और भी जैसे कि मैं, अगर आप बोलेंगी तो आपको मैं एक दो चार शेर सुना दूं, अगर आप बोले तो.
2: जरूर जरूर, और शेर भी सुनना चाहेंगे. और साथ में जो आपने कहा ना कि लड़कियों को इतनी तैयार हो जाए, इतना मोटिवेट हो जाए कि वो खुद की रक्षा स्वयं कर सके. हाँ. तो अगर कोई ऐसी भी कविता हो तो भी हम जरूर सुनना चाहेंगे अगर आप कोई.
1: जैसे कि मैंने वो जो द्रौपदी वाली थी ना कि मतलब सुनो द्रौपदी शेर उठा लो, कि मतलब द्रौपदी अब जगह जगह पुकार रही है, लेकिन मतलब उसको खुद को ही सशक्त बनना होगा. तो ये तो है, लेकिन अभी फिलहाल ये है कि जैसे दूसरों को भी, कि मतलब हम कहते हैं कि अपने दिल और जान में रखना, नाम मेरा भी ध्यान में रखना, मुफलिसों को ना दो चांद तारे भले पाके उनके ध्यान में रखना. कि भाई आपके मन में एक दया भाव होना बहुत ज्यादा जरूरी है. अपने किरदार, ये देखिए जैसे कि अपने किरदार को बहुत मजबूत इस बदलते जहान में रखना. ऐसे नहीं कि आप बह गए धारा के साथ में. तो मेरा शीर्षक भी मुर्दे इतिहास में लिखते कि आपका अगर किरदार मजबूत है तो फिर आपको कोई बदल नहीं सकता है. कि इस बदलते जहान में रखना, तेरे कपड़ों पे जो है गर्दे सफर कामयाबी की शान में रखना. कई लोग कहते होता ना कि जब बड़े बन गए तो भूल जाते हैं. आप अपनी जमीन से हमेशा जुड़े रहें. तो ये मैं कहती हूँ कि तेरे कपड़े पे जो है गर्दे सफर कामयाबी की शान में रखना. हमेशा याद रखो कि हम कहाँ से उठे, कहाँ पहुँचे हैं. और तुमको आकाश है छूना अगर, तुमको आकाश है छूना अगर, पंख अपनी उड़ान में रखना, अपने दिल और ध्यान में रखना. और ये जो आपने कहा कि मुझे कई लोग कहते हैं कि तुम इतना मीठा बोलती हो कि मतलब हम तो बड़े अट्रैक्ट हो जाते हैं. मैंने कहा नहीं, वो ऊपर वाले ने देके भेजा है. तो ये शायद इस तरह है कि सुन के हो जाए जो फिदा तुम पर, सुन के हो जाए जो फिदा तुम पर, लुत्फ ऐसा जुबान में रखना, अपने दिल और ध्यान में रखना, अपने दिल और ध्यान में रखना. और कभी कभी होता है ना कि हम बहुत दुखी हैं तो हम बोल नहीं पाते हैं. तो अब जैसे अब तो बाबा है वो कोना, हमको कभी लगेगा तो हम बाबा को स्मरण करेंगे. तो कि रो सको जहाँ पे छुप छुप कर, रो सको जहाँ पर छुप छुप कर, ऐसा गोशा मकान में रखना. ऐसा कोना मतलब गोशा, ऐसा गोशा मकान में रखना. और वो गोशा आध्यात्मिक भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. और ये कि कम नहीं है, हालांकि मैंने अलका अपना इसमें तलफ़ुज़ जो होता है मक्ता जो कहते हैं, लेकिन मैं इसको भी बदल देती फिलहाल यहाँ की. कम नहीं है किसी से कोई, कम नहीं है किसी से कोई, दोस्तों ये गुमान में रखना, दोस्तों ये गुमान में रखना. तो आपने जैसे कहा तो मेरी एक कहानी थी बेटी
2: जी,
1: तो उसमें माँ अपनी बेटी के बारे में सोचती है. और वो पहले सोचती नहीं शादी, तो दूसरे कहते भाई बेटी बड़ी हो रही शादी करा. तो बेटी को फिर बताने लगती है देखो तुम जाओगी एक राजकुमार जैसा लड़का होगा, तुम्हारा ध्यान रखेगा. और लड़की वो बेटी सपने पाल लेती है. शादी होती है जब, तो वो जब आती है घर तो वो खुश नहीं है, मैके जब आती है तब माँ को समझ में आता है कि उसको जो सपने बेटी को दे दिए हैं वो उसको हाथ में हाथ लेकर घुमाने नहीं लेकर जाता है. बहुत सारी जो चीजें,
2: राजकुमार आएगा
1: तो वो तो नहीं मिला उसको कि भाई नमक कम है तो भी बोलेगा है वो है. तब उसको समझ में आता है कि मैंने इसे गलत सपने दे दिए हैं. फिर वो उसको दूसरी तरह से कि एक कविता है कि हो जाती वो पयस्विनी जब वो माँ खुद बनती है तो महिला, तो बेटी को फिर अलग तरीके से समझाती है.
2: अच्छा.
1: आपकी और वो प्रेग्नेंट है जब बेटी आती तभी भी खुश नहीं, तो फिर उसको अलग तरह से समझा के भेजती है. और कि मतलब आपकी बार अगर दुखी हो जाएगी तो मैं इसे नहीं भेजूंगी, लेकिन उसको मालूम है कि मैंने इसे ऐसा समझा दिया है क्योंकि मैंने उसे गलत ट्रेन किया था. तो ये जो हम संस्कार देते हैं ना तो वो हमारे भीतर कहीं ना कहीं पनप जाते हैं. तो माँ जो बच्चे को सिखाती है वो बहुत सोच समझ के बताना चाहिए कि उसको आगे जा करके भी एक घर संभालना है. तो वो उस तरह से ट्रेन करे कि वो समझ पे आए कि हाँ मेरे ऊपर जिम्मेदारियां आ रही, अब मैं वो बच्ची नहीं रह गई हूँ. बहुत बदलना पड़ता है. तो मुझे जो मेरी टाइप करते थे उनने कहा कि एक दिन मुझे कहा कि क्या लड़कियां सब सोचती कि शादी के बाद ऐसा होगा. मैंने कहा अमूमन तो सभी सोचती हैं.
2: अमूमन सभी सोचते हैं.
1: तो मैंने भी सोचा था. बोले अच्छा. तो मुझे एक दिन फोन किया, मैं आपको धन्यवाद कहना चाहता हूँ. मैंने कहा कि क्यों. बोले कि आपकी कहानी से मैं अपनी पत्नी की भावनाओं को समझने लग गया. मुझे बहुत अच्छा लगा. फिर एक दिन मैंने बोला कि मेरे कुछ कहानियां टाइप कर दी थी. बोले आज आप मुझे माफ कर दीजिए, मैं नहीं कर सकता. मैंने कहा क्यों. बोले मैं आज अपनी पत्नी को डेट पर लेकर जा रहा हूँ और ये आपकी कहानी का असर है.
2: और इससे पहले शायद वो,
1: हाँ, वो तो वो
2: रियलाइजेशन मतलब उनको हुआ उससे.
1: एक्चुअली मतलब क्या होता है ना कई बार ना जो दूसरे घर से लड़की आती ना, पति समझ ही नहीं पाता है कि ये कितने अंदर अपनी भावनाएं लेकर आई है,
2: इनके सपने क्या है,
1: सपने लेकर आई है ना। और आप जब तक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ही नहीं आप कायम कर पाते, तो जब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है और हम एक दूसरे के साथ में साथ साथ कदम बढ़ा के चल रहे हैं ना, ये कोई नहीं सोचे कि मैं ये तो आई है मैं ही, क्योंकि एक शोविनिस्टिक मेंटालिटी
2: सोचते हैं इनको एडजस्ट करना है, ये आई है यहाँ से, मगर वो सोच उनके मन में क्या चल रही है वो सोच समझ ही नहीं पाए।
1: एक्चुअली वही वाली बात। तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि उसके बाद उनको लगा कि अच्छा ये भी सपने लेके
2: बदलाव कितना
1: उसको समझना चालू कर दिया। तो मुझे लगता है कि मेरा लिखना सार्थक हो गया। और इससे मुझे बहुत सारे इस तरह के इंसिडेंट्स होते हैं, जैसे कई लोगों ने मुझे कहा कि आपको देख के हमने डांस करना सीखा, आपको देख कर, मतलब कटनी में, पहले मैं मारवाड़ी हूँ, हमारे दादाजी नगर सेठ हुआ करते थे, तो लड़कियों को डांस वगैरह, इवन मेरे बाबा जी ने वैसे बहुत हमको फ्रीडम दे रखे थे, हमको कभी पता, आप आरुषि जी मैं बिल्कुल खुले दिल से बोलती हूँ कि मुझे कभी वो डिस्क्रिमिनेशन हमारे घर में नहीं हुआ,
2: लड़का और लड़की वाला,
1: हाँ लड़का अच्छा। लड़की वाला कभी नहीं हुआ, हम लोग पांच बहने थे पर कभी नहीं, ना बाबा जी ने, दादा जी ने, ना पापा ने, मम्मी किसी ने नहीं। तो फिर लेकिन वो लोग आए तो बोले डांस, तो उनने बोला भाई नगर सेठ की बेटी ने लोकचंद फुलचंद की पोती डांस करेगी, तो बोले अगर आपकी बेटी डांस करेगी पोती तो बहुत सी बच्चियों, तो उन्होंने हाँ कह दिया।
2: अच्छा कि हाँ, बाकी लोगों को भी और इंस्पिरेशन मिली।
1: हाँ तो उन्होंने हाँ कहा, और मैंने पहला डांस जो किया था वो था होठों पे ऐसी बात, और उसके बाद में कारी कारी कारी अंधी आ रही थी रात नवरंग की, तो उसमें भी मुझे दूसरी बार किसी ने डरा दिया, अरे तुमसे तो बहुत बड़ी डांसर आ रही, तुम क्या जीतोगी छोड़ दो। मैं रोई तो मम्मी ने कहा अब तो तेरी असली परीक्षा है बेटा, अब तो तेरे को जीतना ही, दीदी लोगों ने भी, तो वो मैं फिर जीती, फिर मैं सर्वश्रेष्ठ बाल कलाकार बनी।
2: क्या
1: तो ये मतलब हमेशा मुझे मतलब ये कि मुझे लोग फॉलो करते, अच्छा अलका ने किया, उनकी पोती ने किया, अब हमारी बेटियों को भी,
2: हमारी बेटियों को भी करना चाहिए ना, करना एक चाहिए। क्या बात है। मुझे आपकी बातों से ना एक चीज और बहुत समझ में आई कि साहित्य कैसे जीवन को आसान बनाने में मदद करता है, कैसे एक दूसरे को समझने में मदद करता है। तो हम ऐसे बहुत लोग हैं जो पढ़ते नहीं है, मोबाइल में ही चले गए हैं जिंदगियां, तो अगर साहित्य के और नजदीक जाएंगे तो अपने आसपास वालों को भी और बेहतर समझ पाएंगे।
1: बिल्कुल सही बात है जी,
2: ये पढ़ना चाहिए। और
1: बिल्कुल देखिए क्या होता है ना, आपने आप भी बचपन से कि पुस्तकें सबसे अच्छी दोस्त होती हैं, और मैं दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर में गई थी तो आज तक वालों ने एक इंटरव्यू किया था, उन्होंने कहा कि क्या आपको लगता है कि आजकल पुस्तकों का अस्तित्व खत्म हो रहा है। मैंने अगर ऐसा होता तो आप पुस्तक मेले में मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं और तमाम स्टॉल्स हैं और लोग खरीद रहे हैं किताबें और स्पेशली जाते हैं, और खास करके बच्चों के माता पिता जाते हैं। मेरी बेटी भी बहुत पढ़ती है, ठीक है, वो अंग्रेजी में पढ़ती है लेकिन बहुत किताबें पढ़ती है। तो कई बार क्या होता है कि जैसे जब हम मोबाइल पे, आजकल जो हम रील बोलते हैं ना, रील लाइफ में के कारण हम रियल लाइफ से दूर होते जा रहे हैं, और व्हाट्सएप, हम फेसबुक पे, अच्छा अभी हम परिचित हो गए, अच्छा आप में से कनेक्टेड है, अरे अलका जी आपकी तबीयत, ओ प्लीज गेट वेल सून, अपना ध्यान रखिएगा, ऐसे लगेगा आरुषि जी से ज्यादा तो मेरा कोई अपना है ही नहीं। लेकिन अभी मेरे घर में अगर कोई है और मैं आपको तो पूछ रही हूँ, आप मुझे पूछ रहे, लेकिन आपके घर में तो मतलब लोग लीस्ट वरीड होते हैं या सोचते भी नहीं कि घर में भी हमको वही चीजें करनी है। तो लेकिन जब हम पढ़ते हैं तो साहित्य हमें एक एक भावना देता है। जैसे मेरी जिंदगी में बहुत सी चीजें हैं कि मैंने कहानियां पढ़ रही हूँ, आलेख जैसे मैंने परसाई जी को, उनको पढ़ करके मेरी चीजें बहुत भीतर बदला है।
2: जो
1: आप उसको उस तरह से जब पढ़ेंगे ना, आपको बहुत एक प्रेरणा मिलती है, कई बार
2: पर्सपेक्टिव भी मिलता है, एक नया पर्सपेक्टिव भी मिलता है,
1: पर्सपेक्टिव मिलता है, नया पर्सपेक्टिव मिलता है जिंदगी को समझने का, अच्छा कि हम तो अभी तक हम कूप में डूब बने रहते हैं, बट जब आप पुस्तकों को पढ़ते हैं, क्योंकि देखिए बहुत से लेखक जैसे वो क्या होता है कि उन्होंने पूरी राजनीति पढ़ी होती है, तमाम माइथोलॉजी पढ़ी होती है, तमाम वेद पढ़े होते हैं, या नहीं भी तो और जिंदगी को पढ़ा होता है, और वो उसको उसका सार उसमें लिखते हैं, तो आपको तो सार पूरा मिल गया ना एक जगह। तो जब आपको सार मिल रहा है तो आपको साहित्य बहुत कुछ देता है। साहित्य का अर्थ होता है सहित, जिसमें हित हो, सबका हित,
2: सबका हित
1: हो, तो साहित्य तो हित ही करेगा, तो साहित्य पढ़ना ही चाहिए।
2: अलका जी मैं आपसे ये जरूर जानना चाहूंगी, जो युवा हमें सुन रहे हैं, अगर आप कुछ किताबें सजेस्ट करें कि उन्हें क्या पढ़ना चाहिए, कुछ कुछ किताबें।
1: देखिए आजकल एक तो सेल्फ हेल्प की बुक्स बहुत आ रही, रॉबिन समथिंग उनका ध्यान एग्जैक्टली ध्यान नहीं आ रहा, और रोंडा बर्न की भी जैसे द मैजिक, और आप लोगों का भी साहित्य शायद जैसे अभी जीवन पलटने की कला है, तो ये तो एक अलग चीज है। लेकिन उसके अलावा जैसे कि बहुत सी अच्छी कविताएं आती हैं, हाँ नेगेटिव बहुत ज्यादा मत पढ़िए, और उसके अलावा जैसे कि हमारे जो बहुत सारे पहले के साहित्यकार हैं, जैसे मैंने इंग्लिश में भी एमए किया है, तो आप वर्ड्सवर्थ को पढ़ते हैं या शैली को पढ़ते हैं, बहुत बहुत सारी चीजें हैं ऐसे तो मुझे लगता है कि उनको पढ़ना चाहिए. और आजकल के भी जैसे अब देवदत्त पटनायक जो आपके यहाँ शायद आ भी चुके होंगे, वो तो उन्होंने माइथोलॉजी को ना बहुत ही खूबसूरती से डिपिक्ट किया है. उनके एक हनुमान की रामायण है, पता है आपको? अच्छा, उन्होंने लिखी है, हाँ, कि हनुमान जी ने

0: रामायण लिखी तो वाल्मीकि जी को पता चला कि नारायण ने उनको बोला, नारद मुनि ने कहा कि आप जाइए एक बार हनुमान की रामायण देखिए। तो हनुमान जी की रामायण पता कहाँ लिखी थी, एक गार्डन में, एक बागीचे में, और केले के पत्तों में, इसमें उसमें उसमें। और वो वाल्मीकि जी पढ़ते जा रहे, रोते जा रहे रोते जा रहे। तो हनुमान जी बोले क्यों रो रहे हैं आप ऐसे? तो बोले नहीं, आपने जो लिख दिया मेरी रामायण कौन पढ़ेगा? आप, हनुमान जी ने क्या किया, उसको सारे को खा लिया पत्तों को। बोले क्या किया आपने, इतना सब लिखा? बोले मेरे राम मेरे अंदर हैं, अब आपको हमेशा सब याद रखेंगे। तो इस तरह की जो आपको एक जगाने वाली अवेयरनेस जहाँ है वो सारी चीजें। और आजकल तो देखिए ये डिजिटल जमाना है, आप
1: बिल्कुल
0: AI दे देता है, गूगल को पूछिए,
1: डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन भी डाउनलोड कर सकते हैं, बहुत सारे नॉवेल्स भी, उपन्यास भी।
0: हम बॉम्बे में रहते हैं, मैं सोचती हूँ मैं अपनी लाइब्रेरी बहुत बना लूँ, बड़ी बन, तो कहाँ रखूंगी मैं सारी चीजें 3 BHK के फ्लैट में। अब आप ऑनलाइन करते जाए, किंडल पे पढ़ लीजिए, और उसमें देखिए कि सेल्फ हेल्प बुक्स, मुझे जैसे जिस समय मुझे जो पढ़ने का मन है कि आई एम फीलिंग लो, नहीं मुझे कुछ पढ़ना है, मुझे आध्यात्मिक कुछ पढ़ना है, तो सब कुछ तो आपके क्लिक में अवेलेबल है।
1: बिल्कुल,
0: क्योंकि मैं बोल दूंगी ये पढ़ो तो नहीं, क्या होता है जो इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है,
1: उनको क्या इंटरेस्ट है,
0: उनको क्या पढ़ना है, उनका क्या इंटरेस्ट है। तो जिसमें खुद की रुचि हो, बस आप ये मत पढ़िए कि आप दूसरों का बुरा करने का सोचे, अपने आप को आप कैसे ग्रो कर सकते हैं, कैसे इवॉल्व हो सकते
1: ऐसा
0: हैं,
1: कुछ पढ़िए,
0: कैसे बेहतर इंसान बन सकते हैं, जो कल से उससे बेहतर बनना है हमें, और बेहतर करते करते दूसरों को भी साथ में लेके चलना है, ऐसा कुछ पढ़िए।
1: बहुत सुंदर बात है, और चाहे कहानियां पढ़ें चाहे कविताएं पढ़ें, लेकिन और मुझे लगता है और संवेदनशील भी बनाती है हमें ये।
0: बिल्कुल, मैं एक छोटी सी लघु कथा आपको बता देती
1: हूं। बिल्कुल, बिल्कुल,
0: अभी हाल ही में जैसे क्या होता है, और ये सचमुच में जब होता है ना, क्योंकि कहानियां हमें जिंदगी से मिलती हैं आरुषि जी, तो आजकल कैंसर बहुत कॉमन हो गया है। तो एक हस्बैंड वाइफ है, और वो जो वाइफ है वो सोच रही कि आज वो अक्षत, और लड़की का नाम है रंगोली, अक्षत आज कहाँ रह गया, अभी तक आया क्यों नहीं, आज उसने मुझे वीट जूस भी बना के नहीं दिया है। वो अपने कमरे में जाती है, तमाम वो सारी देखती, जहाँ उन दोनों की फोटोज हैं, यहाँ गए थे वहाँ गए थे, अच्छा वो देखती है डेकोर पूरा उसके मन से, तो अक्षत ने कराया पूरा पर्ल कलर का। फिर वो देखती है कि कहीं पर्दे का से हवा का झोंका आता है और उसके बाल उड़ते हैं, तो उसको याद आता है कि अक्षत कहता कि रंगोली तुम्हारे बाल कितने सुंदर है ना, एकदम मतलब मुलायम, वो ये रेशमी और ब्राउन कलर के, वैसे सब तो अपने आंखों पे उसके बाल भी छा लेता। तो कहती अक्षत बाल तुम्हारे भी तो कितने सुंदर, तुम रोमन गॉड जैसे दिखते। और अचानक वो सोचते सोचते दर्पण के सामने चली जाती है और देखती कि उसके सिर पे बाल नहीं है, क्योंकि केमोथेरेपी से बाल चले गए, तो 6 महीने पहले उसको कैंसर डिटेक्ट हुआ था। और इससे तो वो मतलब रोते रोते सो जाती, थोड़ी देर में उसको स्पर्श महसूस होता है, तो देखती अक्षत तुम कहाँ, अक्षत तुम्हारे बाल कहाँ गए? तो वो बोलता है नहीं, वो चलो सॉरी, आज चलो खाना भी लगा है और तुम्हारा वीट जूस भी बना हुआ है। तो तब वो देखती तो बोलता है कि बस वो मतलब उसको मतलब बहुत प्यार से सताता है, तो वो सोचती कि आज जो रंगोली है वो अक्षत के प्यार से सज गई है। मतलब ये कि पति जो है उसके लिए उसने अपने बाल भी, कि जब तक उसकी पत्नी के बाल नहीं आएंगे वो भी बाल ऐसे ही रखेगा। तो ये जो चीजें होती है ना, कि मतलब एक एक पॉजिटिव संदेश मैं देना चाहती हूँ। आजकल मैं लघु कथाओं, मतलब मैं लघु कथा शोध केंद्र बॉम्बे की अध्यक्ष बनी हूँ हाल ही में, तो हम लघु कथाओं पे बहुत काम कर रहे हैं, और आजकल की लघु कथाएं जो एक संदेश देना चाह रही है वो बहुत पॉजिटिव संदेश देती हैं, कि अब उसमें नेगेटिविटी नहीं हो, एक पॉजिटिव संदेश के साथ में अपनी लघु कथा को खत्म करिए। तो आजकल हम लोग वो कर रहे हैं।
1: कई बार हम सोशल मीडिया पे भी और अपने आसपास जिंदगी में बहुत चीजें देखते हैं, लेकिन उन्हें भूल जाते हैं। कहते हैं ना आजकल की रात गई बात गई जैसे हो जाता है, एक न्यूज आई दूसरी न्यूज चली गई, लेकिन जब लघु कथा के रूप में हम उन्हें सुन रहे हैं तो मुझे लगता है वो छाप छूट जाती है, वो चीज फिर वो हमारे अंदर वो हमारा हिस्सा बन जाती है कहीं ना कहीं। बहुत प्रेरणादायक कहानियां हैं।
0: आपने जैसे बात की, आपको याद है ना बचपन में हम सब ने कहानी सुनी ना, कि एक पिताजी थे, उन्होंने अपने बच्चों को बोला एक लकड़ी का गट्ठर दिया कि तोड़ो, है ना,
1: बिल्कुल।
0: तो वो कोई नहीं तोड़ पाए, जब अलग अलग करके तोड़ा तो तोड़ दिया, तो उन्होंने कहा यही चीज सिखा। तो कथा के माध्यम से वो बात हमेशा आपके जहन में, जैसे आपने कहा बिल्कुल वही बात है कि हमारे जहन में अंकित हो जाती है, हमारे अंदर अंकित हो जाती है, हमें याद आती है। मैं अपनी बेटी को ना बचपन में और बेटे को भी एक कहानी सुनाती थी, हम लोग मारवाड़ी हैं, हल्दी हल्दी मल्दी सटवा सूट। अच्छा। कि सटवा सूट जो है वो थोड़ी सी बिटर है, दो बहनें हैं, तो हल्दी मल्दी सबका भला करती है. तो जब हल्दी मल्दी अपनी नानी के घर जाती, सबको मिलती, सबका भला करती जाती, तो जब वो लौटती तो उसको बहुत सारे गिफ्ट मिलते. सटवा सूट भी कहती कि मैं जाऊंगी और सबको, तो जो भी बोलता क्यों मैं, क्यों वो तो थी हल्दी मल्दी, मैं हूँ सटवा सूट, मैं नहीं करती तुम्हारा काम. अब वो आती तो उसको कोई कुछ नहीं देता. तो मेरी बेटी आज भी, मम्मा मैं आपकी हल्दी मल्दी हूँ ना. तो ये हमें ना इस तरह के संस्कार कहानियों के माध्यम से हम अपने बच्चों को दे सकते हैं. और बिल्कुल आपने सही बात बोली कि आप भाषण देंगे ना कोई नहीं सुनेगा, उसको इंटरेस्टिंग वे में बता के कहिए तो आपको लोग जरूर सुनेंगे,
1: जरूर सुनेंगे. तो कहानियां और पढ़िए और सुनिए और सुनाइए, है ना. भारत की तो मतलब मुझे लगता है भारत में तो कहानियां बसती हैं हर कोने में,
0: बिल्कुल
1: हर भाषा में, हर लोकगीत लोक कथा में बहुत कुछ है सच में. तो आपने आज हमें वापस मुझे लगता है जोड़ दिया, जहाँ से हम थोड़ा दूर भी निकल आए थे, तो वापस उन कहानियों की ओर अब बढ़ जाएंगे. अलका जी, क्या कोई और आपकी ऐसी कविता या कोई एक ऐसा हमारे श्रोताओं के लिए अगर आप शेयर करें?
0: बिल्कुल सुना दूंगी आपको. वैसे लता दीदी पर भी एक, जब वो लता दीदी तो गजल तो मैं गा के तरन्नुम में तो अभी नहीं सुनाऊंगी
1: जी,
0: पर एक है ना ये, आजकल हम पर्यावरण के लिए बहुत परेशान मतलब है. देखिए तो मैं सुना देती हूँ कि, क्योंकि मैं यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं सुनाऊंगी कि जहाँ पर कहीं पर नेगेटिविटी हो.
1: okay.
0: एक ये बॉम्बे में आतंकी हमला हुआ था, है ना. तो उससे मैं, अच्छा मैं एक चीज और बताती हूँ कि मैं जब बहुत दुखी होती हूँ ना और गुस्से में होती हूँ, तो मेरे भीतर से कविता निकलती है, सिलसिलेवार जिंदगी कहानी बनती है. और मैं व्यंग भी लिखती हूँ, मेरे जैसे आपने व्यंग संग्रहों के नाम भी लिए, तो विसंगतियां व्यंग बन जाती. तो जब ये आतंकी हमले हो रहे थे लगातार, अच्छा हमारे भी बहुत परिचित लोग थे जो उसमें मारे गए थे, तो उसमें मैंने एक सिम्बॉलिक कविता लिखी थी कि मैं उसको कुछ तरन्नुम में भी गा के थोड़ा सा वैसे बता देती हूँ. एक चिड़िया

बीच हरियाली छाई थी, खिले थे सुंदर फूल, तितलियां रंग बिरंगी उड़ रही थी। माँ तोती ने दरख्त पे बनाया एक घरवंदा, सुरक्षित रखकर बच्चे उसमें निकल गई लेने दाना। पर अचानक कहीं से आया एक कठफोड़वा, ये कठफोड़वा वो आतंकवादी है, चोंच मार

बच्चे चीखे डर डर के, तितली के पंख गिरे कट कट के, हरियाली बदली पतझड़ में, फैल गया आतंक, मिट्ठू न जाने कहाँ गुम हो गया, तितलियों ने उड़ना छोड़ा, हो गए फूलों के रंग सभी बदरंग।

0: सच में वो उस इंसिडेंट ने, उस घटना ने हम सबको हिला दिया था, अंदर से झंझोर दिया था.
1: मुंबई का जो आतंकी हमला था
0: वो भूल नहीं सकते. और ये जो आपने कविता ये सिंबलाइज करके उसको जो वो हम भावनाओं को प्रकट किया, ये एक लेखक ही कर सकते हैं कि उस प्रकार से भी उस बात को कहा जाता है, हम सोच नहीं सकते. आपका बहुत बहुत धन्यवाद है अलका जी. मुझे लगता है आपकी इतनी कहानियां, इतनी सारी बातें हैं, अभी संभव नहीं है सब कुछ इन एक घंटे में समेट पाना, लेकिन फिर भी जो आपने जो आज सुनाया है वो हमारे सिर्फ आज तक नहीं, मुझे लगता है आगे तक वो प्रेरणा बन के हमारे साथ रहने वाला है.
1: अगर एक मिनट होगा तो खाली आदर्श, एक हमने फिल्म लिखी थी और आदर्श पे फिल्म के ऊपर हमने नॉवेल लिखी थी.
0: अच्छा.
1: तो उसमें मैंने क्यों इसलिए बोल रही हूँ कि यहाँ पर उसमें एक न्यूक्लियर फैमिली जो एकल परिवार होते हैं ना, एकल परिवार का बच्चा कैसे अपने आप को, कई बार तो हम बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग होने लगती तो वो कुछ ऐसा होता है, तो ये जो है परिवारों को बचाना कैसे जरूरी. तो आदर्श फिल्म जो है उस तरह से वो मैंने लिखी थी और वो बहुत ही खूबसूरत फिल्म है. बल्कि मैं तो चाहूंगी मैं आपको लिंक भेज दूंगी अपनी,
0: जरूर जरूर,
1: तो आप वो देखिएगा. तो मुझे लगता है कि ना हम लेखकों का एक दायित्व ये भी है कि सिर्फ लिखने के लिए ना लिखें, है ना, एक कुछ ना कुछ बदलाव और जो कृतित्व और व्यक्तित्व है ना लेखक का वो एक हो, ये मैं चाहती हूँ कि आप लिख कुछ रहे हैं कुछ वो मत करिए, जो आप हैं वो लिखिए और समाज में बदलाव की चेतना के लिए जरूर लिखें. आप समाज सुधारक नहीं है हम, पर कोशिश करें कि कुछ तो बदले, कुछ तो अच्छा लिखें हम. तो बहुत अच्छा लगा मुझे आज आपके रेडियो मधुबन में, और क्योंकि यहाँ बहुत सारी पॉजिटिव वाइब्स हम लेकर जा रहे हैं और कोशिश करेंगे हम कि प्रयास हमारा ये रहेगा कि हम आगे भी जुड़े रहें और अपने घरों में भी उसी शांति के प्रकाश को फैला सकें. आपकी मुस्कान बहुत प्यारी है, आपकी मुस्कान के लिए मैं आपको बाद में कविता लिख भेज दूंगी. बहुत बहुत आभार आपका.
0: अलका जी मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत कुछ सीखने को मिला, तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया, इतना समय आपने निकाला हमारे.
1: बहुत बहुत आभार, धन्यवाद.
0: तो दोस्तों फिलहाल तो वक्त हो गया इजाजत लेने का, लेकिन मैं यकीनन ये कह सकती हूँ कि आज कुछ आप अपने साथ जरूर लेकर जा रहे होंगे, कुछ ऐसा जो आपको जीवन के सफर में मददगार साबित होगा. फिलहाल वक्त हो गया है आपसे इजाजत लेने का, मुलाकात होगी अगले एपिसोड में. रेडियो मधुबन सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए.

0: मैं उच्चान मिश्रा, आप सुन रहे रेडियो मधुबन। सुनते रहें, सुनाते रहें, जन जन तक प्यार बरसाते रहें।
1: एक बाद में अपने मेहमान मोहनलाल जी को मावतर स्वागत है ना, अपने जतरा भी श्रोता बंधु होबले रहा है उन्होंने भी स्वागत है।
2: हमें बताओ, आप चलो नौकरी लगा, आप तो नौकरी लागो पूटे, हमें नौकरी तो लगा पर आपकी शादी कन साल में हुई, वरना बार हम थोड़ा से बताओ।
3: मो 1974 में सबसे पहला मंडवाड़िया वन टाइम रो जो उच्च प्राथमिक विद्यालय मंडवाड़िया में हमारे पोस्टिंग हुए थे
2: जी।
3: तो बटे मैं जे ज्वाइन की दो उन्हें लगभग साल भरियारे बाद मारो ट्रांसफर हु तरतोली। तो बटे जो तरतोली मारा ट्रांसफर हु जे मारे अटे चर्चा हलवाट हुए एंगेजमेंट रहे। तो आगती पातीला गोमरा मना के जो आवेन बारवा टूका मने आवेन बारेन जाता ने वे मोरे पिताजी रहती आवता कि मोरे पिताजी रो कोमोटे सालतो तो गिरवर में।
2: अच्छा।
3: तो आवेन बारेन जाता ने वे कहता कि हाँ भाई वन टंगती वे बातचीत करवा टूका। तो मैं किए मैं कि मारे मार अतरे जल्दी शादी करवा आवश्यकता नहीं है। छतई जो है 1976 में जो मारे मतलब वो वन टाइम मोरे माता जी की तबियत अतरी खराब हुई कि मोरे पिताजी ने अचानक निर्णय लेवा पड़ियो कि शादी करनी पड़ी। तो हाथ दारो पेला तो दूल्हा ने उठाने तो कि जोन कटे जाने
2: जी, जी।
3: अचानक जो है रोयडा में से एंगेजमेंट हुआ ने रोयडा में मतलब जो है एंगेजमेंट हुए ने जो समाचार मारे पास ही आई हो मारे हाथी एक हीरालाल जी मार साहब था रोयडा रहा वे आवन के अटका के मोन थारे के शादी है। अरे मैं कि एंगेजमेंट रो ठगोना नहीं तो शादी की बात करे रही। तो वन टाइम रो अतरे मानसिक रूप थी ओपे परिपक्व नहीं था, 21 साल रे मारे उम्र थे लगभग। तो वन टाइम रो अतरे मानसिक रूप थी परिपक्व नहीं तो छताई पिताजी रो जो निर्णय तो वो मन मानवो पड़ियो ने मैं जो है शादी की थी
2: जी।
3: और मने जो है कोई परमात्मा की कृपा हुई कि एरे सुशील जो है धर्मपत्नी मिली है जेने मारे जीवन रे दशा ने दिशा बेये बदली है। हालांकि मारे थे बहुत कम बढ़िया लगी थे पर वणे जो है वन्ना जीवन रा जो मूल्य था वणो थी मने अत्रो प्रभावित कीधो कि मारे आज परिवार ने एक आदर्श परिवार रे रूप में वणे कन्वर्ट।
2: आपरे बच्चा कतराए?
3: परमात्मा रे दीदो राए 3 बच्चा है ने 1 बच्चे है। 3 मोटा बच्चा है ने सबसे छोटे बच्चे है। सबसे मोटा बच्चा रो नाम है हर्षवर्धन, वो MA BEd है ने वो जो पहलो बच्चो है वो प्रधानाध्यापक है चंद्रावती में
2: जी।
3: ने बीजो बच्चो है वो आर्किटेक्ट है ने वन नाम है शक्तिवर्धन।
2: अच्छा।
3: ने वो जो है PhD की दे उन्हें वास्तुरे में। तीसरा बच्चो है ज्ञानवर्धन, वो रेलवे में नौकरी करे
2: जी।
3: तो MTech की दौड़ी है ने उन्हें नेट के दिए ने हमारे सुनो सिलेक्शन पास हुआ है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज से मैं सिलेक्शन हुआ उन्होंने पूरा स्टेट में 19वां नंबर आई है। चौथी बेटी है उन्होंने नाम है योगिता और वह अटे चारणिया फली में अध्यापिका रे पद माते हैं ने वर्तमान में उन्हें जो है कंपटीशन एग्जाम रे तैयारी कर रही है। RS रे प्री जो परीक्षा उन्हें क्लियर की दी है ने मेन तैयारी कर रही है ने शायद 2-4 दारों में अन्य लेक्चरर रिजल्ट आना वारो।
2: चलो अच्छी बात है। आपरे परिवार ने जो आपरे धर्म पत्नी आज शिक्षित करवा में मतलब वे तो कम बढ़िया लिखिया था तो पछे अत्रो सहयोग कौन करतो, मतलब घरती धर्म पत्नी करते या आप ध्यान रखता पढ़ाई में बच्चों रो?
3: मारे धर्म पत्नी जो बेसिक बच्चों रे तैयार करवा में उन्होंने पूरा योगदान दिया के वह जो है मो वन टाइम रो घरे बच्चों ट्यूशन बनाओ तो
2: अच्छा।
3: तो वह पाती बेते
2: वह
3: बेन ने बच्चों रे हैंडराइटिंग सुधारवारो श्रेय है
2: अच्छा।
3: वो बन जाए बकायदा वह उन्होंने मार्गदर्शन करते लाइन खोसन देते अंटंगती मतलब जो उन्होंने
2: बनियोड़ा था मैं
3: बड़े जो बाजार नहीं बनियो रे वह सिर्फ 8वीं पास है।
2: 8वीं बनियोड़ा था मतलब आराम से घर में बच्चों ने गाइड करे
3: तो वह वनो जितना योगदान कह रही हो ने बेसिकली योगदान वनो रही हो बच्चों ने डेली गिनती बुलावने उन्होंने जो है स्पेलिंग बुलावनी स्पेलिंग रटावनी स्पेलिंग पूछवी प्रश्न पूछना हर उन्होंने मतलब रोल की दो।
2: चलो आप बताओ कि आपने शादी के बारे में बताया बच्चों के बारे में बताया है, चलो बहुत अच्छी जानकारी मिली और आपने पूरा परिवार आदर्श परिवार है। तो मैं तो कहूँ हर परिवार में इस बच्चा शिक्षित हुए और हर परिवार में यो आदर्श परिवार बने। पर मैं आप बताओ कि आपरे जीवन में कोई खुशी रो पल आए तो क्या आया?
3: मारे जीवन में खुशी रा पल ये देखो जब संघर्षशील मारो जीवन रियो
2: जी।
3: मैं जो हमेशा पोतारे बलबूता रे माते जो हर कार्य करवा रो प्रयत्न की दो, क्योंकि मारो परिवार है जो बड़ो मध्यम में बहुत ही पिछड़ा क्षेत्र थी। तो मैं संकल्प ली दो कि हमें पिताजी रे माते में बधारे भार नहीं देखते। अच्छा बच्चा रे प्रवेश करवे तो पिताजी ने मैं कियो, क्योंकि आप तो जत्रो बने जितना आप करो बाकी बच्चों में कि उन्होंने भणावना रो दायित्व मार हो है। तो मारे छोटा बहन में जो कैलाश है उन्हें मैं ड्राफ्टमैन रो कोर्स करावी है उदयपुर थी ने उन्हें जो है आजीविका रूप में उन्हें मतलब वो की दो उन्होंने बाद उन्हें आर्किटेक्ट रो कोर्स की दो ने आज इंजीनियरिंग रो काम करे अच्छो बनो वो है। एक तीसरा भाई बरे तो उन्हें साइंस मैथमेटिक्स दे रही थे वो हीरोइन में बनता था पण मने रुचि भणवारे प्रति कम थे वो मध्यम श्रीय मतलब हालांकि 55% थी ऊपर नंबर आता पण मने ये रुचि नहीं थे कि मैं सरकारी नौकरी करो वन्ने व्यापार प्रति रुझान तो सूरत गियो। सूरत थी पसे बाद में वो अहमदाबाद आई है अहमदाबाद थी पसे अटे सुरुगिन माते बहुत अच्छो आर्टिस्ट है वो उनने माए अतरे नेचुरलिटी आकर मतलब वो है कि आप बेटा हो तो आप फोटो यू बनावे ब्रो अत्रो ये सुंदर आर्टिस्ट है तो उन्हें आर्ट ने इस पोतारे जीवन रो स्रोत बनावी है।
2: तो आपने खुशी भी भाइयों ने बनावा पटे हुई
3: ना? मारे मने सबसे ज्यादा खुशी जरी हुई कि मारे एक बहन विधवा वे गई थी वह विधवा बहन ने पसंद बाद में जो है बने जो पहला भणे दिए थे वन टाइम उन्होंने जबरदस्ती शादी करावी तो उन्होंने बाद में वह वीडियो हुई वीडियो बहन ने बाद में मैं उन्हें पास भणावी है भणावे ने वह जो अच्छा परसेंटेज थी दसवीं में पास हुई
2: जी,
3: जी मैंने खूब प्रसन्नता हुई कि हमें अन्न भविष्य बने जाए। क्यों? क्योंकि वन टाइम विधवा ने दसवीं पास ने मतलब जो है मन में ले लिया था
2: जी, जी।
3: तो पहला तो वह ANM बड़ी है ANM रो जो है बड़ो यूँ डिफिकल्ट व्यवसाय तो उनमें घरे घरे जानो वे केस लावना ने बीजा ने बहुत पजल हुए थे। बस उन्हें जो है मैं शिक्षिका रूप में शिक्षा विभाग में नियुक्ति दिलावी तो वो नियुक्ति रे बाद जो है उन्होंने पहलो पगार आई हो गए उन्हें थी मैंने उन्होंने चरार माते जितना संतोष लागो तो मैंने बहुत खुशी महसूस हुई है।
2: चलो आप कहवा मतलब उसी रो आप पल वो तो कि आप एक विधवा बहन थी जनी ने आप भणावे लिखाण पगो माते उभी की दी और शिक्षिका पद माते वा नौकरी लागन जब पहली तनखा आपने हाथ में लान दी थी जरे आपने लागो के मारे बहन ने मुँह आज पगो माते उभी की दी हूँ और बहुत अच्छो कार्य की दो आप और एरो कार्य एक पुण्य रो कार्य है जो एक बहन ने आपने नहीं तो आज जमाना में विधवा बहनों रे माते का बीते वे चौने का तो आप अच्छो प्रयास तो और मने खुशी हुई कि आपरे बहन ने आप अच्छो मार्गदर्शन दीज दो आज नौकरी माते लगे आज वन बच्चों पाले रही है बहुत खुशी है।
1: हाँ तो श्रोता बंधुओं अपने मेहमान मोहनलाल जी कुमावत है जो अपने जीवन रा पड़ाव रे बारे में बता रही है और उन्होंने जीवन रा अच्छा अच्छा अनुभव बता रहा है। पण आप एक छोटो सो ब्रेक लेना चाहो ब्रेक रे बाद में फिर आप उन्होंने जीवन रा पड़ाव रे बारे में बातों कर रही हो। वनती पहला एक अपील है कि आपरे माते भी कोई रेडियो मधुबन माते अपना अनुभव अपने समाज रीति रिवाज बतावना चाहे रेडियो रे नंबर माते जरूर मैसेज करजो। रेडियो नंबर है 94 14 15 14 15। आप सुन रहे हो रेडियो मधुबन तारो मुस्कुराता रहो।

0: मैं हूं जयप्रदा और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
1: एक बाद में अपने मेहमान मोहनलाल जी को मावतरा स्वागत है ना, अपने जितना भी श्रोता बंधु हो रहे है उन्होंने भी स्वागत है।
2: तो मार साहब हमें बताओ कि आपरे स्कूल लाइफ में कोई मार साहब था जो आपने खूब लाइक करता?
3: मार साहब तो देखो मो पेंटिंग मारे बहुत अच्छे थे
2: जी।
3: तो उन्हें हिसाब थी मो अच्छे जो अच्छी थी अच्छी पेंटिंग बनावे मो गुरु जी पाती ले जाता तो लगभग हर जो अध्यापक मैंने शाबाशी देता
2: जी।
3: ने मैंने बहुत प्रोत्साहित करता
2: जी।
3: मारे कॉपियों में गुड ने वेरी गुड देता तो मैं बहुत प्रोत्साहित देता। तो वन मैं जो एक तो सौभाग्यमल जी जैन,
2: सौभाग्यमल जी जैन
3: जो वर्तमान में रोयडा में से
2: जी,
3: ने बहुत वयोवृद्ध हुआ है
2: जी।
3: ने इंद्रलाल जी पटेल ये जो हमारे वास्ते एक आदर्श गुरु रिया भई है। ने एक रोड़ीलाल जी श्रीमाली
2: जी।
3: अपने एसटीसी में था बने मने वटे संत सरोवर तो वन मैं एक भाटो लो कियो बने बोले मोहन देख रहा है ये पत्थर? मैंने कहा जी गुरु जी। क्या तेरे को नज़र आ रहा है? मैंने कहा आपने पत्थर डाला तो उसमें लहरें उठ गई चारों पर। तो लहरें कहाँ से उठी? मैंने जहाँ से पत्थर डाला वहाँ से। तो बस इस बात को तू समझ ले कि जिस प्रकार से तू अकेला है और ये पत्थर फेंका है तो जहाँ से लहरें उठी है ना वहाँ से वो ठेठ किनारे तक गई। तो तू अपने परिवार को इसी प्रकार से
2: जी।
3: जैसे पत्थर डाला तो अपने परिवार को लेकर के आगे उन्नति करेगा तो धीरे धीरे फिर समाज की उन्नति होगी, उसके बाद देश को भी कुछ दे सकेगा। तो उन्होंने बाद में वो लक्ष्य ली दो कि अपने परिवार ने अपने शिक्षित करी हो ने बहुत शिक्षित वेप रहो ने जो है बीजा भाई बहनों जो अपरा समाज रहा भाई बहन है या अपरे गोमरा भाई बहन है उन्होंने मार्गदर्शन करी तो उन्हें जो है उत्थान हुई।
2: तो मोहन जी मार साहब मैं आपने पूछूं आप अपना जीवन रा पड़ा बताओ रहा हाँ वो संघर्षशील आपरो जीवन तो आपरो जो अपना जीवन रे बारे में मन लागो का आप खूब मेहनत की दी अपने भाइयों ने पढ़ाया अपने बच्चों ने शिक्षित की दा और आपरो एक परिवार आज आदर्श परिवार बनियो तो बहुत खुशी की बात है। हमें आपने पूछूं कि आपने कोई एक दुख रो पल अपने जीवन में आया जनटे आपने खूब दुख हुआ है?
3: मारे जीवन रो मूल जो है दुख रो पल एक तो कि मारे बहन ने पढ़ाई छोड़ावे परे ने वरना जो है विवाह की दो ने वरने विवाह रे ठीक 3 साल रे माए जो पौमण रे देहत पर हुई तो वो सबसे मोटो मोरे जीवन रो दुखद पल तो मने बड़ो झेलवो मोरे परिवार रे वास्ते बहुत मुश्किल तो। तो मोरे एक मनोरजी मारसा था मने वन टाइम रो आरोग्य रे माते मन कियो कि मार साहब रोवाती इन कोई निचोड़ नहीं दे रहे आप आज अठे संकल्प लियो कि अने बच्चे ने भणावे ही हो भणावे ने जो है अने पगोरे माते करे ही हो तो अने जीवन रो सार्थक मतलब अर्थ नहीं रही।
2: बहुत अच्छा संकल्प दिलाया आपने बोले दुख रो पल तो पर आपने एक ढाढ़स बंधाई आपने मार साहब और आपने क्यों कि बहन ने पाछी पगो माते उभी कराई हो रोवाती का अर्थ सही बात है आपो अगर हिम्मत नहीं रखी हो तो अगलो आदमी टूट जाइला तो आप अच्छी कोशिश की दी अपनी बहन ने पगो माते उभी की दी और आपरो दुखरो पल हुए तो आपरे बहन हुई एक्सपायर हो गया कम उम्र में मतलब बहन ने शादी हुई तो ठीक है। हमें आप बताओ कि आज आपने रेडियो पर खूब मन खोबले रिया है तो आपने केरो लाग रही हो?
3: देखो सभी श्रोता बंधुओं ने हमारे विनम्र प्रार्थना है कि यदि अपने परिवार रो अपने समाज रो उत्थान करवो है तो एक शिक्षा एरो माध्यम है अने ती देखो गरीबी दूर भी है के अपने जीवन रो स्तर सुधरे है के अपरो जो है धन अर्जन रो सबसे बढ़िया स्रोत है वो शिक्षा है का अगर बढ़िया गणिया हो तो अपने भाटा में ती पौनी पुरु काढ़ो ने अगर अपने शिक्षा रे में कमी रही तो चारों तहदी ऊपर गरीबी ओपन घेरे दी और वास्ते शिक्षा एक मूल स्रोत है मंत्र है और शिक्षा के माध्यम से ओपे परिवार ने और समाज ने और राष्ट्र ने आगे ले जाएगा।
2: चलो बहुत अच्छा संदेश है आप रो कि भाई शिक्षा एक ऐसी चीज है तो वन्य कारण अपने परिवार ने उधारे को समाज ने उधारे को और देश में प्रगति करे को आप रो अच्छो मूल मंत्र है आपने बच्चों ने अपने परिवार ने आप उधारिया अंत शिक्षा रनोमतीस और आज आप 18 साल सर्विस की दी और

0: रिटायरमेंट हुआ हो फिर भी आपको शरीर स्वस्थ है, अन्नो का राज है।
1: देखिए मैं लगभग 41 साल से सर्विस के बाद रिटायर्ड हुआ, तो लगभग 20 साल पहला मैंने गुरुजी मिलिया। मैंने कि ये देखो कि वो शरीर है वो एक माध्यम है और उन्नति रो
2: जी।
1: तो उन्हें मजबूत करवाने वास्ते योगा ने व्यायाम
2: जी।
1: तो नित्य तो स्नान योगा ने व्यायाम
2: हाँ।
1: ने ध्यान मेडिटेशन है ने वो ऐसी विधि है जिसके माध्यम से अपने शरीर को ओपे मजबूत बनावे है को। तो शरीर ने अगर मजबूत रही तो ओपे आगे उन्नति करे है यो। तो डेली मारे जीवन रमाय डेली 5 बजे उठो, उठे मारे ध्यान प्राणायाम व्यायाम सब कार्य थे निवृत्त वेन ने जो है मारो भजन कीर्तन करूँ ने जो है समाज रमाय मारो योगदान जो बने वो मोहन दीवार प्रयत्न करूँ।
0: चलो श्रोता बंधुओ बातों तो हमें खूब करवाने हैं पर समय देखता खातर अपने मेहमान मोहन जी कुमावत रो आभार प्रकट कर रहा हूँ कि अपना अमूल्य समय दो है और अपने जीवन का पड़ाव बताए है। जो जीवन है संघर्षशील तो परिवार में सबसे बड़ा ऐज था तो अणो ऊपर 5 भाई बहनों रो उन्होंने बनावा रो लिखावा रो सब कुछ अणो माते भार तो और आज ये मेहनत करें सबों ने भगवान माता उबा किया है और सब ने शिक्षित किया है। अपने बच्चों ने भी तीनों ने शिक्षित किया है चारों ने तो धन्यवाद है उन्होंने। और मुँह तो कहूँगा एरो परिवार में सबरा एरा आदर्श रहे हर परिवार में हर समाज में लोग अगर एरो नियम बना लेंगे शिक्षा अपने परिवार में अगर लावला बच्चों ने बनावी हो तो अपना जीवन सफल वे के। तो हमें मुकेश जी जिनकर अपनी वाणी ने विराम दे हूँ। आप सुन रहे हो रेडियो मधुबन, सुनता रहो मुस्कुराता रहो।

नमस्कार, मेरा नाम है अमन वर्मा और इस समय आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और मैं इतना कहना चाहूँगा कि आपका अपने घर पर कोई इंतज़ार कर रहा है, इसलिए कृपया हेलमेट लगाकर अपनी मोटरसाइकिल चलाएं। याद रखिएगा,

0: नमस्ते दोस्तों, अब समय हो गया है मीना की दुनिया में झांक के देखने का। हर चीज का अपना समय होता है, खेलने का समय, पढ़ने का समय, खाने का समय, स्कूल जाने का समय, स्कूल से वापस आने का समय। अरे वो देखो, मीना और रोशनी भी स्कूल से वापस आ रही है। रोशनी आज काफी खुश नजर आ रही है, आओ देखते हैं वो इतनी खुश क्यों है।
1: मीना, मुझे जल्दी से घर पहुँचना है, आज मेरी नानी आ रही है बहुत दिनों बाद।
2: अच्छा रोशनी, मुझे भी तुम्हारी नानी से मिलना है।
1: मीना तुम शाम को आ जाना, अभी तो मुझे घर जाके बहुत सारे काम करने हैं। माँ आज नर्स बहन जी से मिलने स्वास्थ्य केंद्र जो गई हैं।
2: अच्छा अब समझी, तुम्हारा छोटा भाई या बहन होने वाला है। अब तो लड्डू बटेंगे,
3: लड्डू बटेंगे, पटाखे बजेंगे।
1: अच्छा मीना, शाम को मिलते हैं।
0: जब शाम को मीना रोशनी के घर पहुंची, तो रोशनी ने जोर से अपनी नानी को आवाज लगाई।
1: नानी नानी देखो मीना आई है आपसे मिलने।
4: बस अभी आई रोशनी, जरा ये अमरूद धो लूं, तब तक तुम दोनों भी अपने हाथ धो लो, फिर ये ताजा अमरूद चख लेना।
2: वाह रोशनी, लगता है तुम्हारी नानी अपने गांव से मीठे मीठे अमरूद लाई है। चलो हम जल्दी से हाथ धो लेते हैं।
0: इधर मीना और रोशनी ने अपने हाथ धो लिए और उधर से रोशनी की नानी जी अमरूद धो के ले आई।
2: नमस्ते नानी।
4: अरे मीना, जीती रहो, लो मेरे गांव के ताजा अमरूद चख के देखो।
3: चख के देखो, चख के देखो।
2: जी नानी, आप भी लीजिए ना।
4: अरे एक मिनट, मैं अपने हाथ धोना तो भूल ही गई, बस अभी आई। हाँ
1: नानी, मीना मैंने एक नया चित्र बनाना सीखा है, बना के दिखाऊं?
2: हाँ हाँ रोशनी दिखाओ ना।
1: तख्ती तो भरी हुई है।
4: लाओ बेटी, ये तख्ती मैं अभी धोकर साफ कर देती हूँ।
1: पर नानी, ओफो, नानी तो तख्ती धोने चली गई। मीना अब मैं गीली तख्ती पर चित्र कैसे बनाऊंगी?
2: रोशनी क्यों ना तख्ती सूखने तक हम कहानी की किताब पढ़ ले।
1: हाँ मीना, हम बारी बारी से कहानी पढ़ते हैं। ये रही किताब, पहले तुम पढ़ो।
4: अरे वाह, कहानी नानी को नहीं सुनाओगे?
2: जरूर सुनाएंगी नानी। सुनिए, एक था बंदर जो एक जामुन के पेड़ पर रहता था, उसका सबसे खास दोस्त था एक घड़ियाल। अरे मिट्ठू, तुम कहाँ थे? कहानी तो पढ़ने दो।
1: ओहो किताब गिर गई,
3: किताब गिर गई, किताब गिर गई।
1: कोई बात नहीं मीना, थोड़ी सी धूल ही तो लगी है, झाड़ देती हूँ।
4: अरे रोशनी बेटी, लाओ किताब मुझे दे दो, मैं इसे अभी धो देती हूँ।
1: पर नानी, किताब को धोते थोड़ी ही है।
4: ओहो, मैं भी क्या क्या बोल देती हूँ, भला कोई किताब को भी धोकर गीला करता है क्या?
1: मीना, मेरी नानी को हर चीज धोने की आदत है।
4: हाँ भाई, क्या करूँ, कभी कभी भूल ही जाती हूँ कि क्या धोना चाहिए और क्या नहीं।
2: अच्छा नानी, अब मैं चलती हूँ, नमस्ते।
4: जीती रहो मीना बेटी।
2: रोशनी कल स्कूल में मिलते हैं।
1: अच्छा मीना।
0: लेकिन मीना की रोशनी से मुलाकात उसी रात को हुई जब रोशनी भागी भागी मीना के घर पहुंची। मीना की माँ उसे दरवाजे पर ही मिल गई।
5: अरे रोशनी, इतनी घबराई हुई क्यों हो? सब ठीक तो है ना?
1: चाची, वो माँ के पेट में बहुत दर्द हो रहा है, आशा बहन जी भी आई हुई है।
5: ओह, अब तो तुम्हारी माँ को स्वास्थ्य केंद्र ले जाना पड़ेगा, चलो मैं भी चलती हूँ।
2: माँ, मैं और रोशनी भी तुम्हारे साथ चले?
5: नहीं मीना, तुम लोग यहीं अपनी दादी और राजू के साथ रहो, मैं बाकी सबके साथ रोशनी की माँ को स्वास्थ्य केंद्र ले जाती हूँ।
2: अच्छा माँ।
0: और इसी तरह स्वास्थ्य केंद्र में रोशनी की नन्ही सी बहन पैदा हुई। ये सभी के लिए बहुत खुशी का मौका था, खास तौर पे रोशनी की नानी के लिए।
4: अरे इसकी नाक तो बिल्कुल रोशनी के पिताजी जैसी।

0: और नानी इसकी आंखें बिल्कुल रोशनी की माँ पर गई हैं।
1: नरस बहन जी, अब इसे बस एक बार नहला दें तो बिल्कुल साफ सुथरी हो जाएगी।
0: नहीं नानी जी, नवजात बच्चे को पहले कुछ दिन नहीं नहलाते, उसे तो किसी साफ कपड़े से पोंछकर और साफ कपड़े में ही लपेट देना चाहिए।
1: ये क्या कह रही हो बहन जी, अगर इसे नहलाएंगे नहीं तो ये साफ सुथरी कैसे होगी? वैसे भी हम खुद को साफ रखने के लिए भी तो नहाते धोते हैं ना।
0: ये बात तो आपने ठीक कही नानी जी, मगर नवजात शिशु को पैदा होते ही नहलाना बहुत खतरनाक साबित हो सकता है।
1: खतरनाक? वो कैसे?
0: देखिए, अगर पैदा होने के तुरंत बाद बच्चे को नहला दिया जाए तो उसके शरीर का तापमान एकदम गिर सकता है और उसे ठंड लग सकती है, इससे निमोनिया भी हो सकता है।
1: ओह, ये बात तो मुझे पता ही नहीं थी।
0: यही नहीं नानी, बच्चे को ठंड लग जाना या निमोनिया होना जानलेवा भी हो सकता है।
1: शुक्र है नरस बहन जी, जो आपने मुझे सही समय पर रोक दिया, नहीं तो मुन्नी मेरी वजह से बीमार पड़ जाती। पर बहन जी, इसके शरीर पर कीटाणु भी तो लगे होंगे।
0: आप उसकी फिक्र मत करिए नानी, मैं मुन्नी को अभी एक साफ और नरम कपड़े से पोंछकर एक धुले हुए साफ और नरम कंबल में लपेट देती हूँ ताकि उसे ठंड न लग जाए। नानी, पैदा होने के कम 7 दिन तक बच्चे को सिर्फ पोंछना चाहिए, नहलाना नहीं।
1: अब हमें घर चलना चाहिए, सब हमारा इंतजार कर रहे होंगे।
0: जी नानी, मुन्नी को घर ले जाइए और पूरे परिवार के साथ खुशियाँ मनाइए।
2: घर पर मीना और रोशनी बेसब्री से नए मेहमान का इंतजार कर रहे थे।
1: रोशनी, ये है तुम्हारी छोटी बहन।
3: छोटी बहन, छोटी बहन।
4: कितनी छोटी सी है मेरी बहन, है ना मीना?
3: हाँ रोशनी, तुम्हारी बहन सचमुच बहुत प्यारी है।
1: एक मिनट मीना, इसे छूने से पहले तुम दोनों अपने हाथ धो लो। और हाँ, अभी मुन्नी को 7 दिन तक नहलाना नहीं है।
4: वो क्यों नानी?
1: रोशनी बेटी, अभी नहलाने से मुन्नी को ज्यादा ठंड लग सकती है, वो बीमार पड़ सकती है। अब 7 दिनों बाद मैं इसे अपने हाथों से नहलाऊंगी।
4: जी नानी, और उसके बाद अपने हाथ धोना मत भूलना।
2: तो सुना आपने दोस्तों, जिस तरह से हर काम का अपना समय होता है, उसी तरह नवजात शिशु के पहली बार नहाने का भी अपना समय होता है। चलो अब चलकर देखते हैं मीना और मिट्ठू क्या कर रहे हैं।
3: जब हो पैदा नन्ही जान, रखो तुम इस बात का ध्यान, 7 दिनों तक मत नहलाना, ठंड से बच्चे को बचाना।
2: भाई वाह, मीना और मिट्ठू की ये कविता तो सचमुच मजेदार थी। अब एक गाना भी हो जाए क्यों दोस्तों।

0: गाना सुन के नाचने का दिल कर रहा था, है ना? दोस्तों, अब मीना की बहन जी क्लास में एक मजेदार खेल खिलाने वाली है। खेल का खेल और नई बातें भी, तो चलो हम भी इस खेल का मजा लेते हैं।
1: बच्चों, आज हम खेलेंगे नाम अनेक अक्षर एक। मैं एक अक्षर बताऊंगी और आपको उस अक्षर से एक व्यक्ति, जगह, पक्षी और वस्तु का नाम बताना है, ठीक है?
2: जी बहन जी।
1: तो बच्चों, आज का अक्षर है स। तो सबसे पहले स से किसी व्यक्ति का नाम कौन बताएगा?
3: मैं बताऊं बहन जी? स से श्री संजय गांधी।
1: बिल्कुल सही कहा रोशनी। श्री संजय गांधी भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी के भाई थे
3: और श्रीमती इंदिरा गांधी के पुत्र।
1: शाबाश गोलू।
4: बहन जी, स से जगह का नाम मैं बताता हूँ। स से होता है सिक्किम।
1: शाबाश सुनील। और सिक्किम है
4: भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में से एक राज्य।
1: बिल्कुल ठीक कहा सुनील। और सिक्किम की राजधानी है
5: गैंगटॉक।
1: शाबाश कृष्णा। अब सर से पक्षी का नाम कौन बताएगा?
6: मैं बताती हूँ बहन जी। सर से होता है सारस।
1: सही कहा रानू, सारस। एक लंबी गर्दन वाला पक्षी जो मछलियाँ खाता है और अक्सर किसी तालाब के पास पाया जाता है।
7: बहन जी, अब मैं सर से किसी वस्तु का नाम बताती हूँ। स से होता है सोना।
1: शाबाश मीना। स से सोना यानी एक प्रकार की धातु जिसके चमकीले गुण की वजह से उससे कई प्रकार के आभूषण बनते हैं। तो बच्चों, आया ना मजा?
2: बहुत मजा।
0: हमें भी काफी मजा आया, क्यों दोस्तों? तो फिर मिलते हैं एक नई कहानी, एक नए गीत और एक नए खेल के साथ। तब तक अपनी प्यारी मीना को चिट्ठी लिखना मत भूलना, चाहे वो आपके सुझाव हो, आपके विचार हो या आपके अनुभव।
8: और मेरा पता है मीना की दुनिया, यूनिसेफ, पोस्ट बॉक्स नंबर 3008, लोधी रोड, HPO, नई दिल्ली 110003।

0: आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि हॉस्पिटल्स में एडमिट होने वाले ज्यादा केसेस रोड एक्सीडेंट्स यानी सड़क दुर्घटना की वजह से होते हैं। इसलिए अपनी रफ्तार पर नियंत्रण रखें, सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी
1: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 4 की ध्वनि पुस्तक गणित का जादू। तीसरा पाठ, भोपाल की सैर, पृष्ठ 23। आज सुगंधा बहुत खुश है। उसके स्कूल के सभी बच्चे अध्यापकों के साथ भोपाल घूमने जा रहे हैं। मीनाक्षी मैडम और राकेश सर बात कर रहे हैं कि कुल कितनी बसें चाहिए। मीनाक्षी मैडम,
2: हमें 4 बसें चाहिए।
1: राकेश सर, मुझे लगता है 5 की जरूरत पड़ेगी। मीनाक्षी मैडम,
2: हर बस में 50 सीटें हैं।
1: राकेश सर, पहले पता कर लें कि कितने बच्चे जा रहे हैं। इस पृष्ठ के दाहिनी तरफ सबसे ऊपर कक्षा में मीनाक्षी मैडम और राकेश सर को बातें करते दिखाया गया है। यहां पर एक तालिका है जिसके 2 भाग हैं। एक में लिखा है कक्षा और दूसरे में लिखा है बच्चों की संख्या। कक्षा 1 बच्चों की संख्या 33, कक्षा 2 बच्चों की संख्या 32, कक्षा 3 बच्चों की संख्या 42, कक्षा 4 बच्चों की संख्या 50 और कक्षा 5 बच्चों की संख्या 53। कुल बच्चों की संख्या बराबर रिक्त स्थान। मीनाक्षी मैडम ने कहा,
2: क्या हमें 4 बसों की जरूरत पड़ेगी? अगर एक बस में 50 बच्चे जा सकते हैं तो 4 बसों में 50×4 बराबर कितने होंगे?
1: तो कुल मिलाकर रिक्त स्थान बच्चे जा रहे हैं। अगर उन्हें 4 बसें मिलती हैं तो कितने बच्चे बैठ पाएंगे रिक्त स्थान? क्या कोई बच्चा बैठने से रह जाएगा रिक्त स्थान?
2: एक मैडम ने कहा, थोड़े से बच्चों के लिए हम एक और बस नहीं मंगवा सकते।
1: दूसरे ने कहा,
2: हम मिलजुल कर बैठ जाएंगे।
1: शिक्षकों के लिए निर्देश, बच्चों को पहले अनुमान लगाने सोचने के लिए प्रेरित किया जाए। उत्तर ढूंढने के लिए वो कोई भी तरीका अपना सकते हैं। छात्रों द्वारा सोचे गए अलग अलग तरीकों पर चर्चा करना आवश्यक है। पृष्ठ 24, बसों के इंतजार में। साहिबा बार बार लाइन से बाहर निकलकर देख रही थी कि बस आ रही है या नहीं। अचानक वो जोर से चिल्लाई,
3: अरे मुझे बस दिखाई दे गई है, भागो, खिड़की वाली सीट पर कब्जा करो।
1: दूसरे बच्चे भी जोश में आकर उछल कूद करने लगे, लेकिन मैडम ने कहा,
3: रुको रुको रुको, ये क्या, ये बसें तो बहुत छोटी हैं।
1: बहस शुरू हो गई। मैडम ने कहा,
3: हमने तुम्हें बड़ी बसें लाने को कहा था।
1: कर्मचारी बोले,
4: हमारे पास ज्यादा बड़ी बसें नहीं थीं, इसलिए हम बहुत सारी छोटी बसें ले आए हैं।
1: इस पृष्ठ पर सबसे ऊपर दाहिनी तरफ बच्चों का चित्र है जो एक पंक्ति में खड़े हुए हैं और सबसे आगे मैडम खड़ी हैं। साथ ही एक और दृश्य में मैडम को कर्मचारियों से बातें करते दिखाया गया है और सबसे नीचे बसों के कुछ चित्र दिए गए हैं जिनमें बच्चों को पंक्ति से उनमें चढ़ते हुए दिखाया गया है। हर छोटी बस में 35 बच्चे बैठ सकते हैं। सभी बच्चों के बैठने के लिए कितनी छोटी बसों की जरूरत होगी? रिक्त स्थान। पृष्ठ 25, यात्रा शुरू हुई। इस पृष्ठ में सबसे ऊपर बाईं तरफ एक बच्चे और एक सर का चित्र है। जैसे ही बसों ने होशंगाबाद से चलना शुरू किया, बच्चे खुशी से उछलने लगे और जोर जोर से गाने

0: लगे। कुछ बच्चे बाहर के हरे मैदान और पहाड़ों के नजारे का मजा ले रहे थे। इंदिरा, हम भोपाल कब पहुंचेंगे?
1: आशा मैडम,
2: अगर हम रास्ते में कहीं ना रुकें तो हमें 2 घंटे में पहुंच जाना चाहिए।
0: लगभग रिक्त स्थान बजे।
3: मंजीत,
2: बहुत दूर है क्या?
3: भीमसेन सर,
4: लगभग 70 किलोमीटर दूर है।
0: रूबी,
2: क्या हम रास्ते में कहीं रुकेंगे?
5: राकेश सर,
4: शायद भीमबेटका, यहां से लगभग 50 किलोमीटर दूर है।
0: अगर वो भीमबेटका जाएं तो वे वहां पहुंचेंगे 10 बजे से पहले, 10 और 11 बजे के बीच या 11 बजे के बाद।
1: जब वो सब बातें कर रहे थे, बहादुर चिल्लाया,
2: वाह, नर्मदा नदी!
0: सभी खिड़की से बाहर देखने लगे।
1: रूबी ने कहा,
2: अरे कितनी लंबी और कितनी चौड़ी है, चलो अंदाजा लगाएं कितनी चौड़ी होगी।
0: और इसी पृष्ठ पर सबसे नीचे नर्मदा नदी का चित्र बना है जिसके ऊपर पुल को दिखाया गया है। पृष्ठ 26। गोपी,
6: 100 मीटर?
2: नहीं, और भी ज्यादा,
6: पता नहीं कितनी।
0: विक्टोरिया,
2: ये जरूर ही 0.5 किलोमीटर से ज्यादा होगी।
1: आशा मैडम,
2: देखो यहां लिखा है, ये पुल 756.82 मीटर लंबा है, इसलिए हम अंदाजा लगा सकते हैं कि नर्मदा लगभग 500 मीटर चौड़ी होगी।
0: क्या विक्टोरिया सही थी?
1: सदफ,
2: मैं तो सोच भी नहीं सकता 500 मीटर।
1: आशा मैडम,
2: देखो हमारी बस लगभग 5 मीटर लंबी है, सोचो इस पुल पर एक के पीछे एक कितनी बसें खड़ी हो सकती हैं।
0: क्या तुमने कभी किसी लंबे पुल को पार किया है? वो लगभग कितने मीटर लंबा होगा? रिक्त स्थान। फिर सभी बच्चे पुल से नीचे झांकते हुए नदी को देखने लगे।
5: राकेश सर,
4: अब पानी का स्तर काफी नीचा है, ये पुल से लगभग 40 मीटर नीचे होगा।
1: आशा मैडम,
2: लेकिन मैंने इस पानी को बरसात में देखा है, तब ये बहुत ऊपर तक आ गया था, तब तो ये पुल से लगभग 15 मीटर नीचे था।
0: नर्मदा के पानी के स्तर में बरसात वाले मौसम और अब के मौसम के बीच कितना अंतर है? रिक्त स्थान, मीटर। बच्चे नदी के बारे में थोड़ी देर तक बातें करते रहे। इसी पृष्ठ के सबसे अंतिम हिस्से में एक पुल का चित्र बना है। पृष्ठ 27। अचानक एक झटके के साथ बस रुकी।
4: ओह, पेट्रोल पंप, 2 बसों में डीजल डलवाना होगा।
0: सभी बसें एक लाइन में खड़ी हो गईं। बच्चे खिड़की से गर्दन बाहर निकालकर देखने लगे कि डीजल कैसे भरा जाता है। कुछ बच्चे नीचे उतर आए ताकि वो पास से देख सकें। हर एक बस में डीजल भरने में 15 मिनट लगते हैं और 2 बसों में डीजल भरवाना है, इसलिए वो लोग वहां लगभग, रिक्त स्थान, मिनट रुकेंगे। इसका मतलब है कि उन्हें पहुंचने में, रिक्त स्थान, मिनट की देर हो जाएगी। इस पृष्ठ पर एक पेट्रोल पंप का चित्र है। इस चित्र में कई वाहनों को पेट्रोल भरते हुए दिखाया गया है, साथ ही कुछ बच्चे पेट्रोल पंप की मशीन को ध्यान से देख रहे हैं। एक लड़के ने कहा,
2: अरे इसका पेट कितना बड़ा है, ये तो पहले ही 100 लीटर ले चुका है।
0: एक लड़का बोला,
2: इसलिए हमें डीजल के लिए 3500 रुपए देने पड़ेंगे।
0: चित्र में देखो और 1 लीटर डीजल की कीमत मालूम करो। रिक्त स्थान। जब बसों में डीजल भरा जा रहा था, कुछ बच्चे पेट्रोल पंप के पास के शौचालय चले गए। अमन को शौचालय से बाहर आने में कितना समय लगा? एक लड़की बोली,
7: अमन को खाली होने में उतना ही समय लगा जितना एक बस में डीजल भरवाने में।
0: पृष्ठ 28। भीमबेटका की ओर। बसों में डीजल भरवाने के बाद यात्रा फिर से शुरू हो गई। अब बच्चों को यह बताया गया कि वो पहले भीमबेटका रुकेंगे।
1: अंजन,
8: भीमबेटका क्या है? रैना मैडम,
2: ये एक जगह है जहां बहुत सारी गुफाएं हैं और गुफाओं में चित्रकारी की गई है जिन्हें 10,000 साल पहले बनाया गया था।
5: सुमंतो,
6: 10,000 साल? मैं तो 1,000 साल पहले के बारे में भी नहीं सोच सकता।
5: गोपी,
9: ओह, 1,000 साल तो बहुत होते हैं। मैं तो 100 साल पहले के बारे में भी नहीं सोच सकता।
5: गौरी,
10: मैं 100 साल के बारे में सोच सकती हूँ क्योंकि मेरे पिताजी की दादी माँ 100 साल की हैं।
5: मंजीत,
2: इसका मतलब ये गुफाएं लगभग 100 परदादी माँ जितनी पुरानी है।
5: सभी जोर जोर से हंस पड़े। बच्चे गुफाओं में की गई चित्रकारी को देखना चाहते थे। लगभग 11 बजे वो भीमबेटका पहुंचे। एक बच्चा बोला,
6: कमाल है, 10,000 साल पहले भी वो इतनी अच्छी चित्रकारी कर सकते थे, वो भी चट्टानों पर।
5: एक लड़की बोली,
10: अरे ये चट्टाने 1,000 साल पुरानी है।
5: इस पृष्ठ के अंतिम भाग में गुफा का एक चित्र बना है जिसमें कुछ जानवरों को दिखाया गया है। पृष्ठ 29। शंकर,
6: इस चित्र में बहुत बड़े बड़े सांड बने हैं। अरे मुझे एक बात सोचिए, इन चित्रों में मैं सांडों को गिनता हूं और तुम हिरणों को गिनो।
5: बोनोमाला,
2: मैं लोगों को गिनती हूं, देखते हैं कौन ज्यादा है, सांड, हिरन या लोग।
5: एक लड़के ने गिना,
10: 34, 35, 36, 37, मैंने 37 सांड गिने।
5: लड़की बोली,
10: 112, 113, 114, 115, 116, 117,
2: मैंने 117 हिरण गिने हैं।
5: यहां पर सांड से हिरण कितने ज्यादा हैं? रिक्त स्थान। इस पृष्ठ पर एक चित्र दिया गया है जिसमें विभिन्न जानवरों के चित्र बने हैं जैसे सांड, हिरण इत्यादि। लेकिन बोनोमाला सबसे ज्यादा खुश थी क्योंकि लोगों की संख्या सांडों और हिरणों की संख्या दोनों को मिलाकर उनसे ज्यादा थी, लेकिन उसकी गिनती 200 से कम थी। उसने कितने लोगों को गिना होगा? 214, 154, 134 या 177? रिक्त स्थान। गाइड ने बताया कि यहां कुल मिलाकर 600 गुफा चित्र हैं। अब भीमबेटका से चलने का समय हो गया था। वो लोग लगभग 1 घंटा बिता चुके थे। कितने बजे होंगे? रिक्त स्थान। आखिरकार अब वो भोपाल की ओर चल पड़े। अब उन्हें वहां 1 घंटे से भी कम समय में लगभग रिक्त स्थान बजे पहुंच जाना चाहिए। पृष्ठ 30। भोजन का समय। बच्चों को अब तक भूख लग चुकी थी इसलिए उन्होंने अपने अपने खाने के डिब्बे खोल लिए। बिस्कुट, संतरे और केले भी सभी बसों में बांटे गए। हर एक बच्चे को 1 संतरा, 1 केला और 5 बिस्कुट दिए गए। सभी बच्चों ने संतरे और बिस्कुट लिए पर 38 बच्चों ने केले नहीं लिए। कितने संतरे, बिस्कुट और केले बांटे गए? इस पृष्ठ पर दाएं तरफ बिस्कुट और फलों के चित्र बने हैं और बाईं तरफ कुछ बच्चे इन वस्तुओं को देख रहे हैं। मंजीत और भानु ने जल्दी जल्दी अपना खाना खाया और समय बिताने के लिए पहेलियां बुझाने लगे। मंजीत,
10: मुझे वो संख्या बताओ जो 100 और 150 के बिल्कुल बीच में पड़ती हो।
5: भानु,
10: 120 नहीं, 130 नहीं, ये 125 होगी।
5: मंजीत,
10: बिल्कुल ठीक, अब तुम पूछो।
5: तभी और बच्चे भी उनमें शामिल हो गए। वो सभी तरह तरह की पहेलियां बुझाने लगे।
8: मैंने चार चार टॉफी अपने चार दोस्तों में बांट दी और तीन टॉफी फिर भी बच गई। कुल कितनी टॉफी मेरे पास थी?
11: रिक्त स्थान। दूसरा बच्चा बोला, ख,
8: तीन पांच और सात अंकों को मिलाकर तुम कितनी संख्याएं बना सकते हो? तुम 357 और 537 बना सकते हो। इसके अलावा और क्या बना सकते हो?
11: एक और बच्चा बोला, ग,
8: एक संख्या में 8 जोड़ दिया जाए तो वो दुगनी हो जाती है, वो संख्या क्या होगी?
11: यहां पर कुछ बच्चों का चित्र दिया गया है जो आपस में बातें करते हुए दिखाए गए हैं। शिक्षकों के लिए निर्देश, बच्चों को ऐसे ही और अधिक प्रश्न या पहेलियां मौखिक रूप से और लिखकर हल करने को कहा जा सकता है। उन्हें हल करने के लिए उपयोग में लाए गए तरीके समझाने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। पृष्ठ 31। घ, एक लड़के ने कहा,
8: ऐसी संख्या सोचिए जो 2, 3 और 5 से भाग हो जाए तथा 25 और 50 के बीच हो।
11: एक और बच्चा बोला, ल,
8: एक छोटी चींटी 3 सेंटीमीटर 1 मिनट में चढ़ती है और 2 सेंटीमीटर नीचे फिसल जाती है। उसे 2 सेंटीमीटर चढ़ने में कितना समय लगेगा?
11: क्या तुम भी इनको हल कर सकते हो? कोशिश करके देखो। हम कौन सी नाव में बैठें? बच्चे पहेलियों में इतना खो गए थे कि उन्हें पता भी न चला कि वो कब भोपाल में ताल के पास पहुंच गए। ये एक बहुत बड़ा ताल था जिसके बीच में एक छोटा सा टापू बना हुआ था। ताल उस समय बहुत सुंदर लग रहा था। उसमें बहुत सी बत्तखें शोर कर रही थीं। कुछ बच्चों ने उन्हें पॉपकॉर्न खिलाए। इस पृष्ठ पर सबसे ऊपर बाई ओर एक लड़की का चित्र है और सबसे नीचे कुछ बच्चे ताल के पास दिखाए गए हैं। कुछ को नाव चलाते हुए दिखाया गया है और कुछ बच्चे आपस में बातें कर रहे हैं। ताल में बत्तखों को तैरते हुए भी दिखाया गया है। उसके बाद आया सबसे मजेदार समय, नाव में घूमने का। इसके लिए उन्हें नाव को चुनना था, जो आसान नहीं था। पृष्ठ 32। वहां अलग अलग तरह की नावें थीं, जिसके टिकटों की कीमतें भी अलग अलग थीं और उनके चक्करों का समय भी अलग अलग था। यहां पर एक तालिका के 3 भाग हैं। पहले भाग में लिखा है नाव का नाम, दूसरे में लिखा है टिकट की कीमत प्रति बच्चा और तीसरे में समय लिखा है। आइए अब हम तालिका को पढ़ें। 1, नाव का नाम, डबल डेकर। टिकट की कीमत प्रति बच्चा 30 रुपए। समय 45 मिनट। 2, नाव का नाम, पैडल बोट। टिकट की कीमत प्रति बच्चा 15 रुपए। समय 30 मिनट। नाव का नाम। 3, मोटर बोट। टिकट की कीमत प्रति बच्चा 25 रुपए। समय 20 मिनट। नाव का नाम। 4, चप्पू वाली नाव। टिकट की कीमत प्रति बच्चा 15 रुपए। समय 45 मिनट। इसी पृष्ठ पर कुछ बच्चे इस तालिका को पढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी पृष्ठ के सबसे अंतिम भाग में एक चित्र है जिसमें विभिन्न प्रकार के नामों को दर्शाया गया है और साथ ही कुछ लोग वहां खड़े दिखाई दे रहे हैं और साथ ही कुछ बच्चों के चित्र भी बने हैं। एक लड़की बोली,
12: हम चारों पैडल नाव लेते हैं और गौरी और उसके ग्रुप के साथ रेस लगाएंगे।
11: एक दूसरी लड़के ने कहा,
13: हम मोटर नाव लेंगे, ये महंगी तो रहेगी पर बड़ा मजा आएगा।
11: शिक्षकों के लिए निर्देश, टिकट की कीमत समय आदि की दी गई तालिका पर आधारित कुछ प्रश्न पुस्तक में दिए गए हैं। बच्चों को ऐसे ही और अधिक प्रश्न स्वयं बनाने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। पृष्ठ 33। इस पृष्ठ पर सबसे ऊपर एक नदी का दृश्य है जिसमें विभिन्न प्रकार की नावें दिखाई गई हैं।
14: लड़की बोली,
2: चलो हम चप्पू वाली नाव लेते हैं, ये महंगी भी नहीं है और हमें इस आराम की सवारी में समय भी ज्यादा मिलेगा।
14: एक दूसरी लड़के ने कहा,
2: हे हम तो डबल डेकर लेंगे, इसमें संगीत भी सुनने को मिलेगा। इसकी कीमत जरूर कुछ ज्यादा है पर समय भी तो ज्यादा मिलेगा।
14: इस पृष्ठ पर कुछ बच्चों के चित्र भी दिखाए गए हैं। अब आपको इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। इंदिरा और भानु पहले मोटर नाव में गए, फिर उन्होंने चप्पू वाली नाव ले ली। उन्होंने कुल मिलाकर दोनों नावों के लिए कितने पैसे दिए? रिक्त स्थान रुपए। उनको दोनों नावों को चलाने के लिए कितना समय मिला? रिक्त स्थान। बच्चों का एक समूह डबल डेकर नाव में गया, उन्होंने कुल मिलाकर 450 रुपए दिए। कितने बच्चे डबल डेकर में गए? रिक्त स्थान। कौन सी नाव एक घंटे में दो चक्कर लगाती है? रिक्त स्थान। कौन सी नाव आधे घंटे से कम समय में एक चक्कर लगाती है? रिक्त स्थान। किस नाव में सबसे कम पैसे में सबसे ज्यादा समय मिलता है? रिक्त स्थान। जावेद ने दो बार नाव चलाई, उसने कुल 40 रुपए दिए और 50 मिनट नाव चलाई। उसने दो कौन सी नाव ली होंगी? रिक्त स्थान। वापसी। बच्चे 4 बजे तक अलग अलग नावों को चलाते रहे। अब वापस लौटने का समय हो गया था। लौटते हुए वो कहीं नहीं रुकेंगे और 2 घंटे में पहुंच जाएंगे, तो उन्हें होशंगाबाद रिक्त स्थान बजे तक पहुंच जाना चाहिए। इस पृष्ठ के सबसे अंतिम भाग में कुछ बच्चों को बस में चढ़ते हुए दिखाया गया है, साथ ही उनकी मैडम और सर भी दिखाई दे रहे हैं। पृष्ठ 34। पता करो, क्या तुम कभी स्कूल ट्रिप पर गए हो? कुल मिलाकर कितने बच्चे गए थे? तुम कैसे गए थे और कितनी दूर गए थे? उसमें कितना समय लगा था? हरेक बच्चे की यात्रा का खर्चा कितना आया? पता करने की कोशिश करो। इस पृष्ठ पर सबसे ऊपर दाहिनी तरफ कुछ बच्चों का चित्र बना हुआ है जो बड़े खुश नजर आ रहे हैं। अभ्यास। 1. बताए गए 4 पुराने गुफा चित्रों में सबसे पुराना कौन सा है? क 4200 वर्ष पुराना, ख 1000 वर्ष पुराना, ग 8500 वर्ष पुराना या घ 1300 वर्ष पुराना। रिक्त स्थान। 2. एक बस में 48 बच्चे जा सकते हैं, 3 बसों में लगभग कितने बच्चे जा सकते हैं? क 100, ख 200 या ग 150। रिक्त स्थान। 3. संख्याओं का कौन सा जोड़ 500 से ज्यादा बनता है? क 152 और 241, ख 321 और 192, ग 99 और 299 या घ 401 और 91। 4. किस समय पर क्या हुआ था? मिलान करो। इस चित्र पर सबसे अंतिम भाग में बाईं तरफ कुछ गतिविधियां दी गई हैं और उनके सामने दाईं तरफ समय लिखा हुआ है। आपको इनका आपस में सही मिलान करना है। नर्मदा नदी को पार करना, भीमबेटका के चित्रों को देखना, पेट्रोल पंप पर, ताल पर बोटिंग, दिन का भोजन और होशंगाबाद वापसी। और इनके सामने लिखा है शाम 3 बजे, शाम 6 बजे, सुबह 9:10, दोपहर 12:30, दिन में 11:30 और सुबह 9:30। इस तालिका में पहली गतिविधि को समय के साथ मिलाया गया है जो इस प्रकार है, नर्मदा नदी को पार करना सुबह 9:10 पर।
15: अब आगे आपको स्वयं सही मिलान करना है।
16: इसी के साथ तीसरा पाठ भोपाल की सैर यहीं समाप्त होता है। स्वर प्रवीण शर्मा, तकनीकी समन्वयक बटिलेंग लिंगदो, ध्वनियंकन विकास सांगवान, निर्माण सहयोग रुचि शर्मा, निर्देशन और निर्माण विमलेश चौधरी, तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत।
17: इतनी सी हंसी, इतनी सी खुशी।

0: मैं हूं उदित नारायण और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
1: रेडियो मधुबन 107.8 FM सुन रहे हैं आप। कार्यक्रम है बच्चों की दुनिया, और बच्चों की दुनिया होती है बहुत ही स्पेशल, क्योंकि उनके माइंड में लर्न करने की बहुत ज्यादा शक्ति भी होती है। वो सीखते भी रहते हैं और बहुत कुछ इमेजिन भी करते हैं। तो उसी इमेजिनेशन के अंदर जाएंगे और आज बच्चों की दुनिया में एक अलग स्टोरी बनाएंगे हम सब मिलके। तो स्टोरी में एडवेंचर होने वाला है, डर होने वाला है, क्या होने वाला है किसी को नहीं पता। लेकिन उससे पहले ये तो पता कर लें कि है कौन कौन आज स्टूडियो में हमारे साथ। तो एक बार आपके नाम और क्लास तो बता दीजिए सब लोग।
2: मेरा नाम है हर्षिता, मैं क्लास 5th में पढ़ती हूँ।
3: मेरा नाम शिक्षा है, मैं क्लास 10th में हूँ।
4: मेरा नाम है शिवन्या, मैं 2nd क्लास में हूँ।
5: मेरा नाम है आराध्या, मैं 2nd क्लास में।
6: मेरा नाम सक्षम है, मैं 6th क्लास में हूँ।
7: मेरा नाम राघव है, मैं 6th क्लास में हूँ।
1: ओके, तो एक काम करते हैं, ये गेम है, इसमें हमें अपनी स्टोरी बनानी है, और वो स्टोरी कैसी भी हो सकती है, आपको जो मन में आए, मतलब वो आसमान पे, जमीन पे, एनिमल्स पे, लोगों पे, कुछ भी आ सकता है उस स्टोरी में। स्टोरी तो सबने सुनी है ना, स्टोरी तो अच्छी लगती है। तो यहाँ आपको अपनी स्टोरी बनानी है, लेकिन नई स्टोरी नहीं बनानी है, जो फर्स्ट पहले जैसे राघव बोलेगा, वो जो स्टोरी जहाँ छोड़ेगा वहाँ से आपको उसको आगे बढ़ाना है। ठीक है, ओके, सब लोग समझ गए? तो चलो राघव,
5: इसके बाद से।
1: हाँ, उसके बाद से आपको बोलना है। राघव स्टार्ट करो।
7: एक 10 साल का बच्चा था, उसके मतलब उसके पास एक मीटेरॉइड गिरा।
1: उसका नाम क्या था?
7: उसका नाम राहुल।
6: वो मीटेरॉइड से बचने के लिए भागा।
1: ओके,
5: और वो भागते रहे,
1: भागते रहा। फिर क्या हुआ?
5: फिर क्या हुआ, उसको एक वो लायन दिख लिया, और वो बोला, वो जो लायन था रॉयल से बोला,
1: लायन जल्दी से घुर्राया। फिर क्या हुआ?
7: फिर राहुल भागा और लायन से उसने बोला कि मुझे छोड़ दो, उस मीटेरॉइड के पास चले जाओ। फिर लायन तो उसके पीछे ही पड़ गया। फिर वो भागते भागते बच गया लायन से, पर वो एक अंधेरी जगह पे पहुंच गया। उस अंधेरी जगह पे बहुत सारे लायन थे, और वो एक लायन के ऊपर सैडल लगा के उसके ऊपर राइड करने लगा।
1: वाह, लायन पे राइड करने लगा।
6: वो लायन उसको काट गया।
5: उसके बाद उसको एक गुफा मिली। फिर उस राहुल के पास पावर आ गया, तो उसको एक जाल था, वहीं पे उसको ऐसे बंद कर,
1: लाइन को बंद कर दिया जाल में।
7: उसके बाद राहुल बड़ी शांति से अपने कमरे पे गया। उसने कमरा खोला और जाके लेट के सो गया।
1: लाइन के काटने के बाद सो गया जाके? बड़ा ब्रेव राहुल है। और ये क्या किया उसने, तो अपना इलाज भी नहीं कराया। अच्छा बताओ आगे क्या हुआ? काटा था। चलो आगे क्या हुआ? सो गया राहुल, फिर क्या हुआ?
7: दीदी जब वो सो गया थोड़ी देर के बाद, इतने में बहुत सारा खून बह गया था, तो भी उसको कुछ नहीं हुआ। और फिर वो वापस, क्योंकि उधर उसके घर पे तो कोई नहीं था, फिर वो भागे भागे भागे भागे बाहर गया। और बाहर जाने के बाद उसको ऐसे लगा कि मेरे सामने ऐसे सारे भूत खड़े हैं।
1: फिर क्या हुआ
7: दीदी? जब उसको लगने लगा कि भूत उसके सामने खड़े हैं, तो उसने अपनी कटाना उठाई और उसने भूत को काट के रख दिया।
1: भूत काट दिया, ओके।
6: फिर वो वापस घर पे गया और सोने लगा, तो उसने देखा कि उसके बेड पे चींटियां हैं बहुत सारी।
1: ओके, भूत गए तो चींटियां आ गई। फिर क्या हुआ?
5: फिर वो सुबह तक सोते रहा।
1: सुबह तक सोता रहा,
5: और वो हाँ। वो खुद भूल गया कि वो रोबोट है।
1: अच्छा, तो असल में राहुल एक रोबोट था। बताओ
7: दीदी, फिर राहुल जब उठा ना सोके, तो उसे पता चला ये पूरा सपना था। तो फिर वो अपने जो भी वो उसका मीटेरॉइड तो सच में गिरा हुआ था, तो उसकी जो लैब थी, जिधर वो साइंटिस्ट के साथ काम करता था, वो लैब टूट गई थी। तो इसलिए वो फिर कहीं और ढूंढ रहा था कि कोई साइंटिस्ट मिल जाए अमेरिका में, इजिप्ट में।
1: तो मतलब सपना था ये सब कुछ, तो लैब भी टूट गई और सपना भी खुल गया। तो सपने में राहुल रोबोट भी बन गया था, और उसने भूतों से लड़ाई भी कर ली थी। पावर भी आ गई थी स्पेशल राहुल में, क्या बात है।
2: और फिर इजिप्ट और अमेरिका भी ढूंढ रहा था साइंटिस्ट।
1: तो राहुल को तो बड़ी सारी कंट्रीज ढूंढ रही थी, क्या कहानी बनाई आप लोगों ने, वाह वाह। एक और बनाएंगे कहानी?
5: हाँ, भूत वाली।
1: कौन शुरू करेगा इस बार?
2: दीदी मैं करूँ।
5: दीदी भूत वाली, लेकिन
1: इसमें एक से ज्यादा जो मर्जी बना सकते हैं, कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं।
6: मैंने तो बस ये बोला था कि मीठी और आइडिया।
1: अच्छा मेरी बात सुन लो, आप लोगों को स्टोरी बढ़ानी है आगे, ठीक है, लेकिन एक से ज्यादा कैरेक्टर्स होने चाहिए, दो तीन चीजें होनी चाहिए उसमें, ठीक है। तो अभी स्टोरी आप स्टार्ट करो।
5: दीदी आप भूत वाला बोले,
1: कुछ भी आप बना सकते हो स्टोरी जो आपको मन में आए, बस जोड़ना चाहिए पीछे वाली स्टोरी से, जुड़ना जरूरी है। माइक नहीं भी लाओगे तो चलेगा।
6: करनाल में एक गांव था जो बहुत पुराना था।
1: उस गांव में क्या था, कुछ तो बताओ, इंट्रो दो।
5: उस गांव में तीन लड़के थे।
1: ओके।
5: वहाँ पे एक बुढ़िया रहती थी और वो जब रात में सोने गई अपने बच्चों के साथ, तब उसके साथ फिर उसको आवाज आया कि छन छन की। फिर बाहर जाके देखी कोई नहीं है, फिर बाहर आके देखी कि इधर उसको आवाज आया, इधर आ। जब बाहर गई तो उस चुड़ैल ने अपना फेस ही बदल लिया, तो उसकी फ्रेंड बन गई। वो चुड़ैल बोली कि तुम मेरी दोस्त बन सकती हो? हाँ। तो वो बुढ़िया बोल रही हाँ, तो फिर उसके घर में सो गई वो चुड़ैल। फिर
1: तो तीन लड़के थे वहाँ पे और एक
7: दीदी, वो तीन लड़के दोस्त थे। वो बुढ़िया है ना, उनके बगल में पड़ोस में रहती थी। हाँ, तो उनको लगा कि है ना किसी की चिल्लाने की आवाज़ आई, तो वो अपने कमरे से तीनों बाहर आए और उन्होंने देखा कि वहाँ पे एक है ना, एक जो भूत था वो है ना उसकी दोस्त के रूप में था, तो उन्हें भी समझ नहीं आया, तो वो तीनों है ना वापस कमरे में चले गए, उनको बुढ़िया ही नहीं दिखी थी।
1: ओके।
2: दीदी फिर उसके बाद वो जब कमरे में गए सुबह उठ गए, उठने के बाद उनके साथ बहुत अजीबोगरीब चीजें हुई, जैसे कि अब वो रोज ऐसे ही मतलब उनके पास जो गाय थी उनको मतलब छोड़ते थे लैंड में ऐसे चारा खिलाने के लिए, तो फिर उस टाइम में ना उनको ऐसे आवाजें आ रही थी कि मैं नहीं छोड़ूंगी तुमको, ऐसा वैसे।
1: फिर क्या हुआ?
7: फिर उसके बाद है ना,
1: बोलो
7: दीदी, उसके बाद है ना किसी मतलब एक है ना काली जादू वाली बुढ़िया है ना, वो काला जादू कर रही थी, तो वो उसने बुढ़िया को जिंदा कर दिया, वो जो मरी थी। और फिर उसने बोला तुम कौन हो, तो उसने बोला कि हाँ मेरे को मेरी दोस्त ने मार दिया था। पर फिर उसने बोला कि ना वो तुम्हारी दोस्त नहीं थी, वो चुड़ैल थी, वो तुम्हारा दोस्त का रूप लेके आई थी, तो उसने बोला उस चुड़ैल को तो मैं मार दूंगी।
1: ओके।
6: और सबसे खास बात, जो वो तीन लड़के थे वो भूत एक्सप्लोरर थे, वो रात को भूत को ढूंढने के लिए निकले थे उसी।
1: अच्छा, भूत।
5: उनमें से एक लड़के को तीर चलाना आता था। और जो एक लड़का था उसका नाम था राहुल, वो भूत ही नहीं था।
1: वो भूत नहीं था, वो बाकी दोनों भूत थे।
7: वो भूत थे और वो दूसरे भूतों को एक्सप्लोर करते थे।
1: ओके।
7: दीदी वो दोनों भूत थे और उन्होंने एक साथ राहुल को मार दिया। फिर वो जो राहुल था उसकी आत्मा निकली और वो भी एक भूत बन गया और वो उनको छोड़ने नहीं वाला।
6: दीदी फिर है ना, और राहुल ने उठ के देखा तो वो तो उसका सपना था। फिर वो अपने उन दोनों दोस्तों के पास गया, फिर उन दोनों दोस्तों को उसने बोला कि क्या तुम भूत हो, तो उसने बोला नहीं हम तो तुम्हारे दोस्त ही हैं, तो उसको पक्का पता चल गया था कि उसके वो दोस्त ही हैं ना एक भूत, वो बस उसको सपने में आया था और ना उनके पास वाली कोई बुढ़िया मरी थी,
1: कुछ हुआ ही नहीं था, सब कुछ सपना था।
6: सब कुछ सपना था।
7: उसने उठ के सब कुछ देख लिया कि हाँ ये सपना था, कन्फर्म करा और बस वो अपने खुशी खुशी फिर काम पे चला गया।
1: ओके। अच्छा तो इतनी भूत वाली स्टोरी सुनाई आप लोगों ने, ये आपको लगता है सच में भूत होते हैं कि नहीं होते
5: हैं? नहीं होते।
6: एनर्जीज होती हैं।
1: नेगेटिव एनर्जीज होती हैं। ओके।
5: लेकिन मेरे को तो डर लगता है भूत।
1: डर लगता है भूत से?
5: मैं पढ़ती भी नहीं हनुमान चालीसा।
1: हनुमान चालीसा पढ़ते हो?
5: आता हनुमान चालीसा लेकिन मैं पढ़ती नहीं।
1: क्यों नहीं पढ़ते? आती है तो पढ़नी चाहिए ना, है ना? थोड़ी थोड़ी आती है क्या, है ना? अभी आप छोटे हो ना, इसलिए पूरी नहीं आती होगी आपको, है ना? कोई बात नहीं, सीख लेना।
8: मैं ये बोल रहा था कि वह पूरा उसका सपना था और उसने सपने में कुछ किया ही नहीं था। और जो ये भूत भूत होते हैं वो रियल में नहीं होते हैं। मतलब अगर आप सोचेंगे कि हाँ भूत रियल में होते तो अपने आसपास नेगेटिव एनर्जी घूमते रहे, पर हमको ऑलवेज पॉजिटिव सोचना चाहिए।
5: लेकिन भगवान रियल में होते हैं।
1: भगवान रियल में होते हैं।
7: दीदी बोलते ना अगर मतलब पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव होगा और नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव ही होगा।
1: लेकिन भूतों से डर लगता है क्या? किसको लगता है डर? लगता है, लगता है।
5: मुझे रात को लगता है।
1: रात को लगता है ना? हाँ, मुझे भी लगता है कभी कभी। लग सकता है डर?
5: कभी
7: डर जल्दी थोड़ा मुझे भी रह जाता है अंदर। थोड़ा बहुत जो डर होता है ना, सोचते हैं हमें तो डर नहीं लगता, बिल्कुल ब्रेव, और कहीं ना कहीं डर थोड़ा बहुत तो होता ही।
1: थोड़ा बहुत होता है ना। राघव, राघव लगता है?
6: नहीं
1: दीदी,
7: दीदी पहले लगता था, अब नहीं लगता। अब तो ऐसा लगता है कि भूत को पकड़ के उसको पूरा कूट के फेंक दूंगा।
1: ऐसा लगता है? ओके, आपको
6: पहले लगता था, अब इतना नहीं लगता। पहले अब लगता ही नहीं।
1: पहले कब लगता था मतलब?
6: पहले जैसे जब मैं थोड़ा छोटा था तब लगता था।
1: कितने छोटे थे आप?
6: 7 या 7 से नीचे
1: तब लगता था ना। तो क्यों लगता था? आप लोगों ने क्या भूत वाले वीडियोस या मूवीज देखे हैं?
5: मैं तो खाली भूत वाला वीडियो देखती रहती।
1: खाली भूत वाले वीडियो देखते हो? और आप?
5: मैंने भूल भुलैया मूवी देख रखी है।
1: हाँ, उसमें भूत होता है ना।
7: दीदी मैंने भूल भुलैया 1 से लेके 3 तक सारी देखी है।
8: दीदी मैंने भी देखी है।
1: अच्छा, यूट्यूब पे वीडियोस देखते हो आप लोग?
8: नहीं दीदी, टीवी पे भी आती है। हाँ, या फिर हम चला लेते हैं।
1: चला लेते हो? तो जैसे भूत के वीडियोस वैसे तो देखो ना, अगर वीडियोस तो जो हम देखते हैं वैसा हमको लगने लगता है, मालूम है? अगर हम जो जैसे आप कोई ऐसे पोएम वाले वीडियो देखोगे, गाने वाले वीडियो देखोगे तो गाना सीख लोगे ना, वीडियो देख के याद हो जाता है ना।
5: स्कूल में म्यूजिक सिखाया जाता है
1: ना, तो याद हो जाता है ना फिर। तो ऐसे अगर, क्योंकि हमारा ब्रेन बहुत पावरफुल है ना, तो अगर आप भूत वाले वीडियोस देखोगे ना तो वो ब्रेन को याद हो जाता है, तो वो हर जगह फिर हमको भूत दिखाता है और डराता है। तो इसलिए
5: मेरे को ऐसा लगता है इस घर में कोई आत्मा भटकती है,
1: है ना? तो अगर हम वीडियोस देखते हैं ना तो फिर हमको और डर लगता है, क्योंकि हमारा ब्रेन ना ऐसे हमको डरा देता है, क्योंकि उसको याद हो जाता है वो भूत वाला वीडियो। तो अगर हमको थोड़ा डर कम करना है ना तो हमको वो वीडियो नहीं देखने हैं। हमको ना, और कोई ऐसा वीडियो है जिसमें आपको बहुत मजा आता है देखने में, भूत के अलावा जिसमें बहुत मजा आता है?
5: सोसो सासा।
1: उसमें क्या होता है?
5: उसमें दो बहन होती है।
1: दो बहनें होती हैं। कार्टून है क्या?
5: बस ऐसे ही थोड़ा बहुत कार्टून है।
1: थोड़ा बहुत है।
8: यूट्यूब चैनल
1: है। ओके, और आपको क्या अच्छा लगता है?
5: कार्टून।
1: कार्टून अच्छे लगते है ना आपको?
5: मेरे को वीर वाला
1: कार्टून अच्छा लगता है।
5: मुझे ब्लू विंग वाला।
1: ओके, और आपको?
6: कार्टून। ब्लू लॉक।
1: ओके, और आपको? हाँ, एनिमे भी अच्छा लग सकता है। और आपको?
7: दीदी मैं इतना कार्टून देखती नहीं, मुझे टाइम नहीं मिलता। वैसे तो मैं फिर यूट्यूब चैनल में IUPU का एक चैनल है वो देखती
5: हूँ। मैं भोजपुरी देखती हूँ पिक्चर।
7: तो वो जो उसके अंदर वो ऐसे चैलेंजेस करवाते हैं।
1: हाँ, उसमें मजा आता है ना, चैलेंजेस करते हैं, गेम्स करते हैं। शिक्षा, आप तो सबसे बड़े, आपको क्या अच्छा लगता है?
7: दीदी शिनचैन और डोरेमोन।
5: दीदी आपने वही कभी चाली चाली खेला है?
1: नहीं, मैंने तो नहीं खेला। मैं आप लोगों से सीख लूंगी अभी इसके बाद, ठीक है? तो इसलिए जो
5: ये
1: भूत वाला है,
7: और कभी कभी ऐसे वीडियो में दिखाते हैं कि वो एकदम पेंसिल अगर चलती है ना तो भूत से चलते, ऐसे होता है वो।
1: तो
5: अगर खुद हो जाता है, अगर यस पे हो जाता है तो, अगर सच्चे में भूत हो तो वो यस पे ऐसे हो जाता है,
1: पेंसिल घूम जाती है। तो आपने खेला है वो? नहीं खेला है ना, देखा है उसके बारे में वीडियो?
6: दीदी जब राघव और मैं तो शाम में थे तो हमने राघव के दोस्त के घर पर जाके कुछ भूतिया वीडियो देखी थी।
1: अच्छा,
6: रात को बहुत डरे थे,
1: बहुत डर लग रहा था।
7: अपने घर चला गया था उसी टाइम
6: भी चला गया।
1: डर तो लगता है ना देख के।
7: दीदी फिर मेरे को बाद में फोन करके बोल रहा था यार कुछ होता नहीं है, चल मैं रह ही जाता।
1: है ना, लेकिन डर लगने लगता है उस वक्त। तो डर लगने तो मन करता है घर भाग जाओ फटाफट।
7: दीदी वो ऐसे बोलते थे कि हेल में किसी बंदे ने बनाई है, उसके मतलब एक डॉग था उसके साइड में हाथ, मतलब वो हेल के हाथ भी थे खून के।
1: अरे बाप रे।
8: और वो उसके मतलब वो ना डॉग इकलौता था जो हंस रहा था, हंसता हुआ डॉग किसी को नहीं दिखता,
1: डरावना हंसता हुआ डॉग। ओके
5: दीदी, मैं किशनगंज में एक रात सो रही थी तो मेरे को रात में ऐसे आवाज आया बहुत जोर से।
1: आवाजें सुनाई दी। ओके तो जैसा हम बात कर रहे थे, जब हम वीडियोस देखते हैं ना, तो आप ना वीडियोस देख के फिर भूल जाओगे, कुछ और करने लगोगे, है ना। लेकिन हमारा जो ब्रेन होता है ना, उसमें सबकॉन्शियस, वो आप बाद में पढ़ोगे जब बड़े हो जाओगे ना, एक ऐसा ब्रेन होता है जिसको सब कुछ याद होता है, छप जाता है। तो अगर आप भूत वाले वीडियोस या गेम्स खेलोगे ना, तो आपको डराएगा, वो रात को डराएगा, है ना, अलग अलग टाइम पे डर लगेगा। तो ऐसे वाले गेम्स या वीडियोस की जगह आपने जो और कार्टून्स बताए ना, वो अच्छी अच्छी चीजें देखो, क्योंकि डरना किसी को अच्छा लगता है क्या?
8: नहीं दीदी,
1: नहीं लगता है ना,
5: देखने का मन करता है लेकिन डर लगता है।
1: डर लगता है ना, तो डर जब लगता है तो मजा आता है क्या? आज तो बड़ा अच्छा लगा डरने में, ऐसा होता है? नहीं ना, तब तो लगता है घर भाग जाओ, डर लगता है ना बहुत, अकेले जाने में भी डर लगता है।
5: हनुमान चालीसा भी पढ़ सकते
1: हैं, हनुमान चालीसा भी पढ़ सकते हैं। तो डर ना लगे उसके लिए हमको क्या करना है, ऐसे वाले वीडियोस की जगह
5: और कुछ देखना है।
1: कितना अच्छा आंसर दिया आपने, वाओ।
8: दीदी क्या हुआ था, जब मैं 6 में थी और मेरे गली में ना मेरे थोड़े फ्रेंड्स थे और एक दो रिलेटिव्स भी थे, तो उस टाइम पे ना वो एक लाइट होती है ना लेजर लाइट करके, वो छोटे बच्चे से घुमाते हैं, तो ना हम ऐसे वो मतलब इधर से घुमा रहे थे, मेरे जो छत थे ना उधर से हम वो घुमा रहे थे, और फिर कल परसों ना लिटरली हमको ऊपर आसमान में ना ऐसे लेजर लाइट कोई नहीं घुमा रहा, ऐसे दिखता तो है, सब तरफ देख के आ जाता है, कोई नहीं घुमा रहा, पर वो कहीं ना कहीं से तो वो आता ही है लेजर लाइट, और हम पे ही गिरता है वो लेजर लाइट, ऐसे होता है। और फिर रात को मतलब एकदम से ये होता है, फिर मेरे वो जो रिलेटिव्स होते हैं ना वो बोलते हैं कि हमारे घर पे आवाज़ें आ रही थी, वैसे वो उस टाइम पे बहुत डर लग रहा था, वो सबसे मेरा एकदम डरावना सीन था।
1: तो अभी हमें ये समझ में आया कि अगर हमें डर लगता है, एक तो किसी बड़े को बताना है अगर ज़्यादा डर लगे तो, है ना, बताना ज़रूरी है, फिर ऐसे नहीं तो आपको अकेले और डर लगेगा। और दूसरा जैसा आपने बताया कि और दूसरे तरह के वीडियोस देखने हैं, है ना, नहीं तो हमारा ब्रेन फिर वो याद करके हो सकता है आज डराए कल डराए और फिर बाद में भी डरा सकता है हमको, और डरते हैं तो फिर वीक लगता है, अच्छा नहीं लगता है ना, फिर हमको कभी कभी ऐसे घबराहट होने लगती है ना, और भागने का मन करता है, यहाँ से भाग जाओ फटाफट कहीं पे, है ना, और अकेले जाने में तो बहुत ही डर लगता है, पानी पीने या वॉशरूम जाने में भी डर लगता है ना अकेले रात को अंधेरे में।
5: हाँ, मैं पापा जब सोते मेरे को वॉशरूम लगता है तो मैं पापा के साथ ही जाती हूँ।
1: हाँ, तो इसलिए कौन से वीडियोस देखने हैं, अच्छे वाले, ठीक है, पक्का और अच्छे अच्छे वीडियोस देखेंगे जिसमें मजा आए, जिसको हम एंजॉय करें, है ना। ओके
8: दीदी, मेरा एक दोस्त है, उसका एक और दोस्त है, उस वो है ना मतलब उसके साथ बहुत ज्यादा होरन चीज हुई थी, मतलब है ना मैं आपको बता नहीं सकता।
1: कोई बात नहीं,
8: वो बहुत ज्यादा
1: कोई बात।
5: दीदी एक भूत के बारे में बताऊं?
1: बताओ।
5: तो एक लड़का था, वो रात में सोया ही नहीं था, और जब वो बाहर पानी पीने गया तो उसको बहुत अजीब सा लगा डरने।
1: उसने भी कोई हॉरर स्टोरी देख ली होगी इसलिए। आराध्या तो नहीं देखती है भूत वाले वीडियोस? नहीं ना। हाँ, अच्छी बात है, अच्छे अच्छे वीडियोस देखना, ठीक है।
5: डेडी जब मुझे रात में वो समाटने में अकेले चली जाती हूँ।
1: हाँ, क्यों? क्योंकि आप भूत वाले वीडियोस नहीं देखते ना, इसलिए आपको डर नहीं लगता। बहुत अच्छी बात है। तो इसीलिए अगर आपको लगता भी है ना डर लगने लगा है, कोई बात नहीं, जैसे ब्रेन में वो वाले वीडियोस छप गए थे, दूसरा कुछ अच्छा देखोगे तो वो भी छप जाएगा, तो इसलिए अच्छा अच्छा देखो, है ना। आप लोग हनुमान चालीसा पढ़ सकते हो, भगवान को दोस्त बना के उनको साथ लेकर जा सकते हो, थोड़ा थोड़ा सा मेडिटेशन सीख सकते हो, तो उससे डर फिर छू मंतर हो जाएगा, गिली गिली छू हो जाएगा, क्या हो जाएगा,
9: गिली गिली छू।
1: चलो डर को करते हैं गिली गिली छू, हमारे दोस्तों को करते हैं बाय बाय।

0: मैं कनव हूँ, मैं 8वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। कल जब मैं स्कूल से घर आ रहा था तो पता है मैंने क्या देखा? एक अंकल सड़क पे कचरा फेंक रहे थे। मैंने उनको जाकर बोला कि अंकल सड़क पे कचरा नहीं फेंकना चाहिए, तो पता है उन्होंने क्या बोला?
1: अरे बड़ा है मुझे सिखाने वाला।
0: उन्होंने मेरी बात नहीं मानी और वो चले गए, लेकिन मैंने खुद ही कचरा उठाकर कचरे के डब्बे में डाल दिया।
2: कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक हमारे आसपास का 21वां पाठ, किसकी झलक किसकी छाप, पृष्ठ 192। आछी छी। आशिमा खिड़की के पास बैठी पढ़ रही थी। बहुत तेज हवा चल रही थी, धूल भी उड़ रही थी। अचानक आशिमा को जोर से छींक आई। आछी छी। आशिमा की माँ और पिताजी दोनों रसोई घर में सब्जी छांट रहे थे। माँ ने कहा, देखा छींकती है तो बिल्कुल आपकी तरह। अगर आप यहाँ ना होते तो मैं समझती कि आप नहीं छींका है। तालिका में लिखो, आशिमा की छींक जैसी क्या तुम्हारी भी कुछ खास पहचान है जो तुम्हारे परिवार के किसी सदस्य से मिलती है? क्या और किससे? तालिका बनाओ जिसमें दो कॉलम हों। एक कॉलम में लिखो तुम्हारी खास पहचान और उसके आगे दूसरे कॉलम में लिखो किससे मिलती है। पृष्ठ 193। बताओ तुम्हारे परिवार के किसी सदस्य से तुम्हारा चेहरा या कुछ और मिलता है? क्या क्या इसके बारे में तुम्हें किसी ने बताया या खुद ही पता चला? जब लोग तुम्हारी तुलना तुम्हारे परिवार के सदस्य से करते हैं तो तुम्हें कैसा लगता है और क्यों? तुम्हारे घर में सबसे ऊंचा कौन हंसता है? उसकी हंसी की नकल करके दिखाओ। किसकी मौसी कौन? नीलिमा स्कूल की छुट्टियों में अपनी नानी के घर गई थी। उसने किसी को आते देखा और अंदर जाकर माँ से कहा, अम्मा देखो तुमसे मिलने कोई मौसी आई हैं। माँ ने बाहर आकर देखा और कहा, अरे पगली ये तुम्हारी मौसी नहीं तुम्हारी बहन है। यह तो तुम्हारी सबसे बड़ी नानी के बेटे जगदीश की बेटी किरण है। असल में तो तुम इनके प्यारे से छुटकू समीर की मौसी हो। नीलिमा की बड़ी नानी से लेकर छोटे समीर तक के नामों की सूची बनाओ। नीलिमा का किससे क्या रिश्ता है लिखो। पता करो क्या तुम्हारे परिवार में भी अलग अलग उम्र के भाई बहन या मामा भांजे जैसे रिश्ते हैं? घर के बड़ों से पूछो। पृष्ठ 194। कैसे जुड़े हैं हम सब? यहाँ एक चित्र में दो तितलियाँ दिखाई दे रही हैं, एक बड़ी तितली एक छोटी तितली। दोनों आपस में बातें कर रही हैं। बड़ी तितली छोटी तितली से कह रही है, तुम्हारी दादी की चचेरी बहन की जो दूसरे नंबर की बिटिया है तुम बिल्कुल उसके जैसी दिखती हो। नीलिमा छोटे समीर से खेलने लगी। इतने में माँ ने कहा, किरण देखो मेरी नीलिमा के बाल बिल्कुल तुम्हारे बालों जैसे हैं, घने काले और घुंघराले। शुक्र है मेरे बालों की तरह सीधे भूरे और बेजान नहीं हैं। नीलिमा की नानी हंसकर बोली, हाँ हैरानी की बात है, जैसे हम बहनों के घने घुंघराले बाल थे अब वैसे ही हमारी दूसरी पीढ़ी के बच्चों के हैं। सब की बातें सुनकर नीलिमा ने सोचा, कहने को तो हम दूर के रिश्तेदार हैं मगर आपस में कितने जुड़े हैं हम सब। पता करो और लिखो, नीलिमा के बाल उसकी नानी की तरह घुंघराले हैं। तुम अपनी किसी बहन भाई, चाहे ममेरा भाई चचेरी बहन की कोई पहचान देखो, जैसे आँखों का रंग, गालों में गड्ढा जिसे डिंपल कहते हैं, कद, पतली या मोटी नाक, आवाज़। बताओ कि यह पहचान यानी गुण उसकी माँ के परिवार से आई होगी या उसके पिता की तरफ से। एक तालिका बनाओ अपनी कॉपी में और इस तरह से भरो जैसे यहाँ हम नीली माँ का उदाहरण देकर समझा रहे हैं। आप तालिका में 4 कॉलम बनाओ। पहला कॉलम नीली माँ खास पहचान घुंघराले बाल। दूसरा कॉलम किससे मिलती जुलती है, उसकी नानी से। तीसरा कॉलम माँ की तरफ से, उसमें राइट का निशान। पिता की तरफ से, उसमें गलत का निशान। इसी तरह से आप भी अपने भाई बहनों की तालिका बनाएं। क्या तुमने अपने या किसी और के परिवार में बहुत छोटे बच्चे को देखा है? बच्चे की आंखें, नाक, रंग, बाल या उंगलियां परिवार वालों में से किससे मिलती जुलती हैं? उनके नाम लिखो। पृष्ठ 195। नीलिमा के बाल अपनी नानी जैसे घने, काले और घुंघराले हैं। नीलिमा की माँ के बाल सीधे, भूरे और बेजान हैं। तुम्हारे बाल कैसे हैं? मोटे या पतले? चिकने या रूखे? तुम्हारे बालों का रंग क्या है? अपने बालों का नाप लो और लिखो। क्या तुम्हारे बाल तुम्हारे परिवार में से किसी से मिलते जुलते हैं? किससे? तुम्हारे परिवार में सबसे लंबे बाल किसके हैं? तुम ऐसे कितने लोगों को जानते हो जिनके बाल 1 मीटर से लंबे हैं? क्या लंबे बाल होना उनके परिवार की पहचान है? क्या तुम अपने कद का नाप लेना जानते हो? सिर से पांव तक का नाप लो और लिखो। सोचो जब तुम बड़े होंगे तब तुम्हारी लंबाई कितनी होगी और किसके जैसी होगी? अपने घर के लोगों की लंबाई नापो और तालिका बनाओ। यहाँ 2 चित्र दिए हैं। पहले चित्र में एक बच्चा दादाजी के बाल नापना चाहता है, लेकिन दादाजी के तो बाल ही नहीं, बस पीछे की तरफ थोड़े से बाल हैं। बच्चा कह रहा है, दादाजी के बाल नापना आसान नहीं।

0: के सामने खड़ी है?
1: जी नहीं, उसके सामने आईना नहीं, उसकी जुड़वा हैं।
0: चकरा गए ना?
1: जब कभी वे दोनों मिलती हैं तो उनके मामा जी भी गड़बड़ा जाते हैं।
0: कभी सरोजा को डांट पड़ जाती सुवासिनी की शैतानी की,
1: कभी सुवासिनी खुद अपने मामा को कहती कि सुवासिनी बाहर गई है।
0: आजकल उनके मामा समझ लेते हैं, कहते हैं मराठी में गाकर दिखाओ।
1: ये क्या तरीका हुआ?
0: उनके बारे में पढ़ो तो समझ जाओगे।
1: दोनों बहनें 2 हफ्ते की ही थीं जब सरोजा की चाची ने उसको गोद ले लिया था और अपने साथ पुणे ले गई थीं।
0: चाची के घर में सभी को संगीत का बेहद शौक है। सुबह की शुरुआत ही संगीत से होती है। सरोजा को बहुत से गीत और गाने आते हैं, दोनों भाषाओं में, मराठी और तमिल।
1: उसके घर पर सब लोग तमिल बोलते हैं और स्कूल में ज्यादातर बच्चे मराठी।
0: सुभासिनी चेन्नई में अपने पिता के साथ रहती है। उनके पिता कराटे के कोच हैं। 3 साल की उम्र से ही सुभासिनी बाकी बच्चों के साथ कराटे करने लगी।
1: छुट्टी के दिन दोनों बाप बेटी सुबह से ही अभ्यास करने लग जाते हैं।
0: देखने में दोनों बहनें एक जैसी हैं, पर उनकी पहचान फिर भी काफी अलग है।
1: अब तुम समझे उनके मामा ने उनकी पहचान का तरीका कैसे ढूंढा?
0: चर्चा करो, सरोजा और सुवासिनी में क्या गुण, क्या बातें मिलती जुलती हैं और क्या अलग हैं?
1: क्या तुम किसी जुड़वा को जानते हो?
0: उनमें क्या एक जैसा है और क्या अलग?
1: क्या तुम ऐसे जुड़वा को जानते हो जो एक जैसे नहीं दिखते?
0: सरोजा और सुवासिनी दिखते तो एक जैसे हैं, पर इनमें कई बातें अलग अलग हैं।
1: जैसे सरोजा को 2 भाषाएं आती हैं।
0: अगर सुवासिनी के घर पर 2 भाषा बोलते तो वह भी दोनों भाषा बोलना सीख सकती थी।
1: बहुत सी चीजें जैसे बुनाई, भाषा, संगीत या पढ़ने का शौक हम आसानी से पा लेते हैं जब हमें उसका माहौल मिलता है। पृष्ठ 197। परिवार से मिला।
0: अपनी क्लास में यह मजेदार सर्वे करो, कितने बच्चे यह कर पाते हैं लिखो।
1: 1, जीभ को तालू की तरफ मोड़ो बिना दांतों से छुए।
0: 2, जीभ को किनारे से उठाकर एक लंबे रोल की तरह बनाओ।
1: 3, पैरों की सारी उंगलियों को खोलो, बाकी उंगलियों को हिलाए बिना छोटी उंगली हिलाओ।
0: 4, हाथ के अंगूठे को अपनी कलाई से लगाओ।
1: 5, हाथ के बीच वाली उंगलियों का वी बनाओ, दोनों उंगलियां इधर उधर करके।
0: 6, बिना छुए बाहरी कान हिलाओ।
1: जो बच्चे ये कर पाए वे अपने परिवार वालों से भी ऐसा ही करने को कहें।
0: क्यों? कितने बच्चों को ये बातें उनके परिवार से मिली हैं?
1: क्या माँ बाप से नहीं मिला?
0: सत्ती कुछ ही महीने की थी जब उसकी एक टांग में पोलियो हो गया। इतने वर्षों में उसने कभी भी अपनी इस दिक्कत को अपने काम के आड़े नहीं आने दिया है। दूर दूर तक पैदल जाना और कई मंजिल सीढ़ियां चढ़ना उसके काम का हिस्सा रहा है। अब जब उसकी शादी हुई तो लोग उसे बच्चा पैदा ना करने की सलाह दे रहे हैं। उसे खुद भी डर है कि कहीं उसके बच्चे को भी पोलियो ना हो जाए। फिर उसने डॉक्टर से सलाह ली।
1: यहाँ एक चित्र दिया गया है जिसमें डॉक्टर सत्ती से कहते हैं,
0: नहीं नहीं, तुम परेशान मत हो। माँ या बाप को पोलियो है तो ऐसा नहीं है कि बच्चे को भी होगा।
1: पृष्ठ 198। क्या तुमने कहीं पोलियो के बारे में पढ़ा या देखा है?
0: क्या तुमने पोलियो की दवाई पिलाने के बारे में कोई खबर पढ़ी है?
1: क्या तुम किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हो

से पोलियो है। मटर के प्रयोग चिकने या खुरदुरे। ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले ग्रेगोर मेंडल का जन्म सन 1822 में एक गरीब किसान परिवार में हुआ था। उन्हें पढ़ाई का बहुत शौक था, पर परीक्षा के नाम से ही पसीने छूटते थे। क्या तुम्हारा भी कुछ ऐसा ही हाल है? यूनिवर्सिटी की पढ़ाई के पैसे ना होने के कारण उन्होंने एक मठ में रहकर मंक यानी मुनि बनने का सोचा, ताकि वहीं से उन्हें आगे पढ़ने का मौका भी मिल सके, जो मिला भी। पर विज्ञान शिक्षक की पक्की नौकरी के लिए उन्हें फिर एक परीक्षा देनी पड़ी। उफ, घबराहट के मारे वे परीक्षा से भाग जाते और फेल होते रहे। खैर, उन्होंने विज्ञान के प्रयोग करना नहीं छोड़ा। 7 साल तक मठ के बगीचे में 28,000 पौधों पर बारीकी से प्रयोग किए, ढेरों आंकड़े इकट्ठे किए और एक नई बात खोज निकाली। ऐसी बात जो उस समय के वैज्ञानिकों को समझ ही नहीं आई थी। मेंडल के मरने के कई साल बाद ही वे समझ पाए थे। जब कुछ और लोगों ने ये प्रयोग किए और पाया कि मेंडल ने इस पर पहले ही लेख लिखा था। मेंडल ने पौधों में क्या पाया था? उन्होंने पाया कि मटर के पौधों में कुछ ऐसे गुण होते हैं जो जोड़ियों में आते हैं, जैसे बीज का चिकना या खुरदुरा होना, पीला या हरा होना और पौधे के तने का लंबा या नाटा होना। पर चिकने बीज वाले और खुरदुरे बीज वाले पौधों के बच्चे भी, यानी अगली पीढ़ी के पौधों में भी बीज या तो चिकने या खुरदुरे होते हैं। ऐसा नहीं होता कि एक बीज थोड़ा चिकना और थोड़ा खुरदुरा बन जाए। इसी तरह रंग के गुण में अगली पीढ़ी के पौधों के बीज या तो पीले होते हैं या हरे। पीला और हरा गुण मिलकर कोई नए रंग का बीज नहीं बनाते। यही नहीं, मेंडल ने तो यह भी बताया कि मटर की अगली पीढ़ी के पौधों में ज्यादा पीले बीज वाले ही होंगे। इसी तरह उन्होंने बताया कि अगली पीढ़ी में चिकने बीज ज्यादा होंगे। पृष्ठ 199। कुछ परिवार से, कुछ हालात से। विभा दूर से ही जान जाती है कि उसके नाना आ रहे हैं, उनके ठहाके की आवाज सुनकर। नाना जोर से बोलते हैं, ऊंचा भी सुनने लगे हैं। तुम्हारे घर में कोई जोर जोर से बात करने वाले हैं? क्या उनकी ऐसी आदत है या वे ऊंचा सुनते भी हैं? क्या तुम किसी समय या किसी के सामने बिल्कुल जोर से नहीं बोलते? कब और किसके सामने और क्यों? और कब जोर से बोलते हो? कुछ लोग सुनने के लिए कान पर मशीन लगाते हैं, कुछ लोग छड़ी या चश्मे की मदद लेते हैं। क्या तुम ऐसे किसी व्यक्ति को जानते हो? किसी ऐसे व्यक्ति से बात करो जो ऊंचा सुनता हो। पता करो, क्या वह बचपन से ही ऊंचा सुनता है? कब से ऊंचा सुनने लगा है? उन्हें क्या क्या कठिनाइयां आती हैं? हमने देखा कि हमारे कुछ ऐसी पहचान यानी गुण होते हैं जो हमें परिवार से मिलते हैं। कई हुनर और कई बातें हम अपने माहौल से लेते हैं, पर कभी कोई बीमारी या ज्यादा उम्र की वजह से भी हम में कुछ बदलाव आते हैं। यह सब मिलकर ही हमारी पहचान बनती है। हम क्या समझे? तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारी कौन कौन सी ऐसी पहचान है जो तुम्हें माँ की तरफ से मिली है? किसकी झलक, किसकी छाप? अभी आप सुन रहे थे कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक हमारे आसपास का 21वां पाठ, प्रस्तुति CIET NCERT नई

0: रेडियो मधुबन हमारे जीवन को सुखमय व समृद्धशील बनाता है। सभी प्रोग्राम्स को बेहतरीन अंदाज में, नवीनता को लिए बेहतरीन क्वालिटी के साथ
1: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 मेगाहर्ट्ज पर, 107.8 FM पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: ओम शांति। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है बाल संसार इस कार्यक्रम में। आशा करूंगा बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे। आइए आपकी खुशी को बढ़ाने के लिए आज बाल संसार इस कार्यक्रम में, जैसे कि हम लोग पिछले 3-4 एपिसोड में आपसे जुड़ रहे हैं और बड़ी अच्छी अच्छी बातें हुई हैं, जिसमें बाल मन के बारे में बातें किया जाता है, साइंस साइकोलॉजी के बारे में बातें किया जाता है। और पिछले एपिसोड में हमने कुछ खास बातें आपसे शेयर की थी और किस तरह से हम बच्चों की मानसिकता को समझें। अब आते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं, तीसरा जो पाठ्यक्रम है उस पर बात करेंगे आज, वैचारिक पहल की सक्षमता का यथोचित सम्मान। कई बार होता है कि वैचारिक पहल की सक्षमता का जो शोध या फिर उसके बारे में सोचना या उसका सम्मान करना एक बहुत बड़ा सामाजिक और व्यक्तिगत मूल्य से भरपूर होता है और इसको उतना ही महत्वपूर्ण देना चाहिए जैसे हम किसी से चाहते हैं। तो कभी कभी बच्चे की मानसिकता या बच्चे का छोटा रूप देखकर हम उसको टाल देते हैं और ये हमारे लिए बड़ा मुश्किल कर देता है। तो आइए इसी पर बात करने वाले हैं। डॉक्टर अजय शुक्ला जी हमारे साथ हैं, विशेष जो है व्यवहारिक विज्ञान है उनके पास, वैज्ञानिकता का जो है संपूर्ण ज्ञान उन्होंने प्राप्त किया और फिर इसी विषय को लेकर काम कर रहे हैं। तो डॉक्टर अजय शुक्ला जी बहुत बहुत स्वागत है बाल संसार इस कार्यक्रम में।
1: बहुत धन्यवाद भाई जी। ओम शांति।
0: ओम शांति। जी जी, कैसे हैं आप?
1: बहुत बढ़िया, कुशल मंगल।
0: चलिए बहुत अच्छी बात है, आप कुशल मंगल है तो हमारा कार्यक्रम भी बड़ा अच्छा होगा आज
1: जी।
0: और
1: जी,
0: जो विषय है आज का, जो पाठ्यक्रम है, जब हम वैचारिक पहल की बात करते हैं या सम्मान की बात करते हैं, हम दूसरे तो जरूर चाहते हैं लेकिन खुद हम लोग जो है, या तो हमसे बड़े हो तो हम दे देते हैं मजबूरन, लेकिन हमसे छोटा हो तो उन चीज़ों को हम लोग कतई बताते नहीं या करते ही नहीं है। तो मैं चाहूँगा कि इस विषय को लेकर आप क्या बताना चाहते हैं इस बात पर, इस पाठ्यक्रम पर।
1: इस पाठ्यक्रम में ये एक बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है, जैसा कि पिछले एपिसोड में हम लोगों ने चर्चा भी किया कि कैसे भावनात्मक अभिव्यक्तियों का सम्मान बच्चों का की होना चाहिए, इसी प्रकार से विचार की बात है। वैसे एक मनोवैज्ञानिक तथ्य ये है कि कई बार एक मनुष्य सबसे पहले कई बार संवेदनाओं के साथ वो होता है, तो विचारों के माध्यम से वो चीज़ों को परसीव करता है। कई परिस्थितियां ऐसी आती हैं जहां वैचारिक पहल नहीं होती है, केवल भावनाएं बच्चे के लिए या एक आम इंसान के लिए वो संवेदनाओं का कारण बन जाता है। तो इमोशंस के बाद थॉट्स लेवल पर पहुंचना और कई बार विचार से इमोशंस तक पहुंचना, ये क्रिया और प्रतिक्रिया मनुष्य के साथ में चलती रहती है। आपने देखा होगा कई बार बिना किसी संवाद के किसी व्यक्ति को या किसी बच्चे को कोई बात की ठेस लग जाती है। अब उसको दिल के बारे में नहीं पता लेकिन वो कहता है कि नहीं, मुझे बहुत, मेरे हार्ट में पेन हो रहा है। ऐसा कोई भौतिक रूप से उसको दर्द नहीं हो रहा है लेकिन उसकी इमोशंस जो थी वो हर्ट हुई हैं। तो ये हमने बातचीत पहले किया लेकिन आज आपने कहा कि जो बच्चे की वैचारिक क्षमता है, जो चिंतन करने की उसकी क्षमता है, जो उसकी सोचने समझने की शक्ति है, उसको लेके उसके मन में तो रहता है कि मैं कोई सी बात में इंटरफियर करूं या इंटरवेंशन करूं। तो अब प्रश्न उठता है कि इंटरफियर को हम लोग बहुत अच्छा नहीं मानते, या किसी बात को लेके बच्चे ने कहा, भले ही वो बड़ा वहाँ पर सामाजिक मुद्दा हो, पारिवारिक मुद्दा हो और सोल्यूशन मोड में जा रही है, लेकिन हम कहते नहीं नहीं भाई, आपको अभी कहा ना पानी दे के और हमारे बीच में से जाओ, चाय दे के जाओ, आपको जितना कहा उतना आपको करना है। तो ये जब बच्चा सुनता है तो वो ये सोचता है कि मैं सही घर में हूँ, इसी घर मेरा जन्म हुआ है, कि कहीं से उधार लेके लोग मेरे को आए हैं या टू सम एक्सटेंड कुछ समय के बाद कहीं छोड़ देने वाले हैं। तो ऐसा उसके मन में फीलिंग होती थी और सभी बच्चों के साथ में होता है कि जो भी बड़े बात कर रहे हैं तो वो ऐसा नहीं है कि बहुत दुख देना चाह रहे, उनको लगता है कि ये बात मैंने सुनी या सोची तो क्यों नहीं मैं अपनी बात को कहूँ, लेकिन उसके पास में शब्द नहीं होते हैं। कई बार वो अगर इनिशिएटिव ले भी ले, वो बोल दे एक्सक्यूज मी, मैं अपनी बात रखना चाहता हूँ आप बड़ों के सामने और आपकी जो प्रॉब्लम है उसका सलूशन भी दूंगा, तो आप जान सकते हैं कि माता पिता उसमें क्या रिएक्ट करने वाले हैं और जो गेस्ट आए हुए हैं वो क्या रिएक्ट करने वाले हैं। तो ऐसी स्थिति में एक उसको ऐसा लगता है कि जैसे कि चाइल्ड लेबर के साथ में ट्रीट होता है ना, तो उस समय उस बच्चे की भावनाओं या थॉट्स को इतना हर्ट करते हुए उसको भगा देते हैं। हालांकि वो भाग भागता नहीं है, वो दीवाल के पीछे जाके सुनता है कि अभी इसके बाद ये चले जाएंगे, और वो यहाँ पर माता पिता के प्रति भी संवेदनशील है। वो सोच रहा है कि अगर ये लोग असफल रहे संवाद करने में या सोल्यूशन निकालने में, तो मैं इन बातों को सुन के इनकी बात का उत्तर देने वाला हूँ। तो ये जो पावर है, उसके अंदर पावर जन्म ली, अब उस पावर को आपने एक्सेप्ट नहीं किया। आप इतना बोलते कि अच्छा बेटा तुम कुछ कहना चाहते हो, अब आप उसके वेग और संवेग को समझ रहे हैं, लेकिन आप उसको अवॉइड कर रहे हैं। जब आप अवॉइड कर रहे हैं तो वो बच्चा उपेक्षित हो रहा है, और उपेक्षित होकर उसके मन में आ गया कि यार अपनी कद नहीं है, अपन छोटे हैं, अपनी कद काठी के हिसाब से अपने को अपनी लिमिट में रहना पड़ेगा। या मैनेजमेंट का एक प्रिंसिपल है जिसको हम जानते हैं, उसको बोलते हैं कट टू साइज। कोई व्यक्ति आया, उसको ऐसी बात बोल दो कि वो हर्ट हो जाए या थॉटलेस हो जाए, तो वहाँ से चला जाएगा। तो एक क्रिया मनोविज्ञान में है इंटरफियर करने की। वैसे देखा जाए तो सामान्य व्यवहार में इंटरफियर को अच्छा नहीं मानते हैं, लेकिन इंटरवेंशन को तो अच्छा मानते हैं ना। तो कई बार किसी बच्चे के द्वारा अगर कुछ बातें कही जा रही हों और उसको एज ए इंटरवेंशन हम स्वीकार कर लें। मैं थोड़ा सा यहाँ पर आपको स्पष्ट ये भी करना चाहूँगा कि इंटरफियर करने का मतलब है कि अचानक अगर कोई व्यक्ति बच्चा आके बोलता है कि मुझे ऐसा नहीं ऐसा करना है, और इंटरवेंशन का मतलब जस्ट एक ऐसा है जैसे कि रेलवे स्टेशन पे लिखा रहता है मे आई हेल्प यू, मैंने ऑप्शन से कि क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। लेकिन जो मदद करने वाला व्यक्ति है वो बहुत समय तक बैठा रहता है, उसके पास रेयर में कोई आता है, मैंने वो लोग पढ़ लेते हैं मे आई हेल्प यू, लेकिन उसे हेल्प लेते नहीं है। और वहीं अचानक कोई अपरिचित व्यक्ति आपसे कहे कि आई विल हेल्प यू, तो आप नाराज हो जाएंगे, भाई आप कौन होते हो हमारी हेल्प करने वाले। तो अब किया क्या जाए, मैंने अगर वो आई विल हेल्प यू में बच्चा अपने आप को शिफ्ट करता है तो प्रॉब्लम है, मे आई हेल्प यू में दूर दूर तक हम एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं, तो उस समय वो मन महसूस के रह जाता है, उसके अंदर जो थॉट्स करने क्रिएट करने की क्षमता है उस पर कुठाराघात होता है, वो पीड़ित होता है। और यहाँ हम पाठ्यक्रम में क्या मैसेज दे रहे हैं कि हमें बच्चों के विचारों का जो पहल करने की क्षमता है, इनिशिएटिव पावर है, उसका यथोचित मैंने प्रॉपर वे में रिस्पेक्ट होना चाहिए। भाई आप सुन लो, इम्प्लीमेंट करो या मत करो। जी
0: डॉक्टर अजय शुक्ला जी, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया है, और मुझे लगता है कि यहाँ पर ही हम लोग छोटा सा एक गलती कर जाते हैं, और वो चीज़ें हमें कभी कभी हम लोग इसके बारे में इतना गहराई से नहीं सोचते हैं। हम ये देखते हैं कि अब तो अभी सीख रहा है और ये तो मेरा बच्चा है, इसको तो मैं ही पढ़ाऊँगा, मैं ही सिखाऊँगा, तो वो चीज़ जो है ये चीज़ों को गायब कर रहा है। तो यह ये मानसिकता हमें जो है बदलनी होगी और नवाचार को बढ़ावा देना होगा, तब जाके हम इन चीज़ों को अपने जीवन में लागू कर सकते हैं। तो इस महत्वपूर्ण पहल को कैसे शुरुआत कर सकते हैं हम लोग, इसके लिए क्या करना चाहिए, थोड़ा सा और विस्तार से बताइए डॉक्टर अजय जी।
1: जी देखिए, आपने एक बड़ी सी बात कही कि बच्चे ने अंडरस्टैंडिंग किया होगा, उसने लर्निंग किया होगा, कुछ एक्सपीरियंस उसको अपने स्कूल का, अपने साथियों का, अपने मित्रों का होगा, उस बेस पे ही उसने इनिशिएटिव पावर यानी थॉट प्रोसेस करने के लिए पहल किया। अब प्रश्न उठता है कि अगर हम उस थॉट प्रोसेस को रोक देते हैं और बाद में जाके देखिए, अभी जो ट्रेडिशनल प्रोफेशन है उसमें काफ़ी कमी आई है और कुछ नवाचार जैसा आपने कहा उसकी ओर लोग बढ़े हैं। उदाहरण के लिए आज के समय में पिछले 25 साल को हम देखें तो कम्युनिकेशन स्किल एक बहुत बड़ी एबिलिटी मानी गई है। अब हमने बच्चे की थॉट प्रोसेस जो उसका निसर्ग के साथ वास्ता था या जो नेचुरल रूप से वो कम्युनिकेट कर रहा था उसको तो ब्लॉक कर दिया, उसको ब्लॉक करके उसको और ज़्यादा सुनाने का भी प्रयास किया कि भाई तुम बीच में मत बोला करो, अभी तुम एग्जाम की तैयारी करो, जितना तुमको कहा जाए वो तुम करो, मैंने बहुत सारे आपने रूल्स एंड रेगुलेशन उसके ऊपर थोप दिए। अब एक बार वो कोशिश करेगा, दो बार कोशिश करेगा, तीन बार करेगा, लास्ट में अपने कम्युनिकेशन स्किल को स्टॉप कर लेगा। ये वैसे ही सत्य है जैसे किसी बड़े को रोज कहा जाए कि तुम ज़्यादा मत बोला करो, तुम मौन रहा करो, तुम वाणी को थोड़ा विराम दो, तो एक दिन व्यक्ति मान लेगा कि कुछ नहीं बोलना ही महानता होगी। तो वो जो उसका स्किल डेवलप हो रहा था जिसके लिए उसी बच्चे को बड़े होने पर अगर मैनेजमेंट वो पढ़ता है या साइंस पढ़ता है या इंजीनियरिंग पढ़ता है तो कम्युनिकेशन स्किल एक पेपर है, या उसकी पर्सनालिटी अगर रुक जाती है या उसके व्यक्तित्व का विकास नहीं हो पाता है तो आप उसी बच्चे को 50,000 या 1,00,000 रुपए की कोचिंग लगा रहे हो, और किसे लगा रहे हो कि इस बच्चे का कम्युनिकेशन स्किल इन्हांस करना है, उसको बढ़ाना है। अब आप देखिए, जहां वो नेचुरल रूप से बढ़ रहा था वहां तो हमने ब्रेक कर दिया, और उतना पैसा और समय हम एक्स्ट्रा देके उस बच्चे की कम्युनिकेशन स्किल बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि लोकतांत्रिक व्यवस्था में उस बच्चे ने ये ताड़ लिया है कि जिस देश में हम रहते हैं अगर बहुत अच्छा बोलना हमें आ जाए ना या बहुत अच्छा कम्युनिकेट करना आ जाए तो मैं देश का प्रधानमंत्री तक बन सकता हूँ। ये भी वो बच्चा जानता है, क्योंकि ओरेटिंग करना ये एक नैसर्गिक गुण है और बहुत कम लेवल पर ये पाया जाता है, खासकर जब लीडरशिप डेवलपमेंट की हम बात करते हैं। और ऐसा नहीं है कि लीडरशिप डेवलपमेंट केवल पॉलिटिकल लेवल पर होता है, ये एवरी स्टेप पर होता है। इवन स्वयं के लिए भी व्यक्ति एक लीडिंग अप्रोच डेवलप कर सकता है, और लीडरशिप अगर बहुत अच्छी उसके अंदर स्किल है तो वो अपने इस जीवन में इस कम्युनिकेशन स्किल के द्वारा न जाने कितने लोगों का भला कर सकता है। वहाँ केवल यह नहीं है कि किसी व्यक्ति ने कितना नॉलेज गेन किया, अगर वो नॉलेज प्रेजेंट नहीं किया जाए, बहुत सारे राइटर आपने देखे होंगे आज भी उनकी किताबें बक्से में बंद हैं, उनको पब्लिश होने के लिए मौका ही नहीं मिला, या जब उनको मौका मिला तो उनकी उम्र बुढ़ापे तक पहुंच गई थी। तो उस समय जो उनको मोटिवेशन या आपने अलग से इंस्पिरेशन क्रिएट किया तो वो उनके लिए किसी काम का नहीं रहा। तो कम एज में अगर कोई स्किल या कोई शक्ति बच्चे की उभर के आती है तो कोई भी गुण या शक्ति क्या करती है, अगर एक क्वालिटी डेवलप करने के लिए हमने थोड़ी मदद कर दी तो बहुत सारी पॉजिटिविटी उसके अंदर आती है, और ये पॉजिटिविटी से उसके संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास के आयाम ओपन होते हैं और वो बच्चा बहुमुखी प्रतिभा का धनी बन सकता है। इतनी बड़ी प्रॉपर्टी हमारे पास में है, उसे समझने, स्वीकार करने और अनुभव करने की आवश्यकता है। जी
0: बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर अजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि हमारे पास जो बच्चों के अंदर कला है, जो उनकी मानसिकता है और उनकी सोच है, उसको अगर हम लोग सम्मान करते हैं तो हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव हम पाते हैं या बच्चों के जीवन को मोटिवेट कर सकते हैं, ये आपने बताया। आइए आगे बढ़ते हुए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग बाल संसार इस कार्यक्रम में आगे बात करेंगे इसी विषय को लेकर। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: नमस्कार, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है बाल संसार इस कार्यक्रम में। और आशा करूंगा आप बिल्कुल अच्छा फील कर रहे हैं। एक नए विषय को लेकर हम बात कर रहे हैं, नए नहीं पुरानी है, लेकिन विषय में गहराई को समझना और उसमें मनोस्थिति को, मनोभावों को, मानसिकता को समझने की बहुत ज़रूरी है। और इसमें जैसे कि हमने कहा कि बच्चे की मानसिकता को समझना बहुत ज़रूरी, कई बार हम उस मानसिकता को, उसकी गहराई को समझ नहीं पाते, जबकि बच्चा इस बात को ठीक से समझ पाता है। तो आइए, जब इन चीज़ों को लेकर जैसे कि समस्याओं को हल करने में कैसे हम लोग इसको मदद कर सकते हैं और इस पहल को एक नए दृष्टिकोण से एक समाधान के रूप में कैसे इसको यूज़ करें, हम इस पर बताइए।
1: बहुत अच्छी बात है और ये बात बिल्कुल सामयिक और प्रासंगिक भी है कि बच्चों के अंदर जो स्किल है, वो कम्युनिकेशन स्किल की बात हो या थिंकिंग प्रोसेस की बात हो, हमारी ड्यूटी बनती है कि समय प्रति समय जब भी कोई संवाद उनके माध्यम से आप तक पहुंचता है तो हमारा एक नैतिक फर्ज बन जाता है कि देखिए, केवल वो आपका बच्चा नहीं है बल्कि इस राष्ट्र की धरोहर है और उसके प्रति संवेदनाएँ एक बड़े स्तर पर होना चाहिए और उसको महसूस होना चाहिए। और उस महसूसता के पीछे एक सबसे बड़ी रीजनिंग है कि जब उस बच्चे से कोई थर्ड पर्सन ये पूछे कि आपके माता पिता से आप खुश हो, तो उसको ये नहीं कहना पड़े कि मैं अपने बड़े बूढ़ों के स्वर्ग का इंतजार कर रहा हूँ कि जल्दी से वो स्वर्ग आ जाए ताकि मुझे एक अच्छे माता पिता वहाँ मिल जाए। उसको ये गर्व होना चाहिए कि आपने ही, मैंने आप ही मेरे अच्छे माता पिता हैं। तो ये जो एक सेटिस्फेक्शन है, ये सेटिस्फेक्शन देना हमारा फर्ज है। मतलब मैं इसको ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत मानता हूँ और हम उसके लिए अकाउंटेबल हों। अगर हम नहीं होते हैं तो ऐसी स्थिति में उस बच्चे के पास में क्या विकल्प है? उसमें निराशा या अवसाद उत्पन्न होगा तो वो पड़ोस के यहाँ जाएगा, परेशान होगा। और अगर हमने उसके अंदर आशा का संचार कर दिया या समाधान करने की जो हमारी तकनीक है उसमें हमने उमंग, उत्साह को जोड़ दिया, क्योंकि एंथुजियाज्म एक नेचुरल फिनोमिना है। क्योंकि एक इंसान जब अपनी लाइफ में अपना विजन डिसाइड करता है, अपना मिशन डिसाइड करता है, अपना टारगेट डिसाइड करता है, तो विजन और टारगेट को आगे बढ़ाने के लिए, अपडेट करने के लिए, अप टू डेट रखने के लिए उस बच्चे के अंदर मिशनरी जील होना चाहिए, अर्थात उमंग उत्साह होना चाहिए। और यही उमंग उत्साह भरने का जो दायित्व है वो माता पिता और शिक्षक गुणों का है, अर्थात माता पिता गुरु का है। अब उसके पास जो दायरा है वो इसके अलावा अपने फ्रेंड सर्कल के बीच में है। अब फ्रेंड सर्कल उसको कितना मोटिवेट करते हैं, कितना उसकी बात को सुनते हैं, कितना उसकी बात पर ध्यान देते हैं, ये उस वातावरण के ऊपर निर्भर करता है कि उन्होंने अपने आसपास के लोगों के प्रति सम्मान की दृष्टि कैसी रखी है। ऐसी स्थिति में हमारा फर्ज या समाज का जो फर्ज है वो बढ़ जाता है और हमें किसी भी स्थिति में समाधान मूलक स्थितियों के लिए प्रयास करना होगा। और उस प्रयास में हमें थोड़ी सी प्रेजिंग करनी पड़ेगी, थोड़ा सा उनको रिकमेंडेशन करना पड़ेगा। तो एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ कि जब एक बार मेरे पिताजी ने ही मुझसे कहा कि ये फलां व्यक्ति आए हैं, इनको एड्रेस बताना है, तो मैंने हाजी का पार्ट निभाया। और जैसे ही मैं घर में अंदर जाता हूँ तो मेरे पिताजी कहते हैं कि बेटा, आपके फेस से लग रहा है कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, और हाथ को स्पर्श किया उन्होंने तो कहा बुखार है। और उसी समय वो तुरंत गाड़ी से सामने वाले व्यक्ति को, दूसरे जहाँ स्थान पर उनको जाना था, उनके छोड़ने के लिए चले गए। बाद में उन्होंने रिकमेंड किया कि तुम्हारे द्वारा जो कुछ कम्युनिकेट किया गया था वो ईमानदारी से भरा हुआ था और तुमने मेरी प्रतिष्ठा को ध्यान में रखते हुए मेरे प्रश्न का जवाब, अर्थात हमारे मित्र को उनके घर तक पहुँचाने या किसी और के घर का पता ढूँढने के लिए जाने के लिए मानसिक रूप से तैयार हो गए, हामी भरी, और तुम पीड़ित थे, ये मैंने बाद में ऑब्जर्व किया, तो तुम्हारे अंदर जो ओबीडियंस टू ऑर्डर का गुण है उससे मैं बहुत खुश हूँ और मेरा मन हो रहा है कि तुमको मैं कुछ पुरस्कार दूँ, लेकिन मैं तो ये बात भूल गया था। तो कभी कभी हम बच्चों को जिस समय उनसे अच्छा या कुछ नहीं अच्छा भी हो रहा है या भविष्य में उनसे अच्छा हो सकता है, उन तमाम संभावनाओं को देखते हुए उन्हें इस बात के लिए अभिप्रेरित करें कि आपके द्वारा ये अच्छा हुआ है, जो समाज के लिए, परिवार के लिए एक बड़ी बात है, जो आप सोचते हो, समझते हो, उमंग उत्साह के साथ कार्य करते हो, ये सब बातों से मुझे बड़ी खुशी है और मुझे बड़ा फक्र है, गर्व है और गौरव हो रहा है कि तुम इस घर में जन्मे हो और तुम अपने जीवन को एक ऊंचाई की ओर, श्रेष्ठता की ओर बढ़ाने में स्वयं भी अंदर से मोटिवेट हो और कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से, भावनात्मक रूप से या वैचारिक रूप से, मुझसे भी जुड़ के मदद प्राप्त करते रहते हो। तो ये हमारा सिलसिला चलते रहे और बच्चों और बड़ों के बीच में संवाद बना रहे, यही बाल संसार का उद्देश्य भी है और यही उद्देश्य को लेके हम लोग इस पाठ्यक्रम में धीरे धीरे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। जी भाई जी,
0: डॉक्टर राजेश शुक्ला जी, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया। और जब भी हम लोग किसी बच्चे को देखें तो उसे मोटिवेट करते रहना चाहिए। ये एक बहुत ही सुंदर और सिंपल तरीका है जिससे बच्चे को भी खुशी मिलती है और बच्चा अपने एनर्जी के साथ जो है अच्छा फील करता है। और अगर हम बच्चे को डीमोटिवेट करेंगे तो कहीं ना कहीं नेगेटिव उसकी पावर जो जनरेट होगी, आपने कहा, वो कहीं ना कहीं विध्वंस भी कर सकती है, हो सकता है कि वो आपसे बिछड़ भी जाए। तो इसीलिए हमें जो है वो एनर्जी को जो है संबल करने के लिए, उसके अंदर क्षमताओं की संभावनाओं को देखते हुए हमें जो है बच्चे को बच्चा ना समझकर उसकी एनर्जी को देखना है और उसे पॉजिटिव मैसेज देते हुए उमंग उत्साह में रखना है, जिसका आपने जिक्र किया। बहुत ही अच्छा लगा हमें और मुझे लगता है कि हम लोग आगे भी इस एपिसोड को कंटिन्यू करेंगे, जहां पर हम और गहराई से इस बाल मनोविज्ञान के गहराई में उतरते जाएंगे और धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हम लोग इसकी जो परख है वो करते जाएंगे और इसके ऊपर काम भी करते जाएंगे। मुझे लगता है कि ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको लिख के रखना है ताकि इस पर काम किया जा सकता है। तो व्यक्तिगत विकास की जो प्रेरणा है यहाँ से हमें मिलता है और अधिक समय जो है हमें थोड़ा सा एक चिंतन की धारा को बदलने की ज़रूरत है, जहाँ पर हम समस्याओं को लेकर बात ना करें, समाधान को लेकर बात करें और समस्या और समाधान के बीच में एक समन्वय का जो बोध है वो हमें करते रहना चाहिए। शब्द भी हमारे लिए काम करता है और भावनाएं भी काम करता है और हमारी सोच भी काम करता है। तो तीन को जो आंतरिक चीज़ें हैं, सोच है, भावनाएँ हैं और हमारी समाधान समस्याएँ बाहर की तरफ हम उन्हें देखते हैं। तो अगर अंदर जगत ठीक हो जाए तो बाहर भी जगत ठीक ही लगता है। अंदर अगर नहीं ठीक है, हमारी सोच में गड़बड़ है, तो सोच क्लीन कर लें, सोच को थोड़ा रिफाइन कर लें। हमारे इमोशन ठीक नहीं है ये भी समझना बहुत ज़रूरी है। अगर ये समझ लिया तो आप ज़िंदगी का सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी बन गए। इमोशन समझ लिया तो उसको भी ठीक करना आना चाहिए, वो भी एक कला है। अगर ये दोनों चीज़ें आप समझ लेते हैं तो जीवन को बहुत अच्छी तरह से आप एंजॉय कर सकते हैं। बाल मनोविज्ञान की गहराई से यही चीज़ें आपको समझ आएगी। धीरे धीरे हम लोग करेंगे इस पर बातें। आप सुनाए हैं रेडियो माधुबन और चलिए मित्रों आज के इस बाल संसार कार्यक्रम में बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक आप बने रहिए हमारे साथ, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आइए 24 अगस्त की बातें आपसे शेयर करूंगा। बड़ा अच्छा लगता है जब आप लोगों के साथ रूबरू होने का मौका मिलता है। तो आज बाल गंगाधर खरे, राजगुरु, नर्मद, चंद्र सिंह, बीरकाली, बीना दास, के कालियप्पन, शिवदयाल साहेब, दीप्ति शर्मा, नरसिंह चिंतामणि, केलकर राम निवास मिद्रा, इन सभी का जन्मदिन है। और इसके साथ ही राधा कमल मुखर्जी, कल्याण जी, अरुण जेटली, रामकृष्ण गोपाल भंडारकर, ए आर किंडवाई, वेंकट रामलिंगम्मा पिल्लई, इन सभी का पुण्य दिवस है। तो आइए आज के इस शो को यादगार बनाते हैं, कुछ सुंदर विचार आपको सुनाते हैं, उसके बाद फिर आपको आगे बढ़ते हुए कुछ खास लोगों की जीवन कहानी से अवगत कराएंगे। और हाँ, ये कहते हैं खुद को इतना परफेक्ट बनाओ कि आपकी एक झलक देखने के लिए लोग अपनी पलके बिछा दे। आप सुना है रेडियो मधुबन पर सफर इस कार्यक्रम को। तो चलिए एक खूबसूरत गीत के साथ कार्यक्रम का आगाज करते हैं, उसके बाद फिर आपसे रूबरू होंगे। सुनते रहो मस्कराते रहो।

0: सभी लोग ये बताइए, भारत सरकार का गृह मंत्रालय का कौन सा हेल्पलाइन नंबर है जिसके माध्यम से अगर कोई भी वित्तीय धोखाधड़ी हो जाती है तो उसकी आप रिपोर्टिंग कर सकते हैं।
1: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और अभी मैं एक और शख्सियत से बात कराना चाहूँगा आपको। डॉक्टर श्रीकांत गुप्ते हमारे साथ जुड़ रहे हैं और गीता उपनिषद पर वो अपनी सुंदर बातें हमारे समझाते हैं। तो आइए गीता का आनंद लेते हैं डॉक्टर श्रीकांत गुप्ते के द्वारा। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
2: आप सभी को मेरा ओम प्रणाम। हम श्रीमद् भगवद गीता का पांचवा अध्याय संन्यास योग के विषय में चर्चा कर रहे हैं। पिछले भाग में हमने इस अध्याय के पहले श्लोक के बारे में जाना था, जहां अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को एक प्रश्न किया था कि हे केशव, कर्मयोग और कर्म त्याग, इसमें अधिक कल्याणकारक क्या है। आइए हम जानते हैं कि इस विषय में भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं। भगवान कहते हैं, संन्यास कर्मयोगश्च निःश्रेयस करो उभो तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगा विशिष्यते। ये है श्रीमद् भगवद गीता का पांचवा अध्याय का दूसरा श्लोक। यहां पर भगवान कहते हैं कि कर्म संन्यास और कर्मयोग दोनों ही निस्संशय कल्याणकारक है, परंतु इन दोनों में से कर्म संन्यास से कर्मयोग की विशेषता, कर्मयोग का महत्व अधिक है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि श्रीमद् भगवद गीता के पहले छह अध्याय कर्मयोग से संबंधित है। संपूर्ण श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने निष्काम कर्मयोग का विवेचन किया हुआ है। निष्काम कर्मयोग यानी कि अपने कर्म के फल की इच्छा, आकांक्षा, अपेक्षा, कामना नहीं रखते हुए किया हुआ कर्म। यहां पर भी भगवान श्री कृष्ण उसी निष्काम कर्मयोग के बारे में हमें कह रहे हैं। इस विषय में भगवान श्री कृष्ण ने दूसरे और तीसरे अध्याय में विस्तृत विवेचन किया हुआ है। उन्होंने कहा है, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवम पापम अवाप्स्यसि। भगवान ने अर्जुन से कहा था कि सुख और दुख, लाभ और हानि, जय और पराजय, ऐसे सब परस्पर विरोधी जो भावना है उनको दूर रखते हुए तुम युद्ध के लिए तैयार हो जाओ, ऐसा करने से तुम्हें पाप नहीं लगेगा। आगे उन्होंने कहा था, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मा कर्म फल हेतुर्भु मा ते संगो अस्तु अकर्मणि। भगवान ने कहा था कि अपना जो कर्म है वो करते रहना, इसी के ऊपर सिर्फ तुम्हारा अधिकार है, वही सब तुम फिर सिर्फ तुम्हें करना चाहिए। उस कर्म का फल तुम्हें क्या मिलेगा और जो कर्म का फल तुम्हें मिलेगा उसके ऊपर तुम्हारी कोई सत्ता नहीं, उसके ऊपर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं। आगे उन्होंने कहा था कि मां कर्म हेतु कर्म फल हेतु हो। भगवान ने कहा था कि मेरे कर्म का ऐसा फल मुझे मिलना चाहिए, ऐसा जानकर, ऐसा सोचकर कभी भी कर्म मत करो। और मां के संगो अस्तु अकर्मणि, यानी कि मुझे मेरे कर्म का फल नहीं मिल रहा है उसके लिए मैं कर्म ही नहीं करूंगा, ऐसा भी कभी मत सोचो। आगे उन्होंने कहा था, योगसा कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धि असिद्धि समो भूत्वा समत्वम योग उच्चते। भगवान ने कहा था कि योगस्थ बनकर अपना कर्म करते रहो, यानी कि जो समत्व बुद्धि रखो और अपना कर्म करते रहो, किसी भी फल के ऊपर या किसी भी कामना के ऊपर अपना अधिकार मत रखो, अपनी इच्छा मत रखो। और ऐसा सिद्धि असिद्धियो समो भूत्वा, जो मेरा कर्म है उसमें मुझे फल मिलेगा या नहीं मिलेगा, ऐसा ऐसी भावना को छोड़कर अपना कर्म करते रहो, इसी को योग कहते हैं। इस तरह से समत्व बुद्धि के साथ कर्म करना चाहिए, सकाम कर्म यानी कि कर्म के फल की इच्छा मन में रखते हुए कर्म कभी भी नहीं करना चाहिए, ऐसा भगवान का कथन है। भगवान श्री कृष्ण निष्काम कर्म योगी की प्रशंसा करते हैं। निष्काम कर्म योग का ही आचरण करना चाहिए ऐसा कहते हैं, क्योंकि नहीं कश्चित क्षणम अपि जातु तिष्ठति अकर्मकत। भगवान कहते हैं कि कोई भी एक पल, वो कहते हैं कि कोई भी जीवित प्राणी मात्र कभी भी किसी भी क्षण कोई भी कर्म किए बगैर रह नहीं सकता। इसलिए कर्म तो होता ही रहेगा, लेकिन वो कर्म किसी भी लगाव के बिना होना चाहिए। भगवान हमेशा कर्मयोग की प्रशंसा करते हैं, इसलिए वो कहते हैं नियतम कुरु कर्मत्वम कर्म जायो ही अकर्मणा, शरीर यात्रा अपिचते न प्रसिद्ध अकर्मणा। शरीर भगवान हमेशा कहते आए हैं कि जो तुम्हारा स्वभाव या जो कर्म है उसे तुम्हें करते ही रहना चाहिए। नियतम कुरु कर्मत्वम कर्म जायो ही अकर्मणा, क्योंकि कुछ भी नहीं करने से तो अपना जो कर्म है, नियत कर्म जो है, वो कर्म कभी भी करना अच्छा है। क्योंकि अगर तुम कुछ भी कर्म नहीं करोगे तो तुम्हारी शरीर यात्रा यानी कि तुम्हारा जीवन कभी भी सफल नहीं होगा। यह भगवान श्री कृष्ण का उपदेश है और इसीलिए वो कहते हैं कि कर्म संन्यासात कर्मयोगो विशिष्यते। इस अध्याय के तीसरे श्लोक में भगवान कहते हैं नेह स नित्य संन्यासी यो न दृष्टि न कांक्षति निर्द्वंद्वो ही महाबाहो सुखम बंधात् प्रमुच्यते। भगवान कहते हैं जो व्यक्ति किसी का द्वेष नहीं करता और किसी भी वस्तु की आकांक्षा नहीं करता, ऐसा सुख दुख इत्यादि द्वंद्वों से रहित पुरुष इस संसार के बंधनों से सुखपूर्वक मुक्त हो जाता है। आज हमने दो श्लोकों के विषय में विचार किया हुआ है। आपको मेरा ये विचार कैसा लगा यह आप मुझे जरूर बताइए। आपके विचार आपके मंतव्य मेरे लिए बहुत महत्व रखते हैं, इसके लिए आपके विचार मुझ तक जरूर पहुंचाइए। YouTube चैनल गीतोपनिषद को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। आपको मेरा जय श्री कृष्ण।
1: श्रीकांत गुप्ते सर बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। बहुत ही सुंदर गीता उपदेश आपने दिया उपनिषद से। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM पर सफर कार्यक्रम को सुन रहे हैं। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

बहुत बहुत स्वागत है। और गीता उपनिषद का जो मंत्र है वो सुनकर अच्छा लगा होगा, डॉक्टर श्रीकांत गुप्ते ने हमें सुनाया। बाल गंगाधर की बात करिए तो आज उनका जो है विशेष जन्मदिन है 24 अगस्त को। भारत के बहुत ही पॉपुलर राष्ट्रीय नेताओं में से एक थे। वे दो बार महाराष्ट्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और एक वकील और सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में जाने जाते थे। गंगाधर खरे 1952 से 54 तक ब्रिटेन में भारत के उच्च आयुक्त भी रहे। भारत सरकार द्वारा सन 1954 में पद्म विभूषण की उपाधि उन्हें दिया गया। और 24 अगस्त 1888 को रत्नागिरी के एक ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ और 1908 में कानून की शिक्षा पूरी की। इसके बाद 1912 से लेकर 18 तक उन्होंने हाईकोर्ट के न्यायाधीश फ्रैंक बीमन के सहायक के रूप में कार्य किया, और जिनकी नेत्र ज्योति कमजोर हो गई थी जिस कारण वे ठीक से देख नहीं पाते थे। राजनीतिक दृष्टि से आरंभ में गंगाधर खरे नरम विचारों के व्यक्ति थे और 1923 में स्वराज्य पार्टी बनने पर उसकी मुंबई शाखा के सचिव बने। लेकिन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की दांडी यात्रा के बाद उनकी मानसिकता में परिवर्तन आया। आंदोलन में शामिल हुए और 1930 और 45 के बीच में 4 बार जेल भी गए, और इस तरह से मुख्यमंत्री पद का भी महत्वपूर्ण समय आया और ये कुछ समय के लिए मुख्यमंत्री का पदभार भी संभाला। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन पर, जी हाँ, सफर इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। आगे बढ़ते हुए एक और गीत आपके लिए अभी, और गीत के पहले ये कहना चाहूँगा कि विशेष बाल गंगाधर खरे को 1954 में भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण दिया गया और देश के लिए अपनी बहुमूल्य सेवाएं देने वाले बाल गंगाधर खैर का 8 मार्च 1957 में पुणे में उनका देहांत हुआ। तो आइए आगे बढ़ते हैं और आपको सुनाते हैं एक बहुत ही खूबसूरत गीत। अभी सफर कार्यक्रम को आप सुन रहे हैं, सुनते रहो मस्कर।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: चलिए मैं एक और खूबसूरत गीत की तरफ आपको ले चलता हूँ। आप सभी जानते हैं ममता बहन जो है हर बार एक नया गीत बना के आपको सुनाती है, तो एक जो है झुमका गिरा रे इस गीत को उन्होंने आध्यात्मिक शैली में गाया है, बाबा के लिए गाया है। तो आइए सुनते हैं उनके अंदाज में ये रोमांटिक गीत, बड़ा ही आध्यात्मिक रूप लेकर उन्होंने गाया है। तो आइए सुनते हैं इसका न्यू वर्जन ममता जी का आपके लिए। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
2: शिव बाबा मिला रे,

क्या बात है ममता जी, बहुत ही प्यारा सा गीत आपने सुनाया और बड़ा ही अच्छा कन्वर्सेशन आपका रहा और बहुत ही सटीक शब्दों का प्रयोग करके आपने एक मस्ती भरा गीत को जो है आध्यात्मिक गीत में ट्रांसफर किया। थैंक यू सो मच। आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन पर सफर, इस कार्यक्रम को सुनते रहो।

ओम शांति, मैं हूं ब्रह्मा कुमारी प्रेमलता और आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो मुस्कुरा।

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं 107.8 FM पर सफर इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। आइए आज के सफर कार्यक्रम में हमारे साथ एक और मेहमान जुड़े हैं। आज बहुत ही अच्छा दिन है। आपने डॉक्टर श्रीकांत गुप्ते को सुना, उसके बाद ममता जी को सुना और आप सुनने वाले हैं वासुदेव जी। वासुदेव जी वानी हमारे साथ हैं। आप जलगांव से बिलोंग करते हैं और ब्रह्म कुमारी से काफी लंबे समय से आप जो है जुड़े हुए हैं और उनके प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं, अपने लाइफ को योगी की तरह जीवन जी रहे हैं। तो वासुदेव जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। कैसे हैं आप?
1: धन्यवाद। ओके, बहुत बढ़िया, अच्छा हूँ।
0: जी जी जी, मैं चाहूँगा कि आपका ब्रह्म कुमारी से कैसे जुड़ना हुआ थोड़ा बताइए हमें।
1: बिल्कुल बिल्कुल नक्की बताऊँगा। बात यूँ है कि मैं एक कपड़े का व्यापारी हूँ।
0: अच्छा।
1: सुबह सुबह दुकान खोल के बैठता था और 8-8:30 बजे मेरे दुकान पे एक बुजुर्ग आदमी आते थे और वो बोलते थे कि मैं प्रजापिता ब्रह्म कुमारी में जाता हूँ, वहाँ पे मुरली सुनते हूँ और फिर वो मुझे दुकान पे आके पूरी मुरली का पॉइंट बताता था।
0: अच्छा।
1: तो पॉइंट बताते कुछ पॉइंट मेरे दिमाग में आ गई तो बोले आप कल से आ जाओ। मैं डायरेक्ट दूसरे दिन सेंटर पे पहुँच चुका। दीदियों ने हमारा 7 डे का कोर्स किया। बहुत अच्छा लगा, सुकून मिला। और जब मुझे समझा कि भाई भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग में क्या अंतर है तो उससे तो मुझे बहुत बड़ी खुशी मिल गई कि यही सही है, यही सही है। और जब भगवान यहाँ आकर हमको इतना पढ़ा रहे सत्य ज्ञान तो हम क्यों ना
0: पढ़े,
1: आगे पढ़े और फॉलोअप करे।
0: बिल्कुल।
1: उस दिन से मैंने सेंटर पे आना, मुरली सुनना चालू कर दिया। वो बात है 1988 की।
0: अरे वाह।
1: उसके बाद में गुलजार दादी का जलगांव में आगमन हुआ।
0: और फिर तो और खुशी हुई।
1: और उनकी क्लास सुनने के बाद तो इतना गदगद हुआ कि क्या बोलू, मैं शब्द नहीं मुझे बोलने के लिए।
0: जी जी जी।
1: और मधुबन की टोली उनकी दृष्टि देख के मुझे उनसे मिली तो मैं तो बोला बस अब मेरे को मधुबन जाने का है।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: तो फिर एक साल दीदी ने हमको पालना दी और उसके बाद में फिर 1989 में मैं मधुबन में फर्स्ट टाइम आया।
0: जी, जी।
1: और जब बाप दादा मिलन के लिए मैं आया तो मैंने देखा था कि बाप दादा ब्रह्मा बाबा ने कैसा ड्रेस पहना। मैं कपड़े का व्यापारी होने के हिसाब से मैंने सेम टू सेम बाबा ब्रह्मा बाबा का ड्रेस सिलाया और मधुबन में ओम शांति भवन में
0: पहुंच गया।
1: पहले दफे पहुंचा। बहुत खुशी, बहुत खुशी मुझे मिली। अक्षरशाह मंजे बाबा का जो कमरा है और बाबा की जो कुटिया है वहाँ जब मैं बैठा क्या बताऊँ, आनंद आश्रु आंखों से निकल रहे थे कि मैं कितना भाग्यवान। मैं मेरे भाग्य को कहता था कि मैं कितना भाग्यवान आत्मा हूँ कि मुझे स्वयं भगवान के मिले है।
0: जी जी जी।
1: जी नहीं चाहता था कि यह पांडव भवन यहाँ से निकल जाऊ लेकिन नियम के
0: अनुसार फिर
1: नहीं
0: हम
1: जा सकते।
0: सही बात है।
1: लेकिन उस समय से आज तक
0: चालू नियम
1: आज तक पक्का हो बाबा का
0: सेवा में है। चलिए वासुदेव जी, बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया। बहुत ही खुशी के साथ आपने बताया आपका जो है ब्रह्म कुमारी से कैसे संपर्क होना हुआ और उस बुजुर्ग भाई को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपको आकर वो सुनाते थे और सुनने के बाद आपके मन में विचार चलता था कि ये क्या है, समझना है। और जब गए तो आपको बहुत खुशी मिली और उसके बाद फिर आप अपने जीवन में परिवर्तन करते हुए आज तक ब्रह्म कुमारी के सच्चे ज्ञान को अपने जीवन में अपनाते हुए अपने जीवन को चला रहे हैं। बहुत बहुत साधुवाद आपको। आइए मित्रों आगे बढ़ते हैं और बहुत ही अच्छी बातें आप सुनाएं। और मैं चाहूंगा कि जीवन का अनुभव सबसे बड़ा अनुभव है, सबसे बड़ा शिक्षक है, सबसे बड़ा टीचर है। इसीलिए सुनी सुनाई बातों से ज्यादा आप खुद अनुभव करके जब उन चीजों को अपने लाइफ में अपनाते हो तो वो आपके पास परमानेंट रहता है। तो इन्हीं शुभ आशाओं के साथ आइए एक और खूबसूरत सा गीत आपके नाम सुनते रहो।

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: दूसरों के साथ हम चूज कर सकते हैं, हम अपने रिश्तों में कितना चूज करते हैं, मुझे इनसे बात करनी इनसे नहीं करनी, मैं इनसे 5 मिनट ही कर सकती हूँ, इनसे 5 घंटा कर सकती हूँ, इनके साथ मुझे काम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनके साथ मैं नहीं काम कर सकती, आई हैव सो मच चॉइस। लेकिन अपने आप के साथ
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है और बहुत ही खूबसूरत बातें आप सुन रहे थे और हमने बातें की कुछ खास लोगों की और आपको अभी ले चलता हूँ राजगुरु की जीवन कहानी से अवगत कराता हूँ। आज उनका विशेष जन्मदिन है। राजगुरु भारत के एक ऐसे स्वतंत्रता सेनानी जिनके बलिदान को आज भी लोग याद करते हैं। जी हाँ, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन पर जी सफ़र इस कार्यक्रम को, और सफ़र कार्यक्रम में आप अलग अलग व्यक्तियों की जीवन कहानी से रूबरू होते हैं। तो मैं चाहूँगा कि आज हम लोग विशेष जिन बातों को सुनते हैं समझते हैं तो राजगुरु की जीवन कहानी से आपको अवगत कराऊंगा। भारत के बहुत ही पॉपुलर वीर आज़ादी के सेनानी ये सरदार भगत सिंह और सुखदेव के घनिष्ठ मित्र थे। इस मित्रता को राजगुरु ने मृत्यु पर्यंत निभाया और देश की आज़ादी के लिए दिए गए राजगुरु के बलिदान ने इनका नाम भारतीय इतिहास में गोल्डन यानी स्वर्ण अक्षरों में अंकित कर दिया है। राजगुरु भगत सिंह और सुखदेव का बलिदान आज भी भारत के युवकों को प्रेरणा करती रहती है। तो वीर स्वतंत्रता सेनानी सुखदेव का जन्म आज ही के दिन 24 अगस्त 1908 को पुणे महाराष्ट्र के खेड़ नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री हरि नारायण और माता का नाम पार्वती बाई थी। राजगुरु के पिता का निधन इनके बाल्य अवस्था में हो गया था। इनका पालन पोषण इनके माता और बड़े भैया ने किया था। राजगुरु बचपन से ही बड़े वीर साहसी और विशेष मस्त मौला थे। भारत माँ से प्रेम तो बचपन से ही रहा, कारण अंग्रेजों में से घृणा तो स्वाभाविक ही था और ये बचपन से ही वीर शिवाजी और लोकमान्य तिलक के बहुत बड़े भक्त थे। संकट मोल लेने के बाद भी इनका कोई जवाब नहीं था, किंतु ये कभी कभी लापरवाही कर जाते थे और राजगुरु का पढ़ाई में मन नहीं लगता था, इसलिए उनको बड़े भैया और भाभी का तिरस्कार सहना पड़ता था। माँ बेचारी कुछ नहीं बोल पाती थी ऐसे में, और अचानक इनकी भेंट हो गई चंद्रशेखर जी से। जब राजगुरु तिरस्कार सहते सहते तंग आ गए पढ़ाई के कारण, तब वे अपने स्वाभिमान को बचाने के लिए घर छोड़कर चले गए। फिर सोचा कि जब कभी घर के बंधनों से स्वाधीन हों, अभी घर के बंधन तो टूट गए हैं, तो भारत माता की बेड़ियां काटने में क्यों ना अपने समय को व्यय कर दूं। तो उन्होंने इस भाव को लेकर कई दिनों तक भिन्न भिन्न क्रांतिकारियों से भेंट करते रहे। अंत में उनकी क्रांति की नौका को चंद्रशेखर आज़ाद ने पार लगा। राजगुरु हिंदुस्तान समाजवादी संघ के सदस्य बन गए और चंद्रशेखर आज़ाद इस जोशील नवयुवक से बहुत प्रभावित हुए और बड़े चाव से इन्हें निशानेबाजी की शिक्षा देने लगे। शीघ्र ही राजगुरु आज़ाद जैसे एक कुशल निशानेबाज बन गए। कभी कभी चंद्रशेखर आज़ाद इनकी लापरवाही करने पर डांट भी देते थे, किंतु ये सदा आज़ाद को बड़ा भाई समझकर बुरा ना मानते। राजगुरु का निशाना कभी नहीं चूकता था। बाद में दाल में इनकी भेंट भगत सिंह और जेल में इनकी भेंट भगत सिंह और सुखदेव से हुई। राजगुरु इन दोनों से बहुत प्रभावित हुए और फिर इनके साथ मिलकर अलग अलग प्लानिंग करते रहे और अलग अलग आंदोलन को अंजाम देते रहे, और बहुत बार इन्हें जो है कई हत्याकांड में गिरफ्तार कर लिया गया, मुकदमा चला, फिर अमरण अनशन हुआ, बलिदान हुआ इनका 23 मार्च 1931 की शाम 7 बजे लाहौर के केंद्रीय कारागार जेल में तीनों दोस्तों को भगत सिंह और सुखदेव के साथ राजगुरु को फांसी पर लटका दिया गया। इतिहासकार बताते हैं कि फांसी को लेकर जनता में बड़े रोष था और उसे ध्यान में रखते हुए अंग्रेज अधिकारियों ने 3 क्रांतिकारियों के शव का अंतिम संस्कार फिरोजपुर जिले के हुसैनवाला में कर दिया था, और ये माना जाता है कि इन तीनों क्रांतिकारियों की फांसी की तिथि 24 मार्च निर्धारित थी, लेकिन अंग्रेज सरकार फांसी के बाद उत्पन्न होने वाली स्थिति से घबराकर इसीलिए उसने एक दिन पहले फांसी दे दी। राजगुरु के जन्म शती के अवसर पर भारत सरकार के प्रकाशन विभाग ने उन पर संभवतः पहली बार कोई पुस्तक प्रकाशित की। इस सराहनीय प्रयास के लिए न केवल प्रकाशन विभाग धन्यवाद का पात्र है, बल्कि उस लेखक को भी कोटि कोटि बधाई है जिसने इन तीन क्रांतिकारियों की जीवन लीला से सभी को परिचय कराया है। पुणे का वो खेड़ गांव जहां राजगुरु का जन्म हुआ था, उसे अब राजगुरु नगर के नाम से जाना जाता है। तो ये थी कहानी राजगुरु की आपके लिए। आप सुना है रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। सफर इस कार्यक्रम को सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
1: नमस्कार, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है सफर इस कार्यक्रम में। और बड़ी अच्छी अच्छी बातें आपने आज सुनी, और मुझे लगता है कि जितने ही आपने बाल गंगाधर खेर राजगुरु और वासुदेव जी का अनुभव और साथ में डॉक्टर श्रीकांत गुप्ते जी को आपने सुना, निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं इन सारे लोगों को सुनने के बाद आपको जीवन में काफ़ी प्रेरणा मिली होगी और कहीं ना कहीं आपका आत्मचिंतन शुरू हो गया होगा। मैं चाहूँगा कि इस आत्मचिंतन को कंटिन्यू करें, और जितना आत्मचिंतन में आप डूबे रहेंगे उतना अपने आप से आपको प्यार होगा, समाज से प्यार होगा। हम क्या करते हैं, थोड़ा सा हमारा ट्रांजेक्शन जो है गलत है, हम चश्मा उल्टा पहन रखते हैं कि हम अपने को ना देखकर दूसरों को देखते हैं, और दूसरों के बारे में देखना यानी दूसरों के बारे में चिंतन शुरू हो जाएगा और वहां पर सब गलतियां ही आपको दिखाई देगा। इसलिए दूसरों के बजाय अपने चश्मे को सुलटा कर लीजिए और अपने अंदर की कमियां, अपने अंदर की शक्तियों को देखें, कमियों को मिटाएं, शक्तियों को बढ़ाएं। ऐसा आप करेंगे तो आप अपने आप से भी प्यार करेंगे, और जो अपने आप से प्यार करता है वो दूसरों से अच्छा व्यवहार करता है, है ना। बहुत मुश्किल है अपने आप से प्यार करना, लेकिन प्रक्रिया आज से शुरू कर दीजिए। आप अपने लिए अच्छा सोचना ही अपने आप से प्यार करना है, तो खुद के लिए अच्छा सोचना शुरू करो तो धीरे धीरे हम दूसरों के लिए भी अच्छा सोचना शुरू करेंगे, दूसरों के अंदर अच्छाई देखना शुरू करेंगे। इन्हीं शुभ आशाओं के साथ जाते जाते एक और खूबसूरत विचार के साथ मैं आपको छोड़े जाऊँगा। कहते हैं, सोच जितनी बड़ी होगी सफलता उतनी ही बड़ी होगी। इन्हीं शुभ आशाओं के साथ फिर मिलते हैं। सलाम नमस्ते खमा गणिसा, जय हिंद जय भारत, ओम शांति। सुनते रहो मुस्कुराते रहो।

क्या आपको भी बैंक के नाम से SMS आ रहे हैं? इन SMS में फिशिंग लिंक मिल रहे हैं, जो एक क्लिक से .apk फाइल को आपके फोन में डाउनलोड कर देते हैं। ऐसी फाइलें आपके फोन का पूरा नियंत्रण साइबर अपराधियों को दे देती है, यहाँ तक कि वो आपका बैंक OTP भी देख सकते हैं। याद रखें, कभी भी किसी संदिग्ध लिंक पर क्लिक ना करें। ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी के शिकार होने पर तुरंत 1930 पर कॉल करें और किसी भी साइबर अपराध की शिकायत cybercrime.gov.in पर करें। सोशल मीडिया पर साइबर दोस्त को फॉलो करें। सतर्क रहें, साइबर सुरक्षित रहें।

0: रेडियो मधुबन 107.8 FM सुन रहे हैं आप। कार्यक्रम का नाम है युवा मंच। दोस्तों, एक महान व्यक्तित्व ने कहा था कि वी कैन नॉट ऑलवेज बिल्ड द फ्यूचर फॉर यूथ, बट वी कैन बिल्ड आवर यूथ फॉर द फ्यूचर। यानी कि हम युवाओं के लिए भविष्य नहीं बना सकते, लेकिन युवा ऐसे बना सकते हैं जो भविष्य का निर्माण करें। और ऐसा भविष्य अगर हम चाहते हैं जिसमें समानता हो, जिसमें सहजता हो, जिसमें अपॉर्चुनिटीज हो, जिसमें उन्नति हो, तो यूथ की बात सुनना, उनके मन में क्या है ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है। भारत एक युवा देश है और आज इस युवा मंच पे हमारे साथ मौजूद हैं युवा साथी जिनका नाम है राजेश। अब उनसे बहुत सालों बाद मिल रहे हैं, लेकिन परिचित होंगे वो लोग जो लगातार रेडियो से जुड़े रहते हैं। राजेश, आपका स्वागत है।
1: नमस्ते दीदी।
0: नमस्ते राजेश। सबसे पहले तो मैं चाहूंगी एक बार आप अपने बारे में हमारे श्रोताओं को बताइए।
1: मेरा नाम राजेश कुमार है, मैं जैसलमेर राजस्थान से हूँ। मेरा एजुकेशन बैचलर इन रूरल स्टडीज फ्रॉम देव संस्कृति विश्वविद्यालय में हुआ है। बैचलर इन रूरल स्टडीज अर्थात ग्रामीण अध्ययन, गाँव के बारे में पढ़ना, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना, कैसे हम गांव को एक गांव बना सकते हैं जो वास्तविक अर्थों में एक गांव होता है। और मेरा मास्टर्स पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी से चल रहा है। और इसी के साथ साथ मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन पब्लिक लीडरशिप किया ऋषिहूड यूनिवर्सिटी सोनीपत हरियाणा से। साथ ही साथ मैं सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन भी कर रहा हूँ और मैं सेवा से जुड़ा हूँ, जैसे एनवायरमेंट के लिए प्लांट लगाना और वाटर कंजर्वेशन हुआ, प्लास्टिक मुक्त भारत जैसे कई छोटे छोटे काम मैं अपने स्तर पे और कई मेरे दोस्तों के साथ मिलकर मैं ये काम करता हूँ। धन्यवाद
0: राजेश। सबसे पहले तो हमने बहुत सारी चीजें बताई, लेकिन हम जब युवाओं की बात करते हैं तो एक पिक्चर लोगों के मन में आती है कि वो गांव से दूर जा रहे हैं। बहुत लोग ऐसे कहते हैं कि हम जो बच्चे हैं या आने वाली जनरेशन है, ये गांव में रहेंगे नहीं रहेंगे, या अपॉर्चुनिटीज के लिए भी उनके पास रीजन भी है। लेकिन आपने जो पढ़ाई चुनी वो आप गाँव की बातें कर रहे हो और डेवलपमेंट की बात कर रहे हो। आपने एक स्टेटमेंट कहा कि गाँव को गाँव बनाना
1: जी,
0: तो मैं जानना चाहूंगी कि ये टॉपिक मतलब या ये विषय पढ़ाई के लिए आपने क्यों चूज किया?
1: एक्चुअली मैं थोड़ा सा डिफरेंट था, नया नया सब्जेक्ट था, यूजीसी ने इसने 2016 में यूजीसी इस प्रोग्राम को लेके आई और मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से था, इकोनॉमिक्स वही अकाउंट्स वही बिजनेस स्टडी पढ़ना, तो मेरे को इंटरेस्ट नहीं था वो सब चीजें पढ़ने में। मतलब था एक इंटरेस्ट कुछ चीजें पढ़ने में जानने के लिए, बट वो इंटरेस्ट सोच रहा था कुछ नया किया जाए। तो एज ए मैं यूनिवर्सिटी विजिट किया वहाँ का, पहले तो उस यूनिवर्सिटी में इतना एक चुंबकत्व था तो मुझे खींच लिया, तो वहाँ से मैंने उसे मुझे यूनिवर्सिटी अच्छी लगी, तो मुझे लगा कि यहाँ पे कुछ करना चाहिए, मुझे पोटेंशियल लगा वहाँ पे। तो एक नया नया प्रोग्राम आया, किसी ने मेरे को सजेस्ट किया, चार्टेड अकाउंटेंट थे तो बोले कि नया प्रोग्राम है, अच्छा प्रोग्राम है। मैंने ज्यादा कुछ सोचा नहीं इसमें, उसका एक पैम्पलेट देखा, उसमें देखा एग्रीकल्चर ऊपर ऊपर में था और इकोनॉमिक्स था, मेरे दोनों ही सब्जेक्ट इंटरेस्टेड थे। हाँ, जबकि एग्रीकल्चर मेरा बैकग्राउंड नहीं था, बट इंटरेस्टेड था मैं उसके बारे में जानना के लिए और इकोनॉमिक्स के बारे में। तो जबकि वो दो सब्जेक्ट ही देखे थे, बाकी तो गांव के बारे में तो बहुत सारी चीजें थी उसमें, जैसे हाँ हॉर्टिकल्चर्स के बारे में था उसके बारे में, और प्लांट्स हर्बल मेडिसिन प्लांट्स के बारे में, वाटर कंजर्वेशन के बारे में, एग्रीकल्चर में भी ऑर्गेनिक फार्मिंग हो गया, क्रॉप मैनेजमेंट हो गया, तो एक गांव से जुड़ी हुई सारी स्टडी, होल स्टडी होती है उस प्रोग्राम में जुड़ी हुई थी। तो मैंने तो एक साल ये चीजों को समझने में ही मतलब यूज किया कि कैसे हम चीजों को समझे पढ़ाई के लिए। जब एक साल के बाद तो ऐसा हुआ कि इतना अटैचमेंट हो गया प्रोग्राम से, इतना इंटरेस्ट आ गया, तो शायद मुझे लगता कि और प्रोग्राम करके मुझे नहीं आता। तो इसलिए मैंने थोड़ा डिफरेंट सोचा और डिफरेंट जुड़ा, तो मेरी कनेक्टिविटी बहुत हो गई। आज तक मतलब मुझे सबसे 3 सालों प्रीसियस लगते अपनी लाइफ के, क्योंकि लगता है कि जीवन में उस टाइम में मैंने प्रैक्टिकली एंड थियोरेटिकली बहुत कुछ सीखा और इतना मजा आया इंटरेस्टेडली, और उसको मैं इतना कनेक्टेड और टच फील करता हूँ।
0: ओके राजेश, ये 3 साल का कोर्स है
1: जी,
0: ना ग्रेजुएशन है
1: जी,
0: तो क्या है कुछ सब्जेक्ट्स उसमें, क्या पढ़ाई होती है, थोड़ा सा आप और बताएंगे?
1: जी, ये नया प्रोग्राम है बट इसमें अभी हमारे 6th बैच या 7th बैच चल रहा होगा, तो कुल मिला के इसमें 6 सेमेस्टर होते हैं और 4 सब्जेक्ट एवरी सेमेस्टर होते हैं, और उसके साथ में जी जेनिक इलेक्टिव सब्जेक्ट होता है जहाँ आप किसी दूसरे डिपार्टमेंट जाके सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं। जैसे जैसे आई एम स्टूडेंट ऑफ द रूरल स्टडीज, ग्रामीण अध्ययन का मैं स्टूडेंट हूँ, मैं हिस्ट्री डिपार्टमेंट जाके हिस्ट्री पढ़ सकता हूँ एक सब्जेक्ट 4 सेमेस्टर तक। तो ऐसे ही मैंने जैसे 2 सेमेस्टर मैंने योग पढ़ा, 1 साल मैंने टूरिज्म के बारे में जाना, इंडिया का टूरिज्म कैसा है उसका बेसिक थिंग्स, तो ये तो जेनिक इलेक्टिव। इसके साथ हम स्किल एनहेंसमेंट कोर्स पढ़ते, करते हैं, आप अपनी स्किल कैसे बढ़ा सकते हो। जैसे स्किल एनहांसमेंट, मैंने एक थेरेपी सीखी, एक्यूप्रेशर, यज्ञ थेरेपी। हम कैसे एक्यूप्रेशर दे सकते हैं लोगों को, अपना कैसे एक्यूप्रेशर से सीख सकते हो। बेसिक हम चीजें सीख सकते हैं जो हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जैसे वहाँ पे स्किल एनहांसमेंट में दूसरे भी कोर्स है, जैसे हैंडमेड पेपर बनाना और स्क्रीन प्रिंटिंग हुआ, फ्रूट प्रोसेसिंग हुआ, काउ बेस्ड प्रोडक्ट्स हुआ। और जो सह सेमेस्टर होते हैं, जो कोर सब्जेक्ट होते हैं, वो रिलेटेड टू रूरल स्टडीज, जिसमें मेनली एग्रीकल्चर होता है, मैनेजमेंट होता है, ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट जिसमें आ जाता है मैनेजमेंट के पार्ट, ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर आप पढ़ते हो, एनजीओ मैनेजमेंट आता है, वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आप जानते हो, कम्युनिटी के बारे में आप स्टडी करते हो, डेवलपमेंट क्या से जो सारी चीजें जुड़ी है उसके बारे में पढ़ते हो। टोटली
0: बहुत इंटरेस्टिंग है।
1: हाँ, जितना थ्योरेटिकली पढ़ते हो उतना प्रैक्टिकली आप करते हो।
0: प्रैक्टिकली कैसे?
1: जैसे सपोज कि हम ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर एंड मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं, डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं, तो पूरा सब्जेक्ट थ्योरेटिकली लगता है। प्रैक्टिकली ऐसा है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, तो आपको ऑर्गेनाइजेशन विजिट करवाया जाता है।
0: ओके,
1: ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन के विजिट के साथ साथ आप ऑर्गेनाइजेशन में लोगों से मिलते हो, उसके एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट को, स्ट्रक्चर पार्ट को समझते हो, वहाँ के जो काम कर रहा है उसके बारे में सारी चीजें जान लेते हो। एचआर का जो काम होता है उसको सारे चीजों को आप होल लेवल अपने समझते। दूसरा एक और सबसे इंटरेस्टिंग प्रोग्राम जो हर जहाँ चल रहा है, एंटरप्रेन्योरशिप, तो उसमें है कि रूरल एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में हम चीजें पढ़ते हैं, तो उसमें हमें एक स्किल सीखनी पड़ती है। जैसे मैंने वर्मी कंपोस्टिंग सीखा पूरी तरीके से, कैसे उसको बनाते हैं छोटे से लेवल से लेकर बड़े लेवल तक। जैसे ये कि मैंने वर्मी कंपोस्टिंग में करता तो नहीं हूँ, ठीक है, जितना मेरा ये है कि कोई मुझे हेल्प लेता है तो मैं उसके यहाँ जाता हूँ, विजिट करता हूँ, उसको हेल्प देता हूँ कि मैं ये कहता हूँ आप ज्यादा से ज्यादा और करिए, कैसे मार्केटिंग कर सकते इसकी, कैसे आप इसको बना सकते अच्छे से या सही नहीं बन रहा है। तो मुझे कोई चीज भी लगता है कि मुझे नहीं जानकारी है, तो मैं वापस अपने एक्सपर्ट टीम या फिर मेरे टीचर लोगों से पूछता हूँ। तो ऐसे करके सारी चीजें मैं जानकारी लेता हूँ और ऐड करता जाता हूँ एज ए स्टूडेंट। मुझे आज ही लगता है मैं हमेशा स्टूडेंट हूँ सब्जेक्ट का, तो लर्निंग मेरी ग्रोथ होती रहती है हमेशा, और उसको प्रैक्टिकली बांटता रहता हूँ खुद के थ्रू।
0: अच्छा राजेश, जैसा आपने बताया कोर्स में बहुत कुछ है जो आपने सीखा, अगर मान लीजिए कोई बच्चा एडमिशन लेना चाहते हैं
1: जी,
0: तो आप थोड़ा सा यूनिवर्सिटी के बारे में या प्रोसीजर क्या होता है, कैसा एनवायरनमेंट है वहाँ, कुछ उसके बारे में बताएंगे? यूनिवर्सिटी के नाम के बारे में भी एक बार फिर से बता दीजिए, कौन सी यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं।
1: जी, मेरी यूनिवर्सिटी का नाम देव संस्कृति विश्वविद्यालय है, जो शांति कुंज हरिद्वार में है, हरिद्वार रेलवे स्टेशन से 8 किलोमीटर दूर है। और सब्जेक्ट का नाम है बैचलर ऑफ रूरल स्टडीज, और डिपार्टमेंट का नाम है स्कूल ऑफ बायोलॉजिकल साइंस एंड सस्टेनेबिलिटी। तो स्कूल के अंदर वो प्रोग्राम आता है बैचलर ऑफ रूरल स्टडीज, और ये 3 साल का प्रोग्राम है। अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी के थ्रू 4 साल का प्रोग्राम हो गया है, जिसमें आपका मास्टर भी इंक्लूडेड रहता है, तो इसमें और पॉसिबिलिटीज बढ़ गई है रिसर्च के लिए भी, मास्टर्स के लिए भी, तो आपकी करियर अपॉर्चुनिटी भी बढ़ गई डेफिनेटली। मोस्टली फोकस ये किया जाता है कि हम जॉब प्रोवाइडर बने, कि एक गांव में जाके हम एंटरप्रेन्योरशिप करें और ज्यादा से ज्यादा जॉब प्रोवाइड करें, जॉब गेनिंग की वजह, तो यही उद्देश्य रहता है इस प्रोग्राम का मेनली। फिर भी कोई भी आप अपना जॉब भी लेना चाहते हैं एनजीओ में या फिर ऑर्गेनाइजेशंस में, तो आपको पूरा फुली सपोर्ट किया जाता है।
0: ओके
1: जी।
0: अच्छा, एडमिशन कैसे होता है?
1: हाँ जी, मैं वो भूल गया था, मैं बताना चाहता हूँ, रिपीट करना चाहता हूँ। एडमिशन के लिए ये है कि ऑनलाइन फॉर्म निकाला जाता है, इसमें आपको पहले सबसे पहले ऑनलाइन फॉर्म भरना पड़ता है, ऑफलाइन भी भर सकते हैं वहाँ जाके। आप एक बार विजिट करोगे तो आपको और अच्छा लगेगा, चीजों को प्रैक्टिकली समझेंगे। तो फॉर्म भरने के बाद आपका एग्जाम होगा, एग्जाम में आपका 50 मार्क्स का नॉर्मल जीके होता है, और उसके PYQ आपको मिल जाएंगे, और 20 मार्क्स का आपका होता है रीजनिंग और मैथ्स, और 20 मार्क्स का यूनिवर्सिटी के बारे में होता है।
0: अच्छा।
1: हाँ, वो इसलिए होता है कि क्योंकि आप मेन तो है ना, यूनिवर्सिटी आपको बना रही है, तो उसकी कुछ कोर वैल्यूज होती है, तो आप कोर वैल्यूज से एडजस्टमेंट कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे, तो थोड़ा अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि आप कितना समझते हो, तो जितना ज्यादा समझता है वो आके और भी एडजस्ट कर सकता है, तो एक संभावना रखी जाती है मोटा मोटी।
0: अच्छा।
1: तो इसलिए वो 20 मार्क्स का एड किया जाता है कि बच्चा उससे पहले कितना परिचित है, और इतना भी वो नॉर्मल होता है, इतना कोई वो होता नहीं, आप जाके एक बार विजिट कर लेंगे तो आपको सारी चीजें समझ आ जाएगी 20 मार्क्स का, तो क्योंकि वो एक पूरा अलग सिनेरियो यूनिवर्सिटी का है, क्योंकि वो अपने आप में एक, मैं यूनिवर्सिटी बाद में कहता हूँ, पहले तो आई एम टेलिंग द मदर, मैं उसको हमेशा माँ कहता हूँ पहले।
0: अच्छा।
1: क्योंकि शायद मदर एक फील करती है ना, शायद वो, मैं ऐसा फील करता हूँ कि मुझे बार बार जाने का मन करता है, और एक माँ से जो सीखने को मिलता है वो यहीं सीखने को मिलता है, तो ये उसका आपका फिर एग्जाम होता है, एग्जाम के बाद आपका एग्जाम यदि आप क्लियर कर लेते हैं, सीटें बहुत कम होती हैं, 10 से 15, फिर उसके बाद आपको इंटरव्यू देना होता है। फिर आपको इंटरव्यू में ही ये जाना जाता है कि आप इसके लिए कितना इच्छुक हैं पढ़ने के लिए, और आपकी बेसिक देखा जाता है, आपका एजुकेशन कहाँ से हुआ, कितने आप कैपेबल हो, वो सारी चीज़ें। और मेन बात है आप इंटरेस्टेड कितना हो, तो वो सारे इंटरव्यू में सारी बातें, एक इंटरव्यू जो फॉर्मली रूप से होता है उसमें व्यक्तिगत रूप से सब समझने की कोशिश की जाती है।
0: आपको याद है आपसे क्या सवाल पूछे गए थे?
1: हाँ, मेरे को तो एक तो मेरा जो बेसिक मैं जहाँ से पढ़ा था उसके बारे में पूछा, कि उससे बारे में इसलिए पूछा कि चीज़ें तो हमें इंटरव्यू दे रहा था, एग्ज़ाम मार्च में थे तो इंटरव्यू में कम से कम दे रहा था 3.5 महीने बाद, तो ऐसा लग रहा था कि कुछ चीज़ सारी भूल गया हूँ। फिर भी मैंने बताई, याद था मेरा, मेरे परसेंटेज अच्छे थे तो रिफ्लेक्ट करता है डेफिनेटली। और साथ ही साथ ये पूछा गया था कि आप इस कोर्स के लिए क्यों इंटरेस्टेड है, बस मैं नहीं कि ये प्रश्न ये होता आप ये करना क्यों चाहते हैं।
0: आपने क्या बोला था?
1: मैंने कहा बस मैं इंटरेस्टेड हूँ, मैं नया सीखना चाहता हूँ और मैं इस बैकग्राउंड से जुड़ा हूँ। जैसे मैंने आपको बोला ना, हर मैं हर यूथ से बात करता हूँ कि गाँव के बारे में, तो बोलते हैं कि रियलिटी इज द गाँव, गाँव ही असली जिंदगी है, वो बोलते हैं हमेशा, बट वो गाँव में क्यों नहीं रहना चाहते हैं। कि ऐसी है कि सपोज मैं आज गांव में रहना चाहता हूँ तो मेरा थोड़ा लाइफ स्टाइल अलग हो गया, जैसे कि मुझे 24 hours लाइट चाहिए, ठीक है, दिन में तो आप बिना लाइट के भी काम चला सकते हो, रोशनी उसमें पड़ सकते हो, रात्रि में भी आप कुछ देर के लिए तो आपको रोशनी चाहिए 9-10 बजे तक, तो गांव में कभी कभी उसका भी प्रॉब्लम्स रहता है आज के भारत में भी। अभी भी मतलब चीजें सुधर रही है तो बेटर हो रहा है, और बेसिक जो थिंग्स है वो गांव में थोड़ा और अच्छे इम्प्रूवमेंट हो सके तो फिर बेटर हो सकता है। जैसे गांव हमारे इतने अच्छे थे, कभी कोई बीमार पड़ता ही नहीं था तो हॉस्पिटल की जरूरत ही नहीं थी, और हमारे गांव में गुरुकुल सिस्टम था पहले से, तो बेसिक चीजें बच्चा वहीं सीख लेता, वहीं पढ़ लेता, तो वहीं अध्ययन कर लेता। आज उसकी मतलब एक कहते हैं ना कि भाई टीचर है उसके लिए, स्कूल्स बना है, लाइब्रेरी बनी है, बट वो कितनी ओपन होती, कितना खुलता है, टीचर्स कितना आता है। अब कितने भी हम अकाउंटेबिलिटी रख ले ऑनलाइन अटेंडेंस के माध्यम में भी, टीचर कितना आता है फिर भी हमारे लिए एक नया ही है कि वो टीचर आके भी बैठ जाता है, वो कितना सिखाने की कोशिश करा। फिर भी गांव में कुछ बच्चे इतने कनेक्टेड इसलिए भी रहते हैं कि कुछ टीचर बहुत अच्छे मिल जाते हैं, वो आते डेफिनेटली सरकारी स्कूल्स में बहुत अच्छे टीचर आते और बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और इसलिए वो बहुत अच्छा भी करते हैं। तो गांव मतलब रियलिटी है कि आपको ओरिजिनलिटी मिलती खाने पीने से संबंधित भी, हवा एकदम ऑक्सीजन लेवल डिफरेंट। आप यदि गांव शहर में 8 बजे उठते हो, गांव में आप 6 बजे उठ जाएंगे डेफिनेटली, क्योंकि वहां का ऑक्सीजन लेवल बहुत अच्छा है, आपका नींद अच्छी हो जाएगी आपकी, तो कह सकते हैं ओरिजिनलिटी इज द विलेज, तो स्वर्ग तो है ही वही।
0: ओके, तो आपको जब आपने पढ़ा, जब आपने 3 साल ये कोर्स किया, जैसे क्या आपके मन में कोई ऐसी पिक्चर थी या कोई ऐसी बात थी जो चेंज हुई, या आपको लगा कि एक नया परसेप्शन मिला, आपको नई सोच आपके अंदर जगी?
1: मतलब एक लाइफ में होता है ना, एक यूथ के अंदर कुछ करना है।
0: हाँ।
1: मतलब कुछ तो करना है भाई, ऐसे खा पी के मर जाएंगे तो कुछ हम क्या करके गए।
0: हाँ।
1: ठीक है, तो लगता है कि यार क्या किया जाए, व्यक्ति हुई सो एक्सप्लोर करता है, तो फिर एक पिक्चर ये डेवलप हुई कि भाई मुझे ज्यादा तो गांव है और सब कितने विकसित है, सब अपनी अपनी प्रॉब्लम है, बट वो प्रॉब्लम मैं कभी नहीं सॉल्व कर सकता हूँ, गांव के लोग जब तक नहीं चाहते, तो हम वो सिनेरियो कैसे बदलें, उनसे कैसे बात करें, उनको कैसे समझें। ठीक है, फिर एक संकल्प ये लिया, हम संकल्प ले सकते हैं उसके ऊपर भरपूर प्रयास कर सकते हैं, तो एक संकल्प मैंने ये लिया कि मैं जीवन में कुछ भी करूं, मैं चाहे सिविल सर्विसेज भी जॉब लूँ या फिर मैं अपना एंटरप्रेन्योरशिप करूँ या बिजनेस करूँ, मैं लाइफ में कहीं पे भी हूँ, बट मेरा एक लक्ष्य बन गया है कि मैं जे अपने जीवन के अंतिम तक एक गांव विकसित करना है। ठीक है, और वो गांव मिलके ही हो सकता है, तो उसके लिए मैं जितने प्रयास कर सकूँ वो करना, एक मेरी ये चीज चेंज हुई। पहले आज भी मतलब मैं थोड़ा सा फिर भी वो रहता हूँ कि कैसे होगा, मैंने कई लोगों से बात भी की, कई लोगों ने मुझे हेल्प भी प्रोवाइड की, क्योंकि अच्छे काम के लिए आपको सपोर्ट करने के लिए अच्छे लोग बहुत आसानी से मिल जाते हैं, आपको पूरी फुल्ली सपोर्ट करते हैं, आपके डिजाइन लेवल पे, आपको समझने के लेवल पे हम कैसे स्टार्टिंग पॉइंट से कर सकते हैं। तो एक तो ये मतलब छोटा संकल्प मैं समझता हूँ, सब कहते हैं कि छोटा नहीं बहुत बड़ा संकल्प है तुम्हारा, मैं इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं करना चाहता हूँ, मुझे एक गांव अच्छा विकसित करना। फिर मैंने ये बात किसी के सामने रखी तो उन्होंने बोला कि एक गांव ही क्यों करना, सब क्यों नहीं कर सकते, मैं तो नहीं कर सकता हूँ, मेरे अंदर तो सार्थकता नहीं है, फिर भी मैं एक पॉजिटिवनेस रखता हूँ अपने साथ में, हाँ होना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि हम ऐसा गाँव डेवलप करें जो रेप्लिकेटेड मॉडल, ये मुझे नई चीज सीखने में मिली, मैंने जिससे भी बात की तो मैं कहा ऐसा भी प्रयास किया जा सकता है और ऐसा ही करना चाहिए। तो अभी तो मन में यही है कि प्लान
0: मॉडल विलेज बना सकते हैं,
1: एक मॉडल विलेज बनाना है और जितने भी मॉडल विलेज है उनको समझना, इससे जुड़े हुए लोग जितने भी है उनसे बात करने मुझे बहुत मजा आता है, जो कम्युनिटी से जुड़ा हुआ है और जो फील्ड से जुड़ा हुआ है, जो गाँव से जुड़ा हुआ है, उनसे मुझे बात करके, उनसे कॉन्टेक्ट बना के और उनसे जब चीजें नई नई सीख के मुझे बहुत मजा आता है। कुल मिला के मेरे को एक जो सिनेरियो चेंज हुआ ना, इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि लर्निंग का बहुत हुआ। इससे पहले हम एक ना होती है ना, जैसे मुझे कुछ सीए बनना है तो मैं सीए के लिए ही पढ़ाई करूंगा, ठीक है, वो कितना इंटरेस्टिंग कर रहा हूँ मुझे नहीं पता। तो ऐसा ही है कि शायद मैं इस काम कर रहा हूँ ना, मुझे इंटरेस्ट बहुत आता, मजा बहुत आता है, तो मेरे लिए डेफिनेटली काम बहुत अच्छा हो जाता है।
0: ये बहुत अच्छी बात है कि आपने जो पढ़ाई की, जो आप करना चाहते हो उसमें आपको मजा आता है,
1: जी
0: बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छा राजेश, जैसे आपने कोर्स के बारे में बताया, अपॉर्चुनिटीज के बारे में बताया, एडमिशन के प्रोसीजर की बात की, ये सब क्या मतलब कब निकलते हैं फॉर्म्स और ऑनलाइन भर सकते हैं क्या या जाना पड़ता है वहाँ पे?
1: जो ऑनलाइन आप आराम से भर सकते हैं और यूजीसी का मोस्टली यूजीसी से यूनिवर्सिटी कनेक्टेड है, इज अ प्राइवेट यूनिवर्सिटी ऑफ उत्तराखंड, फर्स्ट प्राइवेट यूनिवर्सिटी ऑफ उत्तराखंड, और आपका बहुत कम फीस, इज द कहते हैं मेंटेनेंस फीस। और ये है कि शायद मुझे उन्होंने टच इसीलिए दिया कि वो बहुत ही मेंटेनेंस में आपको बहुत अच्छा एजुकेशन दे रहे हैं, ठीक है। फिर ये है ना कि आज मैं यूनिवर्सिटी के लिए हमेशा के लिए तैयार रहता हूँ कुछ भी करने के लिए, यूनिवर्सिटी जैसे लोगों को अच्छे कनेक्टिविटी करना, यूनिवर्सिटी के लिए, डिपार्टमेंट के लिए करना, गांव के लिए करना, तो शायद वो आपके पास यदि आप किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ते हो, बड़े इंस्टीट्यूट में पढ़ते हो, वहां से करोड़ों रुपए फीस है तो आप वहां टच नहीं लेके जाते हो, तो यहाँ कम फीस में आप बहुत अच्छा सीख के जाते हो, ठीक है। फर्स्ट थिंग,
0: वहाँ हॉस्टल भी है?
1: जी, रेजिडेंशियल ही कैंपस है, आपको अनिवार्य रूप से हॉस्टल में ही रहना पड़ता है क्योंकि वहाँ का लाइफ जीना होता है।
0: अच्छा,
1: हाँ, तो आपको हॉस्टल में रहना पड़ता है, आप सुबह जल्दी उठ सकते हो, आप कल्चरली बहुत वहाँ रिच हो सकते हो, आप अपने नॉलेज के स्तर पे भी, पढ़ाई के स्तर भी बहुत अच्छा, लाइब्रेरीज भी है वहाँ पे, तो मतलब बेसिक एक यूनिवर्सिटी में होता है इंटरनेशनल लेवल पर सारा है।
0: क्या बात है?
1: मतलब रिसर्च के लिए भी बहुत संभावना है, जब आप कितने डेडिकेटली और इंटरेस्टेड हैं
0: आपके ऊपर डिपेंड करता है,
1: वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कितना लेना चाहते हो, वहाँ देने वाले बहुत हैं।
0: बहुत है, क्या बात है, तो मतलब बहुत ही सुंदर यूनिवर्सिटी लग रही है।
1: आप यूट्यूब पे भी जाके देख सकते हैं, और जुलाई में एक बार एडमिशन्स ओपन हो जाते हैं, जुलाई के आसपास

0: दे सकते हो और फिर इंटरव्यू के लिए आपको यूनिवर्सिटी ही जाना पड़ता है.
1: अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो इंटरव्यू आपका वहीं होता है.
0: वहीं होता है, फिर आप इंटरव्यू में सिलेक्ट हो जाते हैं तो आपका एडमिशन ले सकते हैं आप वहाँ.
1: ओके, तो इस तरह के बहुत सारे कोर्सेज होंगे और भी यहाँ पे.
0: जी,
1: तो अच्छी बात है दोस्तों, जैसा कि आपने सुना अभी राजेश को, अभी वेबसाइट विजिट करें. मैं तो कहूंगी देव संस्कृति की बात कर रहे हैं हम यहाँ, साथ साथ और भी यूनिवर्सिटीज जो है उनकी वेबसाइट समय पर विजिट करना बहुत जरूरी है. कई बार ऐसा होता है राजेश कि जो बच्चे हैं वो पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन समय निकल जाता है. यूनिवर्सिटी के एडमिशन प्रोसीजर का एक समय है, निश्चित समय है.
0: बिल्कुल.
1: तो अगर आप 12वीं में है तो आप उसी साल पहले से देख लें कि अगले साल एडमिशन कब होगा. आप लास्ट मोमेंट का इंतजार नहीं करें, नहीं तो कई बार आप जो करना चाहते हैं हो सकता है वो कोर्स निकल जाए या डेट निकल जाए या आप को अच्छी यूनिवर्सिटी के बारे में पता ही ना लग पाए.
0: बिल्कुल.
1: और क्योंकि हम यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं तो यूजीसी का नाम लिया, आप वहाँ पे यूजीसी की वेबसाइट पे अगर जाएंगे, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो है, आप वहाँ पे भी देखेंगे तो प्राइवेट स्टेट यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की लिस्ट है.
0: जी,
1: तो क्लिक करके आप वहाँ से भी वेबसाइट में जा सकते हैं. जानकारी जरूर रखें, इंटरनेट युवाओं के पास है तो उसका इस्तेमाल सही इस्तेमाल अपनी शिक्षा के लिए जरूर करें.
0: YouTube पे भी आपको उसके एडमिशन प्रोसेस के लिए भी आपको और विस्तृत में आपको जानकारी मिल सकती है. आप इंटरव्यू कैसे दें, एग्जाम कैसे लिखें, उसके लिए भी आपको ऑनलाइन वीडियोस मिल जाते हैं बहुत ही आसान में, क्योंकि आज टेक्नोलॉजी हाथ में है, बहुत ही आसान हो गया सारी चीजें. मेरे लिए ये था कि मैंने फॉर्म भी किसी दूसरे शहर में जाके भरा था.
1: अच्छा.
0: हाँ, ऐसा था. और मतलब कोई साइबर कैफे वाले विश्वास भी नहीं होता कि भर पाएगा. तो फिर मैंने लगा को विश्वास पाते साइबर कैफे, उससे जाके भरना पड़ा मुझे.
1: अच्छा. ओके.
0: और एग्जाम देने के लिए भी उस समय राजस्थान में जोधपुर सेंटर हुआ करता था तो वहीं हो गया था. और ना मतलब एग्जाम के बाद थोड़ा सा मन में था कि यूनिवर्सिटी मुझे बुला रही है, जबकि हाँ तो ऐसा लग रहा था. तो फिर जरूरी वो इंटरव्यू का कॉल भी आया और इंटरव्यू भी दिया. ऐसा लगा सब कुछ अचानक सा हो रहा है,
1: होता
0: है, हमको कोई करवा रहा है, ऐसा फील होता है.
1: क्या बात.
0: हाँ, आप यदि इंटरेस्टेड हो
1: मदद मिलती है आपको.
0: बिल्कुल बिल्कुल.
1: फील भी होता है कि हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं.
0: बिल्कुल.
1: अच्छा राजेश, आपने जैसे बात की कि आपने ग्रेजुएशन किया, एक थोड़ा एनवायरनमेंट के बारे में वहाँ के कैसा है कुछ बताएं यूनिवर्सिटी का.
0: सबसे बड़ी और अच्छी चीज तो डीएसयू का एनवायरनमेंट है. जब मैंने आदरणीय प्रतिकुलपति महोदय से मैं जब मिला तो उनका कहना था कि राष्ट्र उपराष्ट्रपति जी एक दिन के लिए आते हैं, वो दो दिन रुक के जाते हैं. माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शिवराज सिंह जी आते हैं, वो भी दो दिन, एक दिन के लिए प्लान करके आते हैं, दो दिन रुक के जाते हैं. तो वाइब्रेशन इज द वेरी वंडरफुल ऑफ द यूनिवर्सिटी. बहुत ही अच्छा. मतलब मैं उसको फील ही करता हूँ, बता कभी सकता ही नहीं हूँ. आप जाके हो फील करते. जैसे रिसेंटली मेरा भाई है ना, मैंने उनको बोला हरिद्वार जाने को, मैंने कहा ऋषिकेश तो तुम जाना यूनिवर्सिटी जरूर जाना. वो गया, एंटर किया, वीडियो कॉल किया मुझे, थोड़ा और 10 कदम चला, बोले कि भाई तेरी यूनिवर्सिटी क्या है, गजब है. तो बस वो मैंने कहा तुम जाके फील ही कर सकते हो. बहुत अच्छा वातावरण वहाँ पे. आप कितना अच्छा वातावरण और बना सकते हो, ये और भी महत्वपूर्ण है. और बच्चे बनाते भी हैं. यूनिवर्सिटी जैसे मार्केट का किंग कौन होता है, कस्टमर होता है ना, तो इसी प्रकार यूनिवर्सिटी का किंग तो बच्चे लोग ही होते हैं. बच्चे यूनिवर्सिटी के वो ही होते हैं. जब मैं भी इंजीनियरिंग के छात्रों से मिलता हूँ, मैं कहा आपका यूनिवर्सिटी मतलब ऐसा है वैसा है, बट बनाने वाले भी तो आप ही लोग हो. आप प्रयास करो, डेफिनेटली अच्छा बनेगा. आप एक पौधा तो लगाओ, 10 लोग और मोटिवेटेड होंगे. नहीं होंगे तो नहीं होंगे, बट आप प्रयास तो करो. तो ऐसा एक बच्चे बहुत भरपूर प्रयास करते, फैकल्टी बहुत हेल्प करती है वहाँ पे, तो डेफिनेटली बहुत ही अच्छा वातावरण है. जैसे एक्यूप्रेशर पार्क, आपको नेचुरल जूस मिलता है वहाँ पीने के लिए बहुत ही सस्ते में. मतलब कह सकते हैं कि नो प्रॉफिट नो लॉस पे बहुत अच्छा कैंटीन है. नो प्रॉफिट नो लॉस पे एकदम प्योरिटी वाला खाना. तो आज भी डीएसयू का मुझे बहुत याद आता है पर्सनली.
1: हाँ,
0: क्योंकि आप कई हॉस्टल्स में रहते हो ना, तो फिर आपको समझ आता है कि डीएसयू का कैसा खाना, हॉस्टल का कैसा खाना. तो मुझे तो डेफिनेटली बहुत अच्छा लगता है, एकदम सिंपल खाना और बेहतरीन. जब कभी आप, मैं 5 साल में 3 साल तो वहाँ रहा, कभी बीमार नहीं पड़ा. उससे भी 2 साल पहले भी कभी बीमार नहीं पड़ा, तो 5 साल में कभी बीमार पड़ा ही नहीं वहाँ पे.
1: क्या बात है.
0: कभी मेरे को बुखार तक नहीं आया वहाँ पे. थोड़ा ठंड ज्यादा पड़ता है तो जरूर आपको जुकाम हो सकता है, फिर भी ये जैसे आप ये ना कि जैसे मैं हूँ स्टूडेंट रूरल

0: स्टडीज का, साथ में पढ़ रहा हूँ जन कलेक्टिव जी, योगा भी सीख रहा हूँ, ठीक है, साथ साथ में आप जल नीति भी सीख रहे हो, षटकर्म सीख रहे हो, सूत्र नीति सीख रहे हो, ये साथ में जो चीजें सीखते हो ना, आप खुद को पता नहीं चलते कि हमारी स्किल में और क्या गेन हो रहा है।
1: बाद में रियलाइज होता है कि हमने जो सीख लिया है इस वक्त, बहुत लोग हैं पता है जो सीखना चाहते हैं
0: जी,
1: जिनको लगता है क्योंकि हम सब स्वस्थ रहना चाहते हैं,
0: बिल्कुल,
1: और स्वस्थ रहने के लिए जैसा आपने कहा बहुत सारी विधाएं हैं, योगा है खास तौर से, और अगर आपके स्टूडेंट लाइफ में वो शामिल हो जाए तो शायद आप जीवन भर नहीं भूलेंगे।
0: जी जी बिल्कुल, मैंने रियलाइज किया कुछ दिन पहले कि एक मतलब सफल व्यक्ति के जीवन में सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज होती है ना, तो उसका लाइफ स्टाइल होता है, बहुत लाइफ स्टाइल होता है, कैसे कितने बजे सोता है, कैसे सोता है, कैसे वो रहता है, तो शायद मुझे लगता है बहुत ही रिफ्लेक्ट करता है। मैं ये चीज फील किया और कई चीजें हम फील करके ही सीख पाते हैं। फिर मुझे लगता है कि यदि हम 5 बजे उठते हैं तो हमारा बॉडी हेल्दी रहती है, सुबह इन्वायरमेंट बिल्कुल अलग रहता है, एनर्जी और रहती है, कोई लोग 2 बार दिन में नहाते हैं तो उसे और एनर्जाइज होते हैं, तो ये हमारी छोटी छोटी आदतें और लाइफ स्टाइल का जो हिस्सा होती है हमको बहुत ही आगे तक ले जाती है।
1: बहुत अच्छी बात कही आपने राजेश, जो ये आपने बात कही है, कई लोग ऐसे हैं जब हम बात करते हैं जो सक्सेसफुल, जिन्हें हम सक्सेसफुल मानते हैं, जिनके बिजनेस है बड़े बड़े या जो कोई कार्य है, एनजीओस भले चला रहे हैं लेकिन एक अच्छे स्तर पर चला रहे हैं, या जो शुरुआत भी कर रहे हैं, ये बात बिल्कुल सही है कि उनका लाइफस्टाइल अगर उनसे पूछा जाए तो एक जो सामान्य लाइफस्टाइल है जिसमें ये सब चीजें शामिल नहीं, उससे भेद तो पाएंगे, अंतर तो पाएंगे।
0: जी।
1: अच्छा राजेश, और कोई ऐसी बात है जो आपने ऑब्जर्व की और आपको लगता है कि युवाओं के अंदर या युवाओं को मालूम होनी चाहिए, जो आपके साथी हैं आपको लगता है उनको मदद मिलेगी ये बात?
0: अच्छा ऑब्जर्वेशन तो
1: कोई भी ऐसी लाइफ के प्रति आपकी बात,
0: ऑब्जर्वेशन तो मेरी बहुत है। मैंने ये कि युवा हमेशा अपने आंख कान और ये सब जो इंद्रियाएं होती है खुली रखे।
1: ओके। हाँ।
0: दूसरा है कि वो सेल्फ अपने बारे में अवेयर हो, चाहे वो स्पिरिचुअली लेवल पे, आत्मा के लेवल पे भी, और फिजिकली बॉडी के लेवल भी वो अवेयर हो, तो अवेयर होना जरूरी है। और अवेयर यूथ है ना, तो हमारे अंदर पावर होनी चाहिए जिज्ञासा की, हम जिज्ञासा की बात है, हमारी जानने की जो इच्छा शक्ति है हमेशा हमें अवेयर होना चाहिए। जैसे ये कि मैंने प्रश्न किया कि राखी के ऊपर बहने ही क्यों राखी बांधती है, भाई क्यों नहीं बांध सकता, ठीक है, ये मैंने प्रश्न किया, तो हमारे अंदर जो क्वेश्चंस करने का भाव है ना वो आना चाहिए यूथ के अंदर में, वो सबसे ज्यादा डेवलप होना चाहिए। यदि हम आपने ये करना प्रारंभ कर लिया तो आपका नॉलेज भी गेन हो जाएगा, आप अवेयर और ज्यादा हो सकते हैं। ये यूथ में थोड़ा सा कई यूथ करते भी हैं और वही युवा कहलाते हैं। और हम एज ए उम्र की बात करें तो उम्र में एक मैं कुछ दिन पहले ही मैं अपना एक स्टोरी छोटा सा सुनाना चाहता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा वो। मैं 11th 12th में जिस हॉस्टल में रहता था उन वार्डन सर से मिलने गया, मैं कहा सर रूम तो है नहीं आपके पास खाली, मैं आना चाहता था, तो बोले फिर भी मैंने उनसे मिलने गया, मुझे वो मतलब हमेशा ये कहते हैं फोन नहीं करते बच्चे लोग, तो मैं ठीक है सर मैं मिल के ही आता हूँ। मिलने गया तो मैंने कहा सर आप 25 साल बच्चों के साथ रहे, आपका एक्सपीरियंस क्या है, अनुभव क्या है, तो बोलेंगे बेटा मैं फैमिली को समय तो कम दे पाता हूँ, अपने बच्चों को समय कम दे पाता हूँ, बट एक चीज अनुभव ये करता हूँ कि बच्चों के साथ रह के बूढ़ा महसूस नहीं करता हूँ। हमेशा वो बूढ़ापन आता ही नहीं इस जीवन में भी, पता नहीं वही एनर्जाइज फील करता हूँ बच्चों के साथ, नई नई चीजें सीखने को मिलती है, तो मुझे लगा बहुत अच्छी बात है ये। तो मैंने कहा सर जो भी अब कुछ नया होगा आपको समय निकाल के आना है, हम बुलाएंगे वहां पे भी, तो बोले ठीक है बच्चा, तो मुझे अच्छा लगा उनसे मिल के। तो एक युवा के मन में ना हमेशा जो मैंने कहा प्रश्न पूछने का भाव होना चाहिए, साथ ही साथ जानने की इच्छा, पढ़ने की इच्छा, लिखने की इच्छा, सीखने की इच्छा, और आनंद जिसको हम कहते हैं उसको एक लॉन्ग टर्म आनंद लेने के लिए कला के माध्यम से जुड़ना चाहिए उसको हमेशा। तो यूथ को मैं यही समझता हूँ कि वो ज्यादा से ज्यादा अपने को बेहतर बनाए और दुनिया को कैसे बेहतर बनाने के लिए प्रयास कर सकता है वो करे।
1: बिल्कुल, बहुत अच्छी बात लगी राजेश की, जो हमारी प्रश्न पूछने की जो क्यूरियोसिटी है, हम बच्चों को देखते हैं, बच्चे बहुत क्वेश्चन पूछते हैं
0: जी,
1: और लेकिन उतना ही वो सीखते हैं, डेवलप होते हैं
0: जी।
1: जैसे जैसे हम बड़े जाते हैं ना, कई बार हमें एक दो बार अगर बोल दिया जाता है कि अरे कितना बोलते हो, या चलो चुप हो जाओ, अरे कोई इसका जवाब नहीं है, कभी ऐसा भी होता है, और कभी ऐसा होता है कि धीरे धीरे हमें लगता है अब हम बड़े हो गए तो हमें सब पता होना चाहिए
0: जी।
1: लेकिन इतना कुछ है लाइफ में सीखने के लिए, हमें सब पता नहीं हो सकता, इसलिए पूछते रहे, पूछने में शर्म नहीं करें।
0: बिल्कुल। और ये है कि जो जितना बच्चा पूछ रहा है उसकी जिज्ञासा को भी हम कैसे शांत करने के लिए हम रास्ते खोजते रहते हैं, बट ये उसका मन तो देखो कितना वो प्रश्न पूछ रहा है, क्यों पूछ रहा है, कितना जिज्ञासा है। जैसे मैं छोटा होता था ना तो मैं पूछता था, कोई आता था घर पे, कोई रिलेटेड मतलब कोई ऐसे या गांव में होता था, कोई नया अनजान व्यक्ति भी आ जाता था कभी गांव में पानी पीने के लिए, और कोई शहर का अंधा है तो छाछ वाछ के लिए भी आ जाते, तो मैं पूछता आप क्या करते हैं, तो ये फिर पूछता था आपकी सैलरी कितनी।
1: अच्छा।
0: प्रश्न पूछने का तरीका।
1: हाँ।
0: तो बोले मम्मी को कि बच्चा बड़ा वो है कि बड़ा क्यूरियोसिटी वाला, और सैलरी का आज तक हम कोई नहीं पूछता था ऐसे प्रश्न, मतलब मुझे बोला कि सैलरी नहीं पूछना चाहिए किसी से। मैं कि ठीक है, बट एक प्रश्न पूछने का वो जिज्ञासा होनी चाहिए हमको, क्योंकि हम दुनिया और ज्यादा से अच्छे समझते। दूसरा मेरा ये रहा कि मैं पढ़ना है ना, जब थर्ड क्लास में था जब मैं न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट किया था, वो इस ऐसी स्टोरी है कि न्यूज़पेपर लाना ट्रेन में आता था गांव में शहर से, और शहर से मतलब न्यूज़पेपर ले आता था घर पे, पहले तो पढ़ना नहीं आता था, वो पिक्चर से देख लेते, खुश हो जाते थे हम उससे समझते। फिर ये कि पढ़ना जब आया तब तक तो घर में है ना, पहले वो पूरा अखबार ना पढ़ ले समझ ले तब तक किसी दूसरे के पास जाएगा।
1: अच्छा।
0: हाँ। और ऐसा होता था।
1: हाँ, तो कितने बड़े थे आप जब पूरा पढ़ते थे आप बैठ के?
0: मतलब मैं पूरा अखबार अच्छे से खंगालता था, मतलब उससे बहुत सारी चीजें मुझे याद भी रहती थी। अच्छा। दुनिया में क्या क्या हो रहा है।
1: स्कूल में ही थे आप तब?
0: हाँ, जब स्कूल में पढ़ता था पूरा अखबार, सेवन्थ क्लास में पूरा अखबार, सिक्स सेवन्थ क्लास।
1: अच्छा।
0: सुबह सुबह जल्दी स्कूल अखबार आ जाता था, मैं सुबह जल्दी उठ जाता स्कूल के लिए, तो मेरे पास आधा घंटा रहता था, तो जरूर मैं 20 मिनट स्कूल यहीं पढ़ लेता था, कभी कभी स्कूल में जाकर अखबार मिल जाता था, 10 मिनट जल्दी चला जाता था वहाँ पढ़ लेता था, फिर वापस आके खाना खाने के बाद फिर अखबार, और पकड़ो और पढ़ो अखबार।
1: आपको अच्छा लगता था मतलब?
0: हाँ, हिंदी अखबार मैंने मतलब हमेशा वही पढ़ा, तो मुझे हिंदी आज भी अच्छा लगता है। आज तो मैं मतलब और भी हिंदी न्यूज़पेपर,
1: जानकारी मिलती है आपको,
0: हिंदी मैगजीन्स, चाहे वो क्या बोलते बच्चों की जो चंपक भी होती है इंग्लिश हिंदी में, तो वो भी पढ़ता हूँ कि इसमें नया क्या है, कि हम कैसे लिख सकते हैं चंपक, क्या हम लिख सकते हैं।
1: अच्छा।
0: हाँ,
1: इस मतलब इस भाव से आप पढ़ते थे?
0: इस भाव से अब पढ़ना प्रारंभ किया है मैंने, मतलब वो मतलब चंपक लिख रहा है तो किस के लिए लिख रहा है, क्यों लिख रहा है, तो ये सब प्रश्न करके हम उस चीजों को समझे, मजा आता है बहुत। जैसे मैं चंपक रेलवे स्टेशन खरीद के पढ़ रहा था, पास में कुछ बैठे थे लोग, तो बोले मैंने 2 मैगजीन खरीदा, उन्होंने भी मुझसे मांग लिया, मैं पढ़िए, तो मुझे बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने का भी और मजा आता है, क्योंकि एक मैं चाहता हूँ ना भारत को और अच्छा भारत कैसे बना सकते, तो एक हमको कल्चर डेवलप करना पड़ेगा पढ़ने का लिखने का। जैसे मुझे मेरा एक दोस्त था उसका भी टारगेट है, मेरा भी टारगेट है कि हम कम से कम भारत में 10 किलोमीटर तो नहीं, एक गांव में अच्छा लाइब्रेरी डेवलप करें, जो कम्युनिटी लाइब्रेरी हो, गांव के लोग ही उसको रख रखाव करें, और गांव के लोग ही उसमें अच्छी अच्छी बुक्स ला के रखें, ठीक है, और उसमें पढ़ने का एक कल्चर डेवलप करें, क्योंकि गांव में ना लोगों पास समय भी होता है, वो समय किसी और चीजों में बैठते, जैसे एक अंकल थे वो मैं एक बार पढ़ के फिर वो पढ़ते थे, वो बोलते मैं नॉवेल्स भी पढ़ता हूँ, ठीक पढ़े लिखे थे, और तो फिर ऐसा है कि गांव में कई कम्युनिटी हॉल भी बने होते हैं सरकार की तरफ से, हम वहाँ पे एस्टेब्लिश कर सकते हैं इजीली बुक्स, और एक कल्चर डेवलप कर सकते हैं। आजकल तो राजस्थान में हर जहाँ देखे थे लाइब्रेरी का अलग ही नया ही स्वरूप दिख रहा है, बच्चे वहाँ जाके फीस दे के पढ़ रहे हैं, तो ऐसा हो सकता है कि कम्युनिटी पे जो होल बने हुए वहाँ पे हम गांव के मिल के लोग वहाँ पे लाइब्रेरी डेवलप कर सकते हैं,
1: गांव के युवा भी मिलकर ये काम कर सकते हैं।
0: बिल्कुल।
1: और पढ़ाई से ज्यादा शिक्षा से ज्यादा डेवलपमेंट कहाँ से होगा, मतलब हमें नई नई चीजें पता चलेंगी और आइडियाज भी आएंगे उससे, और जो बच्चे कई बार है कि अक्षर ज्ञान है ज्यादा पढ़ते नहीं, तो अगर स्कूल में नहीं भी जा रहे हैं, कई लोग ऐसे हैं जो एज ज्यादा हो गई है, तो किताबों के माध्यम से पढ़ सकते हैं, शिक्षित हो सकते हैं, फायदे तो बहुत सारे हैं। बहुत बहुत अच्छी बात आपने बोली राजेश, एक छोटी सी लाइब्रेरी गांव के लोग मिलकर भी इसको कर सकते हैं।
0: जैसे ये है ना कि प्लास्टिक को खत्म करना है, तो मैं जब सोचता था कि मोहल्ले में किया जाए, मैं कि इतना आसान भी नहीं है, लोगों को बात बताना समझाना मतलब इतना इजी है नहीं ये जो अपन सोच रहे हैं, और जब वो पढ़ते हैं ना तो खुद से करते हैं, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग है कि इसको मैं खुद करूं, जैसे मेरा प्लास्टिक का कचरा मैं कहीं भी जाता हूँ, अपने बैग वाला जो साइड में होता है ना, पानी की बॉटल लगते हैं वहाँ डाल देता हूँ, फिर कुछ भी छोटा जगह होता है उसमें पॉलीथीन अलग कर देता हूँ, और घर में आके उसको सेग्रीगेशन कर लेता हूँ, पॉलीथीन अलग, कागज अलग, ठीक है, कांच और लोहा समथिंग अलग अलग। हम मैंने घर पे लेवल पे भी है ना अपना पूरा कचरा है ना व्यवस्थित कर सकते, ऑर्गेनिक मैटर्स को एक अलग बाल्टी में डाल दिया, पौधों के लिए वो ऑर्गेनिक मैटर तैयार कर लिया, घर में प्लांट्स लगा दिए तो ऑर्गेनिक मैटर उसमें यूज कर लिया, बाकी सारी चीजें सारी मार्केट में सेल हो जाती है, पॉलीथीन सेल हो जाता है आपका, मतलब ये कि आप समझ रहे हो कोई भी चीज पैकेजिंग में ले आ रहे हो तो आपका पैसा मार्केट उस आपसे ही ले रहा है, तो आप उसको फेंक रहे हो तो मतलब अपना लॉस कर रहे हो सीधा सीधा। कागज है कि वो बिक सकता है, छोटे अमाउंट को बड़े अमाउंट में इकट्ठा करके, अब नहीं भी बेचना चाहते हो तो आप जो जहाँ पे सेल कर सकते हो उसको ऐसे ही देखे आओ, क्यों वो बेच सकते हैं, कम से कम रिसाइकल में आएगा। तो ऐसे ही सबसे अच्छी सेवा कि अपने स्तर पे हम एनवायरमेंट को बेटर बना सकते हैं। एक बात मेरे सर ने कहा था कि हम अपने कर्म भूमि को ही कर्म क्षेत्र बना सकते हैं, तो यही है हमारी कर्म भूमि, हम जहाँ जी रहे उसको ही अच्छा बनाओ, बाकी आपको करने की जरूरत ही नहीं है
1: क्या?
0: बाकी ये आपसे देख के हम और लोग भी करेंगे, आप उनको बताइए कि ऐसा ऐसा हम करते हैं, आपको डस्टबिन नहीं है तो हम डस्टबिन ला के दे देते हैं, बट आप अलग तो करिए, ठीक है, आप नहीं फेंक सकते हो कचरा, नहीं गाड़ी में डाल सकते, हमको ही दे दीजिए, अरे हम ही कर देंगे, आप हमारे पड़ोसी तो कम से कम कचरा हमारे सामने तो नहीं फेंकेगा। तो ये छोटे छोटे भाव हमको पैदा करना पड़ेंगे और हमको खुद को ही करना पड़ेगा। जैसे कि पहले फर्स्ट तो मेरे लिए मोहल्ले को तो क्या मेरे परिवार वालों को समझाना मेरे लिए क्रिटिकल हो गया था।
1: अच्छा
0: हाँ, क्योंकि आदत पड़ी हुई उनकी, इतना आसान नहीं है। जैसे मैं बस में गया तो उसको बोला कि मैंने पॉलीथिन बाहर मत फेंक दीजिए, मुझे ही दे दीजिए, मैं ही रख देता हूँ, तो वो शायद मुझे हमसे लर्निंग ले जा सकता है, जो हम देख के जो सीखता है ना वो। तो अब ये कि कम से कम मैं घर वालों को तो समझा चुका हूँ, अब ये कि सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा जब भी समय मिले मेरी टीम के मेंबर्स है और वो कार्यक्रम भी करते रहते पॉलीथीन से, हम बच्चों में जैसे पिछली बार हमने गणेश महोत्सव मनाया था।
1: अच्छा।
0: मिट्टी का गणेश जी, और एक ही थीम था कि पॉलीथीन को हमें कोई भी चीज पॉलीथीन लाए नहीं थे, बाजार से प्रसाद भी लाते थे पॉलीथीन में नहीं, फूल भी लाते थे पॉलीथीन में नहीं, हम कुछ भी चीज ला रहे थे हम वहीं पे स्टार्ट कर रहे हैं स्टार्टिंग, ठीक है, तो हम पूरा प्रयास कर रहे हैं अपने स्तर पर। कभी कभी हमको नहीं मिलता कुछ के लिए, तो उसके लिए हम प्लास्टिक लाते हैं अपने घर पे ही रख देते हैं, उसको रीयूज करते हैं बार बार। जैसे मम्मी कम से कम सब्जी आती है तो हम करीबन और दूसरे सामान आते हैं मार्केट से, प्लास्टिक हो जाती है हमारी एक खड्डी करीबन 1 kg, तो वापस उन्हीं को दे देती है प्लास्टिक सब्जी वाले भैया को, वो सब्जी वाले वापस उसी में सब्जी देखते हैं सबको। तो दूसरा है कि हम प्लास्टिक फाड़ने का तरीका भी हमारा, तो ऐसे छोटी छोटी चीजें है ना, तो शायद हमको सोचना चाहिए, वो सोच हमारी पढ़ाई से ही विकसित हो सकती है, हमारे देख के हमारे बिहेवियर में हम एम्पैथाइज करते तभी उस चीज से सीख सकते हैं।
1: बिल्कुल राजेश, बहुत जो बातें आपने कही वो मुझे लगता है बहुत प्रैक्टिकल है, और अच्छी बात यह है कि आप इस उम्र में ही बहुत सारी चीजें ऑब्जर्व कर रहे हैं और उसको अपने जीवन में शामिल कर रहे हैं
0: जी।
1: और शिक्षा का उसमें बहुत महत्वपूर्ण रोल है
0: जी। एक छोटी सी बात मैं और ऐड करना चाहता हूँ, क्यों इसलिए ऐड करना चाहता हूँ कि वो चीज मैंने रेडियो से सीखी। जैसे हमारे रोहित भाई जी है, तो रोहित भाई जी क्या कर रहे थे, एक दिन कहीं बैठे थे हम सब लोग और मीटिंग चल रहा था, तो मीटिंग इनफॉर्मल मीटिंग में हम सब बातें कर रहे थे, तो क्या करे इतने सारे पेज लेके आए, जहाँ पे पेज पे नहीं लिखा था उसको पेज को कटिंग कर रहे थे और अपने वो जहाँ पे नोट करने की कुछ चीजें थे उसमें ऐड कर रहे थे। आज क्या था, हम 50 रुपये का स्टिकी नोट्स मार्केट से खरीद के ले आते हैं, तो शायद वो हम अपने घर में बोर्ड लगा दिया उस पे ही, और वो नोट्स पेज छोटे छोटे हमारे पेज इकट्ठा, थोड़ा टाइम लगता है हमारे पास, समय कभी फ्री रहता तो हम उसको अलग कर सकते हैं। मेरा दोस्त कहता था गांधी जी है ना छोटे छोटे पेज का उपयोग करते थे, मैंने कहा हमने तो गांधी जी को देखा नहीं है छोटे छोटे पेज उपयोग, बट तुमने बोला है तो सही बात है और करना भी चाहिए मुझे। तो वो छोटी छोटी आज मैंने कोई भी है ना, जैसे बिल देता है ना उसका पर्ची फर्श में रख दो ठीक है, या फिर कहीं फेंको मत, तो मैं अपना नोट्स बना सकता हूँ, उस पे वर्ड्स मीनिंग्स लिख सकता इंग्लिश का, तो आप यूज कर सकते हैं छोटी छोटी चीजों।
1: बिल्कुल, और बिल्कुल आपने ये बात इतनी सही बोली राजेश की, आपके पास जो भी चीजें आती है कई बार ना हम पुराना तो डस्टबिन में फेंक देते हैं और फिर नया हमारे पास है नहीं सोचने के लिए मार्केट में जाते हैं
0: जी।
1: तो अगर एक पेज पे लिखा हुआ है कुछ तो उसके पीछे का इस्तेमाल हो सकता है, कई बार हमने एक ही समय का उस फेंक दिया
0: जी।
1: और क्लिप आते हैं आप, छोटे छोटे क्लिप होते हैं, या कई बार वो क्लिप होते हैं जैसे कपड़े सुखाए जाते हैं उसको, बहुत सी ऐसी चीज है, तो उसमें पेपर को फंसा के एक जगह रखा जा सकता है
0: जी,
1: है ना, तो उसमें बहुत काम आ जाते हैं। आप पर्यावरण की बात की और शिक्षा की बात की, और जो आप वो बात कर रहे थे प्लास्टिक वाली कि कैसे काटते हैं, वो भी एक बार आप थोड़ा सा बता दो क्लियर करके
0: जी। मम ऐसे एक बार भूख लगा था तो चिप्स खा रहे थे, मेरी हर चीज स्टोरी से जुड़ी हुई है तो मैं वहीं से सीखता हूँ, इसलिए मैं बता रहा हूँ, बेहतर कनेक्ट कर पाए हम
1: जी।
0: तो चिप्स खा रहे थे तो किसी ने चिप्स का पैकेट फाड़ा, तो चिप्स का पैकेट दो टुकड़ों में बट गया, एक छोटा सा टुकड़ा किया हमने फेंक दिया और दूसरा रखा, चाहे हम नहीं भी फेंका हो, सपोज कहीं भी छोटा टुकड़ा फेंक के कहीं उड़ जाता है, तो ऐसे उन्होंने बोला कि ऐसे लाखों टन्स में वो छोटे छोटे टुकड़े होते ना बढ़ जाते हैं, तो आप एक बड़ा जो पॉलीथीन को ऐसे फाड़े को वो सेपरेट ना हो, वो एक में ही पॉलीथीन रहे, ठीक है। तो मतलब जैसे कुछ फाड़ने का तरीका होता है, आप उसको बीच में से ऐसे फाड़ो कि वो हम अच्छे से खा भी सकते हैं उसको, और पॉलीथीन पॉलीथीन रह सकता है, ठीक है। मोस्टली ऐसी चीजें तो लोग अवॉइड करते हैं जितना ज्यादा एनवायरमेंट के प्रति सजग होते हैं, क्योंकि वो कहते हैं ना एक दो रुपए का चिप्स हम 10 रुपए हम खरीद के खा रहे हैं तो गरीबी तो ले ही रहे हैं, ठीक है, हमको जरूरत है तो हम खाए, खा भी रहे तो फिर उसको हम बचाए कैसे पॉलीथीन को, तो उसको फाड़ने का एक तरीका होता है, आप कहीं पे भी यूट्यूब पे भी अच्छा वीडियो मिल जाएगा पॉलीथीन को कैसे फाड़ा है,
1: ताकि वो टुकड़ा अलग ना हो
0: और उकड़ा ना, तो वो लाखों टन्स में टुकड़ा हो जाते हैं। तो मैंने बोला ये क्या कहाँ से बात कर रहे हो तुम, क्योंकि हम युवा है तो पूछते ना प्रश्न क्या बात कर रहा है लाखों टन्स, तो बोले कि हाँ ये बात हमने हमारी इन्वायरमेंट वाली मैम से सुना, तो फिर मुझे लगा कि हाँ भाई बात तो सही है, चाहे ना भी हो लाखों टन में भी करना तो नहीं चाहिए ना, तो फिर मुझे वो लगा, वहीं से सीखा मैंने, तो फिर और इससे पहले भी सीखा कि हम पॉलीथीन को ऐसे फाड़े कि यूज आ सके, जैसे हार्ड पॉलीथीन होती है जैसे चॉकलेट का, उसके अंदर बहुत सारी चॉकलेट्स आती है, तो उसको ऐसे फाड़े कि उसको हम कहीं यूज कर सके,
1: जैसे कि रीयूज वाला कांसेप्ट है,
0: दूध का थैली होता है ना, पहले ले लेते थे वापस 1 किलो थैली इकट्ठा हो जाती थी, पता नहीं आजकल वो लेते नहीं, पता नहीं मुझे उसका आइडिया नहीं है, बट ये कि मैंने कहीं देखा तो मार्केट में हम पौधा प्लांट लगाते हैं ना उसके लिए हम पॉलीथीन खरीद के लाते हैं, उसके लिए अलग से पॉलीथीन आता है, उसमें मिट्टी डाला सैंपलिंग लगाई, तो अब क्या करते दूध के थैली को ही फाड़ दिया ऊपर से, उन्होंने सैंपलिंग उसी में लगा दी, तो ये जैसे कि मैंने एक घर में ही मतलब एक दिन युद्ध कर लिया,
1: अच्छा।
0: हाँ वार हो गया मेरा, कि घर में एक फंक्शन था 300-350 लोगों का खाना था, तो मैंने कहा कुछ भी हो गिलास कहीं से भी लाओ, टेंट वालों से लाओ, चाहे घर में 3 घरों से मांग के लाओ, बट प्लास्टिक कहीं दिख गया ना तो तुम देख लेना,
1: अच्छा।
0: हाँ तुम्हारा कार्यक्रम मैं ही स्टार्ट कर दूंगा, क्योंकि आप प्यार से है ना कितना काम करते हो इजीली नहीं समझ पाते, और मुझे था कि मुझे करना है डेडिकेशन से, और मैं नहीं करने दूंगा प्लास्टिक यूज नहीं कर दूंगा, तो सारा मैनेजमेंट मेरे पास था, तो मैंने सारी प्लास्टिक जितनी भी यूज करने वाले आए हुए थे उसको मैंने पहले निकाल के ऐसी जगह रख दिया जो कहीं से ला नहीं सके, बस उसको तो कहीं उसको जरूरत पड़ी वो नहीं ला सकता उस वक्त में, ऐसी जगह मैंने उसको अरेंजमेंट किया, पहले मैंने अरेंजमेंट पहले से कर रखी थी ग्लासेस स्टील की, क्योंकि हम 100 ग्लासेस 150 ग्लासेस स्टील की होती है हमारे पास, प्लास्टिक ग्लास तो कितने भी कर सकते ना, तो फिर मैंने कहा क्या किया जाए कि 300 लोगों का खाना है, बर्तन धोने वाला था मैं सारी उसको ऐसे मतलब एक साथ तो 150-150 लोग नहीं आएंगे ना, साफ करके अच्छे से साफ करके उनको पहुंचाता गया, तो कहीं भी सप्लाई में कमी नहीं आई, और मेरा संकल्प पूरा हुआ कि मैंने प्लास्टिक यूज नहीं होने दिए, ठीक है वो बहुत सालों तक नहीं सड़ता है, जैसे एक ब्रश है तो 500 साल तक नहीं सड़ता है, तो अब मैं ब्रश भी करता हूँ, ब्रश जब हम करते हैं तो साफ होता है हमारा, मतलब ब्रश में जो फंसा हुआ है ब्रश से ही साफ हो सकता है, तो ये कि आप एक दिन ब्रश करो एक दिन मैं फिंगर से अपना एक दंत मंजन है वो करता हूँ, तो मतलब ये कि उसका साइकिल बढ़ गया ब्रश का।
1: हाँ, और बैम्बू वाले भी आते हैं।
0: हाँ बैम्बू है नीम है, तो लोग मतलब जो हमारा पुराना लाइफ स्टाइल था ना बड़ा सस्टेनेबल लाइफ स्टाइल था, तो हम तो ऐसे हम लाइफ को बना सकते हैं हमारे जीवन में कि छोटे छोटे यूज करके, और प्लास्टिक जितना हो सके उतना हम कम यूज करें,
1: बिल्कुल,
0: और हो सके तो हम ज्यादा से ज्यादा यदि यूज में आ भी रहा है तो रीयूज करें उसको, और कोशिश कर रिसाइकल। तो ये है कि जैसे आजकल ब्रिक्स बन रही है प्लास्टिक ब्रिक्स, आपने सुना होगा बॉटल में सारी बहुत सारी पॉलिथीन डाल के, और कई लोग उस ब्रिक्स से वॉल भी बना रहे, जैसे प्लांटेशन हाँ। का वॉल बनाना, एक प्लांट्स का नीम कट रही उसके ऊपर बना लिया तो उस पर बैठ सकते
1: हैं, भी बना सकते हैं कुछ भी बना सकते
0: हैं, क्रिएटिव हो सकता है, तो ऐसा है कि वो कहीं शायद हमारे एनवायरमेंट को खा रहा है तो नहीं खा सकता है, क्योंकि प्लास्टिक को बनने के लिए आप लगे भी प्लास्टिक फैक्ट्री में जाइए ना तो आपको समझ आता है कि वो प्लास्टिक के दाने में कितना फ्यूल लगता है, मतलब कैसे वो बनता है, बहुत सारा रिसाइकल होता है, ऐसे जैसे कि पहले पत्तों में चीजें पैक होती थी वो सस्टेनेबल है, उसको एनर्जी मतलब यदि हम फिजिक्स के लेवल पे जाएं तो उसका एनर्जी तो ट्रांसफॉर्म होती है और जनरेट नहीं होती है, तो पत्ते अपने आप, प्रकृति अपने आप सही करती थी सब कुछ।
1: प्रकृति की अपनी साइकिल है ऑलरेडी।
0: हाँ, वो प्रकृति सबसे बड़ी माँ है और वो अपने आप को कैसे जान बचाना चाहती है सब कुछ वो अच्छे से जानती है करना। फिर भी हमारा एक जीवन है, हम उस जीवन में रहते हैं, हमको बेहतर बनाना है तो ये संकल्प हमको लेना पड़ेगा। और मैंने प्लास्टिक की जो बात की, इसके बाद मैंने जो करके दिखा है तो घर वालों का हो सकता है। अगली बार हमने जो हमारे तांबे का लोटा प्रचलन में था और तांबे के लोटे में आज भी पानी पिया जाता है, तो उसका आप साफ सुथरा रखिए, 50-100 लोटे अरेंज कर लीजिए आप, तो उसमें आप पानी पिला सकते हैं बेहतर।
1: क्या बात
0: है, ठीक है। हाइजीन ही थोड़ा प्रॉब्लम होता है तो आप उसको साफ करके भी कर सकते हैं, कई लोगों को ये मानना कि हाइजीन हो जाता है, बट तांबे में आप यूज कर सकते हैं।
1: बिल्कुल, मतलब
0: जैसे ये कि ना साफ भी कर रहे हैं तो उसके अंदर जो मैंने सुना है कि उसके जो केमिकल्स के पार्टिकल्स होते हैं ना सर्फ वगैरह के, तो वो आपके अंदर जाते बॉडी के अंदर, ठीक है। जैसे कोई बैक्टीरिया वगैरह जा रहे हैं तो उसको ज्यादा पानी पी रहे हो तो खत्म हो जाएगा आपका बैक्टीरिया। मीन्स कि मैं कुछ कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, कुछ क्या बोलते हैं एक्जेक्ट, जैसे डायरिया जैसे होता है, डायरिया का जो चीज होता है, तो आप ज्यादा पानी पियो खत्म हो जाएगा, ठीक है। और जबकि वो पार्टिकल्स गए उसको कैसे खत्म करोगे, जो केमिकल पार्टिकल्स के जो वॉशिंग केमिकल पार्टिकल्स है, नहीं हो सकता है,
1: नुकसान बहुत करता है,
0: ठीक है। तो फिर यही है कि पहले हम साफ भी मिट्टी से करते थे, आज हमारी बॉडी भी बोलते हैं पंच तत्वों से मिला है, तो ये सब चीजें कनेक्टेड है। हमको इस चीजों में भी मैं और जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं एग्जैक्ट कैसे साइंटिफिकली प्रूव करके लोगों को समझाया जा सकते हैं।
1: जी राजेश, आपने जो बातें कही डेफिनेटली पर्यावरण वाली, वो ऐसी नहीं है जो हम केवल देख सकते हैं कि हमारे पास ऐसा होना चाहिए जीवन शैली ऐसी, तो करें, हम में से हर कोई कर सकता है।
0: बिल्कुल,
1: छोटी छोटी बातें जीवन में शामिल की जा सकती है। और आज के इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और ये सब बातें कहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मजा आया। और बातों ही बातों में हमने शिक्षा के बारे में बात की तो पर्यावरण के बारे में भी, लेकिन युवाओं के जीवन में जो भी वो ठान ले वो कर सकते हैं, ये तो डेफिनेटली प्रूफ होता है। और आपको भी आपके भविष्य के लिए बहुत ढेरों शुभकामनाएं।
0: बहुत बहुत धन्यवाद रेडियो मधुबन का, और जब भी मैं आता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं बहुत कुछ सीखता हूँ। और दूसरी बात ये है कि बहुत सालों बाद आया हूँ तो ऐसा लग रहा है बहुत कुछ रह गया है, तो शायद आज वो छोटे प्रारंभ के माध्यम से पूरा हो पा रहा है। और रेडियो ने हमेशा मुझे कनेक्टिविटी दी है, प्यार दिया है। और दूसरी बात, आप सभी श्रोताओं को जो मेरी कहानियां सुनेंगे, मेरी बातें सुनेंगे, तो मेरी बातें नहीं, आप हम सबकी बातें हैं, तो मैं गलत कह रहा हूँ कुछ भी तो मुझे अच्छा लगेगा। बट मैंने जो भी बातें की वो मेरी लर्निंग्स है, तो हम इस लर्निंग के माध्यम से हम कैसे बेहतर बन सकते हो कर सकते हैं। धन्यवाद,
1: थैंक यू सो मच दोस्तों, आपका भी और राजेश का भी। फिलहाल आपसे इजाजत लेते हैं, मुलाकात होगी अगले एपिसोड में कार्यक्रम युवा मंच में। तब तक रेडियो मधुबन से जुड़े रहिए,
0: सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
2: रेडियो मधुबन हमारे जीवन को सुखमय व समृद्धशील बनाता है। सभी प्रोग्राम्स को बेहतरीन अंदाज में, नवीनता को लिए बेहतरीन क्वालिटी के साथ।
3: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 मेगाहर्ट्ज पर, 107.8 FM पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: डिप्रेशन इज एंगर टर्न्ड इनवर्ड्स। जब आप औरों पे नहीं गुस्सा करते तो आप अपने पर ही करने लग जाते हैं, लेकिन शायद जब आप औरों पे भी गुस्सा करते हैं तब भी अपने पर गुस्सा कर रहे हैं। आपको गुस्सा देने के लिए वो मेरे से होते हुए ही गुजरेगा, वो एनर्जी पहले यहाँ क्रिएट करनी पड़ेगी। इट्स नॉट पॉसिबल कि मैं आपको कुछ भी दे दूँ विदाउट क्रिएटिंग इट। पहले मुझे कूट कूट के गुस्सा अपने अंदर क्रिएट करनी पड़ेगी कि मुझे अपने आप को क्या देना है। नहीं, मुझे तो इसे गुस्सा करना ही है, कीजिए, बट ओनली रिमेम्बर द एनर्जी दैट एंगर आई क्रिएट देन आई गिव।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।

0: रुक, कोई रुक रुक रुक, पीछे पीछे पीछे चल। स्टॉप लाइन के आगे कहाँ जा रहा है? लाल बत्ती दिखाई नहीं देती।
1: पर हवलदार साहब, जरा जल्दी निकलने के मूड में हूँ।
0: वो तो ठीक है, पर दूसरी तरफ हरी बत्ती है और उन लोगों का रुकने का मूड नहीं है। तो जब भी लाल बत्ती हो तेरी तरफ तो बोलो पहले आप।
2: गाड़ी चलाते वक्त पहले आप का रूल अपनाइए और अपने शहर का ट्रैफिक स्मूथ बनाइए। ब्रह्मा कुमारीज के सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।
3: ट्रैफिक स्मूथ बनाना जरूरी है, तभी तो रेडियो मधुबन आपको ऐसी चीजों के बारे में आगाह करता है। ट्रैफिक को स्मूथ बनाना है, रोड सेफ्टी को ध्यान रखना है, साथ ही साथ रोड नियमों का भी पालन करना है, जिससे आपका जीवन सहज हो, बेहतर हो और आपके साथ जो भी लोग हैं उनके भी जीवन में जो यातायात प्रणाली है वो भी सुगम हो। गुड इवनिंग, नमस्ते। रेडियो मधुबन 107.8 एफएम में आप जुड़ चुके हैं उड़ान कार्यक्रम के साथ। मैं हूं आपकी दोस्त मोना, आपके लिए लेकर आई हूं आज सवाल, कविता, कहानी और अमेजिंग जानकारी। तो जुड़े रहिए उड़ान के साथ, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

ओम नमः शिवाय। चलिए आगे बढ़ते हैं और अमेजिंग जानकारी के साथ आप दोस्तों को जोड़ लेते हैं। हम सभी के दिल में या दिमाग में ये बात आती जरूर होगी कि भाई नारियल का पानी जितना मीठा होता है, लजीज होता है, मजा आता है, रिफ्रेशिंग होता है, साथ ही साथ हेल्थ के लिए बेनिफिशियल भी है। लेकिन नारियल के अंदर पानी कैसे आता है? क्या कभी सोचा है कि नारियल पूरी तरह से तो बंद है, फिर भी इसके अंदर पानी है? असल में नारियल का पानी फल के बढ़ने के दौरान बनता रहता है। नारियल तने अर्थात स्टेम के जरिए पेड़ से जुड़ा रहता है। तने से पेड़ अपनी जड़ों से पानी को खींचता है, उसमें घुला खनिज नारियल तक पहुंचाता है। नारियल के अंदर मौजूद खाली जगह यही पानी जमा होकर धीरे धीरे नारियल का पानी बना देता है। यह सिर्फ सादा पानी नहीं, इसमें प्राकृतिक शक्करा अर्थात शुगर मौजूद होता है। पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम और दूसरे पोषक तत्व भी इसमें ज़रूर होते हैं, जो अंदर मौजूद बीज को विकसित करने में मदद करता है। जैसे जैसे नारियल पकता है, उसी पानी के पोषक तत्वों से अंदर सफ़ेद गुदा अर्थात पल्प बनने लगता है। इसलिए आप हमने सभी ने देखा कि कच्चे हरे नारियल में पानी ज़्यादा और गुदा कम, जबकि पके हुए भूरे नारियल में गुदा ज्यादा और पानी कम। तो समझ गए होंगे

0: चल दोस्तों, आज का सवाल है, इनमें से कौन सा रामायण का मुख्य पात्र जो महाभारत में भी नजर आता है, इनमें से कौन सा रामायण का एक मुख्य पात्र जो महाभारत में भी नजर आते हैं, वो ए हनुमान, बी दशरथ, सी दुर्योधन। सही जवाब जरूर देना 9414151415 पर। और सर को खुजलाने की जरूरत नहीं है, सर आपको चक्कर आ रहा है इसके बहाने की भी जरूरत नहीं है, थोड़ा सोचिए और झटपट जवाब दीजिए 9414151415 पर।
1: Tail malish, jump, pay.

0: नमस्कार, रेडियो मधुबन में बहुत बहुत स्वागत है।
1: ओम शांति, गुड इवनिंग दीदी।
0: गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। बहुत अच्छे, शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए।
1: दीदी आपने इतने मिठास से बोला नारियल के बारे में, तो नारियल का ठंडा और पौष्टिक चविष्ट पानी हमारे मुंह में आ गया।
0: चलिए चलिए, थैंक यू, थैंक यू सो मच,
1: लगा,
0: थैंक यू सो मच।
1: और सभी को नमस्कार। और सवाल का जवाब ऑप्शन सी है,
0: ऑप्शन सी,
1: ऑप्शन सी।
0: ओके, थैंक यू,
1: थैंक यू,
0: नमस्कार,
1: शुक्रिया दीदी,
0: नमस्कार।

0: घबराए
1: काहे घबराए। जय बजरंगी जय हनुमान अटल राम के तुम हो प्राणा। पवन सूत संकट मोचन नाम पूरे करते सबके काम। हाथ में वज्र और ध्वजा विराजे लोकों में तेरा तेज ही साझे। विद्यवान और गुण अति चातुर राम काजी करीबे को आतुर। ये कुछ खूबसूरत लाइन उन्हीं के बारे में थी जो आज के सवाल में छुपे हुए हैं। तो चलिए दोस्तों सवाल एक बार पुनः दोहराते हैं। इनमें से कौन रामायण के मुख्य पात्रों में से एक है जो महाभारत में भी नजर आते हैं? ए हनुमान जी, बी दशरथ जी, सी दुर्योधन जी। सही जवाब झटपट दीजिए 9414151415 पर दीजिए, क्योंकि आप सुन रहे उड़ान रेडियो मधुबन पर। सुनते रहो मुस्कुराते रहो।
2: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
3: जो हमारे थॉट्स का सोर्स है, स्रोत है, संकल्प भी किस आधार पर उठ रहे हैं, एक है पास्ट एक्सपीरियंसेस, कोई बीती हुई बातें, दूसरी इन्फॉर्मेशन जो हम पढ़ते हैं सुनते हैं, और तीसरी हमारा बिलीफ सिस्टम, हमारी मान्यताएं ये हैं, तो वो मान्यता के आधार से।
1: नमस्कार, रेडियो मधुबन में बहुत बहुत स्वागत है। कौन बोल रहे हैं सर?
4: नमस्कार, पालनपुर से सूरज भाई बोल रहा हूँ। ओम शांति
1: जी। नमस्कार सर, कैसे हैं?
4: बस एकदम अच्छे हैं। और हमने गुरुवार शुक्रवार को फोन किया था लेकिन लगा नहीं था, क्योंकि दुख भरी थोड़ी बात है कि मैं 2 साल पहले मैं आया था जो रेडियो मधुबन का जो स्थापना दिन था उसी टाइम पे, तो उसी टाइम में रूहान को इनको मिला था मैं अपने छोटे बाल कलाकारों को उसकी मिले
1: जी,
4: तो
1: जी।
4: और मैंने थोड़ा कुत्ते का आवाज वो सब भी दिया था, लेकिन दुख इनके जो पिताजी पुराना शरीर जो छोड़ दिया
1: जी,
4: वो
1: जी।
4: हमको भी बहुत दुख हुआ
1: बिल्कुल।
4: और इतनी छोटी बच्ची को छोड़ के इनके पिताजी दूसरी जगह पे चले गए
1: जी।
4: और हमारे तय दिल से इनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, और रूहान को और इनके माता दूसरे माँ बहन जो भी इनके हैं काका काकी सबको इनको सहन करने की मालिक शक्ति दे इनको
1: जी। एक्चुअली रूहान नहीं है, रूहानी है जो बच्ची मेरे साथ
4: रूहानी।
1: जी जी, थैंक यू, थैंक यू सर, जरूर मैं उनको बताऊंगी।
4: और दूसरा प्रश्न का जवाब है ऑप्शन सी दुर्योधन।
1: ओके, थैंक यू। नमस्कार रेडियो मधुबन में जुड़ने के लिए।
5: वाह अब्दुल, तुम्हारी ईमानदारी और वफादारी पर हमें बेहद गर्व है। तुमने शाही खजाने की एक एक पाई का जिस तरह से हिसाब रखा है, ऐसी वफादारी और मेहनत कम ही देखने को मिलती है।
6: जहाँ पना, ये तो मेरा फर्ज था, आपके दिए हुए नमक का कर्ज अदा कर रहा हूँ।
7: जहाँ पना, हमारी वफादारी भी तो देखिए, हम तो आपके पसीने की जगह अपना खून बहा सकते हैं, और अगर आप मिट्टी को सोना कह दें तो हम उस मिट्टी को भी अपनी तिजोरी में हीरे जवाहरात की तरह संभाल कर रखेंगे।
8: बिल्कुल सही वरमाया वजीर साहब ने, जहाँ पना हमारी वफादारी तो आसमान से भी ऊंची और समंदर से भी गहरी है, हमसे ज्यादा वफादार और कोई नहीं हो सकता।
5: बीरबल, अब आप ही बताइए, इन तीनों में से हमारा सबसे अच्छा और वफादार रत्न आखिर कौन है?
9: वैसे तो मैं परमात्मा नहीं कि किसी की वफादारी का हिसाब लगा सकूं, पर आलमगीर मेरे पास एक तरकीब है जिससे हमें कुछ अनुमान मिल जाएगा। इस तरकीब के लिए मुझे एक दिन की तैयारी की जरूरत है बादशाह सलामत। इजाजत है बीरबल।
5: आइए बीरबल, हम आपका इंतजार कर रहे थे। उम्मीद है आज आपने अपनी तरकीब को अंजाम देने का बंदोबस्त कर लिया होगा।
9: जी हुजूर।
5: वजीर साहब, मौलाना जी और अब्दुल, तीनों आगे आइए। आलमगीर, ये एक बहुत ही खास और जादुई बीज है। आप तीनों को इन बीजों को
9: एक महीने तक अपने अपने घर के गमले में उगाना है।
7: बीज उगाने से वफादारी का क्या ताल्लुक बीरबल जी?
9: बहुत गहरा ताल्लुक है वजीर साहब। इन जादुई बीजों की यही खासियत है कि ये सिर्फ और सिर्फ ईमानदारी और वफादारी की मिट्टी में ही उगते हैं। जिसके दिल में सच्चाई होगी उसका पौधा उतना ही खूबसूरत उगेगा। एक महीने बाद जिसका पौधा सबसे खूबसूरत होगा वही सबसे बड़ा वफादार माना जाएगा। बीरबल, हमें तो ये युक्ति बहुत खूब लगी। आप तीनों इन बीजों को अपने अपने गमले में बो दीजिए, देखते हैं किसकी वफादारी कितनी फलती फूलती है। दरबार बर्खास्त किया जाता है,

अरे मेरे प्यारे बीज, अब जल्दी से उग भी जा। देख, मैं तेरे लिए तांबे के गुणों वाला पानी लाया हूँ, ठंडी हवा कर रहा हूँ। जल्दी से दुनिया का सबसे सुंदर पौधा बन जा, ताकि दरबार में मेरी इज्जत बढ़ जाए और मैं उस अब्दुल को हरा सकूँ। उग जा मेरे प्यारे बीज।

या खुदा, इसे पौधा बनने में आखिर इतना वक्त क्यों लग रहा है? मैं तो इसे रोज इतना मीठा संगीत भी सुना रहा हूँ। उग जा मेरे प्यारे बीज, जल्दी उग जा, वजीर और अब्दुल के पौधे से पहले उग जा, ताकि मैं आलमगीर की नजरों में वफादार बन सकूं। अजीब बात है, अंदर से तो कोई आवाज ही नहीं आ रही। लगता है और जोर से बांसुरी बजानी पड़ेगी।

0: सलाम मौलाना साहब, कहिए आपकी वफादारी का जादुई बीज उगा कि नहीं?
1: माशाल्लाह वजीर साहब,
0: मेरे बीज तो बहुत सुंदर तरीके से उगने लगे हैं। उसमें हरी हरी और चमकदार पत्तियां भी आ गई हैं। और आपके पौधे का क्या हाल है?
2: अरे मौलाना साहब, मेरा पौधा तो बहुत ही बड़ा और मजबूत हो गया है।
0: उसमें तो नई नई कलियां भी खिलने वाली हैं।
3: क्यों अब्दुल, तुम्हारा गमला कैसा है? हम दोनों का पौधा तो बहुत हरा भरा और बहुत बड़ा हो गया है। तुम्हारा पौधा उग भी रहा है या नहीं?
4: मैं आपको क्या बताऊं वजीर साहब, इत्मीनान रखिए वजीर साहब, किसकी वफादारी कितनी है ये तो महीने के आखिर में दरबार में जहां पनाह के सामने ही पता चलेगा।
3: या खुदा, मेरा तो गमला पूरा खाली है, मिट्टी तक नहीं हिली, और इन दोनों का पौधा उग गया। मुझे जल्दी कुछ करना पड़ेगा, वरना दरबार में मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी।

0: अरे ओ माली, मुझे जल्दी से कोई ऐसा पौधा दो जो दिखने में सबसे खूबसूरत हो और देखते ही दिल खुश हो जाए।
1: लीजिए हुजूर, एकदम ताजा और लाल फूलों वाला गुलाब का पौधा। इसे देखते ही किसी का भी दिल खुश हो जाएगा।
0: अब दरबार में इस गुलाब के आगे उस अब्दुल की वफादारी बिल्कुल फीकी पड़ जाएगी।
2: सुनो, कोई ऐसा पौधा दिखाओ जो सबसे ऊंचा और चमकदार हो।
1: ये बड़ा सा सूरजमुखी का पौधा ले जाइए जनाब। इसे देखिए, इसका फूल तो दूर से ही चमकता है।
2: माशाल्लाह, ये तो बिल्कुल मेरी वफादारी की तरह बड़ा और चमकदार है। अब किसी का भी छोटा मोटा पौधा तो इसके सामने कुछ नहीं होगा।
0: देखिए शहंशाह, ये है मेरी वफादारी। मेरे ईमान ने कितना सुंदर गुलाब का पौधा उगाया है।
2: और मेरा सूरजमुखी तो मेरी मेहनत और ईमानदारी की मिसाल दे रहा है। जहां पना, हमारी वफादारी साबित हो गई।
3: बादशाह सलामत। गुस्ताखी माफ हो, मैंने रोज इस बीज को पानी दिया, इसकी हिफाजत की, पर मेरा बीज नहीं होगा। शायद मुझ में और मेरे काम में कहीं कोई कमी रह गई होगी।
0: जहां पना, जैसा मैंने कहा था, इस खजांची की वफादारी तो मिट्टी में दब कर ही रह गई।
4: रुकिए वजीर साहब, मंजर असल में कुछ अलग है। अब्दुल, आपके काम में कहीं कोई कमी नहीं है। आपने शहंशाह के प्रति पूरी ईमानदारी दिखाई है। शहंशाह हिंद, आज साबित हो गया है कि अब्दुल ही इस दरबार का सबसे अच्छा और वफादार रत्न है। बीरबल, ये क्या कह रहे हैं आप? वजीर और मौलाना का पौधा तो सबसे खूबसूरत उगा है, जबकि अब्दुल का पौधा तो उगा ही नहीं। फिर भी आप इस खाली गमले वाले को ईमानदार कह रहे हैं? जी आलमगीर, क्योंकि पहली बात तो ये है कि मैंने एक महीने पहले जो बीज इन तीनों को दिए थे, वो ना तो किसी गुलाब के पौधों के बीज थे और ना ही सूरजमुखी के फूलों के, जो कि मौलाना और वजीर साहब बड़ी शान से लेकर आए हैं। अगर ये बीज गुलाब और सूरजमुखी के नहीं थे तो आखिर ये बीज थे किस चीज के? बीरबल, पर्दे हटाइए। बीरबल
5: जहाँ पना, वो बीज असल में खरबूजे के थे, और सबसे बड़ी बात, वो सारे बीज अंदर से पूरी तरह खराब हो चुके थे।
4: इन खराब और बेजान बीजों से पौधे उगाना नामुमकिन था। अब्दुल ने बड़ी ईमानदारी से उस खराब बीज को बोया, और जब वो नहीं उगा तो बिना डर के खाली गमला लेकर दरबार में सच्चाई के साथ हाजिर हो गया। जबकि हमारे मौलाना साहब और वजीर आलम ने जब देखा उनका बीज नहीं उग रहा, तो आपके सामने अपनी झूठी शान बघारने के लिए बाजार से खरीद कर पौधा इस गमले में लगा दिया। अब आप ही तय कीजिए आलमगीर कि आखिर कौन ज्यादा ईमानदार है, जिसने बीज के ना उगने पर सच बोला, या जिन्होंने अपनी नकली वफादारी साबित करने के लिए पौधे ही चोरी के लगा लिए। बीरबल, आपने बिल्कुल सही कहा, ईमानदार और पक्का वफादार तो अब्दुल ही है, जिसने ना कोई छल किया और ना ही दिखावा किया। बीज जैसा खराब था, वैसा ही खाली गमला सच्चाई के रूप में दिखाया।
6: क्यों मौलाना साहब और वजीर जी, अब आप लोग इस झूठी वफादारी के बारे में क्या सोचते हैं? एक छोटे से बीज ने आपके बड़े बड़े झूठ उगल कर बाहर रख दिए। सिपाहियों, इन झूठे फूलों को बाहर बगीचे में रखवा दो। और अब्दुल, हम तुम्हारी सच्चाई से बहुत खुश हैं। अब्दुल को शाही खजाने से 100 सोने के अशरफिया इनाम में दी जाए।
5: और बीरबल,
7: भक्ति ना देखूंगी कहीं, नमन भक्त हनुमान को, नमन भक्त हनुमान को।

0: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
1: कृपया करके रेलवे परिसर में धूम्रपान न करें, यह वर्जित है। इसके लिए आपको 200 रुपए तक का जुर्माना या फिर जेल भी हो सकती है।
0: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
2: वेल दोस्तों, रेडियो मधुबन 107.8 एफएम में आप जुड़े हैं उड़ान के साथ। इनमें से कौन सा पात्र रामायण का जो महाभारत में भी नजर आता है? आपके सामने ऑप्शन है ए हनुमान जी, बी दशरथ जी, सी दुर्योधन। सही जवाब जरूर दीजिए 9414151415 पर दीजिए। आज है राजगुरु जी, राजगुरुदेव जी, हाँ उनका जन्मदिन। जी हाँ, जो राजदेव, भगत सिंह राजदेव और सुखदेव, ये तीन जो वीर थे, वो जो शहीद हुए थे, उनमें से राजगुरु का आज जन्मदिन है। चलिए उनके इस शहीद की जन्मदिन को भी धूमधाम से मनाते हैं और ये बेहतरीन सा गीत आप तक लेकर आते हैं, क्योंकि आप जुड़े हैं उड़ान के साथ। सुनते रहो मुस्कुराते रहो।

0: दोस्तों आगे बढ़ते हैं और पुनः सवाल दोहराते हुए आपके बीच लौट कर आते हैं एक और गीत के साथ। लेकिन आज का सवाल है पुनः, रामायण के मुख्य पात्रों में से वो कौन है जो महाभारत में भी नजर आते हैं? आपके सामने ऑप्शन है ए हनुमान जी, बी दशरथ, सी दुर्योधन। सही जवाब जरूर देना 9414151415 पर देना, क्योंकि आप जुड़े हैं सिर्फ और सिर्फ उड़ान के साथ।
1: एक प्राचीन गुरुकुल में वरुण नाम का एक लड़का पढ़ता था। वो स्वभाव से सीधा, मेहनती और ईमानदार था, लेकिन पढ़ाई में बहुत कमजोर था। गुरुजी जो भी पाठ पढ़ाते वो उसे ध्यान से सुनता, फिर भी कुछ समय बाद सब भूल जाता। बाकी छात्र नई बातें जल्दी सीख जाते, जबकि वरुण बार बार वही गलती दोहराता। उसके साथी अक्सर उसका मजाक उड़ाते और कहते कि वो कभी कुछ नहीं सीख पाएगा। ये सब सुनकर वरुण का मन दुखी हो जाता, लेकिन वो फिर भी हर दिन पूरी कोशिश करता रहता। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास टूटने लगा और उसे लगने लगा कि शायद किस्मत ने उसे बुद्धिमान बनने के लिए बनाया ही नहीं है। एक दिन गुरुजी ने वरुण को अपने पास बुलाया। उनके चेहरे पर नाराजगी नहीं बल्कि चिंता साफ दिखाई दे रही थी। उन्होंने प्यार से कहा, बेटा हमने तुम्हें बहुत समझाने और सिखाने की कोशिश की, लेकिन तुम्हें पढ़ाई समझ नहीं आ रही। शायद तुम्हारे लिए कोई दूसरा रास्ता बेहतर होगा। तुम अपने घर लौट जाओ और अपने पिता के साथ खेतों में काम करो। गुरुजी की बात सुनते ही वरुण की आंखें भर आईं। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसे गुरुकुल छोड़ना पड़ेगा। उसने चुपचाप अपना सामान उठाया, गुरुजी को प्रणाम किया और भारी कदमों से घर की ओर चल पड़ा। रास्ते भर उसके मन में यही सवाल घूमता रहा कि क्या उसकी मेहनत सच में बेकार थी।
2: दोपहर की तेज धूप में चलते चलते वरुण बहुत थक गया। प्यास से उसका गला सूखने लगा। तभी उसे रास्ते के किनारे एक पुराना कुआं दिखाई दिया। वो पानी पीने के लिए वहां पहुंचा। पानी निकालते समय उसकी नजर कुएं की पत्थर की दीवार पर पड़ी। उसने देखा कि कठोर पत्थर पर गहरे गोल निशान बने हुए हैं। हैरान होकर उसने पास खड़े एक बुजुर्ग ग्रामीण से पूछा, इतने मजबूत पत्थर पर ऐसे गहरे निशान कैसे बन गए? बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, बेटा इन निशानों के पीछे कोई चमत्कार नहीं है। हर दिन लोग इसी कुएं से पानी निकालते हैं। जब रस्सी बार बार इसी पत्थर पर रगड़ खाती है तो धीरे धीरे उसका असर दिखाई देने लगता है। सालों की लगातार मेहनत ने इस कठोर पत्थर को भी झुका दिया। ये बात सुनते ही वरुण के मन में जैसे एक नई रोशनी जल उठी। उसने सोचा, अगर एक मुलायम रस्सी लगातार प्रयास करके पत्थर को बदल सकती है तो मैं इंसान होकर अपनी मेहनत से खुद को क्यों नहीं बदल सकता। उसे समझ आ गया कि कमी बुद्धि में नहीं बल्कि लगातार अभ्यास की होती है। उसी क्षण उसने फैसला कर लिया कि वो हार मानकर घर नहीं जाएगा। वो तुरंत वापस गुरुकुल पहुंचा और गुरुजी के चरणों में गिरकर बोला, मुझे एक आखिरी मौका दे दीजिए, मैं पहले से भी ज्यादा मेहनत करूंगा और कभी हार नहीं मानूंगा। गुरुजी ने उसकी आंखों में बदला हुआ आत्मविश्वास देखा और उसे फिर से स्वीकार कर लिया।
1: इसके बाद वरुण दिन रात अभ्यास करने लगा। वो हर पाठ को कई बार पढ़ता, समझता और याद करता। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। जो लड़का कभी सबसे कमजोर माना जाता था वही कुछ वर्षों बाद गुरुकुल का सबसे विद्वान छात्र बन गया। उसकी सफलता ने सभी को ये सिखा दिया कि असफलता कभी अंत नहीं होती बल्कि वही सफलता की पहली सीढ़ी बनती है। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी।
0: वेल दोस्तों, सवाल का जवाब देने का वक्त भी आ गया। आगे बढ़ते हैं, इनमें से कौन सा पात्र रामायण के मुख्य पात्रों में से है जो महाभारत में भी नजर आते हैं? वेल, रामायण में तो दुर्योधन बिल्कुल नहीं थे और दशरथ जी महाभारत में नहीं नजर आते थे। हाँ, तो हनुमान जी जो थे वे रामायण और महाभारत दोनों में नजर आए। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कल मिलने का वादा है ठीक शाम 6 बजे। तब तक के लिए उड़ान से कहूंगी गुड बाय। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: नमस्ते, राम राम और ओम शांति। मेरा नाम पवित्र मल्लिक और आप सुन रहे हैं प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का सामुदायिक रेडियो, रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल यानी माय विलेज माय एरिया। सही में इस कार्यक्रम को लेकर जब गांव और अंचल में जाते हैं, सभी वर्ग से मिलते हैं, चाहे सरकारी स्कूल हो, चाहे प्राइवेट स्कूल हो, चाहे आंगनबाड़ी हो, चाहे मनरेगा हो, चाहे प्रशासन गांव के संघ हो, चाहे स्वास्थ्य विभाग हो, सभी वर्ग से मिलते हैं। तो आज हमें खुशी है ईश्वरीय विश्वविद्यालय आबूराज और श्री राजेश्वर विद्या मंदिर रेबदर का आवाज़ को आज बारी बारी सुनने को मिलेगा। सभी प्रस्तुतियां ध्यान से सुने, बच्चों को उमंग उत्साह दिलाए, बच्चे सच्चे होते हैं और बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं, क्योंकि इस तरह मौका कभी कभी मिलता है। तो आज जब मौका मिला है तो उसका फायदा ले रहे हैं और इसका श्रेय तो संस्था के संस्था प्रधान, सभी शिक्षकगण और खासकर माता पिता को भी जाता है। बच्चों को इस तरह उमंग उत्साह से आगे बढ़ाते हैं। तो पहला प्रस्तुति के लिए हमारा साथ इस कार्यक्रम को सजाएंगे हिमांशु, सुंदर रूप में प्रस्तुत करेंगे। हमें आशा है इस तरह भाव और भावना को लेकर एक प्रस्तुति सुनाने के लिए तैयार है। ओके, रेडी है तो आप सब सुन पा रहे रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल का प्रस्तुति। और पहला प्रस्तुति सुनते हैं हिमांशु से।
1: मेरा नाम हिमांशु चौधरी है, मैं कक्षा 8 में पढ़ता हूँ। मेरे स्कूल का नाम श्री राजेश्वर विद्या मंदिर है, मैं सिलवाड़ा से आता हूँ। एक

0: गोविंदा।
1: बहुत खूब, बहुत खूब, सुंदर प्रस्तुति के लिए। और हम सबको विदित है, श्री कृष्ण को कौन भूल पाएगा। कन्हैया कहे चाहे मुरारी कहे चाहे राधा कृष्ण कहे, वो तो गिरिधारी गोपाल है, सबको प्रिय लगते हैं श्री कृष्ण। तो उनको सभी प्यार से कान्हा कहते हैं, मुरारी कहते हैं, मुरलीधर कहते हैं। तो इस तरह प्रस्तुति दिए हैं हमारा हिमांशु, धन्यवाद देते हुए लेते हैं एक ब्रेक। ब्रेक के बाद पुनः मिलेंगे, और बच्चे उपस्थित है तो उनसे भी कुछ दिल का भावना संगीत के रूप में, गायन के रूप में, वक्रता के रूप में सुनेंगे। लेकिन अल्प विराम के बाद सुनते रहिए कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल।

0: चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अगला प्रस्तुति के लिए हनी, अनीता और सभी दोस्त लोग भी उपस्थित है। सभी अपना अपना नाम बताएंगे और कौन सा क्लास और कौन सा स्कूल में पढ़ते हैं वो भी बताएंगे, क्योंकि इससे पता चलेगा हमारा बच्चियां कहां से आते हैं और कौन सा क्लास में और कौन सा विद्यालय में पढ़ते हैं। तो देर किस बात की, सुनते हैं उनसे उनका परिचय का साथ साथ एक।
1: मेरा नाम हनी है, मैं राजेश्वर विद्या मंदिर रेवदर में पढ़ती हूँ, मैं क्लास 8 में पढ़ती हूँ, मैं रेवदर से आती हूँ।
2: मेरा नाम अनीता कुमारी है, मेरे विद्यालय का नाम श्री राजेश्वर विद्या मंदिर रेवदर है, मेरा गांव धान है, मैं क्लास 8 बी में पढ़ती
3: हूँ। मेरा नाम वर्षिता कुमारी है, मेरे स्कूल का नाम श्री राजेश्वर विद्या मंदिर रेवदर है, मैं क्लास 8 में पढ़ती हूँ।
4: मेरा नाम चितना कुमारी है, मेरे विद्यालय का नाम श्री राजेश्वर विद्या मंदिर रेवदर है।
5: मेरा नाम रंजना है, मेरे विद्यालय का नाम श्री राजेश्वर विद्या मंदिर स्कूल रेवदर है और मैं क्लास 8 बी में पढ़ती हूँ।
6: मेरा नाम रिद्धि कुमारी है, मेरे स्कूल का नाम श्री राजेश्वर विद्या मंदिर है, मैं क्लास 8 बी में पढ़ती हूँ।
7: मेरा नाम सविता कुमारी है, मैं क्लास 8 बी में पढ़ती हूँ, मेरा स्कूल का नाम है श्री राजेश्वर विद्या मंदिर रेवदर।
8: मेरा नाम नेहा कुमारी है, मैं कक्षा 8 बी में पढ़ती हूँ, मेरे स्कूल का नाम श्री राजेश्वर विद्या मंदिर रेवदर है, मेरा गाँव का नाम देरोल है।

0: देना।
1: आत्मा और परमात्मा का जो संगीत है, दोनों का जब मिलन है, परमात्मा से हमें सब कुछ मिलता है, आत्मा भरपूर हो जाता है, आत्मा में खुशी, आनंद, ज्ञान, प्रेम, शक्ति भर जाता है, जिसका चलते परमात्मा का ये देन है। तो परमात्मा को कभी भूल नहीं पाते हैं। इस कार्यक्रम को सुंदर में बच्चे सजाए, तो धन्यवाद सभी को। नाम का साथ लेते हैं छोटा सा ब्रेक।

0: সেয়া মোসে ফুলে না মোরা সেয়া মোসে বলে না।
1: আপ সুন রহে হে ব্রহ্মা কুমারিস কা সামুদায়িক রেডিও স্টেশন রেডিও মধুবন।
2: कृपया चलती गाड़ी में चढ़ने का प्रयास न करें, यह जानलेवा हो सकता है। रेल के डिब्बों की छत पर बैठकर यात्रा न करें, क्योंकि ओवरहेड वायर्स में 25,000 वोल्ट्स का करंट है। इनके संपर्क में आने से आपकी जान को खतरा हो सकता है।
1: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: चलिए बहुत कुछ सुन लिए, अभी और एक प्रस्तुति छोटी सी बच्ची आई है तो अपना बात को रखेंगे। और समय का चक्र में सभी बंधा हुआ है और समय को कौन भूल पाएगा, समय तो परिवर्तन करा देता है, समय को सलाम देते हैं, वक्त को कौन उलाना देगा, क्योंकि वक्त समय पर अपना पाठ बखूबी से निभाता है। चाहे इस सीख भरी स्पीच में कुछ सीखने का योग्य है, समय का महत्व का बारे में, समय बलवान कहते हैं, समय अनुसार सभी को झुकना पड़ता है और समय को सभी सलाम करते हैं, समय बलवान इसलिए कहते हैं। चलिए समय घड़ी जो काल है वो काल को हम हमेशा याद रखना चाहिए और जो कुछ होता है उसमें हमें भरपूर होकर राजी खुशी होकर उसको सलाम करते हुए उसको सम्मान देते हुए राजी रहना चाहिए, तब जाकर हम खुशी रह पाएंगे। चाहे इसके माध्यम से कुछ सीख भरी प्रेरणा भरी दो शब्द सुनाएगी, रेडी? ओके।
1: खेलकूद की उम्र में कर्तव्य मेरे अनेक थे, छुड़वाना था मेरे माता पिता को कई वर्षों से कैद थे, धर्म के चलते कर्म से वो वृंदावन भी छोड़ दिया, मथुरा की उन गलियों से भी ना दामन मोड़ लिया, वृंदावन के साथ साथ किस्मत भी मेरी रूठ गई, हाँ प्राणों ने भी प्रिय वो मेरी राधा रानी छूट गई, बांसुरी को भी त्याग दिया सब छोड़ छाड़ के दूर गया, सुदर्शन धारण करके कान्हा धुन मुरली की भूल गया, समय का चक्र अजीब था मैं जीत के भी हार गया, कर्म बचाने वाले को दुनिया ने कपटी बता दिया।

पर विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय रेबदर का आवाज सुनते रहिए। मुस्कुराते रहे कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: ओए रुक रुक।
1: हाँ कहिए।
0: और जी कहना सुनना आपकी शादी में कर लेंगे, फिलहाल तो ये बताइए कि आपकी बेल्ट कहाँ है?
1: है तो ये देखिए।
0: ओए कमर की नहीं, मैं सीट बेल्ट की बात कर रहा हूँ। हवलदार कड़क से मजाक मत करो, बहुत महंगा पड़ेगा। हाँ और उससे ज्यादा महंगा पड़ेगा ये बिना सीट बेल्ट की गाड़ी का चलान। ओए जल्दी ऊपर जाने का बहुत शौक है, हैं? ओए छोटू फाइन काटो इनका, 1200 रुपए सीट बेल्ट नहीं पहनने का और 2400 रुपए हवलदार कड़क से मजाक करने का। ये है मेरी सड़क, मुझे कहते हैं हवलदार कड़क।
2: कार चलाते समय सीट बेल्ट का उपयोग करना चाहिए, इससे आप बड़ी दुर्घटना से बच सकते हैं। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।
3: ब्रेक के बाद हम पुनः मिल रहे हैं और खास कर बच्चों का आवाज आपका पास हम रख रहे हैं, आप सब सुन पा रहे हैं। श्री राजेश्वर विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय रेवदर का आवाज बारी बारी आपका पास हम पहुंचा रहे हैं और आप ध्यान से सुन रहे हैं, बच्चों को उमंग उत्साह दे रहे हैं और बच्चे भी इस तरह कार्यक्रम में जब भाग लेते हैं सभी को खुशी मिलता है। तो और एक प्रस्तुति जो कि मारवाड़ी में एक संगीत सुनने को मिलेगा, तो लीजिए।
4: सतगुरु दर्शन देता जय जो जी, सतगुरु मिलता जय जो जी, मारे पीवरी आरी बाता तोड़ी मन के ता जय जो जी, सोने जे

0: जान बाहु दान आज एक धनुष के बाण पे उतार लो। आरंभ है प्रचंड, आरंभ है प्रचंड, बोले मस्तकों की झुंड आज जंग की घड़ी में दुंग हार लो। आन बान शान आज जान गाहु दान आज एक धनुष के बाण पे उतार लो। आरंभ है प्रचंड।
1: बहुत बहुत धन्यवाद। दोनों प्रस्तुतियां बच्चों ने सुंदर रूप में प्रस्तुतिकरण किए हैं, तो इसके लिए रेडियो मधुबन परिवार की ओर से अशेष अशेष धन्यवाद। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद और एक प्रस्तुति के लिए रेडी है बच्चे, तो अल्प विराम का बाद सुनेंगे। सुनते रहिए मुस्कुराते रहे कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल, रेडियो मधुबन 107.8 FM पर।

नमस्ते कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए इस कड़ी में और एक प्रस्तुति के लिए लेकर आए हैं बच्चे, तो सभी बच्चों को स्वागत करते हैं। और कौन कहते हैं भाई भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, लेकिन प्यार ममता और शुद्धता से जब पुकारेंगे वो जरूर आएंगे। चाहे अदृश्य है लेकिन हमारा बुद्धि से हम उसको देख सकते हैं, लेकिन उसके लिए चाहिए स्नेह प्यार और अपना ममता होना चाहिए। तो लेते हैं एक भक्ति भरा संगीत

बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर प्रस्तुति के लिए, भक्ति में ओत प्रेत करा दिए, और हम प्यार से जब भगवान को बुलाएंगे तो जरूर हाजिर होगा, क्योंकि हजूर हाजिर होता है तब जब हम प्यार से स्नेह से दिल से और यथार्थ रूप में जब याद करते हैं वो हजूर हाजिर होते हैं हमारे लिए, और हमारे लिए तो सब कुछ दे देते हैं परमात्मा ने। तो भगवान को ईश्वर को अल्लाह को खुदा को कौन भूलेगा, इसलिए हमेशा उनको याद करना चाहिए, चाहे किस भी नाम से पुकारे, लेकिन वो हमारा तो परमात्मा है, सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है, परम सद्गुरु है, परम पिता है, परम शिक्षक है। तो लेते हैं छोटा सा ब्रेक।

0: चलिए छोटा सा प्रस्तुति के लिए चाहे एक अंतरा हो एक मुखड़ा हो, क्यों बच्चों को एक मंच मिलता है और जिस मंच का माध्यम से अपना भाव को भावना को दिल का उद्गार को सब तक पहुंचाता है। तो छोटा सा प्रस्तुति के लिए उपस्थित है किरण, तो उनको स्वागत करते हैं। किरण ओके रेडी शुरू हो जाइए।
1: मेरा नाम किरण चौधरी है, मेरा विद्यालय का नाम श्री राजेश्वर विद्या मंदिर रेवदर है, मैं कक्षा 8 में पढ़ता हूँ, मैं दादरला से आता हूँ। माए तेरे लिए मर मिटेंगे, तेरे बेटे ना पीछे हटेंगे, जब तुझ पे आँच आए।

0: हमें तू पुकार लेना, बलिदान का बहाना हमें बार बार देना। ये तो जानवान है तेरे सामने क्या है, कोई शूरवीर ही प्राण त्याग देता है। माँ से है माटी, माँ से है माथा, माथे पे माटी सजा के चले माए, चलती रहे तेरे खौफ हवाए, लहरा के जू में तिरंगा, आजाद रहेगा बाद रहे तू, तारों के जू में तिरंगा।
1: बहुत बहुत धन्यवाद। देशभक्ति में ओत प्रेत होकर अपना जज्बा दिखा रहे हैं और तिरंगा का नाम को ऊंचा कर रहे हैं। और भारत महान है, जिस भारत में हम पले बड़े रहते हैं और यहाँ तक पहुँचे, और भारत को और जन्मभूमि को कभी नहीं भूल पाएंगे। भारत माता कहते हैं और जन्मभूमि कहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं सुंदर प्रस्तुति के लिए। चलिए इस कड़ी को ही आगे बढ़ाते हुए और एक प्रस्तुति लेकर हमारा नेहा और अनीता उपस्थित है, तो उन सभी को स्वागत करते हैं। इस कड़ी में ही अपना बात को हृदय का अंदर से जो चल रहा है उसको प्रकट करने के लिए एक मौका मिल रहा है, तो आज रेडियो कार्यक्रम में सजाएंगे। ठीक है बच्चे, सभी नाम का साथ अपना प्रस्तुति शुरू करिए।
2: मेरा नाम नेहा कुमारी है। मैं स्कूल का नाम श्री राजस्व विद्या मंदिर रेवदर है। मैं क्लास 8B में पढ़ती हूँ।
3: मेरा नाम सविता कुमारी है। मेरा स्कूल का नाम श्री राजस्व विद्या मंदिर है। मेरा क्लास का नाम 8B है।
4: मेरा नाम अनीता कुमारी है। मेरे स्कूल का नाम श्री राजस्व विद्या मंदिर रेवदर है। मेरी क्लास 8B।

0: देश हमारा, दुनिया के सारे देशों से यो है न्यारा।
1: बहुत बहुत धन्यवाद सभी को, नाम का साथ चाहे किरण हो चाहे नेहा, सविता और अनीता, सभी दोस्त लोग भी धन्यवाद देते हैं। सभी मिलकर अपना कार्यक्रम को सजाए और श्री राजेश्वर विद्या मंदिर रेबदर का आवाज़ को बुलंद करके अपना बात को रख पा रहे हैं। इसका श्रेय तो राजेश्वर विद्या मंदिर को जाता है और माता पिता को और खुद को भी जाता है। सभी ने इस कार्यक्रम को सजाए। तो लेते हैं छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद पुनः मिलेंगे। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: चलिए ब्रेक के बाद पुनः मिल रहे हैं और अच्छा अच्छा गीत सुन रहे हैं रेडियो मधुबन की तरफ से, और बच्चों का भी गीत आप सब सुन पा रहे हैं, उनका भाव और भावना को कितना सुंदर रूप में गा रहे हैं, और एक दूसरे को देखते हुए बच्चे सीख जाते हैं और भाग भी लेते हैं। तो इस कड़ी को और चार चांद लगाने के लिए हमारा साथ नीलेश कुमार है, तो उनको स्वागत करते हैं और अपना बात को रखेंगे, कविता का माध्यम से हो, चाहे गीत का माध्यम से हो, चाहे संगीत का माध्यम से हो। चलिए एक प्रस्तुति लेंगे, किस तरह वो प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं तो ध्यान से सुनिए। ठीक है नीलेश, ओके शुरू करिए।
1: मेरा नाम नीलेश कुमार है, मैं 10वीं क्लास में पढ़ता हूँ। मैं इस विद्यालय में श्री राजेश्वर विद्या मंदिर देवधर में पढ़ता हूँ। मैं आपके सामने राजस्थानी भजन प्रस्तुत करना चाहता हूँ।

कोल वचन किरता हंसा सुंदरी का यारो मत कर जे अभिमान आखिर एक दिन जानो है मालिक रे दरबार।

लो गर्भ में कुटब कभी लो गर्भ में गर्भ की ओ मन मां अंश के लो जासी ने कोई न संग में जा।

0: धन्यवाद।
1: बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर प्रस्तुति के लिए, और वंस मोर और एक प्रस्तुति के लिए हाथ उठा रहे, और हमारा जो पार्टिसिपेंट्स वो भी कहते हैं सर उनसे और एक गीत गाने के लिए बोलिए, तो चलिए सबका रिक्वेस्ट से और एक गीत सुनाएगा, है ना नीलेश? चलिए शुरू करिए अगला प्रस्तुति।
0: तू तो काली ने कल्याणी मोरी माँ, जाजो ऊंचा जोग माया। तू तो काली ने कल्याणी मोरी माँ,

तूने सत्य की राह दिखाई रे माँ, जा जो ऊंचा जो गमाया, तू तो काली ने कल्याणी मोरी माँ।

0: मन समाइये रे माँ, जाचो ऊंचा चो कमाया, तू तो काली ने कल्याणी मोरी माँ, जाचो ऊंचा चो कमाया।
1: क्या खूब सही में। सभी श्रोताओं की तरफ से भी आपको धन्यवाद देते हैं, और हमारा जो आपको उमंग उत्साह दे रहे हैं बच्चे पीछे से भी जो रिकॉर्डिंग में ऑडिशन दे रहे हैं वो भी खुश हो रहे हैं क्योंकि सुंदर रूप में प्रस्तुति किए। तो आज के लिए हमें दीजिए इजाज़त, फिर कल मिलेंगे इसी वक्त इसी समय और किसी बात को लेकर। यह था खासकर आज मंडर रेबदर का आवाज़ आपका पास रख रहे हैं, क्योंकि रेबदर तहसील में रेबदर जो श्री राजेश्वर विद्या मंदिर का आवाज़ आपका पास हम रख रहे हैं, बहुत खुशी लग रहा है। तो क्यों खुशी नहीं लगेगा, सभी ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया आज नाम का साथ। सभी को धन्यवाद देते हैं सुंदर प्रस्तुतियों के लिए। तो आज के लिए हमें दीजिए इजाज़त, फिर कल मिलेंगे इसी वक्त इसी समय और किसी बात को लेकर। सुनते रहिए मुस्कुराते रहे कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल रेडियो मधुबन 107.8 FM पर, खास कर रेबदर तहसील के श्री राजेश्वर विद्या मंदिर का आवाज़।

0: मेरे सतगुरु प्यारे दाउपकार बड़ा सोना है, मेरे सतगुरु प्यारे दा।
1: अभी बजे हैं शाम के 8। स्वयं के प्रति एक मिनट का समय दें।

0: हेलो।
1: नमस्कार भाई जी,
0: नमस्कार
1: आप आ गए, हमारी खुशियां बढ़ गई। लास्ट सोमवार है,
0: जी, लास्ट
1: मैं तो
0: सोमवार
1: बड़ा
0: है
1: परेशान
0: श्रावण
1: हूँ,
0: का।
1: बता दूँ।
0: जी बिल्कुल बता दीजिए।
1: अरे
0: हाँ जी बताइए।
1: हेलो,
0: हेलो, आवाज आ रही है आपको?
1: हाँ आवाज आ रही है। अरे
0: जी बताइए।
1: मैं गाने के बोल सुना दो।
0: बिल्कुल सुना दीजिए।
1: हाँ, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान, ये है गीता का ज्ञान।
0: जैसा कर्म करोगे
1: वैसा फल देगा भगवान,
0: क्या बात है।
1: यही तो गीता का ज्ञान। ये तुम्हारे हमारे साथ में यही तो ज्ञान आएगी साथ में, बाकी कुछ
0: बिल्कुल
1: नहीं आएगा। भगवान का नाम है तो सब कुछ है, भगवान का नाम ही नहीं है कुछ नहीं है। संसार भगवान को दिखा हुआ है।
0: बिल्कुल बिल्कुल, गीता में बिल्कुल यही लिखा है।
1: क्या करे, परमात्मा के साथ में अपने आत्मा है,
0: जी
1: आत्मा में परमात्मा है। इसमें ज्ञान गीता है, इसमें कुरान है, इसमें गायत्री है, इसमें गंगा है, सब कुछ इसी में है।
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: हाँ, इसको देखने वाला नहीं है, अपनी नैन नहीं है, अंदर वाला नैन खुल जाएगी, अब सब खुल जाएगा। क्या कह रहा है आपके साथ में, हमारे को रह करके नई नई बातें सुननी है, सुनानी है।
0: बिल्कुल
1: और सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। सुरेंद्र भाई सुनते होंगे, उनको भी मेरा प्यार भरा नमस्कार। बुरा राम जी है,
0: जी,
1: मोहन भाई है, उनका
0: सुभाष भाई, सुभाष
1: महाराष्ट्र
0: सुभाष भाई,
1: बोलते हैं, उनको भी मेरा प्यार भरा नमस्कार है।
0: चलिए
1: और
0: जो भी
1: आपको तो मेरे दोनों हाथ जोड़ करके
0: बिल्कुल, तो जो भी आपको सुन रहे हैं उन सभी की तरफ से
1: वो भी
0: आपको
1: मजे ले रहे हैं, मजे ले रहे हैं, सुन क्या रहे हैं, मजे ले रहे हैं। जब खुशियां इंसान के अंदर होती है, खुशियां बांटता है वो।
0: बिल्कुल
1: हाँ, खुशियां नहीं बढ़ेगी तो आदमी के आदमी का ध्यान ध्यान में कैसे खुशियां बढ़ेगी।
0: बिल्कुल
1: हर समय खुशियां से खुशियां ही बढ़ती है सर।
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: सभी
0: सही
1: को
0: कहा
1: मेरा
0: आपने।
1: प्यार भरा नमस्कार।
0: नमस्कार सभी आपको, सभी की तरफ से और हमारी तरफ से भी, रेडियो की तरफ से भी। बुरीलाल जी, आपको श्रावण के इस आखिरी सोमवार का खूब खूब शुभकामनाएं, बधाई हो। जी हाँ दोस्तों, वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, नॉट गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, केम छो की केन हो। आप सभी लिसनर्स को श्रावण के आखिरी सोमवार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमने भूरीलाल जी को तो दे ही दी है, लेकिन आप जो भी सुन रहे हैं उन सभी को आज के दिन बेहद पावन है, क्योंकि श्रावण मंथ का ये फाइनल यानी कि आखिरी सोमवार है और चारों तरफ शिव भक्ति की एक अलग ही गूंज है ना। कहीं जगह पे कावड़ भी चल रहा है तो श्रावण मास और उसके सोमवार के अपने एक अलग ही महत्व है। लेकिन इस पूरे महीने को जो एक चीज़ सबसे ज़्यादा ध्यान खींचती है वो है कावड़ यात्रा, है ना। खराब मौसम, लंबे पैदल यात्रा और पूरे पाँव में छाले, लेकिन इस सब पर भारी पड़ता है शिव भक्तों का विश्वास। गंगा जल लेकर हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर, 100 किलोमीटर, हजारों किलोमीटर की यात्रा, पैदल यात्रा तय करना, हर हर माधव, हर बम बम भोले के जयकार लगाना, ये सिर्फ एक यात्रा नहीं बल्कि भक्ति, डिवोशंस और समर्पण की सबसे बड़ी मिसाल है। मैं जानना चाहता हूँ कि आप सभी जो भी मुझे सुन रहे हैं उन सभी में से किस किस ने ये कांवड़ यात्राएं की है, या कोई पैदल चल करके शिव के मंदिर तक गए हैं। यहाँ पे भी, हमारे यहाँ आबू में भी चलता है, राजस्थान में भी चलता है, ऋषिकेश तक लोग जाते हैं और कई लोगों को मैंने देखा भी है पहुँचते हुए। तो एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, चलिए सुनते हैं सबसे पहले उनसे। हेलो हेलो,
2: हेलो।
0: शायद कंजेशन की वजह से बात नहीं हो पा रही है, लेकिन कोई बात नहीं। तो बात हम ये कर रहे थे कांवड़ यात्रा की, तो हम भी आप सभी से जानना चाहते हैं कि कौन कौन कांवड़ यात्रा में, कांवड़ यात्राएं की है, गए हैं पैदल चल करके, और क्या क्या एक्सपीरियंसेस रहा है। आप हमसे शेयर कर सकते हैं, आपको कॉल करना है 9414151415 पर और हमें अपने बारे में बताना है, अपनी स्टोरी के बारे में बताना है। चलिए आइए इस पावन माहौल को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं एक ऐसा नगमा जो दिल को सुकून और मन को शांति दे। और कांवड़ यात्रा के बारे में हो तो एक गाना जो खास है, चल चल कांवड़ ये ना हो, वो ऐसा हो नहीं सकता। चलिए शायद एक और कॉलर मेरे साथ, हमारे साथ शायद जुड़ रहे, उनसे हम करते हैं बातें। हेलो
3: हेलो
0: हेलो
3: हेलो, ओम शांति।
0: नमस्कार सुभाष जी, ओम शांति, कैसे हैं आप?
3: हाँ, बहुत ही से बुरा राम भाई जी हमारे, बुरीलाल भाई जी हमारे
0: बिल्कुल
3: प्यारे दोस्त आ गए
0: जी।

0: बहुत ही खुशी में हम सुरेश भाई, बुरेलाल भाई, बुरे राम भाई, सभी सुरेश भाई, सब रेडियो मधुबन परिवार सभी को सुभाष भाई का प्यार भरा नमस्कार भाई जी, और ओम शांति।
1: सुभाष भाई आपको भी सभी की तरफ से खूब खूब शुभकामनाएं, श्रावण मास की शुभकामनाएं, और आशा करते हैं आपका स्वास्थ्य ठीक है, और बस यही हमारी उमंग उत्साह है कि, और यही हमारी दिली ख्वाहिश है कि आप बस इसी तरह से हमें सुनते रहे, जुड़े रहे हमारे साथ। जी हाँ दोस्तों, तो वक्त है मैं आपको गाने के बारे में बताता, तो ये जो गाना है चल चल का, और ये तो बड़ा ही फेमस गाना है, और ऐसे वक्त पे हम सभी जब कावड़ पे चलते हैं, पैदल यात्राएं करते हैं, तो ये ज़रूर से गाना बजता ही है। चलिए सुनते हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM पर, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: मैं हूं जयप्रदा और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
1: वेलकम बैक, और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM पर खुशी के नगमे दिल की बातें। मेरा नाम यानी कि मैं आरजे केवल के साथ। जी हाँ, अभी हमने जो गाना सुना चल चल कावरिए कल कावरिए, जी हाँ दोस्तों, आप सभी ने ये गाना पहले भी सुना है। शिव महिमा में ये गाना आता है, मतलब एक एल्बम है शिव महिमा की, उसमें ये गाना है हरिहरन साहब के आवाज़ में। इसे लिखा है सचिना दा आनंद मिश्रा जी ने। मेरी कई बार तोतली आवाज़ हो जाती है, तोतले बोल लेता हूँ, तो उसके लिए माइंड नहीं करना, बस समझ जाना कि मैं क्या कह रहा हूँ। थैंक यू सो मच दोस्तों। श्रावण का महीना और ये सुहानी रात, जब बाहर हल्की हवा चल रही हो तो दिल करता है कि पुराने ज़माने के उन खूबसूरत नगमों में खो जाए जो सीधे दिल को छू लेते हैं। मोहम्मद रफ़ी साहब, लता जी, किशोर दा, इन सब की आवाज़ में वो जादू है जो आज की इस रात को और भी यादगार बना देता है। और आज रात हम बात करेंगे उन्हीं संगीत और गीतकारों की जिन्होंने हर जज्बात को एक और सुर दिया है। तो चलिए अगले गीत आप सभी के नाम और उस वक्त हमेशा और इस वक्त हमसे जुड़े हैं और अपनी रात को संगीत के साथ खूबसूरत बनाते हैं। गाना अगला मैं पेश करूं, उससे पहले हमारे पास एक फरमाइश आई थी हमारे बुरीलाल जी की। बुरीलाल जी ने कहा था कि जैसा कर्म करेंगे वैसा फल पाएंगे, और ये है गीता में ज्ञान। बिल्कुल सही कहा है, जैसा भी आप कर्म करेंगे, और इस कर्म के बारे में भी हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं और भी इस गाने के बाद। लेकिन सुनते हैं पहले ये गाना रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

नमस्ते, मैं हूँ किरण शूद्र की सांडली और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं।

मैं हूं अवधेश पंडित, जीएम फाइनेंस बेसिल, और आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो।

0: वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर आपका अपना फेवरेट शो खुशी के नगमे दिल की बातें। मेरे साथ यानी केवल के साथ मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट। जी हाँ दोस्तों, अभी हमने दो बैक टू बैक गाने सुने। सबसे पहला जो गाना हमने सुना, गाना सुना, लेकिन गाने सुनने से पहले हमारे साथ हमारे कॉलर जुड़ रहे। चलिए सबसे पहले करते हैं उनसे बात है। हेलो
1: हेलो जी, नमस्ते।
0: नमस्कार सुरेश भाई, कैसे हैं आप?
1: बस बिल्कुल अच्छे हैं, और बातें सुन रहे हैं आपकी, हमारे मित्रों की जो बातें सुन रहे हैं, हमारे बुरेलाल जी आके गए
0: जी,
1: हमारे सुभाष भाई आके गए,
0: बिल्कुल।
1: तो बस सुन रहे थे कार्यक्रम और बहुत अच्छा लगता है। और सोमवार है, भोले बाबा का दिन है आज, तो अच्छा गाना भी हमारे बुरेलाल जी ने
0: जी
1: सुना दिया।
0: बिल्कुल,
1: तो बहुत अच्छा लगा। हमारे तो यहाँ दूसरा सोमवार चल रहा है सर, हम आपके राजस्थान में तो लास्ट सोमवार।
0: क्या बात है, तो श्रावण का तो वैसे भी आखिरी सोमवार चल रहा है ये शायद।
1: नहीं हमारे सर, क्या हमारे गुजरात 15 दिन पीछे चलता है।
0: अच्छा,
1: आपका दे, आपका 15 दिन आगे आता है, हमारे 15 दिन पीछे है।
0: ओके, तो मुझे तो ऐसा था कि पूरे भारत में हम यही होता है कि सोमवार का आज आखिरी सोमवार है श्रावण, क्योंकि श्रावण तो यहाँ
1: राजस्थान में यूपी में ये सभी क्या है 15 दिन पहले।
0: अच्छा, क्या बात है,
1: 15 दिन बाद चलता है,
0: एक नई जानकारी मुझे मिली, वाह।
1: और बस हमारे बुरी राम को भी, हमारे बुरी लाल जी को भी हमारा राम राम है, हमारा बुरा राम को भी राम राम है। बुरा लाल नहीं आए, आ जाएंगे थोड़ी देर में,
0: अभी थोड़ी देर में आने की तैयारी है। बिल्कुल यस
1: बिल्कुल। और बस अभी हमारे मित्र साथियों को नमस्ते, हमारा मदन लाल जी भी लास्ट में आएंगे जरूर
0: जी, बिल्कुल वो आएंगे।
1: और चलो एक गाना भी मैं आपको दे दी थी, आदमी मुसाफिर आता है जाता है, आते जाते रास्ते में यादें छोड़ जाता है।
0: क्या बात है, बहुत ही प्यारा गाना आपने देखा है, सोचा है।
1: तो हमारे सभी मित्रों को भी हमारी याद, और ऐसा इसीलिए मैंने ऐसा ही गाना सुना है।
0: बिल्कुल, बहुत प्यारा गाना आपने चूज किया है। चलिए हम कोशिश करते हैं कि आपके लिए गाना हम,
1: हमारे आपको केवल भाई नमस्ते, और हमारे अंतरिक्ष भाई को भी नमस्ते
0: जी। अंतरिक्ष शायद हाँ,
1: हम याद तो करना ही पड़ता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: हमारी तरफ से अंतरिक्ष भाई को
0: हम अभी बीच में जब मैराथन था सुरेश जी, तो वो मिले थे और हमने उनको याद भी दिया था, और हमने कहा था अगर कुछ समय मिले तो आइएगा जरूर, और आप सबको काफी याद कर रहे हैं। बिल्कुल, चलिए थैंक यू सो मच सुरेश जी, आपका कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी हाँ दोस्तों, तो हम बात ये कर रहे थे कि हमने दो गाने बैक टू बैक सुने। एक तो ये था कि जैसा कर्म करेंगे वैसा फल देगा भगवान, यह है गीता का ज्ञान। जी हाँ दोस्तों, यह है गीता का ज्ञान, बिल्कुल सही कहा। हम जैसे भी कर्म करेंगे वैसा ही फल हमको मिलने वाला है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि जैसा हम कर्म करेंगे हमको देखकर हमारे आसपास वाले, हमारे बच्चे जो हमें देख रहे हैं, जो हमसे सीख रहे हैं, वो भी ऐसे ही कर्म करेंगे, फिर वो चाहे गलत हो चाहे सही हो। तो कोशिश हम हमेशा ये करना है कि कर्म हम ऐसे करें कि सामने वाले को वो खुशी दे, अच्छा हो, जिससे हमें वो जो फल मिलना है वो भी बड़ा प्यारा हो। और इसमें बहुत से, इस गाने में हमने देखा है कि बहुत सी ऐसी चीज़ें जहाँ पे कहीं कहा गया है कि वो साधु जो है वो है ढोंगी, बात करता है ज्ञान की लेकिन आता उसे कुछ भी, शास्त्रों की बातें करता है लेकिन करते हैं रात को वो कत्ल और दिन में डालते हैं डाका। तो ऐसे बहुत सी चीज़ें आज के समय में भी हम देख सकते हैं, कई रास्ते में हम देखते हैं, कई बार ऐसा होता है कि उनके वजह से कई और जो हमारे साधु संत होते हैं, हम उनको भी वो इज्जत नहीं दे पाते, क्योंकि कुछ ऐसे लोग जो रास्ते में घूमते हैं उनकी वजह से। चले दोस्तों, अगला जो हमने गाना सुना वो भी बहुत ही प्यारा था, तुम रूठी रहो मैं मनाता रहूं, फिल्म आस का पंछी से लता मंगेशकर की आवाज़, हसरत जयपुरी जी ने इसे लिखा था। जय किशन जी, यहाँ पे सिर्फ हम कह सकते हैं नॉट शंकर जय किशन, लेकिन जय किशन जी की इसमें म्यूज़िक कंपोज इन्होंने किया था, या फिर म्यूज़िक डायरेक्ट भी हम कह सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले नगमे की ओर, बहुत ही प्यारा नगमा है, क्योंकि जब हम बात कर रहे हैं कि तुम रूठी रहो मैं मनाता रहूँ, जब कभी ऐसा होता है हमारे साथी, हमारे खास जो कभी गुस्सा हो जाते हैं, रूठ जाते हैं, तो हम यही कहते हैं कि तुम ऐसे ही रूठते रहो मैं तुम्हें यूं ही मनाता रहूं, क्योंकि ये जो अदाएं होती है तुम्हारे रूठने की हमें बड़ी प्यारी लगती है। तब जाके कहीं पे ये गाना बिल्कुल फिट बैठता है कि मेरा साया साथ होगा। क्यों? क्योंकि तू जहां जहां चलेगा मेरा साया साथ रहेगा। चलिए सुनते हैं प्यारा सा नगमा, फिर करते हैं ढेर सारी बातें। सुनते रहिए रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

रेड लाइट होने पर हमेशा अपनी गाड़ी रोक लेना चाहिए और उसे ग्रीन होने पर ही आगे बढ़ाना चाहिए। ऐसा ना करके हम अपनी और दूसरों की जान खतरे में डाल सकते हैं। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।

वेलकम बैक दोस्तों। अभी जो हमने गाना सुना मेरा साया मूवी से, म्यूजिक डायरेक्टर थे इसके मदन मोहन जी, इसके गीतकार थे राजा मेहंदी और इसे अपनी सुरों से सजाया था लता मंगेशकर जी ने। इसमें एक चीज़ मैं ये कह सकता हूँ कि इसके गाने का जो हम कहते हैं राग जो था इसमें नांद राग से ये को इसको सजाया गया था। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों, अगला एक और हमारा बहुत ही प्यारा गाना है, फरमाइश हमें आई है सुरेश जी की तरफ से, तो सुनते हैं ये प्यारा सा नगमा और फिर करते हैं उसके बारे में बातें। सुनते रहिए रेडियो मधुबन 107.8 FM पर, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।

0: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
1: कृपया करके रेलवे परिसर में धूम्रपान ना करें, यह वर्जित है। इसके लिए आपको 200 रुपए तक का जुर्माना या फिर जेल भी हो सकती है।
0: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

वेलकम बैक दोस्तों। और अभी हमने बहुत ही प्यारे प्यारे दो गाने सुने, आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है, और एक और गाना हमने बीच में सुना। और अब वक्त है अगले गाने की ओर बढ़ने का। हमारे पास दो फरमाइशें हैं बैक टू बैक, वो दोनों गाने भी हम सुनेंगे। आप सभी से हम छुट्टी भी लेंगे, हम फिर कल मिलने का वादा भी करेंगे, और इसके बाद आपको कहेंगे कि बने रहिए रेडियो के साथ, क्योंकि जो अगला कार्यक्रम है वो है सहज स्वास्थ्य। आप सभी से विदा लेने से पहले, गुड नाइट, शबा खैर, शुभ रात्रि कहने से पहले मैं आपको बता दूं कि पिछले हफ्ते बुधवार को हमारे पास एक कॉल आया था और उन्होंने खास रिक्वेस्ट की थी हमारे आरजे विशाल जी से मिलने के लिए। और हमारे आरजे विशाल जी आजकल रेडियो में कम आते हैं, और तो हमने उनकी बात उन तक पहुँचा दी, लेकिन उनकी एक फरमाइश भी थी कि एक गाना खास करके हमारे आरजे विशाल जी के लिए डेडिकेटेड हो। तो बिकॉज ऑफ हमारे बाउंड्रीज़ की वजह से कि हम वो गाना प्ले नहीं कर सकते हैं, तो हम वो कोशिश कर रहे हैं कि उनके लिए वो गाने की सिर्फ दो लाइनें हम प्ले करें और विशाल जी तक वो गाने की दो लाइनें हम पहुँचाएँ। और आशा करते हैं कि आप भी उस चीज़ को समझेंगे और हम वो सिर्फ दो लाइन प्ले करेंगे और आपकी वो बात उन तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच। सुनते रहिए रेडियो मधुबन 107.8 FM, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

वेलकम बैक दोस्तों। अभी हमने दोनों गाने सुने, जैसे मैंने कहा कि पहला गाना जो था हमारे आज विशाल जी के लिए डेडिकेटेड था, और दूसरा गाना हमारे भूरीलाल जी किसी महाराज जी के साथ बैठे हुए थे और उन्होंने भी एक हमें फरमाइश दी थी इस गाने की कि ओ भोले शंकर मेरे कब होंगे दर्शन तेरे। जी हाँ दोस्तों, ये दोनों गाने हम आप सभी से माफ़ी चाहते हैं कि पूरा गाना नहीं बजा पाते हैं, क्योंकि उसका रीज़न ये है कि हमारी जो प्लेलिस्ट है, हमारे जो प्रोटोकॉल्स है, उसके अंडर में नहीं आते हैं और हम वो गाना नहीं प्ले कर सकते, बिकॉज हमारे पास वो वैधता होती है कि हम 1960s के और 70s के गाने प्ले करें। और जो भी हमारे लिसनर्स हमें सुन रहे हैं, उन सभी से एक खास दिली रिक्वेस्ट है कि जब भी आप अपनी कोई भी फरमाइश दें, कोशिश करें कि वो 1960, 1950 या 65 तक के अंदर में हो, ताकि हम वो हम आपके लिए वो गाने बिल्कुल खुशी से प्ले कर सकें, बिकॉज ये एक कम्युनिटी रेडियो स्टेशन है जहाँ पे हम आपके लिए उसी तरह के गाने हम प्ले कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वक्त है आप सभी से गुड बाय कहने का, फिर हम मिलेंगे कल ठीक इसी समय ठीक 8 बजे। आशा करते हैं कि हमने सभी की फरमाइशों को पूरा किया हो, अगर किसी की नहीं हो पाई हो तो माफ़ी कीजिएगा, कल हम फिर उन गानों को आपके लिए प्ले करेंगे। तब तक आप बने रहिए रेडियो के साथ, सुनते रहिए रेडियो मधुबन 107.8 FM, सुनते रहिए और मुस्कुराते रहिए।

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम। मैं हूं आपका दोस्त आरजे श्री और ये है कार्यक्रम सहज स्वास्थ्य। दोस्तों, स्वास्थ्य संबंधी जानकारियां जितनी हम सुनते हैं वो सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, हम अपने आप को स्वस्थ करने की दिशा में, स्वस्थ रखने की दिशा में इस जानकारी का इस्तेमाल करें। वरना हम इन चीजों को जानते हुए भी अगर इसका इस्तेमाल न करें और इसे जीवन में ना उतारें तो इन चीजों का जानना और न जानना दोनों बराबर हो जाता है। स्वास्थ्य से संबंधित जानकारियां हम सभी के लिए आवश्यक हैं। प्रायः लोग इस कारण से अस्वस्थ हो जाते हैं या किसी बीमारी के शिकार हो जाते हैं क्योंकि उन्हें पता नहीं होता कि ये हमें करना नहीं चाहिए था, ये मुझे खाना नहीं चाहिए था या इस चीज पर मुझे ध्यान रखने की जरूरत थी। और जब तक उनको ये चीज पता चलती है तब तक काफी देर हो चुकी होती है या लोग बीमारी से ग्रसित हो चुके होते हैं और फिर उसे ठीक करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। हम नहीं चाहते कि हमारे श्रोता मित्र इन मुश्किल घड़ियों को अपने जीवन में आने दें, पहले से ही सजग रहें। अगर आपके शरीर में स्वास्थ्य संबंधी कोई गड़बड़ियां है भी तो उसे ठीक करने की ओर आप अग्रसर हों। आइए आज सहज स्वास्थ्य में स्वास्थ्य से जुड़ी हुई कुछ ऐसे ही विचारों के बारे में हम चर्चा करते हैं। हमारे साथ बातचीत के लिए स्टूडियो में आज जुड़ रहे हैं डॉक्टर राहुल मोदी जी। डॉक्टर मोदी पेशे से एक एलोपैथी डॉक्टर हैं, भारत के जाने माने ऑस्टियोपैथ हैं और स्पोर्ट्स मेडिसिन के क्षेत्र में लंबा अनुभव रखते हैं। इसके साथ ही भारत के प्राचीनतम प्रकृति चिकित्सा केंद्रों में से एक आरोग्य मंदिर गोरखपुर में वो प्रैक्टिस करते हैं, जहां पर उनके परिवार की अनेक पीढ़ियों ने लोगों को स्वास्थ्य लाभ दिया है और अभी भी दे रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है आज के कार्यक्रम में।
1: नमस्कार, ओम शांति।
0: सर्वप्रथम तो डॉक्टर साहब, जब हम स्वास्थ्य से संबंधित चीजें सुनते हैं या पढ़ते हैं कहीं पर तो लोग ये कहते हैं, अरे अच्छा ऐसे भी होता है, ये तो हमें पता ही नहीं था, ऐसा भी लोग कहते हैं। और कभी कभार चीजों के पता होते हुए भी लोग कुछ चीजों का पालन नहीं करते या उन चीजों को जीवन में उतारते नहीं है। उदाहरण के तौर पर डायबिटीज या शुगर के मरीजों के लिए कहा जाता है कि भाई आप चीनी से परहेज करें, चीनी का इस्तेमाल कम से कम करें। और लोग कहते हैं कि भाई मैंने जीवन में इतने साल चीनी खाई है, अब अचानक ये चीज बताई जा रही है कि मुझे चीनी से बचना है, ये तो मेरे से नहीं हो सकता, अब तो चीनी के बिना मेरे को स्वाद ही नहीं आता, ऐसे भी लोग कहते हैं। तो ऐसे में क्या सिर्फ जानकारी से काम हो जाएगा या सिर्फ सुनने मात्र से काम हो सकता है?
1: जानकारी अगर आपके पास है और आप इसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं और वो जानकारी आपके उपयोग की है तब भी आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है इस पृथ्वी पर। आपको मालूम है कि ये चीज आपके लिए ठीक नहीं है मगर तब भी आप उसका प्रयोग किए चले जा रहे हैं तो वो बहुत गलत बात है। इसको हम लोग अगर एक छोटे बच्चे के रूप में अगर इसका एग्जाम्पल देखें तो जैसे आपने कहा कि जानकारी है और लोग प्रयोग नहीं कर रहे हैं तो आप सोचिए कि एक कक्षा 7वीं 8वीं 9वीं का बच्चा है और उसको मालूम है कि कल उसकी परीक्षा है और वो खेल रहा है और परीक्षा डिफिकल्ट है, मुश्किल है और वो बच्चा खेल रहा है तो उस बच्चे को जानकारी है कि आज उसको पढ़ना चाहिए, आज उसको स्वाध्याय करना चाहिए और वो स्वाध्याय न करके खेल कूद रहा है तो ये जानकारी होने पर भी वो उसका उपयोग नहीं कर रहा है। जहां तक मेडिकल की बात है, किताब के ज्ञान, मित्रों का ज्ञान और अब सबसे बड़ा सोशल मीडिया का ज्ञान जो आपके मोबाइल और आपके लैपटॉप, आपके कंप्यूटर से आपको मिल रहा है, बड़ी पुरानी संस्कृत का एक आदित्य वेदांत फिलॉसफी में कहा जाता अहम ब्रह्मास्मि, आई एम द ब्रह्मन, आई नो एवरीथिंग, मैं ही डिवाइन हूं, मैं ही यूनिवर्स हूं, मैं ही सब कुछ हूं। आदमी ये बात मानने को तैयार नहीं है कि दूसरे उसकी मदद कर सकते हैं। और जैसे आपने मिठाई की बात की, इतने सारे लोग हमें मिलते हैं जो कहते हैं हाँ मेरी चीनी बढ़ी हुई है पर क्या हम रोज थोड़ी ना खा रहे हैं, या अरे हम पहले 4 पीस खाते थे अब हम 2 पीस खा रहे हैं, या पहले तो भाई मैं सुबेरे दोपहर शाम खाता था अब मैं सिर्फ सुबेरे शाम खा रहा हूं। जबकि आप किसी भी शुभचिंतक, डॉक्टर, मित्र, गुरु, सहपाठी, सखा उससे बोलिए कि मुझे डायबिटीज है, क्या मुझे चीनी खानी चाहिए, वो पहली लाइन आपको बोलेगा अरे नहीं नहीं डायबिटीज मींस शुगर प्रॉब्लम, आई शुड नॉट ईट. सीधी बात है, आप बाहर बारिश हो रही है और आप कहिए कि मुझे भीगना नहीं है पर मुझे बाहर जाना है, तो आपको राय दी जाएगी कृपया छाता लेके जाइए. अब आप कहिए नहीं मैं छाता भी नहीं लूंगा और मैं भीगूंगा भी नहीं, ये तो पॉसिबल ही नहीं है अगर आपको बाहर जाना है. आज ब्रह्म कुमारी इसके आप आए हैं आश्रम में, सुबेरे 4 बजे उठा के आपको मेडिटेशन कराया जा रहा है, आपको दादा भाई की बातें बताई जा रही हैं, आप सुन रहे हैं, उससे आपको ज्ञान मिल सकता है. आप अपने घर में, अपने इष्ट मित्रों, सोशल मीडिया में सब जगह हल्ला करके आए कि मैं जा रहा हूँ ब्रह्म कुमारी इसका 7 दिन का प्रोग्राम अटेंड करने के लिए, और आप यहाँ आके उठ ही नहीं पा रहे हैं, सुबेरे आप सोए पड़े हैं, आप जो लेक्चर्स हैं उसको अटेंड ही नहीं कर रहे हैं, तो फिर आप अपना नुकसान कर रहे हैं. आपको जो ज्ञान मिल रहा है उस ज्ञान को जरूर, मेरे पिताजी हमेशा बोलते हैं ब्लॉटिंग पेपर की तरह ज्ञान जो भी मिले उसे ले लेना चाहिए, उसके बाद आप डिसाइड करिए कि आपके लिए अच्छा है या बुरा है. मगर ज्ञान अगर मिल रहा है और सही और अच्छा ज्ञान मिल रहा है तो प्लीज उसको ले लीजिए. बहुत मुश्किल से ज्ञान मिल रहा है और बहुत मुश्किल से सही ज्ञान मिल रहा है और सज्जन व्यक्तियों से ज्ञान मिल रहा है. तो इस युग में यदि आपको कोई ज्ञान दे रहा है और वो आपके स्वास्थ्य के लिए है तो प्लीज उसको ले लीजिए. अगर आपके माता पिता बोल रहे हैं पढ़ लो बेटा तो पढ़ लेना चाहिए. आप बारिश हो रही है छाता लेके जाओ बेटा, प्लीज छाता लेके जाइए. आप ठंडी का समय और आप टी शर्ट पहन के घूम रहे हैं, आप कहीं नहीं नहीं कोई परेशानी नहीं अभी तो कुछ नाम लग नहीं रही है, फिर थोड़े दिन माता कंप्लेन करिए अरे मेरे सर में दर्द हो रहा है, मुझे उल्टी हो रही है, मेरे पैर में दर्द हो रहा है, तो सब बच्चों को माता पिता यही बोलते हैं अरे बेटा स्वेटर पहन लेते तो ये परेशानी नहीं होती. तो प्लीज जो भी ज्ञान आपको मिल रहा है और जो आपके शरीर के लिए है, जो हितकर है, उसे जरूर अपनाएं.
0: डायबिटीज के संबंधित विषयों पर ही हम पिछले दिनों बातचीत कर रहे थे डॉक्टर साहब. कई लोग जो शुगर के मरीज होते हैं जैसे आप अभी बता रहे थे, कई लोग यही चीज कहते हैं अरे मैं तो चीनी खाता ही रहा हूं ना जिंदगी भर, मैंने खाया है उससे मेरा कोई नुकसान तो नहीं हुआ. हाँ आज मेरे ब्लड टेस्ट में, मेरी जांच में ये पता चल गया है कि मेरा शुगर 300 हो गया है, 400 हो गया है. लोग कहते हैं हो गया तो क्या हुआ, बट मेरे शरीर पर तो उसका कोई असर नहीं हो रहा, मुझे कोई तकलीफ तो हो नहीं रही है अभी. तो ये रिपोर्ट ऐसी बता रही मगर मुझे शरीर में कोई व्याधि महसूस नहीं हो रही, मेरे शरीर पर उसका असर नहीं महसूस हो रहा, ऐसे भी कई लोग कह देते हैं. तो प्रश्न उठता है कि भाई फिर जब उन्हें कुछ फील नहीं हो रहा है, कोई दर्द नहीं हो रहा है, शरीर में कोई व्याधि उत्पन्न नहीं हो रही है, तो ये समझने की जरूरत है कि ये शरीर पर असर क्या कर रहा है. क्या व्याधि ना होने के कारण मैं इस चीज को इग्नोर कर सकता हूं या करना ये सही है.
1: एक बड़ी प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको देता हूं कि मैं स्पोर्ट्स मेडिसिन का आदमी हूं, ऑस्टियोपैथी और कायरोप्रैक्टिक की प्रैक्टिस कर रहा हूं बॉम्बे और गोरखपुर में, और बहुत सारे पुरुष महिलाएं मेरे पास आती हैं. एक बड़ा कॉमन फाइंडिंग या एक बड़ी साधारण सा समस्या लेकर वो मेरे पास आते हैं कि मेरे कंधा जाम हो रहा है, और महिलाएं अक्सर ये समस्या अपनी बताती हैं और कहती हैं कि हम बाल नहीं ठीक से झाड़ पा रहे हैं, हम अपनी पीठ पे साबुन नहीं लगा पा रहे हैं, और हम कपड़ा पहनते समय हम सहज महसूस नहीं कर रहे हैं, मेरा हाथ नहीं उठ रहा. और आप उनको देखते ही कहते हैं लगता है आपको फ्रोजन शोल्डर हो गया है और आपको डायबिटीज हो गई है या आपको मधुमेह हो गया है या चीनी की बीमारी हो गई है. तो पहला लाइन वो बोलती है अरे मुझे कैसे हो सकता है. अच्छा अब आप उनसे बोलिए कि आपका कंधा जाम हो गया है, आप ये जांच करा लीजिए, आप देखिए क्या आता है. जब रिपोर्ट आपने बोला ना 200-300 तक आ जाती है, तब भी कहते अरे कंधा ही तो जाम हुआ है और तो कोई परेशानी नहीं हुई मुझे कहीं. अच्छा अब आप इसको एक कॉमन और उसकी तरह समझिए कि आप एक चिड़ियाघर में गए हैं और शेर के पिंजरे में घुस गए हैं, और उस पिंजरे में एक शेर है और आप हैं, और अब आप कहिए कि अरे यार शेर मुझे खा थोड़ी ना रहा है, मेरे को क्या परेशानी है, मैं तो यहां आराम से बैठूंगा. तो आपको मालूम नहीं है कि वो शेर आपको कब खा जाएगा. आप एक कोबरा सांप ले आइए जिसको सबसे विषैला सांप माना जाता है, और आप उसको कहिए नहीं नहीं ये तो मेरा पालतू जानवर है, मैं रोज इसको पपोलूंगा, हाँ आप देखिए कहावत भी आस्तीन का सांप कभी भी काट सकता है। अब आप उसको अपने आस्तीन मतलब शर्ट के अंदर, आप उसको अपने शर्ट के अंदर डाल के रखिए कि अरे मेरा प्यारा सांप मेरा फ्रेंड है, इससे मुझे कोई परेशानी नहीं हो रही है। अरे भाई किस दिन काट ले आपको क्या मालूम। और मैं सबको बोलता हूं डायबिटीज जो है वो चोरों के गोल में सबसे छोटा चोर है, और ये वो चोर है जो आपके घर का दुकान का ऑफिस का ताला तोड़ देता है, और वो चुपचाप ताला तोड़ के दरवाजा खोल के बैठ जाता है कि भाई आओ जिसको जो लूटना है ले जाओ, मैंने अपना काम कर दिया। और आपको ये जानकर अचंभा होना चाहिए कि ये ऐसा रोग है जो आपके सर से लेकर पैर के नाखून तक को परेशान कर सकता है। हमारे जो सबसे इम्पॉर्टेंट मतलब सबसे जरूरी जो जो अंग है, जो नेत्र जिसे हमें दिखता है, हमारा हृदय, हमारी किडनी और हमारी जो नसें हैं, ये सबको खराब कर सकता है। मैं चार शब्द बोल रहा हूं साइंट, आप जाइए आंखों में ये डायबिटिक रेटिनोपैथी करा सकता है, मतलब आपके आंख पे नंबर बढ़ने लगेगा, आपको दिखने नहीं लगेगा और हो सकता है कि आप अंधे हो जाएं। ये आपके हृदय को जो है वो डायबिटिक कार्डियोमायोपैथी करा सकता है, जिससे आपका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, आपको हार्ट अटैक हो सकता है, आपको स्ट्रोक हो सकता है। ये आपकी किडनियों को खराब कर सकता है, जिसकी वजह से आपको क्रॉनिक किडनी डिजीज हो सकती है, आपकी किडनी खराब हो सकती है, वो सीरम क्रिएटिनिन और यूरिया को आपके शरीर से नहीं निकाल सकती है, आप अपने किडनी फेल्योर में जा सकते हैं, आपको डायलिसिस करानी पड़ सकती है, आपको किडनी ट्रांसप्लांट कराना पड़ सकता है। ये आपको डायबिटिक न्यूरोपैथी करा सकता है, मतलब आपके शरीर के सारी नसों को खराब कर सकता है। और जब ये सारी नसों को खराब करेगा तो आपके पैर में झुनझुनाहट, सनसनाहट, कुलबुलाहट, चुलबुलाहट, रगड़ना, चींटी चलना, आपको जलन होना, आपके पैर में अलग अलग तरह की सिग्नल्स आना, आपकी उंगलियां टेढ़ी होना, आपके पैर से चप्पल गिर जाना, ये आपको मालूम नहीं चलेगा। आपका हाथ जल सकता है, आपको मालूम ही नहीं चले, हाथ कट जाएगा, मालूम नहीं चलेगा। आपका पाचन तंत्र जो है वो कमजोर हो सकता है, आपको उल्टी हो सकती है, आपको दस्त हो सकते हैं, आपको हो सकता है कब्ज हो जाए। ये आपके शरीर की जो इम्यूनिटी है उसको इतना कमजोर कर सकता है कि आपको विभिन्न जीवाणुओं की इन्फेक्शन की बीमारियां, बैक्टीरिया, वायरस, फंगल, ये सारे इन्फेक्शन हो सकते हैं। ये पुरुष और महिला के जितने भी गुप्त अंग हैं उनपे भी फंगल इन्फेक्शन करा सकता है। हम लोग दो चीज बहुत कॉमन डायबिटीज के मरीजों को देखते हैं कि पैर में एक घाव हुआ और वो ठीक नहीं हो पा रहा है, और वो घाव इतना बढ़ जाता है कि उससे पैर की उंगलियों तक को हटाना पड़ सकता है, या उनको हमको मेडिकल टर्म्स एम्प्यूटेट करना पड़ सकता है, उनको निकालना पड़ सकता है। तो आप सोचिए कि ये कितनी खतरनाक बीमारी है, मगर जब तक मुझे कुछ होगा नहीं तब तक मैं कंट्रोल नहीं करूंगा, तो इससे बड़ी मूर्खता नहीं हो सकती है। मैं अपने श्रोताओं को एक बात बताना चाहूं कि आप गाड़ी का शीशा टूट जाएगा तो वैसा ही शीशा ला के बदल सकते हैं, मगर हमारे अंग अगर नसें खराब हो जाए तो आप नई नस नहीं पैदा कर सकते। आपके शरीर का कोई अंग नहीं काम कर रहा है, हम उसको थोड़ा बहुत सर्जरी से, उसको शल्य चिकित्सा से कुछ ठीक कर सकते हैं, मगर आपको पुराने जैसा एकदम ठीक नहीं कर सकते। आपकी आंखों पे चश्मा मोटा सा लग जाए, एक आंख से दिख ही नहीं रहा, तो आप उसमें क्या कर लेंगे। तो प्लीज जाग जाइए और अपना ख्याल रखिए। अगर कोई समस्या, कोई बीमारी हुई है तो प्लीज उसका ठीक से किसी डॉक्टर को दिखा के, किसी अच्छे व्यक्ति को दिखा के उसका इलाज शुरू करिए। और अगर वो शुरुआती दौर में पकड़ ली गई है तो हो सकता है कि आपको पूरे जीवन भर कोई दवा न खानी पड़े, थोड़े दिन में ही आपकी दवाएं बंद हो जाएं, आप अपने भोजन से, व्यायाम से, अपनी दिनचर्या को ठीक करके आप उस बीमारी से मुक्ति पा सकते हैं।
0: जो उदाहरण आपने डॉक्टर साहब अभी दिया कि भाई हमारी शुगर की मात्रा बढ़ गई है, पेशाब की जांच जब की जाती है उसमें जब पता चलता है कि भाई आपको डायबिटीज है, आपके शुगर बढ़ी हुई है, तो लोगों का ये कहना कि भाई हमें शरीर में तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा, कुछ असर हो नहीं रहा है या कोई दर्द हो नहीं रहा है, तो तब तक हम उसको इग्नोर करते चलें, ये बात सही नहीं है। क्योंकि जो आपने उदाहरण दिया कि जैसे आप किसी शेर के पिंजरे में तो अंदर जा चुके हैं, अब आप सिर्फ इंतजार कर रहे हैं कि शेर कब आप पर झपट्टा मारेगा और कब आप उसके शिकार होंगे, तो आपको तभी से सजग होने की जरूरत है और तुरंत उस पिंजड़े से बाहर निकलने की जरूरत है, और ये टेस्ट इसी चीज के लिए आवश्यक भी है। डायबिटीज की बात जब की जाती है तो लोग ये कहते हैं कि हम सालों से तो खाते आ रहे हैं, जैसे आप अभी थोड़ी देर पहले ये कह रहे थे कि पहले मैं 4 मिठाई खाता था, आज मैं सिर्फ 2 खा रहा हूँ, कुछ परिवर्तन किया है मैंने, ऐसा भी लोग कहने लगते हैं। मगर ये जो चीनी कम खाने की या न खाने की बात कही जा रही है, डायबिटीज हो गया है इसलिए मुझे चीनी को मना करना है और मेरे डायबिटीज से संबंधित चीजों पर अब गौर करने की जरूरत है, तो लोग कहते हैं कि ये बीमारी अचानक कैसे आ गई। कई लोग ये भी कहते हैं कि भाई अब इतने साल तो मैंने खाया है, आज ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, ये भी बहुतों के मन में प्रश्न उठता है।
1: मधुमेह के होने के 2 बहुत कॉमन साधारण कारण है। आप मेडिकली अगर बात करेंगे तो सबसे पहले तो अब जेनेटिक्स बोल दिया जाता है कि पिता माता को है तो आपको होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और मैं एक चीज और अपने श्रोता मित्रों को बताना चाहूंगा कि देखिए ये समस्या कितनी बड़ी है कि आपको MD मेडिसिन पढ़े हुए लोग, DM एंडोक्राइनोलॉजी किए हुए लोग या बहुत सारे और डॉक्टर्स भी अपने नाम के आगे डायबिटोलॉजिस्ट लगाने लगे हैं कि मैं डायबिटीज का ही इलाज करता हूं। आपको बड़े इंस्टीट्यूट्स, बड़े अस्पतालों में पूरा का पूरा डायबिटीज विंग मिल जाएगा जहां पे सिर्फ स्पेशलिस्ट इसी बीमारी के लिए बैठते हैं कि वो एक बीमारी को आपके ठीक कर पाए। और वो एक बीमारी नहीं है, वो एक बीमारी होने की वजह से बहुत सारी आपको बीमारियां हो सकती हैं, इसीलिए वो आपके लिए इतने चिंतित हैं और वो इतनी ज्यादा लोगों को हो चुकी है और रोज नए केसेस मिल रहे हैं कि लोग अब इसका बड़े अस्पतालों ने अपना पूरा का पूरा एक डिपार्टमेंट बना लिया है इस बीमारी के लिए। जो सवाल आपने पूछा कि ये क्यों हो सकती है, तो सबसे पहला जो इसका कारण डॉक्टरों ने ढूंढा है, रिसर्च में मिला है, वो है अनियंत्रित जीवनचर्या। आपका दिनचर्या नहीं, पूरा जीवनचर्या जो है वो आपने अपना गड़बड़ कर रखा है। आप कब सो रहे हैं, कब उठ रहे हैं, क्या खा रहे हैं, मोटापा है आपको, आप अति भोजन कर रहे हैं, आप व्यायाम नहीं कर रहे हैं, आप मिठाइयां खाते चले जा रहे हैं, मतलब कार्बोहाइड्रेट युक्त पदार्थ अपने भोजन में ज्यादा ले रहे हैं, अधिक शक्कर के जो सामान है जैसे मिठाइयां, चॉकलेट, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम, इसका सेवन धड़ल्ले से किए चले जा रहे हैं और इतना ज्यादा आप खा रहे हैं कि आप इसको अपने शरीर में जो आपके पैंक्रियाज है उससे खूब इंसुलिन निकलवा रहे हैं। तो आप अगर किसी से बहुत ज्यादा काम कराएंगे तो वो जल्दी थक जाएगा। इसी तरह आप अपने जीवन काल में अगर शुरुआती दौर में अपने जीवन को संभालेंगे नहीं, एक्सरसाइज नहीं करेंगे, कभी उठना है कब सोना है वो नहीं ठीक करेंगे और खूब मिठाइयां खाएंगे, तो धीरे धीरे आपका जो पैंक्रियाज है वो इंसुलिन निकालना बंद कर देगा या कम कर देगा। और पहले वो बंद नहीं करेगा, वो धीरे धीरे कम करेगा। भाई हमने जैसे ही कुछ मीठा खाया तुरंत इंसुलिन निकलती है उस ग्लूकोज को कोशिकाओं के अंदर डालने के लिए। थोड़े समय कुछ सालों में आपके ये जो इंसुलिन निकलने की क्रियाशीलता जो है वो मंद पड़ने लगेगी और धीरे धीरे देर सवेर आपका पैंक्रियाज जवाब दे देगा कि भाई अब मुझसे काम नहीं होता। और जब उससे काम नहीं होगा तो वो शक्कर जो है जो कोशिकाओं के अंदर जानी थी वो जा नहीं पाएगी, वो आपकी शरीर में घूमने लगेगी, फिर आपकी इतनी ज्यादा आपके रक्त में घूम रही होगी कि किडनियां उसको निकालने लगेंगी और वो पेशाब के रास्ते आपके बाहर निकलने लगेगी। दूसरा जो मुख्य कारण अब माना गया है डायबिटीज के लिए वो है तनाव, टेंशन, स्ट्रेस। ये कहा जाता था कि भैया हमारे पूर्वजों को भी परेशानी होती थी, पर हमारे पूर्वज अपनी दिनचर्या को बहुत संभाल के चलते थे और उनका जो संघर्ष था वो उनकी दिनचर्या को बदल

0: और हम मानव जो व्यक्ति जो है वो पहले बहुत संयम में रह रहा था और पहले बहुत संतुष्ट था। अब उसकी संयमता और संतुष्टता दोनों खत्म हो गई है। वो दिन भर भाग रहा है, वो दिन भर टेंशन में है, दिन भर परेशानी में है, तो उसका जो एड्रेनालिन ग्लैंड है वो ज्यादा काम कर रहा है, ज्यादा परे, और जब वो ज्यादा काम कर रहा है तो ज्यादा शुगर चाह रहा है, ज्यादा इंसुलिन निकलवा रहा है। तो ये भी माना गया है कि अगर आप बहुत स्ट्रेस में रहेंगे तो आपके शरीर में थोड़े दिनों बाद आपका पैंक्रियास ठीक से इंसुलिन निकालने के लिए सक्षम नहीं होगा। और हम और आप ये भी जानते हैं कि अब अगर आपको डायबिटीज होती है तो डॉक्टर एक लाइन बोलता है, अवॉइड स्ट्रेस, कि आप परेशान मत होइए, उत्तेजित मत होइए, आप एक्साइट और आप शांति बनाए रखिए। तो भोजन अगर हमारा एकदम चौपट हो गया, हमारी दिनचर्या चौपट हो गई और हम हमेशा परेशान रहने लगेंगे, चिंतित रहने लगेंगे, स्टेबल नहीं रहेंगे, तो हमको ये समस्या हो जाएगी।
1: बहुत ही गजब की ये जानकारी है। जो लोग इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं उनको ये समझ में आ रहा होगा कि हम सोचते हैं कि हाँ हमारे जीवन में सब नॉर्मल चल रहा है, मगर हम अपने मन पर तनाव ले रहे हैं, हम अपने शरीर के जो दिनचर्याएं हैं, जीवनचर्या है, अगर उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, वहां पर गड़बड़ियां करते जा रहे हैं, तो शायद आजकल में हमें इसका परिणाम नहीं दिखेगा, मगर धीरे धीरे इसका परिणाम हमारे शरीर के ऊपर, हमारे स्वास्थ्य के ऊपर आना शुरू होगा दोस्तों। इसलिए समय रहते ही सजग होने की जरूरत है और इसे ठीक करने की भी जरूरत है। और भी प्रश्न है डायबिटीज से संबंधित, मगर समय कहता है कि यहाँ रुकना होगा। मगर आज डॉक्टर राहुल मोदी जी ने जो जानकारियां हम सबको दी हैं, जैसे शुरुआत में मैं कह रहा था, सिर्फ ये जानकारियां जानने तक सीमित नहीं होनी चाहिए, उसका इस्तेमाल करना, उसे जीवन में उतारना आवश्यक है, ताकि हम स्वस्थ समाज, अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए, अपने परिवार को स्वस्थ रखने के लिए, समाज और राष्ट्र को स्वस्थ बनाने के लिए एक कदम आगे बढ़ाएं और शुरुआत अपने आप से करें। आज के सहज स्वास्थ्य में इतना ही। हमारे सभी प्रश्नों का उत्तर डॉक्टर राहुल मोदी जी ने हमें दिया और आप सभी श्रोता मित्रों का मार्गदर्शन दिया, इसके लिए मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका।
0: नमस्कार, ओम शांति।
1: दोस्तों आज के सहज स्वास्थ्य में बस इतना ही। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। तब तक सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: हेलो बच्चों, चलो बैठो रेडियो के पास। 9:30 बज गए और सपनों की सैर कार्यक्रम में आपका स्वागत करते हैं परी और मनी दीदी।
1: हाँ बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और याद है पिछली बार हमने पूछा था कि भारत के पहले राष्ट्रपति जी कौन थे, तो बच्चों ने सही जवाब दिया है।
0: हाँ बच्चों, काफी सारे बच्चों ने सही जवाब भेजा है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। और बच्चों, आज़ादी का सम्मान करने के लिए कितनी सारी बातों पर हमें ध्यान देना चाहिए ये हमने बताया था।
1: हाँ बच्चों, कि देश के नियमों का पालन करना चाहिए,
0: सभी लोगों का सम्मान करना चाहिए,
1: अपने आसपास स्वच्छता रखनी चाहिए,
0: पेड़ पौधों और प्रकृति की रक्षा करनी चाहिए,
1: ईमानदार और जिम्मेदार नागरिक बनना चाहिए,
0: और सबसे मुख्य बात मिलजुल कर रहना चाहिए।
1: सही कहा परी, ये सब बातें हम ध्यान दें तो हम इतनी मेहनत से हमें जो आज़ादी मिली है तो उस आज़ादी का सम्मान भी तो करें, अपने आसपास के लोगों का, समाज का, परिवार का सम्मान करें, आदर करें, है ना?
0: हाँ बच्चों, और आपको पता ही है अगस्त मास तो त्योहारों का मास होता है, तो अब कुछ ही दिनों में मनी दीदी रक्षाबंधन भी तो आने वाला है।
1: हाँ, अभी तो राखियों से बाजार सज गया है और जहाँ भी जाते हैं हम मार्केट में तो कितनी सुंदर सुंदर राखियाँ भी दिखाई देती है।
0: तो बच्चों, ऐसे ही तो रक्षाबंधन नहीं मना लेते, लेकिन उसकी हिस्ट्री भी तो पता होनी चाहिए, क्यों मनाया जाता है।
1: हाँ बच्चों, और उसकी हिस्ट्री भी आपको जरूर पता होगी, तो वो आप हमें मैसेज कीजिए या वॉइस नोट करके भेजिए कि क्यों मनाया जाता है रक्षाबंधन। आखिर हमारे देश में इतने धूमधाम से एक महीना पहले से ही बहनें अपने भाइयों के लिए राखी पोस्ट भी करने लगती हैं।
0: हाँ बच्चों, तो चलो इस कड़ी में अब बातें होंगी रक्षाबंधन के बारे में।
1: हाँ तो चलो भाई, अभी हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक और फिर परी भी आएंगी और अपनी प्यारी सी कहानी भी सुनाएंगी, तो चले मिलते हैं इस गाने के बाद।
0: तो बच्चों, 9414151415 पर हमें मैसेज करना मत भूलना। तो चलो सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए
1: रेडियो मधुबन 107.8 FM पर।

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: हम खुश बैठे हैं, हम प्यार से वो चीज खा रहे हैं जो हमें पसंद है, तो पूरी सिचुएशन तो हमारी एक्चुअली। सी द सिचुएशन इज ऑल अबाउट मी। मैं आराम से इस कुर्सी पे बैठी हूँ, मेरे सामने मेरी फेवरेट मिठाई है, मैं प्यार से खा रही हूँ, एवरीथिंग इज परफेक्ट, हैप्पी हैप्पी। और सामने से कोई आया, किसी ने एक लाइन बोल दी। इस केस में लाइन इतनी बहुत ज्यादा कड़वी भी नहीं है, लेकिन हो सकता है किसी ने कोई कड़वी लाइन भी बोल दी, कोई अब्यूजिव लैंग्वेज यूज कर ली, किसी ने झूठ बोल दिया, किसी ने डांट दिया। इस केस में तो कुछ भी नहीं था, इस केस में थोड़ा सा बोला कि आपको थोड़ी परहेज करनी चाहिए थी। हियर माई वर्ल्ड वॉज परफेक्ट, सब कुछ मेरे अनुसार था, लेकिन सामने से कोई आया, सामने से किसी ने एक लाइन बोली और वो एक लाइन ने मेरे पूरे वर्ल्ड को आउट ऑफ कंट्रोल कर दिया। मन डिस्टर्ब्ड, फीलिंग्स डिस्टर्ब्ड, फिर वर्ड्स डिस्टर्ब्ड, काफी देर तक डिस्टर्ब्ड। मीनिंग वन लाइन, किसी की एक लाइन मेरी इस दुनिया को एक घंटे के लिए डिस्टर्ब कर सकती है। और ये भी हो सकता है कि अगली बार जब आप उनसे मिलेंगे तब भी आपको वो वाली बात याद आ जाएगी। सो इट विल नॉट इवन रिस्ट्रिक्ट टू दिस वन आवर, ये हो सकता है कि इट स्टेज ऑन माई माइंड and it comes back to my mind later on. शायद कभी जब वो लड्डू खा लिया तब वो बात याद आ जाएगी, या शायद वो बहन सामने कभी आ जाएगी तो वो बात याद आ जाएगी। मतलब my mind, ये हमारा एक्सरे है।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
2: तो चलो बच्चों, शुरू करते आज की कहानी। बहुत अच्छी अच्छी बातें हमने जानी। आज आपको अकबर और बीरबल की कहानी सुनाएंगे। एक दिन बादशाह अकबर ने दरबार में बीरबल से पूछा, बीरबल दुनिया में सबसे मीठी चीज क्या है? बीरबल ने तुरंत उत्तर दिया, जहाँ पना जीभ सबसे मीठी है। अकबर को जवाब थोड़ा अजीब लगा, उन्होंने सोचा बीरबल मजाक कर रहा है। कुछ दिन बाद अकबर ने पूछा, बीरबल दुनिया में सबसे कड़वी चीज क्या है? तो बीरबल मुस्कुराते हुए कहा, जहाँ पना जीभ ही सबसे कड़वी है। तो अकबर हैरान हो गए और बोले, ये कैसे संभव है? बीरबल ने समझाया, जहाँ पना जीभ से निकले मीठे बोल इंसान को अपना बना लेते हैं, और यही जीभ अगर कड़वे वचन बोले तो रिश्ते बिगाड़ देती है, इसलिए जीभ ही सबसे मीठी भी है और सबसे कड़वी चीज भी है। तो देखा बच्चों, कितना अच्छा हाजिर जवाब बीरबल का होता है। अच्छा लगता है ना सुनना। लेकिन ये तो बताओ कि इस कहानी से हमें क्या समझ में आता है? इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए। मीठे बोल से हम दूसरों का दिल जीत सकते हैं, जबकि कटु वचन से रिश्ते टूट जाते हैं। तो इसीलिए बच्चों, आप बहुत मीठे मीठे बनना, कभी कड़वा नहीं बनना, किसी को कटु वचन नहीं कहना जो किसी को दुख पहुंचे, और सबको सुख देना। तो चलो सुनते हैं ये प्यारा सा गाना। सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए रेडियो मधुबन 107.8 FM पर, सपनों की सैर को।

0: यार मोहित, कभी कभी मैं सोचता हूँ कि दिव्यांग व्यक्तियों का जीवन कितना नीरस है, उनके लिए दुनिया कितनी अलग है।
1: बात तो सही कह रहे हो तुम, ऐसे जीवन का भी क्या फायदा। खैर छोड़ो, चलो बाजार चलते हैं, मुझे कुर्ता पैजामा दर्जी को सिलाई के लिए देना है।
0: चलो चलते हैं।
1: बहन जी, मुझे यह कुर्ता पैजामा सिलवाना है और 5 दिन में मुझे यह चाहिए।
2: ठीक है, आप अपना नाप दीजिए, हमारे दर्जी सिलाई कर देंगे और आप 5 दिनों के बाद आकर इसे ले सकते हैं।
1: धन्यवाद। सौरभ, तुमने एक बात पर ध्यान दिया कि दर्जी ने हमारी तरफ एक बार भी नहीं देखा, वह बस अपना काम कर रहा था। मुझे लगता है वह सुन नहीं सकता था।
3: हाँ, मुझे बताया था उस दर्जी वाली बहन जी ने कि दर्जी सुन नहीं सकते हैं, परंतु मैं सोच रहा हूँ कि मैं कितना गलत था।
1: हाँ, जो शारीरिक विकलांग होते हैं वह भी तो हमारी तरह सामान्य जीवन जी सकते हैं।
4: रेडियो मधुबन की मुहिम का हिस्सा बने, पुरानी मानसिकता को बदलें और समझने का प्रयास करें। शारीरिक रचना का हमारी बुद्धिमत्ता से कोई ताल्लुक नहीं। मन स्वस्थ तो जीवन स्वस्थ।
5: मानवीय हो मानसिकता, सुखद हो व्यवहार, मन की आंखों से देखिए सुंदर ये संसार।
6: बच्चों, हम पढ़ रहे हैं तेनाली राम की किताब जिसका नाम है तेनाली रामा की अनोखी दुनिया, और इसमें जो कहानी है उसका टाइटल है फलियों की शिक्षा, जिसमें महाराज अपने ग्रुप के साथ तेनाली राम के साथ राज्य के भ्रमण पर निकले हैं और रास्ते में नदी के किनारे उन्होंने तंबू लिया है और खेत में मटर की खूब सारी फलियां हैं और महाराज ने सिपाही को भेजा है। तो सिपाही को देखकर खेत का मालिक घबरा गया, किंतु जब उसे पता चला कि महाराज स्वयं उसके खेत के पास विश्राम कर रहे हैं और अपनी भूख मिटाने के लिए खेत से थोड़ी फलियां तोड़ने की आज्ञा चाहते हैं, तब उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा और प्रसन्नता से उसका हृदय भर गया। इतने सम्मान की कल्पना महाराज ने नहीं की थी। तेनाली राम यह सब देखकर मुस्कुरा रहा था। तो दूसरे दिन जब महाराज वहां से अगले पड़ाव के लिए कूच करने

लगे तब तेनाली राम का घोड़ा उनके साथ साथ चल रहा था। महाराज कृष्णदेव राय ने तेनाली राम से कहा, तेनाली राम, तुम्हारे कारण कल रात अच्छा भोजन प्राप्त हुआ, अब आगे देखे क्या होता है। तो तेनाली राम ने कहा, आगे भी अच्छा ही होगा और महाराज, इस गांव के लोग वर्षों तक आपका गुणगान करेंगे और आपकी न्यायप्रियता एवं ईमानदारी की कथाएं कहेंगे, जबकि आप जानते हैं आपने इनका लिया ही है, दिया कुछ नहीं। तो ये कहकर तेनाली राम ने महाराज को व्यंग भी कस दिया। तो इस कहानी से हमें तो ये शिक्षा मिलती है कि हमें किसी की भी चीज बिना पूछे नहीं लेनी चाहिए, भले चाहे वो किसी वृक्ष में फल लगे हो, तो पहले हमें वहाँ के मालिक से, वहाँ के माली से भी परमिशन लेनी चाहिए, उसके पश्चात ही हमें फल फूल तोड़ना चाहिए, है ना बच्चों। तो चलो भाई, अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक और फिर अब मिलते हैं थोड़ी ही देर में परी के साथ फिर से। तो चलो, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो रेडियो मधुबन 107.8 FM पर, सपनों की सैर को।

0: हेलो, हाँ हाँ पहुँचा दूंगा, समय से पहुँचा दूंगा।
1: ओए इधर इधर इधर, क्या पहुँचा दोगे है? कहाँ पहुँचा दोगे? ओए मुझे तो लगता है ऐसे ही बीच रोड पे मोबाइल लेकर घूमोगे तो तुम ही ऊपर पहुँच जाओगे। ओए सड़क क्रॉस करते समय मोबाइल जेब में रखो और जहाँ मन किया वहीं से रोड क्रॉस कर लोगे हैं? कोई ये जेबरा क्रॉसिंग क्या जेबराओं के चलने के लिए बनाई है? और जब भी रोड क्रॉस करना है तो जेबरा क्रॉसिंग से ही करना, क्या समझे? हाँ, मुझसे गाड़ी वाले तो क्या पैदल वाले भी नहीं बच सकते, क्योंकि ये है मेरी सड़क और मुझे कहते हैं हवलदार कड़क।
2: पैदल यात्री सड़क क्रॉस करते समय हमेशा जेबरा क्रॉसिंग का इस्तेमाल करें। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।
3: चलो बच्चों आ जाओ जल्दी से रेडियो के पास। आज तो हमने बहुत सारी जानकारियां ली, परी की कहानी भी सुनी और तेनाली रामा की किताब भी पढ़ी। अभी पिछली कड़ी में परी ने जो भी पहेली पूछी थी उसका जवाब भी तो जानना है ना। परी, पिछली कड़ी में आपने कौन सी पहेली पूछी थी?
4: हाँ बच्चों, डायरी खोलो और देखो आपका आंसर क्या है। हमने पूछा था, मीठा रस भरा स्वाद, गर्मी में करता हूँ सबको याद, राष्ट्रीय फल कहलाता हूँ खास, बताओ मैं कौन हूँ ये मिठास?
3: अरे मिठास है आम की, तो सही जवाब है आम। फलों का राजा है और गर्मी के समय में ही आता है और मीठा मीठा रस से भरा हुआ होता है। तो हमारे बहुत सारे बच्चों ने हमें बिल्कुल सही सही जवाब दिए हैं और सही जवाब है आम।
4: तो बच्चों आज कोई पहेली नहीं है, आज फिर से आपको एफर्मेशन हमें भेजना है और वो एफर्मेशन है, मैं हर दिन नई चीजें सीखने के लिए उत्साहित हूँ, मेरी मुस्कान दुनिया को रोशन करती है।
3: अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा है। तो बच्चों आप लोग नोट भी करो, मैं एक बार और बोलती हूँ और फील करते हुए आपको बोलना है, मैं हर दिन नई चीजें सीखने के लिए उत्साहित हूँ, मेरी मुस्कान दुनिया को रोशन करती है।
4: हाँ बच्चों, तो चलो अपनी मीठी मीठी आवाज में हमें इसका वॉइस नोट भेज दो।
3: और नंबर तो आपको याद ही है, 9414141415 पर।
4: बिल्कुल बच्चों, तो चलो शुरू हो जाओ मैसेज भेजना। और साथ में मनी दीदी क्या करना है?
3: भगवान जी को सॉरी और थैंक यू लिखना है, कहना है और उनकी गोद में सो जाना है।
4: तो चलो हम भी करते हैं गुड नाइट,
3: स्लीप टाइट,
4: गुड बाय। सुनते रहो मुस्कुराते रहो।

आशियाना सुनने वाले सभी श्रोता बंधुओं को आपकी अपनी उषा का सादर नमस्कार। आप सुनने जा रहे हो ब्रह्म कुमारी का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन। कार्यक्रम का नाम आप सभी को सुना चुकी हूँ। चलिए आज के कार्यक्रम आशियाना में कुछ इस प्रकार चलने वाले हैं। सबसे पहले तो आपको एक अच्छा सा विचार ही देंगे, फिर घरेलू नुस्खे भी जरूर देंगे, खुशनुमा जीवन में ढेर सारी बातें भी करेंगे, तो नए नए व्यंजन तो आपको हमेशा की भांति सिखाएंगे ही और देंगे सामान्य जानकारी। तो प्यारे श्रोता बंधुओं, बने रहोगे आशियाना में, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए रेडियो मधुबन

0: बजते रहिए। आप सड़क पर चलते समय अपनी गाड़ी को कंट्रोल रखें और अपनी गाड़ी को धीरे धीरे चलाएं और हमेशा हेलमेट पहनते रहिए।
1: रेडियो मधुबन,
2: गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, पुनः आप सभी का स्वागत है आशियाना में। चलिए दिन की शुरुआत करते हैं एक सुंदर से विचार के साथ, और आज का सुंदर सा विचार इस प्रकार है, कंजूस सबसे बड़ा दानी होता है। चलिए आज के विचार का विस्तार करते हैं कि कंजूस सबसे बड़ा दानी कैसे होता है। दुनिया कहती है कि कंजूस कभी दान नहीं करता, परंतु देखा जाए तो कंजूस सबसे बड़ा दानी होता है। वह अपने ऊपर नाम मात्र को खर्च करता है और जब मरता है तो सारा धन उसके बच्चों व परिजनों को दान में मिल जाता है। कंजूस धन को जमीन में भी गाड़ कर रखता है। जब कंजूस मरकर जमीन में गड़ जाता है तब उसका गड़ा धन बाहर आ जाता है। देखा जाए तो कंजूस व उसका धन दोनों एक दूसरे के विरोधी है। कंजूस धन को कैद में रखना चाहता है और कैद का धन कंजूस को तृष्णा रूपी सूक्ष्म पिंजरे में कैद रखता है। तो ये हुआ आज का विचार। चलिए अब सुन लीजिए एक प्यारा सा गीत। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रेडियो मधुबन।

नमस्कार, मैं हूँ शिप्ला, डिस्ट्रिक्ट मोहाली, स्टेट पंजाब से। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहें, मुस्कुराते रहें।

आप सुन रहे हो आशियाना, और आशियाना में आइए अब आपको घरेलू नुस्खे देते हैं कि अगर पेचिस की प्रॉब्लम हो तो हम किस तरह घरेलू उपचार करेंगे। चलिए मैं आपको थोड़ा सा कारण बता रही हूँ कि पेचिस के लक्षण क्या है। पेचिस का एक अन्य नाम आमातिसार, रक्त तिसार भी है। इसके रोगी को भूख कम और दुर्बलता प्रतीत होती है। प्रारंभ में बार बार कम मात्रा में दस्त, पेट में ऐंठन की पीड़ा, मल के साथ सफेद चिकना पदार्थ निकलता है, परंतु धीरे धीरे दस्तों की संख्या बढ़ जाती है, रक्त भी साथ में आने लगता है। दस्त जाते समय पेट में दर्द होता है, इसके रोगी को आराम करना चाहिए। तो ये सारे लक्षण है, चलिए मैं आपको उपचार बता रही हूँ कि अगर इस तरह की कंडीशन हो तो आप क्या करेंगे। एरंडी का तेल रात को गर्म दूध में पीजिए, ठीक है, 2 चम्मच। पेचिस में आंव के दस्त होते हैं, पेचिस में अगर आंव के दस्त हो रहे हो तो आप 2 चम्मच एरंडी का तेल रात को गर्म दूध में पीजिए, मिला करके शीघ्र लाभ होगा। एरंडी का तेल आंव और रक्त दोनों प्रकार के दस्तों में लाभ करता है, इसलिए आप इस उपचार को इजी वे में अपना सकते हैं। चलिए दूसरा और आपको अच्छा सा उपाय बता रही हूँ कि पके हुए बेल का शरबत पुराने आंव के लिए सफल चिकित्सा है। इसमें पेट साफ रहता है। अगर पुराना आंव हो ना तो आप पके हुए बेल का शरबत बनाइए और पीजिए, इससे पेट साफ रहता है और ये एक सफल चिकित्सा है। तो इसको आप इजी वे में आजमा सकते हैं। और भी सुनेंगे आप अगला उपाय कि अमोबाइसिस होने पर 1 गिलास गर्मा गर्म पानी खाने के बाद रोज पीजिए, इससे भी अमोबाइसिस की तकलीफ खत्म होगी। और लास्ट नुस्खा ध्यान से सुनेंगे, इसबगोल, ये अमीबिक पेचिस के लिए बहुत लाभदायक है। आंव को बाहर निकाल कर बनना बंद कर देती है। इसबगोल बहुत ही फायदेमंद है, यह अमीबिक पेचिस के लिए बहुत लाभकारी है। आंव को बाहर निकाल कर बनना बंद कर देते हैं। तो इस तरह इन नुस्खों को आजमा कर स्वयं को ठीक कर सकते हैं। चलिए प्यारे श्रोता बंधुओं, फिर से समय हो रहा है एक गीत सुनाने का, तो सुन लीजिएगा एक गीत। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

दे। तो प्यारे श्रोता बंधुओं, इन लाइनों से समझ गए होंगे कि किस तरह इशारा कर रही हूँ। जी हाँ, वैसे तो हम देशभक्ति की बातें करें तो बहुत कहते हैं समय ही कम पड़ जाएगा, लेकिन ये बातें भी जरूर करेंगे कल। लेकिन चलिए, खुशनुमा जीवन में रंग भरने की, जो जीवन में हम रंग भरते हैं उसकी सोच किस तरह की होनी चाहिए। कहते हैं कि सही सोच के द्वारा ही हम अपने जीवन में रंग भर सकते हैं। जहां भी दो चार व्यक्ति बैठते हैं बातचीत घूम फिर करके, आज की सामाजिक अव्यवस्था और नैतिक मूल्यों के हास पर आकर ठहर जाती है। इस अव्यवस्था के लिए कोई सरकार को कोसता है, तो कोई युवा पीढ़ी को, तो कोई सिनेमा को, तो कोई टीवी को। कुछ पढ़े लिखे लोग जहां इसके लिए शिक्षा प्रणाली को दोषी मानते हैं, वही कुछ इसे पश्चिमी सभ्यता का प्रभाव कर करके पल्ला झाड़ देते हैं। वर्तमान सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था पर यदि हम एक दृष्टि डालें, तो अपराधों का बढ़ता ग्राफ और मानव मूल्यों में आई गिरावट से यह स्पष्ट हो जाएगा कि दोष चाहे जिसका भी हो, लेकिन इतना अवश्य है कि आधुनिकता के इस दौर में जितना अधिक भौतिक विकास हुआ है, उतना ही अधिक नैतिक ह्रास भी हुआ है। भौतिक विकास के क्षेत्र में एक ओर जहां अच्छे अच्छे बंगले, कोठियां, भवन, फार्म हाउस, आलीशान होटल बने हैं, वस्त्रों का निर्माण हुआ है, स्वाद के लिए विविध प्रकार के भोज्य पदार्थों को सजाया सवारा गया है, टेलीविजन, कंप्यूटर, मोबाइल फोन, मोटर कारों वगैरह वगैरह के निर्माण से आदमी के बीच की दूरी कम हुई है, वही दूसरी ओर आध्यात्मिक दृष्टि से मन की सुख शांति दूर होती जा रही है। अगर हम आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो ये सारी सुख सुविधाएं तो हमें मिल रही है, लेकिन मन की सुख शांति दूर होती जा रही है। ढेर सारी सुख सुविधाओं के बाद भी हमारा जीवन अव्यवस्थाओं से गिरता जा रहा है। देर से सोना, नींद के लिए करवटें बदलते रहना, शराब या अन्य नशीले पदार्थ जैसे कंपोज आदि नींद की गोलियां खा करके सोना और नशे की खुमारी में सुबह देर तक सोते रहना, अनेक सभ्य लोगों की जीवन शैली बनती जा रही है। मुझे याद है स्कूल जीवन में डॉक्टर हजारी प्रसाद त्रिवेदी जी का एक लेख पढ़ा था, जिसमें जीवन में आ गई इस प्रकार की असंगति और असंतुलन का वर्णन करते हुए उन्होंने लिखा था, मेरे प्यारे श्रोता बंधुओं, कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले गिरह और भोले भाले श्रमजीवी पीस रहे हैं, झूठ और फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं, ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है, यह कैसी प्रगति है। द्विवेदी जी ने जिस असंगति की ओर संकेत किया है, वह आज हमारे चरित्र का हिस्सा बन गई है। कमाल तो यह है कि इस गलती को हम गर्व के साथ प्रगति समझ बैठे हैं। यह कैसी प्रगति है कि एक ओर ईमानदारी को मूर्खता या पर्याय समझे जाने की बात कही जाती है, तो दूसरी ओर प्रगतिशील समाज भौतिकता के प्रभाव में आकर दो घड़ी सुख की नींद के लिए तरस रहा है। ये कैसी प्रगति है कि निराशा और असुरक्षा में घड़ी के पेंडुलम की तरह लटकता मानव मन कहीं भी स्थिर नहीं हो पा रहा है। ये कैसी प्रगति है कि अव्यवस्था, अनुशासनहीनता, भ्रष्टाचार और असुरक्षा के घुमड़ते बादल में आज मनुष्य की अस्मिता दिन ब दिन असुरक्षित होती जा रही है। लेकिन खुशी की बात है कि भौतिकता की इस चकाचौंध में भ्रष्ट आचरण को कहीं भी सामाजिक मान्यता नहीं मिली है। देश के राष्ट्रीय चरित्र और लोकमत की उपेक्षा करने का दुस्साहस आज भी कोई नहीं जुटा पाता है। गले गले तक भ्रष्टाचार में डूबा व्यक्ति भी सार्वजनिक जीवन में अपने आप को पाक साफ समझता है। उसकी दृष्टि हमेशा अपने से बड़े भ्रष्टाचारी पर लगी रहती है। परिणाम हमारे सामने है। इस तथाकथित प्रगति के फलस्वरूप

लोगों की तो लालसाएं, आकांक्षाएं, महत्वाकांक्षाएं बढ़ रही है ना। सामाजिक और आधुनिक जीवन में दूर दूर तक इनका कहीं कोई अंत दिखाई नहीं दे रहा है। इच्छाएं इस सीमा तक बढ़ रही है कि उनकी पूर्ति होना असंभव सा होता जा रहा है। यह अनंत इच्छाएं और अपेक्षाएं इस अव्यवस्था का ही परिणाम है और यही आज हमारे सामाजिक जीवन की सबसे बड़ी समस्या है। मेरे प्यारे श्रोता बंधुओं, तो इस समस्याओं से कैसे हम निपटेंगे ये भी आप सभी सोचिएगा। ऐसे तो भौतिक साधनों की हम तरक्की कर रहे हैं, लेकिन मानसिक संतुलन का जो ह्रास होता जा रहा है ये विचारणीय है। अगर इसी तरह रहा तो फिर कैसे हम कह सकते हैं कि तनाव से मुक्त है, कैसे कह सकते हैं कि हम सभी खुश है। इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि किस तरह हम भौतिक सुखों के पीछे मानसिक तनाव को बढ़ा रहे हैं। अगर हम भौतिक सुख की जगह अगर हम थोड़ा सा आध्यात्मिक की तरफ ध्यान देना तो सचमुच हम जीवन को खुशनुमा बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे वो भी आपके साथ बात करेंगे, लेकिन अभी सुना रहे हैं एक प्यारा सा गीत। तो सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रेडियो मधुबन 90.4।

0: हमेशा बाइक पर हेलमेट पहनकर निकलना चाहिए, इसमें आपका ही भला है। जीवन अनमोल है, इसे यूं ही व्यर्थ न गवाएं। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।
1: बातों ही बातों में विश्वास बदल जाता है, बातों ही बातों में विश्वास बदल जाता है, रातों ही रातों में इतिहास बदल जाता है। मुसीबतों से मत घबराना मेरे प्यारे श्रोता बंधुओं, मुसीबतों से मत घबराना मेरे प्यारे श्रोता बंधुओं, क्योंकि मेहनत से जमी तो क्या आसमां भी बदल जाता है, मेहनत से जमी तो क्या आसमां भी बदल जाता है। तो प्यारे श्रोता बंधुओं, गीत सुनाने से पहले आपके साथ बातचीत कर रही थी कि किस तरह भौतिक सुख साधन बढ़ते जा रहे हैं और मानसिक सुख शांति हमारी छिनती जा रही है। समस्या इसलिए कि जिस गति से इच्छाएं बढ़ी है ना, उसी गति से सहिष्णुता और सामंजस्य की कमी हुई है, तो समस्याएं तो बढ़ेगी ना। मानसिक तनाव में सब कुछ आ गया है, घर हो या ऑफिस, कक्षा हो या व्यापारिक संस्थान, जहां लोगों में परस्पर स्नेह और आत्मीयता होनी चाहिए थी, वहां अविश्वास की भावनाएं बढ़ी। पति पत्नी, बाप बेटे, माँ बेटी, भाई भाई में परस्पर स्नेह स्रोत सूख रहे हैं, दूरियां बढ़ रही हैं, परिवार का वातावरण तना तना सा, खींचा खींचा सा बना रहता है। यही तनाव अब घरों से निकलकर समाज में आ गया है, इसलिए लोगों को न घर में शांति है न बाहर होगी भी कैसे ना, न तो घर में है न बाहर, कैसे हो सकती है जब लोग घर में ही अशांत रहते हो, तो वे बाहर सामान्य कैसे हो पाएंगे। आखिर समाज भी तो एक बड़ा घर है। ईर्ष्या को छोड़िए, आत्मचिंतन करिए। दरअसल ये मानसिक अशांति दूसरों की देन नहीं, बल्कि लोगों की अपनी सोच की ही देन है। हम दुखी या फिर अशांत इसलिए नहीं है कि हम अभावग्रस्त है, विवेकहीन है, बल्कि इसलिए है कि दूसरे इतने सुखी, संपन्न और खुशहाल क्यों है। हमें अपनी प्रकृति की चिंता नहीं, बल्कि हमारी चिंता का विषय पड़ोसी की सफलताएं है। हमारी यह ईर्ष्याजन्य सोच आधुनिकता की ही देन है। वास्तव में हमारा अधिकांश समय दूसरों में दोष ढूंढने में व्यतीत हो रहा है। दूसरों के आलोचनाओं में हम अधिक समय देते हैं। हम जितना समय दूसरों की निंदा करने में लगाते हैं ना, यदि उससे आधा समय भी आत्मचिंतन में व्यतीत करें, तो स्थिति बिल्कुल बदल जाएगी। एक अत्यधिक व्यस्त महिला को स्वामी जी ने गुरु मंत्र दिया, तुम आज से सच्चे मन से संकल्प करो कि तुम दूसरों की निंदा में रुचि नहीं लोगी, जहां दूसरों की निंदा हो रही है वहां से उठ जाओगी। महिला ने पूरी इच्छा शक्ति के साथ स्वामी जी की आज्ञा का पालन किया। अब महिला के पास इतना समय बचने लगा कि उसके पास करने के लिए कोई काम ही शेष न रहता। अब उसकी समझ में आ गया कि उसकी व्यस्तता का मूल कारण क्या था। यही आपके जीवन का भी सच है मेरे प्यारे श्रोता बंधुओ। अपना मूल्यांकन करिए, देखिए निष्कर्ष तक पहुंचने में समय नहीं लगेगा। दूसरों को दुख देना भी हिंसा है। वास्तव में अपनी प्रगतिशीलता के अहम में हम सदैव ये सोचते रहते हैं कि दूसरे हमसे आगे ना निकल जाए। हमें दूसरे को नीचे दिखाने में जो सुखानुभूति मिलती है, वह एक प्रकार की हिंसा है। ये हिंसक विचार ही हमारी आधुनिक प्रगतिशील सोच पर हावी है, जो परिवार में अविश्वास, अशांति और विघटन के प्रमुख कारण बन रहे हैं। जीवन आदर्शों का मजाक उड़ाने वाले जब स्वयं विषम परिस्थितियों में फंस जाते हैं, तो इस प्रकार की सोच से तोबा तो करते ही है, साथ ही इन्हीं आदर्शों की दुहाई देकर समाज और परिवार में अपने लिए स्थान भी मांगते हैं। बड़े से बड़ा अपराधी भी अपने बच्चे को आदर्श चरित्र वाला व्यक्ति बनाना चाहता है, उसे अपराध जगत से दूर रखना चाहता है, उसे पढ़ा लिखा कर नेक इंसान बनाना चाहता है। तो सद्गुण ही मानसिक शांति दे सकते हैं। सामाजिक और पारिवारिक जीवन में वह व्यक्ति आज भी सुखी, संतुष्ट और प्रसन्न है जो सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और साधनों की पवित्रता के साथ जुड़ा है। आज भी मानसिक रूप से वही परिवार सुखी है जो समृद्ध और सफल है, परस्पर स्नेह, सौहार्द और समर्पित भाव रखता है। समाज भी उन्हें ही सफल मानता है, स्वीकारता है, जो अपने अदम्य साहस, बुद्धिमत्ता, विवेक और चिंतनशीलता से जीवनादर्शों पर अनवरत रूप से अग्रसर है। तो समाज से पहले स्वयं को सुधारना है। समाज व्यक्ति से बना है, इसलिए सामाजिक जीवन में शुचिता लाने के लिए ये जरूरी है कि पहले हम स्वयं सुधरे। ये कार्य हम स्वयं अपने से ही क्यों न शुरू करें। हम सुधरेंगे जग सुधरेगा, कि ये सोच मानसिक शांति, सामाजिक और पारिवारिक तनावों से मुक्ति के लिए एक सरल उपाय बन सकती है। मनुष्य प्रकृति की सर्वोत्तम कृति है। प्रकृति की ये उत्तमता तभी सार्थक है जब वह अपने मनुष्यत्व को बनाए रखे और मानवोचित आदर्शों को जीवन में उतारे। मनोबल हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। मनुष्य की शक्ति स्वयं उनका मनोबल होता है। उसे अपने अंदर ही शक्ति प्राप्त होती है। जो अपने अंदर से शक्ति प्राप्त नहीं कर पाता है ना, उसे संसार में कहां भी शक्ति नहीं मिल सकती है। इस एक विचार और चिंतन से ही लोगों की आंखें खुल जानी चाहिए। वास्तव में बाहर वस्तुओं के आकर्षण और प्रलोभन ही लोगों को कमजोर बनाते हैं, जबकि लोगों की आंतरिक शक्ति उसे संबल प्रदान करती है। आंतरिक शक्ति के विकास के लिए एकांत चिंतन बहुत आवश्यक है। हमारे मस्तिष्क को जितनी शक्ति एकांत में मिलती है ना, उतनी भीड़भाड़ अथवा शोर में नहीं। इसलिए सामाजिक और पारिवारिक जीवन में जो लोग अपना कुछ समय सुबह और सायंकाल घूमने में, एकांत में बैठकर चिंतन करने में, योग साधना में अथवा मौन धारण कर इस प्रकार की क्रियाओं में बिताते हैं, इतिहास साक्षी है कि महान व्यक्ति जीवन में त्याग, तपस्या, सदाचार, इन सभी को अपना कर ही महान बने हैं। सद्गुणों को धारण करने वाले व्यक्ति ही समाज और परिवार में मान सम्मान और प्रतिष्ठा पाते हैं। मेरे प्यारे श्रोता बंधुओं, हम उसी व्यक्ति को अपना मित्र बनाना चाहते हैं, उसी की निकटता प्राप्त करना चाहते हैं, जो जीवन में अपने आदर्शों के कारण समाज में कुछ विशिष्ट स्थान रखता हो। तो क्यों न ऐसे व्यक्ति हम स्वयं बने, ताकि दूसरे भी हमारे साथ मित्रता बनाए रख सके और हमारे निकट आने की कोशिश करे। तो ऐसे आदर्श व्यक्ति हमें भी बनना है, तभी हमारा जीवन, हमारे परिवार में खुशहाली बनी रहेगी और हमारा जीवन खुशियों से भरपूर रहेगा। तो चलिए प्यारे श्रोता बंधु, अब एक गीत सुनाने का समय हो रहा है, तो सुन लीजिए खुशियों भरा गीत। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रेडियो मधुबन

मैं हूं संजय कुमार और आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। सुनते रहो और मुस्कुराते रहो।

आप सुन रहे हो आशियाना और आशियाना में समय हो चला है आप सभी को नई नई व्यंजन सिखाने का। तो आशियाना के किचन में वेलकम है आप सभी का। पेन और डायरी लेकर के पधारिएगा क्योंकि आज मैं आपको सिखा रही हूँ हरी हरी भरी भरी शिमला मिर्च। अब हरी हरी तो आप सभी जानते हैं कि शिमला मिर्च हरी ही होती है और भरी भरी कैसे होती है वो भी आप जानेंगे। तो चलिए पेन और डायरी तो आपके हाथ में है ना, तो चलिए मैं आपको सामग्री लिखवा रही हूँ। शिमला मिर्च की सामग्री इस प्रकार है, 19-20 बड़े आकार की शिमला मिर्च लीजिए। ठीक है, देखिए मैं बार बार आप लोगों को बोलती रहती हूँ, मात्रा आप अपने हिसाब से लीजिए। हम तो अपने अंदाज से बताते हैं लेकिन उसके अनुसार आप मात्रा को घटा बढ़ा सकते हैं। जैसे 19-20 शिमला मिर्च लेते समय आप ध्यान रखिएगा कि घर में कितने मेंबर है। 2 मेंबर है तो 19-20 बहुत ज़्यादा होती है, 3 मेंबर है तो भी ज़्यादा है, 4 मेंबर है तो भी ज़्यादा है। इसलिए आप मात्रा को अपने हिसाब से लीजिए। 2-3 मेंबर है तो 5 या 6 शिमला मिर्च काफ़ी रहती है। ठीक है ना, तो चलिए अब आपको अंदाजा आ गया ना कि किस तरह मेंबर के अनुसार मात्रा लेनी है। तो आप लीजिए 19-20 बड़े आकार की शिमला मिर्च। फिर भरने के लिए लीजिए 300 ग्राम पनीर और बारीक कटी हुई हरी मिर्च ले लीजिए 6-7। फिर 1 छोटा चम्मच कटा हुआ अदरक ले लीजिए। बारीक कटे हुए टमाटर लेना है आपको 2। ठीक है, और अदरक तो आप 1 छोटा टुकड़ा ले सकते हैं। फिर 1 छोटा चम्मच आपको लेना है कटा हुआ काजू। ठीक है, जो हम नाश्ता करते हैं ना ऐसा चम्मच ले लीजिए आप भरा हुआ कटा हुआ काजू। फिर नमक, गरम मसाला, ये सब आप अपने अंदाज से ले लीजिएगा टेस्ट के हिसाब से। और हरा धनिया भी आप अपने स्वेच्छा से ले लीजिएगा। और फिर आप लीजिए 1/2 कप तेल। ठीक है, रिफाइंड तेल, जो भी आप तेल यूज़ करते हो वो ले लीजिए। तो ये तो हो गई सामग्री। ग्रेवी के लिए लेंगे हम 1/2 भर आलू। कितने लिए? 1/2 भर। फिर आप लीजिए 1 छोटा चम्मच बारीक कटी हुई अदरक। ठीक है, फिर 1 किलो टमाटर की प्यूरी, 2 चम्मच लाल मिर्च, 2 चम्मच पिसा हुआ धनिया, 1/2 चम्मच पिसी हुई हल्दी, हल्दी पाउडर तो आप सभी जानते ही हो, 1 चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला, थोड़ी सी रतन जोत लेनी है, थोड़ी सी हरा धनिया तो लेना ही है, कसूरी मेथी ले लीजिए 1/2 छोटा चम्मच। ठीक है, और तेल लीजिएगा आप अपनी आवश्यकता के अनुसार। तो ये हो गई हरी हरी भरी भरी शिमला मिर्च की सामग्री, जिसको मैं पुनः दोहरा रही हूँ। 19-20 बड़े आकार के शिमला मिर्च लीजिए सामग्री के लिए। फिर आप लीजिए 300 ग्राम पनीर। अब आप लीजिए 6-7 बारीक कटी हुई हरी मिर्च, 1 छोटा चम्मच कटा हुआ अदरक, 2 बारीक कटे हुए टमाटर ले लीजिएगा, 1 छोटा चम्मच कटे हुए काजू लेना है, नमक, गरम मसाला, कटा हुआ हरा धनिया, ये सब आप आवश्यकता के अनुसार ले लीजिए। ठीक है, और 1/2 कप लेना है आपको रिफाइंड तेल। अब ग्रेवी के लिए लेना है आलू 1/2 भर और 1 छोटा चम्मच लीजिए बारीक कटी हुई अदरक, 1/2 किलो टमाटर की प्यूरी लेनी है, 2 चम्मच लाल मिर्च लीजिएगा, 2 चम्मच पिसा हुआ धनिया लेना है, 1/2 चम्मच पिसे हुए हल्दी पाउडर लीजिएगा और 1 चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला लेना है, थोड़ी सी रतन जोत ले लीजिए और हरा धनिया ले लीजिए आवश्यकता के अनुसार, कसूरी मेथी लेनी है 1/2 छोटा चम्मच और तेल भी लीजिएगा अपनी आवश्यकता के अनुसार। तो ये सारी सामग्री इकट्ठी करिए। तब तक के लिए आपको एक अच्छा सा गीत सुना देते हैं, तो सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रेडियो मधुबन

0: ये ले बहू, इसे पी जा।
1: ये क्या है माँ जी?
0: ये काढ़ा है, इसे पीते ही तेरा गर्भपात हो जाएगा।
1: नहीं माँ जी, अब बस, मैं और गर्भपात नहीं होने दूंगी। इससे पहले भी आपने मेरी बच्ची की जान ली है, इस बार मैं आपको यह पाप नहीं करने दूंगी, और ना ही इस पाप को मैं स्वयं करूंगी।
0: जुबान चलाती है, एक तो पोता दे न सकी, ऊपर से जुबान चलाती है। पोते के आस में बैठी हूँ, न जाने कब मेरी आँख बंद हो जाए।
2: क्या हुआ माँ, क्यों गुस्सा कर रही हो, क्या बात है?
0: ये महारानी काढ़ा पीने से इनकार कर रही है।
1: मैं ये काढ़ा पीकर अपनी बच्ची की अब और हत्या नहीं कर सकती। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपनी बच्ची को नहीं मरने दूंगी। लड़का लड़का सुन सुनकर मैं तंग आ गई हूँ, मुझे बस मेरी बच्ची चाहिए, वो भी जीवित।
2: माँ ठीक ही तो कह रही है तुम्हारी बहू, बस अब बंद करो ये जानलेवा खेल। मुझे भी बच्ची ही चाहिए, मुझे लड़का और लड़की में कोई फर्क नहीं दिखाई पड़ता। आज के दौर में तो लड़कियां लड़कों से भी ज्यादा सफलता पा रही हैं। बस अब बंद करो ये खेल, सब बराबर ही तो हैं आज।
1: भ्रूण हत्या करना मतलब आप स्वयं अपनी बेटी की हत्या का अपराध कर रहे हैं। क्या आप जल्लाद हैं? आप जल्लाद हैं? नहीं ना।
3: आप सभी आशियाना के किचन में हो और आशियाना के किचन में बन रही है हरी हरी भरी भरी शिमला मिर्च, जिसकी सामग्री में आप सभी को लिखवा चुकी हूँ, फिर भी एक नजर डाल दीजिएगा। सामग्री के लिए शिमला मिर्च, पनीर, अदरक, टमाटर, हरी मिर्च, काजू, गरम मसाला, हरा धनिया और तेल, अब और नमक है ना, और ग्रेवी के लिए आलू, अदरक, टमाटर, हरी मिर्च, धनिया, हल्दी, लाल मिर्च, गरम मसाला, रतन जोत, कसूरी मेथी, तेल, हरा धनिया। तो ये सारी सामग्री तो आपने इकट्ठी कर ही ली होगी। आइए अब हरी हरी भरी भरी शिमला मिर्च बनाते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, शिमला मिर्च की डंडियां अलग करके डंडी की तरफ से ही पिलर की मदद से सावधानी से बीज बाहर निकाल लेना है, ठीक है? अब क्या करेंगे, भरने की सारी सामग्री जो हमने ली है ना, कटा हुआ हरा धनिया, शिमला मिर्चन, वो पनीर, जो हमने सामग्री ली है वो सभी को मिला देना है, मिक्स कर देना है, ठीक है? फिर शिमला मिर्च में भर देना है। अब एक फ्राई पैन में, एक कढ़ाई में तेल गरम करिए और उसमें शिमला मिर्च रख करके ढक दीजिए, ठीक है? और मंदी आंच पर रख देना है। फिर थोड़ी थोड़ी देर में दो तीन बार पलट करके, चाहे तो इसे आप ओवन में भी रख सकते हैं या फिर गैस पर ही रखिए आप, मंदी आंच रखिएगा। याद रखिएगा, डार्क जो काले धब्बे जैसे चिपक जाते हैं और जले हुए का निशान नहीं होता है, तो इस तरह नहीं होना चाहिए। इसके लिए आप थोड़े से कंटिन्यू हिलाते रहिए, ठीक है? लेकिन चम्मच से नहीं, कढ़ाई का उछाला दे दीजिए। कढ़ाई को हंडासी से पकड़ के फिर आप उसको इस तरह उछाला देते रहिए। और इसके लिए क्या करना पड़ेगा, शिमला मिर्च पर तेल की जगह एक एक टुकड़ा जमे हुए घी या मक्खन का रख देना है। इससे चिपकेंगे नहीं और इस तरह ब्लैक धब्बे भी नहीं होंगे, और नरम होने पर गैस को बंद कर देना है। बस तो इस तरह शिमला मिर्च को करना है, ठीक है? अब हम क्या करेंगे, ग्रेवी के लिए आलू उबाल करके कद्दूकस कर लेना है, ठीक है? ताकि कोई गोली न रहे, गठाने रह जाती ना। फिर तेल गरम करके उसमें रतन जोत डालना है। जब तेल लाल हो जाए तो इसमें हरी मिर्च और अदरक की पेस्ट डाल दीजिए, ठीक है? और थोड़े से इसको फ्राई होने के बाद आप लाल मिर्च, नमक, हल्दी पाउडर, पिसा हुआ धनिया, गरम मसाला, ये सब डाल करके अच्छी तरह इसको फिर से फ्राई करिए। और फिर आप टमाटर की प्यूरी डाल दीजिए, और जब पानी सूख जाए, तेल ऊपर तैरने लगे, तो कसे आलू और अंदाज से थोड़ा सा पानी डाल करके मंदी आंच पर थोड़ी सी देर खदखदने दीजिए, ठीक है? खदकने लगे तो फिर आप आंच से उतार लीजिए। अब आप क्या करेंगे, परोसते समय एक शिमला मिर्च वाला फ्राई पैन गैस पर रख करके उन्हें जरा गर्म कर लीजिए, और ग्रेवी भी खूब गर्म होनी चाहिए। अब एक चौरस डिश में ग्रेवी डाल करके शिमला मिर्च सावधानी से बीच में रख दीजिए और गरम मसाला व धनिया या कसूरी मेथी छिड़क करके आप पिरसिए। ठीक है, कसूरी मेथी छिड़किए, पहले गरम मसाला या धनिया, गरम मसाला अंदर डाला ही है, अंदर थोड़े थोड़े कसूरी मेथी भी छोंक में डाल देनी है और धनिया से सजा देना है, ऊपर से कसूरी मेथी से भी सजा सकते हैं। तो इस तरह हरी हरी भरी भरी शिमला मिर्च तैयार है। तो भरमा का मतलब समझ गए ना, भरी भरी क्यों है, क्योंकि अंदर से भी भरी है तो ऊपर से ग्रेवी भी है। तो इस तरह शिमला मिर्च बनी जाती है, जिसकी विधि मैं पुनः दोहरा रही हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। क्या करेंगे हम, शिमला मिर्च की डंडियां अलग करके डंडी की तरफ से पिलर की मदद से सावधानी से बीज बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, फिर जो भरने की सारी सामग्री है उसको मिला करके शिमला मिर्च, तो अंदर भी भर गया मसाला, तो भरी भरी हो गई ना शिमला मिर्च, इसलिए हम कहते हैं भरी भरी शिमला मिर्च। अब हम क्या करेंगे, कढ़ाई में तेल रखना है गरम, तेल गरम हो जाए तो इसमें आप शिमला मिर्च रख करके ढक दीजिए और मंदी आंच पर रख देना है। ठीक है, आंच स्लो रखेंगे तो ही मसाला भी अंदर से अच्छा पक जाएगा और शिमला मिर्च भी बाहर से नरम पड़ जाएगी, इसलिए आंच को स्लो रखना है। फिर थोड़ी थोड़ी देर में दो तीन बार पलट देना है। ठीक है, चाहे तो इन्हें ग्रिल या ओवन में भी रख सकते हैं, लेकिन सभी के तो ओवन नहीं होता है ना, तो फिर आप गैस पे ही रखिए स्लो आंच पे। फिर इसके लिए शिमला मिर्च पर तेल की जगह एक एक टुकड़ा जमे हुए घी या मक्खन का रख दीजिए। नरम होने पर गैस बंद कर दीजिए। और अब ग्रेवी के लिए क्या करेंगे, आलू उबाल करके कद्दूकस कर लेना है, ताकि क्या होगा, घटाने नहीं पड़ेगी। बॉईल करके हम हाथ से मैश करते हैं ना, तो कहीं ना कहीं घटाने रह जाती है, तो इस तरह हमको कद्दूकस कर देना है। फिर तेल गरम करके उसमें रतन जोड़ डालना है। जब तेल लाल हो जाए तो उसमें फिर आप हरी मिर्च और अदरक का पेस्ट डाल दीजिए और अच्छी तरह फ्राई करिए। फिर फ्राई करने पर नमक, मिर्च, हल्दी पाउडर और पिसा हुआ धनिया, थोड़ा गरम मसाला भी डाल करके फिर से अच्छी तरह फ्राई करिए। अब टमाटर की प्यूरी डाल दीजिए। ठीक है, और जब पानी सूख जाए और तेल ऊपर तैरने लगे तो आप समझ लीजिए आपकी प्यूरी भी अच्छी मिक्स हो गई है। और तेल छूटने लगे तो आप आलू, कसे हुए आलू तैयार कर रखे हैं ना, इसको आप डाल दीजिए, अंदाज से पानी भी डाल दीजिए और अच्छी तरह खदकने दीजिए। ठीक है, और फिर अच्छी तरह खदकने के बाद आंच से नीचे उतार दीजिए। कढ़ाई में क्या करेंगे, आप इन्हें रख करके जरा गर्म कर लीजिए, और इसको गर्म नहीं करोगे तो ये चलेगा, क्योंकि फिर मसाला बाहर निकलने का खतरा रहता है। तो आप ग्रेवी को पिरसते समय ग्रेवी को गर्म कर दीजिए बस, क्योंकि गरम गरम ग्रेवी तो वैसे ही इसमें डालनी ही है। तो इस तरह हमारे हरी हरी भरी भरी शिमला मिर्च तैयार है। तो लीजिए एक चौरस डिश जिसमें आप ग्रेवी डाल दीजिए और ग्रेवी के बीचों बीच रख दीजिए एक शिमला मिर्च, और फिर इसको आप कसूरी मेथी और धनिया से सजा दीजिए। ठीक है ना, ऊपर से डाल दीजिए। और अब आप ये इस प्लेट को रखिए एक स्वच्छ थाली में। थाली में चपाती तो आपने बनाई ही होगी, तो बस रोटी के साथ वैसे ही शिमला मिर्च हरी हरी भरी भरी अच्छी लगती है, तो परोठा भी बना सकते हैं, दोनों के साथ अच्छी लगेगी। तो जो भी बनाया है थाली में रखिएगा, तुलसी पत्र रखिए, जल की स्वच्छ ग्लास भर के रखिए और आप अपने इष्ट देव को अब भोग लगाइए। भोग लगाने के बाद पूरे परिवार सहित आनंद लीजिएगा हरी हरी भरी भरी शिमला मिर्च का, और साथ ही साथ एक प्यारा सा चटपटा गीत भी सुन लीजिए। तो सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रेडियो मधुबन 90.4।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
1: आप सुन रहे हो आशियाना और आशियाना में आइए अब आपको देते हैं सामान्य जानकारी। डायबिटीज में करिए आप मशरूम का सेवन, मशरूम बहुत ही डायबिटीज में फायदेमंद है। तो चलिए इस बारे में आपको जानकारी देंगे कि किस तरह मशरूम फायदेमंद है। आमतौर पर डायबिटीज के रोगी के लिए भोजन में बहुत तेरे परहेज होते हैं, लेकिन अगर आपको मशरूम पसंद है ना, तो इसका सेवन आपकी सेहत के लिए और भी फायदेमंद होगा। हाल में एक शोध के दौरान इस बात का पता चला है कि मशरूम का डाइट में नियमित रूप से सेवन डायबिटिक रोगियों के लिए बहुत फायदेमंद है। हिमाचल प्रदेश एक अध्ययन के अनुसार पता चला है कि मशरूम का सेवन सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद है। इसमें न्यूट्रिशनल तत्व तो अधिक होते ही हैं, साथ ही इनमें शक्कर बिल्कुल नहीं होता है। डायबिटीज में इनका सेवन ब्लड शुगर को नियंत्रित करने में मददगार साबित होता है। एक अध्ययन के अनुसार ऐसा माना गया है कि मशरूम के फायदों पर कई तरह के शोध हो चुके हैं और अब ये बात प्रमाणित है कि मशरूम में कैंसर, HIV संक्रमण और कई गंभीर रोगों के उपचार के गुण मौजूद है। इतना ही नहीं, अगर आप वजन घटाने के लिए डाइटिंग और एक्सरसाइज को खास तवज्जो देते हैं, तो आपको डाइट में मशरूम का सेवन जरूर करना चाहिए। इसके सेवन से वजन कम करने में आसानी होती है। इन न्यूट्रिशनल तत्व तो होते ही हैं इसमें, ज्यादा होते हैं, साथ ही इनमें शक्कर बिल्कुल नहीं होता है। डायबिटीज में इनका सेवन ब्लड शुगर को नियंत्रित करने में मददगार साबित होता है, साथ ही यह स्वास्थ्यवर्धक भी है। तो इस तरह मशरूम बहुत ही फायदेमंद है डायबिटीज में। तो चलिए अब समय हो रहा है कल फिराम का, तो ले लेते हैं कल फिराम। सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए रेडियो मधुबन

0: आप जानते हैं, साइबर फ्रॉडस्टर्स फिशिंग ईमेल को इस तरह से डिजाइन करते हैं कि वे वास्तविक दिखते हैं, लेकिन अगर आप उन ईमेल में दिए गए लिंक पर क्लिक करते हैं तो स्कैमर्स धोखाधड़ी कर सकते हैं। कभी भी असत्यापित लिंक पर क्लिक ना करें।
1: प्यारे श्रोता बंधुओं, समय हो चला है आप सभी से विदा लेने का। तो आज के कार्यक्रम तो आपने सुने ही है, बहुत ही अच्छे आपको घरेलू नुस्खे भी दिए हैं पेचिस के बारे में कि किस तरह आप अपने पेचिस को समाप्त कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे उपाय सुनाए हैं। खुशनुमा जीवन में बहुत ही अच्छी बातें की है कि किस तरह हम भौतिक सुखों के पीछे भागते हुए मानसिक सुखों से दूर होते जा रहे हैं, अपनी सुख शांति छीनती जा रही है। फिर आपको नई नई व्यंजन में हरी हरी भरी भरी शिमला मिर्च भी सिखाई, तो बहुत ही अच्छी आपको सामान्य जानकारी भी दी है। चलिए अब मैं आपको जानने योग्य बात बता रही हूँ कि खाने की आदतों में सुधार से कम हो सकता है वजन। केवल कम खाकर और ज्यादा एक्सरसाइज करके मोटापा कम नहीं कर सकेंगे। दुनिया भर में यही सर्वमान्य चलन है और दिनों दिन बढ़ रहा है। इसके बावजूद लोग मोटे होते जा रहे हैं। विशेषज्ञों की सलाह है कि वजन कम करना खाने की आदतों से जुड़ा मामला है और इसे उसी स्तर पर नियंत्रित किया जा सकता है। उसकी वजह विविधता, स्वाद, संस्कार और खर्च भी। अब मैं आपको आज के अनमोल वाक्य सुना रही हूँ जिसको जरूर जीवन में धारण करेंगे। जीतने के लिए मन, त्यागने के लिए ईर्ष्या, परखने के लिए बुद्धि, संग्रह के लिए विद्या, रखने के लिए मान, सफलता के लिए मेहनत और करने के लिए सत्कर्म। तो इन अच्छे सुयोग्य वाक्यों को अगर हम अपने जीवन में उतारते हैं तो सचमुच हमारा जीवन खुशनुमा बनेगा। अब मैं आपको गृहस्थ गीता के कुछ महावाक्य भी सुनाऊंगी, तो आप लेंगे गृहस्थ गीता के महावाक्यों का आनंद और मुझे देंगे इजाजत। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए

सदैव प्रभु का वास है। ऋण हो ऐसा खर्च मत करो, ऋण हो ऐसा खर्च मत करो, पाप हो ऐसी कमाई मत करो, क्लेश हो ऐसा मत बोलो, क्लेश हो ऐसा मत बोलो, चिंता हो ऐसा जीवन मत जियो, चिंता हो ऐसा जीवन मत जियो, रोग हो ऐसा मत खाओ, रोग हो ऐसा मत खाओ, आतिथ्य ही घर का वैभव है, आतिथ्य ही घर का वैभव है।

भी साइबर फाइनेंशियल फ्रॉड में फंस जाना तो कॉल 1930 पर लगाना। ऑनलाइन होने वाले धोखाधड़ी और साइबर फ्रॉड से पीड़ित होने पर गृह मंत्रालय भारत सरकार की अधिकृत वेबसाइट www.cybercrime.gov.in पर अपनी शिकायत दर्ज कराएं।

0: भारत को आजादी दिलाने में सैकड़ों गुमनाम क्रांतिकारियों ने अपना बलिदान दिया है। उन्होंने ना अपने मौत की परवाह की, ना देश से निकाले जाने की, ना वो जेल जाने से डरे और ना ही संपत्ति जब्त होने से। कमाल की बात ये भी रही कि आजादी की ये लड़ाई भारत के साथ साथ विदेशों में भी समान रूप से लड़ी गई। श्यामजी कृष्ण वर्मा, वीर सावरकर, मैडम भिकाजी कामा, बैरिस्टर सरदार सिंह राणा, वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय, सरदार अजीत सिंह, लाला हरदयाल, रास बिहारी बोस, राजा महेंद्र प्रताप और चंपक रमन पिल्लई जैसे लोगों ने अपना बहुमूल्य योगदान दिया। वंदे मातरम वो स्वर था जिसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को आत्मा दी। ये गीत प्रत्येक भारतीय के भीतर ये भावना जगाता रहा कि हमारी धरती केवल भूमि नहीं बल्कि हमारी माँ है। माँ भारती, यानी जिनके चरणों की रज भी हमारे लिए पवित्र है। इस गीत की गूंज ने क्रांतिकारियों को अपना सर्वस्व न्योछावर करने की प्रेरणा दी। यही कारण है कि गीत को सुनते ही हर भारतीय के भीतर गर्व, उत्साह और समर्पण की लहर दौड़ जाती है। वंदे मातरम के स्वर ने भारत को एक शक्ति दी जिससे वो अपने स्वाभिमान, अपनी अस्मिता और आजादी के लिए एकजुट होकर संघर्ष कर सके। देशवासियों को विश्वास दिलाया कि भारत सिर्फ एक भौगोलिक इकाई नहीं बल्कि भावनाओं से जुड़ा हुआ एक जीवंत राष्ट्र है। कालांतर में ये गीत उस चेतना का प्रतीक बना जिसने जाति, भाषा और प्रांत की सीमाओं से परे जाकर सभी को एक ध्वज तले एकत्र किया।
1: दीदी, मैंने सुना है एक क्रांतिकारी ऐसे भी थे जो महज 25 साल की आयु में देश की खातिर फांसी पर झूल गए थे।
2: हाँ बन्नो, बिल्कुल ठीक सुना है तुमने। वे एक जोशीले देशभक्त थे जिनमें अदम्य साहस था। उन्होंने आजादी की लड़ाई में अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। कैसे भूल सकती हूं मैं वो तारीख, 17 अगस्त 1909, जब लंदन के पेंटन विले जेल में उस 25 वर्षीय क्रांतिकारी को फांसी दी गई थी। फांसी पर चढ़ने से पहले उनके अंतिम शब्द थे, वंदे मातरम। वे महान क्रांतिकारी और कोई नहीं, मदन लाल ढींगरा थे। उनके लिए वंदे मातरम सिर्फ एक नारा नहीं बल्कि राष्ट्रभक्ति का सर्वोच्च मंत्र था।
1: दीदी, आपने ये तो बताया नहीं कि उन्हें फांसी दी क्यों गई थी।
2: बन्नो, मदन लाल ढींगरा ने लंदन में कर्जन वाइली की हत्या कर दी थी।
0: दरअसल साल 1908 के उस दौर में हिंदुस्तान की धरती पर स्वतंत्रता की चिंगारी धधक रही थी। शूरवीर क्रांतिकारी अंग्रेजी हुकूमत को उखाड़ फेंकने का प्रण ले चुके थे। उसी दौर में मदन लाल ढींगरा ने एक बड़ा कारनामा कर दिखाया। उन्होंने खुलेआम अंग्रेज अफसर कर्जन वाइली को गोली मार दी ताकि ये संदेश दे सके कि भारतवासी अब गुलामी बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस घटना से पूरा ब्रिटिश साम्राज्य हिल गया और मदन लाल को सिर्फ 46 दिनों में फांसी पर चढ़ा दिया गया। मगर उनकी शहादत ने हिंदुस्तानी युवाओं के दिलों में आजादी की आग और भड़का दी।
1: मुझे एक बात बताओ दीदी, आखिर इतनी छोटी उम्र में मदन लाल के भीतर इतना देश प्रेम पनपा कैसे?
2: लोग बताते हैं कि वे शुरू से इतने देशभक्त नहीं थे, लेकिन लंदन में पढ़ाई के दौरान कुछ ऐसा हुआ कि उनकी राह बदल गई। लंबी कद काठी और हंसी ठिठोली करने वाले इस नौजवान को उनके जीवन का एक उद्देश्य मिल गया।
0: दरअसल मदन लाल का जन्म पंजाब के अमृतसर के एक संपन्न परिवार में हुआ था। पिता नेत्र चिकित्सक थे। पढ़ाई में काफी तेज होने के कारण मदन लाल का लंदन के यूनिवर्सिटी कॉलेज के सिविल इंजीनियरिंग में दाखिला हो गया। रहने की व्यवस्था इंडिया हाउस में हुई, वही इंडिया हाउस जिसे श्याम जी वर्मा ने साल 1905 में खरीदा था, जिसके एक हिस्से में यूथ हॉस्टल था और जहां देश की आजादी की योजनाएं बना करती थी। तमाम छोटे बड़े क्रांतिकारी वहां बैठक करते थे। बताते हैं कि 1907 में ग्रेट ब्रिटेन में करीब 700 भारतीय स्टूडेंट्स थे, जिनमें अकेले लंदन में 380 स्टूडेंट्स थे।
1: ओ, समझ गई, मदन लाल को देशभक्ति की प्रेरणा कहां से मिली? इंडिया हाउस में आने वाले क्रांतिकारियों से? ठीक सोच रही हो ना?
2: अरे जरा ठहरो, ये प्रेरणा से कुछ अधिक थी।
1: क्या कह रही हो दीदी, मेरे पल्ले नहीं पड़ रहा।
2: मदन लाल का आकर्षक व्यक्तित्व था। कम समय में ही वे इंडिया हाउस में युवक युवतियों के आकर्षण का केंद्र बन गए थे। उनके दोस्त बड़े शोर शराबे वाले थे, अक्सर प्रेम गीत गाया करते थे। उन दिनों मदन लाल के मन में मातृभूमि की आजादी का विचार खास तौर पर नहीं था। एक दिन इंडिया हाउस में रविवार की बैठक चल रही थी, उसमें वीर सावरकर भारत की आजादी पर एक जोशीला भाषण दे रहे थे। वहीं दूसरी ओर मदन लाल और उनके दोस्त बगल वाले कमरे में खूब शोर शराबा मचा रहे थे। इससे सावरकर को अपना भाषण बीच में ही रोकना पड़ा। वे बगल वाले कमरे में गए, जहां मदन लाल और उनके दोस्त मौज मस्ती कर रहे थे। सावरकर ने उन्हें टोका और एक तरह से डांटते हुए बोले,
3: क्या बात है मदन, तुम काम और बहादुरी की बातें तो करते हो, लेकिन हमारी साप्ताहिक बैठकों में आने से कतराते हो। क्या यही वह बहादुरी है जिसकी तुम हमेशा बातें करते रहते हो?
0: सावरकर के शब्दों ने मदन लाल ढींगरा को अंदर से हिला दिया। उन्हें बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। वो चुपचाप इंडिया हाउस से निकल गए। फिर कई दिनों तक सावरकर को अपना चेहरा नहीं दिखाया। समय गुजरा, उन्होंने हिम्मत जुटाई और दोबारा इंडिया हाउस लौटे। मन में कई विचार चल रहे थे।
4: मैं लौट तो आया हूं, लेकिन पता नहीं सावरकर जी अभी भी मुझसे नाराज हैं या नहीं।
0: मदन लाल अपने ख्यालों में खोए हुए थे कि अचानक उनका सावरकर से सामना होता है।
3: अरे ढिंगरा, कहां थे इतने दिनों से, दिखाई नहीं दिए। मैंने कुछ लोगों से पूछा भी, किसी ने कुछ बताया नहीं। सब ठीक तो है ना घर परिवार में? पढ़ाई कैसी चल रही है?
0: मदन लाल को उम्मीद नहीं थी कि सावरकर उनसे इतने स्नेह से बात करेंगे, मानो उनके बीच कुछ हुआ ही ना हो। इससे हिम्मत पाकर ढींगरा ने सावरकर से पूछा,
4: क्या शहादत का समय आ गया है?
3: अगर कोई शहीद अपना मन बना चुका हो और तैयार हो, तो आम तौर पर यही समझा जाता है कि शहादत का समय आ गया है।
0: ढींगरा ने अब मन बना लिया था। ये जुलाई 1908 की बात होगी। उन्होंने जानबूझकर नेशनल इंडियन एसोसिएशन में शामिल होने का फैसला किया। ये एसोसिएशन भारतीय छात्रों को उग्रवादी रास्ते से दूर रखने की कोशिश कर रहा था। इस एसोसिएशन के कार्यक्रमों में ब्रिटेन के कई बड़े बड़े लोग शामिल होते थे। ढींगरा ने उनकी मौजूदगी में सावरकर और दूसरे क्रांतिकारियों की बुराई की। जल्द ही उन्हें नेशनल इंडियन एसोसिएशन की सेक्रेटरी मिस एमा जोसेफिन बेक का भरोसा जीत लिया। इस प्रकार उन्हें अलग अलग कार्यक्रमों में आने वाले खास अंग्रेजी मेहमानों के आने जाने के समय के बारे में पता चलने लगा। ढींगरा ने अपना मिशन तय करने के बाद इंडिया हाउस छोड़ दिया। दरअसल उन्हें दिखाना था कि वो सावरकर से सहमति नहीं रखते। इस तरह साल 1909 में ईस्टर के बाद मदन लाल मिसेस हैरिस के घर रहने लगे।
1: दीदी, जब मदन लाल सावरकर से अलग सोच रखते थे तो उन्होंने अंग्रेज अफसर को गोली कैसे मारी?
2: यही तो उनका मिशन था। इसके लिए हमें जानना होगा कि आखिर कर्जन वाइली थे कौन।
0: कर्जन वाइली एक बहुत ऊंचे औहदे के अफसर थे जो 1866 में ब्रिटिश सेना और 1879 में भारतीय राजनीतिक विभाग में शामिल हुए थे। उन्होंने 1879 से 80 के अफगान युद्ध, अवध, नेपाल, मध्य भारत और सबसे बढ़कर राजपुताना में अपनी काबिलियत का लोहा मनवाया था। 1901 में उन्हें भारत के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का पॉलिटिकल एडी कैंप चुना गया था। वो गुप्त पुलिस के मुखिया भी थे। बताते हैं कि कर्जन सावरकर और क्रांतिकारियों के बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने इंडिया हाउस में एक मुखबिर भी लगा रखा था।
5: मुझे सावरकर और उसके सभी क्रांतिकारी साथियों की पूरी खबर चाहिए कि वो क्या योजना बना रहे हैं।
6: जी सर, आपको सारी इन्फॉर्मेशन समय पर मिल जाएगी।
5: तुम थोड़ा जल्दी काम करो, वो इंडियंस कुछ ना कुछ जरूर प्लान कर रहे होंगे।
6: मैं जल्द से जल्द बताता हूँ।
0: कर्जन निश्चिंत था कि उसके मुखबिर की खबर क्रांतिकारियों को नहीं है, लेकिन सावरकर से कहां कुछ छुपने वाला था। उन्हें भनक लग चुकी थी कि इंडिया हाउस में कोई गुप्तचर है।
3: हमें थोड़ा खबरदार रहना है, हमारे बीच में कोई है जो अंग्रेजों तक सारी सूचनाएं पहुंचा रहा है।
7: आप ये क्या कह रहे हैं, हमारे बीच में कोई गद्दार है?
8: कौन है वो गद्दार? आप नाम बताइए उसका, छोड़ेंगे नहीं उसको।
3: धीरज रखो, जल्द ही पता चल जाएगा सबको।
0: इंडिया हाउस में एक आक्रोश सा फैल गया था। हर कोई सोचने लगा था कि आखिर वो गुप्तचर है कौन। तरह तरह की बातें होने लगी थी, लेकिन वहाँ एक शख्स था जिसके चेहरे के हाव भाव कुछ बदल से गए थे। वो एक मेडिकल का स्टूडेंट था।
9: कहीं सावरकर जी को मेरे बारे में पता तो नहीं चल गया? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। पता चलता तो वो मुझे छोड़ते क्या?
0: अभी वो छात्र ये सब सोच ही रहा था कि उसे सावरकर ने आवाज लगाई। कीर्तिकर, जरा बैठना मेरे साथ। भाव विहीन होने की कोशिश करता हुआ कीर्तिकर सावरकर के पास पहुंचता है।
9: जी बताइए, क्या सेवा है मेरे लिए?
3: बहुत बड़ी, इतना कि तुम सोच भी नहीं सकते। क्यों कर रहे हो ये सब और किसके कहने पर कर रहे हो?
9: मैंने क्या किया? कुछ समझा नहीं मैं।
3: अब ज्यादा बनने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी पोल खुल चुकी है।
0: फिर क्या था, अपनी जान पर खतरा पैदा होता देख कीर्तिकर ने ब्रिटिश पुलिस के ऑपरेशंस के बारे में उसके पास मौजूद सारी जानकारी सावरकर को दे दी। उधर ढींगरा कर्जन वाइली से व्यक्तिगत रूप से परिचित थे। 13 अप्रैल 1909 को मदन लाल के पास वाइली का लिखा एक पत्र पहुंचा, जिसमें उन्होंने मिलने की बात कही थी। कहानी में यही एक जबरदस्त ट्विस्ट आया जब मदन लाल ढींगरा ने अपनी योजनाओं के बारे में सावरकर से चर्चा की। इसके पश्चात सावरकर ने ज्ञानचंद वर्मा को बुलाया और उनसे कहा,
3: आप लंदन छोड़कर न जाएं और इंपीरियल इंस्टीट्यूट में होने वाले कार्यक्रम में जरूर शामिल हो।
0: ढींगरा अपनी योजनाओं को अंतिम रूप देने लगे थे। उसी दौरान वो बिपिन चंद्र पाल के घर पर सावरकर से मिले। उस बैठक में निरंजन पाल भी मौजूद थे। मदन लाल काफी अच्छे मूड में थे। उन्होंने सावरकर से बड़े स्नेह के साथ बातचीत की।
3: आप ये बयान देख ले जो आपको कर्जन वाइली के हत्या करने के बाद देना होगा। निरंजन पाल ने इसे टाइप किया है।
4: ठीक है, मैं इसे याद कर लेता हूँ।
0: सावरकर ने मदन लाल को बेल्जियम में बनी एक ब्राउनिंग पिस्तौल भेंट की और बड़े स्नेह के साथ उनसे विदा ली। ढींगरा भावुक हो उठे। तब सावरकर ने कहा,
3: अगर इस बार तुम असफल रहे तो मुझे दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना।
4: आप निश्चिंत रहें, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा।
0: एक जुलाई को ढींगरा के सहेली मित्र सैंटियागो उनके आवास पर गए।
10: ढींगरा सामान्य बने रहे। इसके बाद वो गोरे गांवकर से मिलने गए जिन्हें उनके साथ इंपीरियल इंस्टीट्यूट जाना था। उन्होंने 108 लीडबरी स्ट्रीट स्थित अपने ही घर पर समय से पहले दोपहर का भोजन और शाम की चाय ली। दोपहर 2 बजे वो एक रिवॉल्वर लेकर अपने घर से निकले। उन्होंने चमड़े के खोल वाली एक बिल्कुल नई कटार खरीदी और उसे अपनी जेब में रख लिया। फिर वो फनलैंड गए और 18 फीट की दूरी से 12 राउंड गोलियां चलाई। इनमें से 11 गोलियां निशाने यानी बुलजाई के बिल्कुल करीब लगी। इसके बाद उन्होंने अपनी रिवॉल्वर साफ करवाई। शाम 7 बजे मदन लाल ने लाउंज सूट और नीली पंजाबी पगड़ी पहनी। उन्होंने अपनी कोल्ट रिवॉल्वर लोड की और उसे अपनी कोट की दाईं जेब में रख लिया। उन्होंने एक एक रिवॉल्वर कोट की दूसरी जेब और अपनी वेस्ट में भी रख ली। क्योंकि वो सावरकर द्वारा लिखा गया बयान याद नहीं कर पा रहे थे, इसलिए उन्होंने उसे पेंसिल से कागज की एक शीट पर लिख लिया। उन्होंने अपनी जेब में 10-12 शिलिंग भी रखी और कार्यक्रम के लिए निकल पड़े।
2: मेरी बन्नो, तुम सुन रही हो ना? हमारे क्रांतिकारी किस कदर योजनाबद्ध तरीके से अपने मिशन पर जुटे थे।
1: हाँ दीदी, मुझे तो डर भी लग रहा है ये सोच सोच कर कि आगे क्या होगा। पकड़े जाने पर ब्रिटिश पुलिस मदन लाल जी के साथ कैसा सलूक करेगी?
2: बन्नो, क्रांतिकारी अपनी जान हथेली पर लेकर चलते हैं। तुम डरो मत बन्नो, बस इतना याद रखना कि स्वतंत्रता के इन वीर सेनानियों ने कितना कुछ देश के लिए कुर्बान किया।
1: बिल्कुल याद रखूंगी दीदी, भरोसा रखो।
10: आखिर वो दिन आ ही गया, 1 जुलाई 1909। इंपीरियल इंस्टीट्यूट की पहली मंजिल पर स्थित जहांगीर हॉल में नेशनल इंडियन एसोसिएशन की बैठक चल रही थी, जिसमें कर्जन वाइली समेत कई प्रमुख ब्रिटिश नागरिक और भारतीय शामिल थे। असल में ये एक स्वागत समारोह था जिसे सर अल्फ्रेड लायल की पत्नी लेडी लायल के सम्मान में आयोजित किया गया था। मदन लाल इस एसोसिएशन के एसोसिएट सदस्य थे तो वो भी वहां पहुंचे, लेकिन अपना निमंत्रण पत्र लाना भूल गए। हालांकि विजिटर्स बुक में हस्ताक्षर करने के बाद उन्हें प्रवेश मिल गया। बैठक में कोरेगांवकर भी एक पिस्तौल लेकर पहुंचे थे। जैसे ही मीटिंग खत्म होने वाली थी, कर्जन वाइली वहां से निकलने की तैयारी करते दिखे, तभी कोरेगांवकर ने ढींगरा को उकसाया।
11: अजी जाओ ना, क्या कर रहे हो?
10: ढींगरा बात करने के बहाने कर्जन वाइली के पास पहुंचे। दोनों ने शीशे का दरवाजा खोला और हॉल से बाहर निकल गए। जैसे ही वो सीढ़ियों के चबूतरे पर पहुंचे, ढींगरा ने अपनी आवाज धीमी कर ली, मानो वो कोई गोपनीय बात करना चाहते हों। कर्जन वाइली को ढींगरा के करीब आना पड़ा। मौका भांपते ही ढींगरा ने अपने कोट की जेब से कोल्ट रिवॉल्वर निकाली और बिल्कुल करीब से पॉइंट ब्लैंक रेंज से 2 गोलियां दाग दी। तब रात के 11:20 बजे थे। कर्जन वाइली लड़खड़ाने लगे, तभी ढींगरा ने 2 और गोलियां उन पर दाग दी। वहां मौजूद एक पारसी डॉक्टर कावस लाल काका ने बीच बचाव करने की कोशिश की।
12: ये क्या किया? He is bleeding.
13: आप बीच में ना पड़े वरना।
10: मदन लाल ढींगरा ने उन पारसी डॉक्टर पर भी गोली चला दी। खुद को भी गोली मारने का प्रयास किया जो असफल रहा। आसपास के लोगों से हाथापाई होने लगी। ढींगरा ने एक को जमीन पर गिरा दिया जिससे उसकी पसलियां टूट गईं। लेकिन फिर किसी ने उन्हें जोर से पकड़ लिया और उनकी रिवॉल्वर छीन ली। हाथापाई में ढींगरा का चश्मा दूर जा गिरा था। उन्होंने शांत भाव से अपने पकड़ने वालों से कहा,
14: मेरा चश्मा दे दे।
10: घटना के पश्चात डॉक्टरों ने जब ढींगरा की नब्ज जांची तो वो हैरान रह गए। इतनी बड़ी वारदात के बाद भी उनकी नब्ज बिल्कुल सामान्य थी। गिरफ्तारी के बाद पुलिस अधिकारी ने ढिंगरा से पूछा,
5: क्या आप चाहते हैं कि हम आपके किसी दोस्त को आपकी गिरफ्तारी के बारे में सूचित करें?
13: इसकी कोई जरूरत नहीं है, उन्हें कल के अखबारों में मेरी गिरफ्तारी के बारे में पता चल ही जाएगा।
5: ये तो बड़ा सयाना है, मुंह नहीं खोलेगा।
1: आगे क्या हुआ गीत दीदी, क्या पुलिस ने उनसे मारपीट की?
2: असल में ढींगरा को एहसास था कि पुलिस उनके दोस्तों को भी इस मामले में फंसाने की कोशिश कर सकती है, इसलिए उन्होंने चतुराई से जवाब दिया। बाद में पुलिस उन्हें वॉल्टन स्ट्रीट पुलिस स्टेशन लेकर गई।
10: आप सभी को बता दें कि कर्जन वायली की हत्या करने से कुछ हफ्ते पहले मदन लाल ढींगरा ने लॉर्ड कर्जन को भी मारने की कोशिश की थी। वो सभी वायसरायों में से सबसे ज्यादा अहंकारी माने जाते थे, लेकिन किस्मत ने कर्जन को दो बार बचा लिया। इनके अलावा मदन लाल ने बंगाल के पूर्व गवर्नर ब्रैमफील्ड फुलर की हत्या की भी योजना बनाई थी। हालांकि वो उस मीटिंग में देर से पहुंचे जहां इन दोनों को मौजूद रहना था, इसलिए मदन लाल अपनी योजना को अंजाम नहीं दे पाए। ये सब होने के बाद ढींगरा ने कर्जन वायली को मारने का फैसला किया। सावरकर थोड़ा सशंकित थे कि पता नहीं इस बार ढींगरा सफल रहेंगे या नहीं। ये सिर्फ ढींगरा को ही मालूम था कि उन्हें हारना नहीं है। गिरफ्तारी के बाद का घटनाक्रम भी कम रोमांचकारी नहीं रहा। मामला अदालत में पहुंचा। वहां क्या क्या हुआ ये जानने के लिए आप श्रोताओं को करना पड़ेगा अगले एपिसोड का इंतजार। तब तक सुनते रहिए एक गीत एक नारा, राष्ट्रगीत हमारा, वंदे मातरम।

0: नमस्ते, राम राम और ओम शांति। मेरा नाम पवित्र मल्लिक और आप सुन रहे हैं प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का सामुदायिक रेडियो रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल यानी माय विलेज माय एरिया। सही में इस कार्यक्रम को लेकर जब गांव और अंचल में जाते हैं, सभी वर्ग से मिलते हैं, चाहे सरकारी स्कूल हो, चाहे प्राइवेट स्कूल हो, चाहे आंगनबाड़ी हो, चाहे मनरेगा हो, चाहे प्रशासन गांव के संघ हो, चाहे स्वास्थ्य विभाग हो, सभी वर्ग से मिलते हैं। तो आज हमें खुशी है ईश्वरीय विश्वविद्यालय आबुराज और श्री राजेश्वर विद्या मंदिर रेबदर का आवाज़ को आज बारी बारी सुनने को मिलेगा। सभी प्रस्तुतियां ध्यान से सुने, बच्चों को उमंग उत्साह दिलाए। बच्चे सच्चे होते हैं और बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं, क्योंकि इस तरह मौका कभी कभी मिलता है। तो आज जब मौका मिला है तो उसका फायदा ले रहे हैं और इसका श्रेय तो संस्था के संस्था प्रधान, सभी शिक्षकगण और खासकर माता पिता को भी जाता है। बच्चों को इस तरह उमंग उत्साह से आगे बढ़ाते हैं। तो पहला प्रस्तुति के लिए हमारा साथ इस कार्यक्रम को सजाएंगे हिमांशु, सुंदर रूप में प्रस्तुत करेंगे। हमें आशा है इस तरह भाव और भावना को लेकर एक प्रस्तुति सुनाने के लिए तैयार है। ओके, रेडी है तो आप सब सुन पा रहे रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल का प्रस्तुति। और पहला प्रस्तुति सुनते हैं हिमांशु से।
1: मेरा नाम हिमांशु चौधरी है, मैं कक्षा 8 में पढ़ता हूँ। मेरे स्कूल का नाम श्री राजेश्वर विद्या मंदिर है, मैं सिलवाड़ा से आता हूँ। एक

0: 的。
1: बहुत खूब बहुत खूब सुंदर प्रस्तुति के लिए और हम सबको विदित है श्री कृष्ण को कौन भूल पाएगा। कन्हैया कहे चाहे मुरारी कहे चाहे राधा कृष्ण कहे, वो तो गिरिधारी गोपाल है, सबको प्रिय लगते हैं श्री कृष्ण, तो उनको सभी प्यार से कान्हा कहते हैं, मुरारी कहते हैं, मुरलीधर कहते हैं। तो इस तरह प्रस्तुति दिए हैं हमारा हिमांशु, धन्यवाद देते हुए लेते हैं एक ब्रेक। ब्रेक के बाद पुनः मिलेंगे और बच्चे उपस्थित है तो उनसे भी कुछ दिल का भावना संगीत के रूप में, गायन के रूप में, वक्रता के रूप में सुनेंगे। लेकिन अल्प विराम के बाद सुनते रहे कार्यक्रम मेरा गाँव मेरा अंचल।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
1: चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अगला प्रस्तुति के लिए हनी, अनीता और सभी दोस्त लोग भी उपस्थित हैं। सभी अपना अपना नाम बताएंगे और कौन सा क्लास और कौन सा स्कूल में पढ़ते हैं वो भी बताएंगे, क्योंकि इससे पता चलेगा हमारा बच्चियां कहां से आते हैं और कौन सा क्लास में और कौन सा विद्यालय में पढ़ते हैं। तो देर किस बात की, सुनते हैं उनसे उनका परिचय का साथ साथ एक।
2: मेरा नाम हनी है, मैं राजेश्वर विद्या मंदिर रेवदर में पढ़ती हूँ, मैं क्लास 8 में पढ़ती हूँ, मैं रेवदर से आती हूँ।
3: मेरा नाम अनीता कुमारी है, मेरे विद्यालय का नाम श्री राजेश्वर विद्या मंदिर रेवदर है, मेरा गांव धान है, मैं क्लास 8 बी में पढ़ती
4: हूँ। मेरा नाम वर्षिता कुमारी है, मेरे स्कूल का नाम श्री राजेश्वर विद्या मंदिर रेवदर है, मैं क्लास 8 में पढ़ती हूँ।
5: मेरा नाम चितना कुमारी है, मेरे विद्यालय का नाम श्री राजेश्वर विद्या मंदिर रेवदर है।
6: मेरा नाम रंजना है, मेरे विद्यालय का नाम श्री राजेश्वर विद्या मंदिर स्कूल रेवदर है और मैं क्लास 8 बी में पढ़ती हूँ।
7: मेरा नाम रिद्धि कुमारी है, मैं स्कूल का नाम श्री राजेश्वर विद्या मंदिर है, मैं क्लास 8 बी में पढ़ती हूँ।
8: मेरा नाम सविता कुमारी है, मैं क्लास 8 बी में पढ़ती हूँ, मेरा स्कूल का नाम है श्री राजेश्वर विद्या मंदिर रेवदर।
9: मेरा नाम नेहा कुमारी है, मैं कक्षा 8 बी में पढ़ती हूँ, मेरे स्कूल का नाम श्री राजेश्वर विद्या मंदिर रेवदर है, मेरा गाँव का नाम देरोल है।

0: देना।
1: आत्मा और परमात्मा का जो संगीत है, दोनों का जब मिलन है, परमात्मा से हमें सब कुछ मिलता है, आत्मा भरपूर हो जाता है, आत्मा में खुशी, आनंद, ज्ञान, प्रेम, शक्ति भर जाता है, जिसका चलते परमात्मा का ये देन है। तो परमात्मा को कभी भूल नहीं पाते हैं। इस कार्यक्रम को सुंदर रूप में बच्चे सजाए, तो धन्यवाद सभी को। नाम का साथ लेते हैं छोटा सा ब्रेक।

0: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
1: कृपया चलती गाड़ी में चढ़ने का प्रयास ना करें, यह जानलेवा हो सकता है। रेल के डिब्बों की छत पर बैठकर यात्रा ना करें, क्योंकि ओवरहेड वायर्स में 25,000 वोल्ट का करंट है। इनके संपर्क में आने से आपकी जान को खतरा हो सकता है।
0: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: चलिए बहुत कुछ सुन लिए, अभी और एक प्रस्तुति छोटी सी बच्ची आई है तो अपना बात को रखेंगे। और समय का चक्र में सभी बंधा हुआ है और समय को कौन भूल पाएगा, समय तो परिवर्तन करा देता है, समय को सलाम देते हैं, वक्त को कौन उलाना देगा, क्योंकि वक्त समय पर अपना पाठ बखूबी से निभाता है। चाहे इस सीख भरी स्पीच में कुछ सीखने का योग्य है, समय का महत्व का बारे में, समय बलवान कहते हैं, समय अनुसार सभी को झुकना पड़ता है और समय को सभी सलाम करते हैं, समय बलवान इसलिए कहते हैं। चलिए समय घड़ी जो काल है वो काल को हम हमेशा याद रखना चाहिए और जो कुछ होता है उसमें हमें भरपूर होकर राजी खुशी होकर उसको सलाम करते हुए उसको सम्मान देते हुए राजी रहना चाहिए, तब जाकर हम खुशी रह पाएंगे। चाहे इसके माध्यम से कुछ सीख भरी प्रेरणा भरी दो शब्द सुनाएगी, रेडी? ओके।
1: खेलकूद की उम्र में कर्तव्य मेरे अनेक थे छुड़वाना था, मेरे माता पिता को कई वर्षों से कहते थे, धर्म के चलते कर्म से वो वृंदावन भी छोड़ दिया, मथुरा की उन गलियों से भी ना दामन मोड़ लिया, वृंदावन के साथ साथ किस्मत भी मेरी रूठ गई, हाँ प्राणों ने भी प्रिय वो मेरी राधा रानी छूट गई, बांसुरी को भी त्याग दिया, सब छोड़ छाड़ के दूर गया, सुदर्शन धारण करके कान्हा धुन मुरली की भूल गया, समय का चक्र अजीब था मैं जीत के भी हार गया, कर्म बचाने वाले को दुनिया ने कपटी बता दिया।

0: तुम जीते जिंदगी चैन से, मुझे मौत चैन की ना मिली मानव के इस रूप में। जाने मैंने क्या क्या देखा, अपने वंश का पतन देखा, बर्बरीक का मस्तक देखा, माँ द्रौपदी का चीरहरण, अभिमन्यु का अकाल मरण, कुरुक्षेत्र की भूमि में भारी भरकम विध्वंस देखा।
1: बहुत सुंदर, प्रेरणादायी और मोटिवेशनल, जैसे आपने कुछ सीखने योग्य है और इसमें सब कुछ आ गया है, चाहे रामायण हो, चाहे महाभारत हो, चाहे प्रेजेंट सिचुएशन हो, सभी सिचुएशन को पार करते हुए हमें भी सिचुएशन को, परिस्थिति को देखते हुए स्वस्थिति में रहेंगे, तब जाकर खुशी से जिंदगी पार कर पाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर प्रस्तुति के लिए। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, आप सब सुन पा रहे हैं, खासकर श्री राजेश्वर विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय रेबदर का आवाज़ सुनते रहिए। मुस्कुराते रहे कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: ओए रुक रुक।
1: हाँ कहिए।
0: और जी कहना सुनना आपकी शादी में कर लेंगे, फिलहाल तो ये बताइए कि आपकी बेल्ट कहाँ है?
1: है तो ये देखिए।
0: ओए कमर की नहीं, मैं सीट बेल्ट की बात कर रहा हूँ। हवलदार कड़क से मजाक मत करो, बहुत महंगा पड़ेगा। हाँ और उससे ज्यादा महंगा पड़ेगा ये बिना सीट बेल्ट की गाड़ी का चलान। ओए जल्दी ऊपर जाने का बहुत शौक है, है?

0: पुनः मिल रहे हैं और खासकर बच्चों का आवाज़ आपका पास हम रख रहे हैं, आप सब सुन पा रहे हैं श्री राजेश्वर विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय रेबदर का आवाज़ बारी बारी आपका पास हम पहुंचा रहे हैं और आप ध्यान से सुन रहे हैं, बच्चों को उमंग उत्साह दे रहे हैं और बच्चे भी इस तरह कार्यक्रम में जब भाग लेते हैं सभी को खुशी मिलता है। तो और एक प्रस्तुति जो कि मारवाड़ी में एक संगीत सुनने को मिलेगा, तो लीजिए।
1: सतगुरु दर्शन देता जय जो जी, सतगुरु मिलता जय जो जी, मार पीवरी आरी बाता तोड़ी मन के ताजी जो जी, सोने जेड़ी पीले पड़ गई दुनिया बतावे रो, सोने जेड़ी पीले पड़ गई दुनिया बतावे रो, रोग टोक मारे कई नी लागे, रोग टोक मारे कई नी लागे, गुरु मिलन साजो ओ दर्शन देता जय जो जी, सतगुरु मिलता जय जो जी, मारे पीवरी आरी वाता थोड़ी मन के ता जय जो जी, मारे देसरा लोग बलाए पेरे कंठी माला, मारे देसरा लोग बलाए पेरे कंठी माला, मारे लागे भाई भतीजा, मारे लागे भाई भतीजा, राणा जी रा साला ओ दर्शन देता जय जो जी, सतगुरु मिलता जय जो जी, मारे पीवरी आरी बाता थोड़ी मन केता जय जो जी।
0: बहुत बहुत धन्यवाद इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए और एक प्रस्तुति देने के लिए तैयार है, रेडी? तो और कुछ बच्चे रेडी है तो उनको भी स्वागत करते हैं इस कड़ी में ही। तो बच्चे सुनाइए क्या प्रस्तुत करना चाहते हैं। ओके, शुरू हो जाइए।
2: मन करे सो प्राण ले, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है, विश्व की पुकार है, ये भागवत का सार है, कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो, जो लड़ सका है वो ही तो महान है। जीत की है वश नहीं, किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे वार दो, आन बान शान आज, जान का हो दान आज।

0: आज जान बाहु दान आज एक धनुष के बाण पे उतार लो। आरंभ है प्रचंड, आरंभ है प्रचंड, बोले मस्तकों की झुंड आज जंग की घड़ी में तुम हार लो। आन बान शान आज जान गाहु दान आज एक धनुष के बाण पे उतार लो। आरंभ है प्रचंड।
1: बहुत बहुत धन्यवाद। दोनों प्रस्तुतियां बच्चों ने सुंदर रूप में प्रस्तुतिकरण किए हैं, तो इसके लिए रेडियो मधुबन परिवार की ओर से अशेष अशेष धन्यवाद। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद और एक प्रस्तुति के लिए रेडी है बच्चे, तो अल्प विराम का बाद सुनेंगे। सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल, रेडियो मधुबन 107.8 FM पर।

नमस्ते कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए इस कड़ी में और एक प्रस्तुति के लिए लेकर आए हैं बच्चे, तो सभी बच्चों को स्वागत करते हैं। और कौन कहते हैं भाई भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, लेकिन प्यार ममता और शुद्धता से जब पुकारेंगे वो जरूर आएंगे। चाहे अदृश्य है लेकिन हमारा बुद्धि से हम उसको देख सकते हैं, लेकिन उसके लिए चाहिए स्नेह प्यार और अपना ममता होना चाहिए। तो लेते हैं एक भक्ति भरा संगीत

बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर प्रस्तुति के लिए, भक्ति में ओत प्रेत करा दिए, और हम प्यार से जब भगवान को बुलाएंगे तो जरूर हाजिर होगा, क्योंकि हजूर हाजिर होता है तब जब हम प्यार से स्नेह से दिल से और यथार्थ रूप में जब याद करते हैं वो हजूर हाजिर होते हैं हमारे लिए, और हमारे लिए तो सब कुछ दे देते हैं परमात्मा ने। तो भगवान को, ईश्वर को, अल्लाह को, खुदा को कौन भूलेगा, इसलिए हमेशा उनको याद करना चाहिए, चाहे किस भी नाम से पुकारे, लेकिन वो हमारा तो परमात्मा है, सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है, परम सद्गुरु है, परम पिता है, परम शिक्षक है। तो लेते हैं छोटा सा ब्रेक।

0: चलिए छोटा सा प्रस्तुति के लिए चाहे एक अंतरा हो एक मुखड़ा हो, क्यों बच्चों को एक मंच मिलता है और जिस मंच का माध्यम से अपना भाव को भावना को दिल का उद्गार को सब तक पहुंचाता है। तो छोटा सा प्रस्तुति के लिए उपस्थित है किरण, तो उनको स्वागत करते हैं। किरण ओके रेडी शुरू हो जाइए।
1: मेरा नाम किरण चौधरी है, मेरा विद्यालय का नाम श्री राजेश्वर विद्या मंदिर रेवदर है, मैं कक्षा 8 में पढ़ता हूँ, मैं दादरला से आता हूँ। माए तेरे लिए मर मिटेंगे, तेरे बेटे ना पीछे हटेंगे, जब तुझ पे आँच आए हमें तू पुकार लेना, बलिदान का बहाना हमें बार बार देना, ये तो जानवान है तेरे सामने क्या है, कोई शूरवीर ही प्राण त्याग देता है। माँ से है माटी, माँ से है माथा, माथे पे माटी सजा के चले, माए चलती रहे तेरे खौफ हवाए, लहरा के झूमे तिरंगा, आजाद रहेगा बाद रहे तू, तारों को झूमे तिरंगा।
0: बहुत बहुत धन्यवाद। देशभक्ति में ओत प्रेत होकर अपना जज्बा दिखा रहे हैं और तिरंगा का नाम को ऊंचा कर रहे हैं और भारत महान है, जिस भारत में हम पले बड़े रहते हैं और यहाँ तक पहुँचे और भारत को और जन्मभूमि को कभी नहीं भूल पाएंगे। भारत माता कहते हैं और जन्मभूमि कहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं सुंदर प्रस्तुति के लिए। चलिए इस कड़ी को ही आगे बढ़ाते हुए और एक प्रस्तुति लेकर हमारा नेहा और अनिता उपस्थित है, तो उन सभी को स्वागत करते हैं। इस कड़ी में ही अपना बात को हृदय का

0: अंदर से जो चल रहा है उसको प्रकट करने के लिए एक मौका मिल रहा है, तो आज रेडियो कार्यक्रम में सजाएंगे। ठीक है बच्चे, सभी नाम का साथ अपना प्रस्तुति शुरू करिए।
1: मेरा नाम नेहा कुमारी है, मैं स्कूल का नाम श्री राजस्व विद्या मंदिर रेवदर है, मैं क्लास 8B में पढ़ती हूँ।
2: मेरा नाम सविता कुमारी है, मेरा स्कूल का नाम श्री राजस्व विद्या मंदिर है, मेरा क्लास का नाम 8B है।
3: मेरा नाम अनीता कुमारी है, मेरे स्कूल का नाम श्री राजेश्वर विद्या मंदिर रेवदर है, मेरी क्लास 8B।

0: हवे न्यारा।
1: बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। नाम का साथ चाहे किरण हो, चाहे नेहा, सविता और अनीता, सभी दोस्त लोग भी धन्यवाद देते हैं। सभी मिलकर अपना कार्यक्रम को सजाए और श्री राजेश्वर विद्या मंदिर रेबदर का आवाज़ को बुलंद करके अपना बात को रख पा रहे हैं। इसका श्रेय तो राजेश्वर विद्या मंदिर को जाता है और माता पिता को और खुद को भी जाता है। सभी ने इस कार्यक्रम को सजाए। तो लेते हैं छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद पुनः मिलेंगे। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: चलिए ब्रेक के बाद पुनः मिल रहे हैं और अच्छा अच्छा गीत सुन रहे हैं रेडियो मधुबन की तरफ से, और बच्चों का भी गीत आप सब सुन पा रहे हैं, उनका भाव और भावना को कितना सुंदर रूप में गा रहे हैं, और एक दूसरे को देखते हुए बच्चे सीख जाते हैं और भाग भी लेते हैं। तो इस कड़ी को और चार चांद लगाने के लिए हमारा साथ नीलेश कुमार है, तो उनको स्वागत करते हैं और अपना बात को रखेंगे, कविता का माध्यम से हो, चाहे गीत का माध्यम से हो, चाहे संगीत का माध्यम से हो। चलिए एक प्रस्तुति लेंगे, किस तरह वो प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं तो ध्यान से सुनिए। ठीक है नीलेश, ओके शुरू करिए।
1: मेरा नाम नीलेश कुमार है, मैं 10वीं क्लास में पढ़ता हूँ। मैं इस विद्यालय में श्री राजेश्वर विद्या मंदिर देवधर में पढ़ता हूँ। मैं आपके सामने राजस्थानी भजन प्रस्तुत करना चाहता हूँ।

गर्भ में, कुटुंब कभी लो गर्भ में, गर्भ कियो मन माय, अंश के लो जासी ने कोई न संग में जा।

0: धन्यवाद,
1: बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर प्रस्तुति के लिए। और वंस मोर और एक प्रस्तुति के लिए हाथ उठा रहे, और हमारा जो पार्टिसिपेंट्स वो भी कहते हैं सर उनसे और एक गीत गाने के लिए बोलिए। तो चलिए सबका रिक्वेस्ट से और एक गीत सुनाएगा, है ना नीलेश? चलिए शुरू करिए अगला प्रस्तुति।
0: तू तो काली ने कल्याणी मोरी माँ, जाजो ऊंचा जोग माया। तू तो काली ने कल्याणी मोरी माँ, जा

0: तूने सत्य की राह दिखाई रे माँ, जा जो ऊंचा जो कमाया, तू तो काली ने कल्याणी मोरी माँ, जा जो ऊंचा जो कमाया, तू तो हरिचंद के मन समाई रे माँ, तू तो हरिचंद के मन समाई रे माँ, जा जो ऊंचा जो कमाया, तू तो काली ने कल्याणी मोरी माँ, जा जो ऊंचा जो कमाया।
1: क्या खूब सही में सभी श्रोताओं की तरफ से भी आपको धन्यवाद देते हैं, और हमारा जो आपको उमंग उत्साह दे रहे हैं बच्चे पीछे से भी जो रिकॉर्डिंग में ऑडिशन दे रहे हैं वो भी खुश हो रहे हैं क्योंकि सुंदर रूप में प्रस्तुति किए। तो आज के लिए हमें दीजिए इजाज़त, फिर कल मिलेंगे इसी वक्त इसी समय और किसी बात को लेकर। यह था खासकर आज मंडर रेबदर का आवाज़ आपका पास रख रहे हैं, क्योंकि रेबदर तहसील में रेबदर जो श्री राजेश्वर विद्या मंदिर का आवाज़ आपका पास हम रख रहे हैं, बहुत खुशी लग रहा है। तो क्यों खुशी नहीं लगेगा, सभी ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया आज नाम का साथ, सभी को धन्यवाद देते हैं सुंदर प्रस्तुतियों के लिए। तो आज के लिए हमें दीजिए इजाज़त, फिर कल मिलेंगे इसी वक्त इसी समय और किसी बात को लेकर। सुनते रहिए मुस्कुराते रहे कार्यक्रम मेरा गाँव मेरा अंचल रेडियो मधुबन 107.8 FM पर, खास कर रेबदर तहसील के श्री राजेश्वर विद्या मंदिर का आवाज़।

मेरे सतगुरु प्यारे दाउपकार बड़ा सोना है, मेरे सतगुरु।

मन बड़ा सोना है मेरे सतगुरु प्यारे दा, दरबार बड़ा सोना है एक दर

0: एक रोज।
1: अभी बजे हैं रात के 1, याद दिलाइए स्वयं को, मेरा तो परमपिता परमात्मा एक।

0: रेडियो मधुबन 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप। कार्यक्रम है मधुबन अनप्लग्ड। मधुबन अनप्लग्ड यानी कि संगीत का वो सफर, यानी कि शेर व शायरी, क्रिएटिविटी और पंक्तियों का सफर। जी हाँ, जब एक गाना बनता है तो शब्द मोतियों की तरह पिरोए जाते हैं, बातें वही होती हैं, लेकिन कहने का अंदाज इतना अलग होता है कि वो दिल में घर कर जाते हैं। और ऐसी ही कुछ बातें, ऐसी ही कुछ पंक्तियां, ऐसी ही कुछ लाइंस आज आपको मिलेंगी कार्यक्रम मधुबन अनप्लग्ड में। और इसको और खूबसूरत बनाने के लिए आज हमारे समक्ष है एक ऐसी अतिथि, एक ऐसी हस्ती जिन्होंने लेखन जगत में अपना नाम ही नहीं कमाया बल्कि ऐसा कंट्रीब्यूशन दिया जो प्रेरणा का स्रोत है। जी हाँ, हमारे समक्ष है डॉक्टर अलका अग्रवाल सिकतिया जी, जिन्होंने बीएससी की, फिर अंग्रेजी में भी उन्होंने पढ़ाई करी, हिंदी साहित्य में गोल्ड मेडलिस्ट रही, पीएचडी की उपाधि भी उन्होंने प्राप्त की। उनका शोध रहा हरिशंकर परसाई पर, लघु शोध और प्रबंधन शोध उन्होंने किया। कई प्रकाशन उनके नाम हैं, वैसे तो हम कुछ के नाम आपको जरूर लेकर सुनाते हैं। मुर्दे इतिहास नहीं लिखते, अदृश्य, मेरी तेरी, सबकी, मीरा कोल, व्यंग संग्रह है ये। कई पत्र पत्रिकाएं भी उनकी प्रकाशित हुई और इसके साथ साथ उन्होंने लेखन क्षेत्र में बहुत कंट्रीब्यूशन दिया है। उनको कई पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया है, चाहे वो गोदरेज कंज्यूमर फिल्म फेस्टिवल सम्मान हो, दुष्यंत सम्मान हो, रचनाकार आयोग द्वारा बिस्मिल्ला खां पुरस्कार हो, ऐसे कई अवार्ड भी उन्हें प्राप्त है। वैसे तो उनके करियर की लंबी व्याख्या है, लेकिन चलिए पहले उनका स्वागत करते हैं और उनके बारे में और जाने का आज अवसर हमें मिलेगा। आपका बहुत बहुत हृदय से स्वागत है अलका जी।
1: जी बहुत बहुत आभार, और ये मेरे लिए हार्दिक प्रसन्नता का विषय है कि आज ब्रह्मा कुमारी के रेडियो मधुबन में मुझे ये अवसर मिला है। और बचपन से हम सुनते आए हैं और मैं 90s में एक बार यहाँ पर आई भी थी।
0: अच्छा।
1: और उस समय बहुत से, हम जो मनुष्य होते हैं, जिज्ञासा तो हमारे भीतर होती है।
0: बिल्कुल।
1: तो बहुत से जिज्ञासाएं थी, तो मैं लगातार प्रश्न पूछती जा रही थी क्योंकि उस समय छोटी भी थी थोड़ी सी। तो वो जो दीदी थे तो उन्होंने कहा कि बहुत अच्छी बात है कि आपके भीतर इतनी जिज्ञासा है, आप कहाँ रहती? मैंने बताया मुंबई, बॉम्बे, तब तो बॉम्बे था
0: जी।
1: तो उन्होंने कहा कि हमारे सेंटर पर जाइएगा, और कुछ ऐसा होता है ना कि हम छोटी छोटी सी बातों को लेकर कई बार परेशान भी हो जाते हैं, तो वो कुछ कोइंसिडेंस ऐसा हुआ कि जिज्ञासा और परेशानी दोनों थी, और मुझे पता नहीं क्यों मैं, मेरे कदम उठ गए आपके जो मलाड में सेंटर है वहाँ उठ गए।
0: ओके।
1: और वहाँ पर फिर मुझे बहुत से प्रश्नों का उत्तर भी मिला और मेरे मन की परेशानियों का समाधान भी हुआ था। तो मैं लगातार कई बार गई, लेकिन फिर बहुत सी बातें होती कि अगर आपने परिवार चुना है तो कुछ प्रायोरिटीज हो जाती हैं कि वी कांट गो अगेंस्ट दैट। तो ठीक है, मतलब फिर मैं गई नहीं, लेकिन हाँ, मैं जो आपके सिस्टर बीके शिवानी जी हैं, उनको तो सुनना किसको अच्छा नहीं लगता
0: जी, जी।
1: तो बहुत बार जब हम कहीं अटकते हैं ना, तो हम जब उन सुनने लगते हैं तो हमको बहुत से प्रश्नों का समाधान मिल जाता है
0: जी।
1: और अभी शिव बाबा ने, पता नहीं उनकी क्या मंशा है, मुझे नहीं मालूम है, फिर से उन्होंने बुलाया, और यहाँ पर भी जो आपका आर्ट एंड कल्चर का आप ये जो 3 दिन का पूरा कॉन्फ्रेंस होता है, राष्ट्रीय सम्मेलन, तो उसमें क्योंकि विषय इतना अच्छा था, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर आपको समाज को बचाना है, देश को बचाना है और विश्व को बचाना है, तो परिवार को बचाना सबसे अधिक आवश्यक है।
0: बिल्कुल।
1: तो जो विषय था, और मेरा विषय था संस्कृति, संस्कार और परिवार के मूल्यों के संवर्धन की कला, तो ये बहुत आवश्यक है कि जैसे मुझे ये लगता है कि हम अपनी संस्कृति से दूर जा रहे हैं और जो दूसरे देश के लोग हैं वो हमारी संस्कृति की ओर आ रहे हैं।
0: आ रहे हैं।
1: तो खैर, ये तो मैंने बताया कि स्पीकर यहाँ आई थी, लेकिन आज आप सबसे रूबरू होने का मौका मिल रहा है और मेरी आवाज आप तक पहुँच रही है, तो उसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ।
0: वैसे तो बहुत सारे प्रश्न है मेरे मन में, लेकिन मैंने आपकी बहुत सुंदर प्रोफाइल जो पढ़ी उसमें आप ये भी लिखा था कि आप फाउंडर हैं क्रिएटिव राइटिंग की।
1: सॉरी,
0: आप फाउंडर हैं क्रिएटिव राइटिंग।
1: जी जी, हाँ।
0: जी, तो अगर उसके बारे में कुछ बताएं।
1: जी जरूर। क्रिएटिव राइटिंग, देखिए क्या होता है, जो लेखक होता है ना, नजर और नजरिए का फर्क होता है। अब सामने ये पेड़ दिख रहा है मुझे, है ना, मैं भी देख रही हूँ, कोई और भी देख रहा है, किसी को सिर्फ लगेगा कि उसमें पत्तियां हैं, लेकिन एक जो लेखक होता है उसमें अलग दृष्टिकोण से देखता है। एक अलग पर्सपेक्टिव से देखता है. तो बहुत से लोग कोविड में खास तौर पर बहुत, क्योंकि कोविड में लोग अपने आप को एक्सप्लोर कर रहे थे, अंतर यात्रा कर रहे थे. और कई लोग जब बहुत परेशान थे तो कई लोगों ने हमसे संपर्क किया
2: जी.
1: मेरे साथ में दिनेश शाकुल जी हैं जो चंद्रगुप्त बनते थे चाणक्य सीरियल में और काफी बहुत अच्छे एक्टर हैं और बहुत नॉलेजेबल हैं
2: जी.
1: तो कई लोगों ने हमसे कहा कि लिखा कैसे जाता है, हम लिख तो रहे हैं. तो फिर हमने क्रिएटिव राइटिंग का जो है वो शुरुआत करी.
2: ओके.
1: और उसमें हमने कहा कि जो कविता क्या होती है, कविता में अलग अलग भाव होते हैं, नाद होता है और उसमें किस तरह से आप उसको लिखते हैं. तो फिर हमने ये काफी सारी पूरा सिलेबस बनाया था. पांच मॉड्यूल्स थे, उसके पांच मॉड्यूल्स में हमने वो सिलेबस बनाया था.
2: अच्छा.
1: और उसमें हम उनको वो पूरी क्लासेस लेते थे और उसके बाद उनको हम होमवर्क देते थे. तो कई लोगों ने उसमें बहुत अच्छी कविताएं लिखना सीखा. और क्योंकि मैं महिला काव्य मंच है, अंतर्राष्ट्रीय है, जिसके फाउंडर है नरेश नाथ जी, तो उन्होंने मुझे महाराष्ट्र मकाम का अध्यक्ष बनाया. तो उसमें बहुत सी महिलाएं जुड़ी. और उसमें आरुषि जी क्या है कि मन से मंच तक.
2: अच्छा.
1: है ना
2: जी.
1: तो ये जो आपने कहा क्रिएटिव राइटिंग और मन से मंच तक, तो मन में बहुत से लोगों के भाव होते हैं ना. आप अनुभूति को जब अभिव्यक्ति में ढाल देते हैं, उसको उतार देते हैं कागज के कैनवास पर, तो वो कविता, कहानी, गजल कुछ भी बन जाती है
2: जी.
1: तो इसी तरीके से जब बहुत सी महिलाएं आई जिनको लिखना नहीं आता था और वो केवल कुछ भी या तो किसी की पढ़ देती थी, फिर हमने उनको थोड़ा सा और गाइड किया. तो इस तरह से जो क्रिएशन, क्योंकि देखिए कलाकार तो क्रिएशन करता है.
2: बिल्कुल.
1: और यहाँ पर एक चीज मैंने बड़ी अच्छी सुनी कि कलाकार यानी जो कल को आकार देता है.
2: क्या बात है.
1: तो मुझे बहुत अच्छा लगा. तो हम ये नहीं कहते कि हम सचमुच पूरा कल को आकार दे सकते हैं, एक चेतना जरूर पैदा कर सकते हैं. तो एक क्रिएटिव राइटिंग के क्रिएशन कैसे था, राइटिंग तो है लेकिन क्रिएशन क्रिएटिव कैसी हो, रचनात्मकता कैसे आए उसमें, तो ये जो है हमने पूरा मॉड्यूल बनाए हैं और उसको लेकर के हमने पूरी कविता के ऊपर क्रिएटिव राइटिंग की. इसी तरह से कहानी पर भी हम मॉड्यूल बना रहे थे लेकिन किसी कारण से छूट गया. क्योंकि मैं कहती हूँ कहानी एक घटना से नहीं होती. जैसे जब हम छोटे थे, मैं बहुत छोटी उम्र से लिख रही, पहले तो मैं बता दूं 6-7 साल के लिए जब से मैंने कुछ लिखना शुरू कर दिया था. उसके रीजंस भी हैं, अगर आप पूछेंगे तो मैं बता दूंगी.
2: बिल्कुल.
1: तो खैर
2: जानना चाहेंगे.
1: तो क्या होता है ना कि जैसे मैंने एक घटना कहीं देखी, दूसरी घटना कहीं देखी, तीसरी घटना कहीं देखी, तो हम जब सबको सिंक्रोनाइज करते हैं, क्योंकि जो रचनात्मकता होती है, रचनात्मक लेखन, क्रिएटिव राइटिंग होती है, वो रिपोर्टिंग नहीं होती है.
2: बिल्कुल.
1: उसमें आप यथार्थ के साथ में कल्पना का भी उसमें सम्मिश्रण रहता है.
2: बिल्कुल.
1: तो ये जो होता है, ये तो क्रिएटिव राइटिंग इज अ वेरी वास्ट फील्ड और उसमें ये वाली बात है. और एक बात बहुत आवश्यक है कि क्रिएटिव राइटिंग कोई मशीनी तो वो होती नहीं. उसमें आपको भावनाओं में जब तक पगी नहीं हो ना, तो उसमें वो बात नहीं आ पाती है. तो मुझे लगता है कि हर जो रचनाकार है उसके अंदर भावनाएं तो होनी चाहिए और वो अपने दुख के साथ दूसरे के दुख को भी उसी तरह से अनुभव कर सके,
2: संवेदनशील
1: कर सके. बिल्कुल. तो क्योंकि दुनिया तो बहुत बड़ी है और जिंदगी हमारे आसपास बिखरी पड़ी है, तो उस जिंदगी को जब आप रचनात्मकता में ढालते हैं, वो क्रिएटिव राइटिंग.
2: क्या बात है. कितनी सुंदर डेफिनेशन दी है आपने.
1: थैंक यू.
2: आपने फिल्मों के लिए लिखा है, आप रेडियो की बात करें या फिर कविताओं की बात करें, आर्टिकल्स की बात करें, कहानी, मतलब बहुत बहुत कुछ लिखा है आपने. आपके कई पुस्तकें भी प्रकाशित हुई हैं. कुछ एक किसी प्रकाशन के बारे में आप जरूर बताएं. जैसे मान लीजिए ये मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग टाइटल लगा, मुर्दे इतिहास नहीं लिखते, तो इसके पीछे का क्या कहानी है, ये कैसे लिखा या क्या, उसके बारे में कुछ
1: मैं बताती हूँ. एक तो आपने रेडियो की बात की, उस पर फिर मैं मुर्दे पे आऊंगी. तो रेडियो लेखन के लिए मैं आपको बताऊं कि क्योंकि जैसे मैं बॉम्बे से हूँ, तो एक बार किसी ने कहा कि बम्बई के में संयुक्त परिवारों पर आप कुछ एक लिखो.
2: अच्छा.
1: तो मुझे किसी ने चैलेंज किया कि आपको बॉम्बे में संयुक्त परिवार मिलने वाले ही नहीं है. लेकिन बोलते हैं ना, जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ, और मुझे तो करना था. आप मानेंगे नहीं आरुषि, जब मैं जब ढूंढने लग गई, 13 परिवार की जगह मुझे इतने परिवार मिलते चले गए. और वो मैं आज भी गूज़बम्स आते हैं मुझे जब मैं वो अनुभव शेयर करती हूँ. तो जिनके भी परिवार में गई, तो क्या होता है ना कि जैसे एक जगह अगर जब इकट्ठा होता जाता है पानी तो सड़ने लगता है, इसी तरह से ना परिवारों में भी कई कई बार कुछ भावनाओं में एक दूसरे से क्लैशेस होने लगते हैं. तो लेकिन जब मैं उनसे मिली, और एक परिवार अंधेरी का मैं आपको बताती हूँ, दुबे परिवार था, तो वहाँ बड़े भाई भाभी ने ही उनके पूरे मतलब छोटे भाई बहनों को बड़ा किया था और बहुत अच्छे से सारा कुछ उनका किया था. तो जब हमने ये किया, तो वो लोग लिटरली रोने लग गए और मुझे गले लगा लिया और उनने कहा कि जैसे एक विरेचन होता है ना जिसको कैथासिस कहते हैं, एरिस्टोटल ने जो दिया था कि उनने कहा हमारे अंदर की सारी जो गलत भावनाएं आने लगी थी वो सब खत्म हो गई। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि इस तरीके से एक हमने जो काम किया, तो रेडियो लेखन में ये एक अनुभव मेरा बहुत अच्छा रहा। और ये रापा सीरियल अवार्ड होता है, रापा यानी जो टेलीविजन और दूरदर्शन में जो बेस्ट होता है, तो उसको बेस्ट रापा सीरियल अवार्ड भी मिला था।
2: क्या बात है
1: जी,
2: क्या बात।
1: अब आपने मुझसे मुर्दे इतिहास नहीं लिखते, तो आपको जैसे शीर्षक बहुत अच्छा लगा, तो दरअसल ये एक मेरे एक दोस्त हैं, तो वो पहले फिल्मों में एक्टिंग करते थे, वो बिहार में कहीं रहते हैं। तो क्या हुआ था कि मेरी एक कहानी पढ़ के उन्होंने मुझसे कॉन्टेक्ट किया कि मुझे बहुत अपनी अपनी सी वो कहानी लगी और बहुत मैं कनेक्ट हुआ हूँ उससे, तो फिर उनसे बातचीत होने लग गई। तो जो क्योंकि बॉम्बे में तो बॉलीवुड और बॉम्बे की लाइफ, तो बॉम्बे या तो मतलब ऐसे कहते गरीब से गरीब को भी भूखा नहीं सुलाता, अमीर से अमीर को भी। तो बॉम्बे एक ऐसी मिस्ट्री है कि जिसको हर कोई हल करना भी चाहता है, जिसमें जाकर फंस भी जाता है। तो ये हुआ कि वो रवि नाम है उनका, तो उनसे मेरी फिर अच्छी बातचीत होने लग गई। और वो फिल्मों में सीरियल्स में सब स्ट्रगल कर रहे थे, फिल्मों में स्ट्रगल बहुत ज्यादा है, बन गए तो बन गए, नहीं तो बहुत खत्म भी हो जाते। खैर तो वो जो बताते थे, फिर उनकी कविता थी मुर्दे इतिहास नहीं लिखते, और तो इस तरीके से तो वो फिर बाद में उनसे ही, क्योंकि उनकी लाइफ थी तो वो स्ट्रगल करते हुए दो दोस्तों की कहानी है। फिर अंत में ये होता है कि जो दो दोस्त हैं, मतलब एक दोस्त दूसरे दोस्त को संभालता है, फिर दूसरा दोस्त जब परेशान होता है तो ये संभालता है, लेकिन कुछ सिचुएशंस ऐसी होती है कि वो कुछ ऐसा समझौता करने के लिए तैयार हो जाता है और रूम से चला जाता है। उस समय पेजर हुआ करते थे जब मैंने ये कहानी लिखी थी, तो पेजर पर ये कबीर जो है पहला वाला दोस्त, वो आदित्य को मैसेज करता है कि मुर्दे इतिहास नहीं लिखते, इतिहास वो लिखते हैं जो धारा के विरुद्ध चलकर अपना रास्ता खुद बनाते हैं। तो अब मैं ये शीर्षक कैसे है, देखिए कई लोग कहते हैं मुर्दे, मतलब तुम्हारे शीर्षक मुझे समझ नहीं आए, जो समझ सकते हैं जैसे आपको अच्छा लगा। अब आप मुझे बताइए कि जो जीते जी मर जाएगा वो तो मुर्दा हो गया ना, और जीते जी जिसके अंदर जिजीविषा है, एक संघर्ष की कामना है, तो वो कभी मुर्दा नहीं हो सकता।
2: बिल्कुल,
1: इतिहास उनका ही लिखा जा सकता है,
2: और हार नहीं मानता
1: है ना, उसका इतिहास तो कभी नहीं लिखा जाएगा। तो ये बात है, और यही मैं अपने जिंदगी में भी कहती हूँ कि हार कभी मत मानो, है ना, जैसे वो है ना कि हार के आगे जीत है, तो यही वाली बात है कि अपने आप को हारने नहीं दो। खास करके यहाँ आने के बाद इस डिवाइन में कि मतलब जब हम अपने आप से संवाद करते हैं, परमात्मा से खुद को जोड़ते हैं और अपने असत्य को पहचानते हैं, तो हमको लगता है कि नहीं हार तो कहीं है ही नहीं। तो कुछ इसी तरीके से कि इतिहास आप लिख सकते हैं, आप अपने जीवन में अपने आप को एक हमेशा कर्मठ बना के रखिए।
2: जी बिल्कुल, ये जब कभी कभी बहुत बड़ी मुश्किलें आती हैं तो उसको जीवित रखना बहुत जरूरी होता है, जो हमारे अंदर की आग है, जो हमारे अंदर की भावनाएं हैं। मैं एक और प्रश्न आपसे जरूर पूछना चाहूंगी यहाँ पे, क्योंकि आप कई, आपने उपन्यास भी लिखे, कई कहानी संग्रह हैं, तो कहानियां लिखने के लिए अगर मान लीजिए कोई इंटरेस्टेड है, कोई युवा है जो इस क्षेत्र में जाना चाहते हैं, तो अगर आप कुछ टिप्स दें, कुछ ऐसी बातें जो मदद करें, जैसा आपने कहा ना अनुभूति को अभिव्यक्ति मिलाने के लिए, आपकी ओर से कुछ ऐसे,
1: मतलब आपका प्रश्न है कि कौन सी बातें कहानी लिखने में मदद कर।
2: जी जी जी,
1: हमारा जो मैका है वो कटनी एमपी में है, और वहाँ एक फार्म हाउस है हमारा। तो मेरे पापा जो थे उन्होंने पूरी अपना सारा एकदम रात से लाइफ छोड़ के, उनको फार्मिंग बहुत पसंद आई, तो वो हम मतलब 400 एकड़ जमीन थी, बंगला था, तो हम लोग वहाँ रहते थे। तो वहाँ जो गांव की लड़कियां आया करती थी उनसे हमारी दोस्ती हो जाती थी, और वो लड़कियों को देख करके ना मेरे जहन मतलब वो अंकित होती चली गई। उस समय तो मैं बहुत छोटी थी, लेकिन फिर धीरे धीरे क्योंकि मैंने छोटी उम्र में कहानी भी लिखनी शुरू कर दी थी, तो वो कहीं ना कहीं मतलब जैसे एक शिवरात्रि नाम की लड़की थी, हाँ उसका नाम ही शिवरात्रि था, और आज भी मुझे वो वैसे की वैसे याद है, एकदम लंबी छरहरी सांवले रंग की, बड़ी बड़ी आंखें, तो वो कहीं ना कहीं मेरे जहन में अंकित हो गई, है ना। इसी तरह से हमारे यहाँ पर एक गाल बाबा थे, तो उनकी बेटी का नाम था अमसा, था अमसा। अब आप बोलेंगे अमसा कोई नाम होता है ना, है ना। अब वो उसका रीजन क्या था कि मेरी दीदी ने उनकी बेटी का नाम रखा था अंशा।
2: अच्छा।
1: अब अंशा तो वो नहीं बोल सकते थे तो अमसा बोलते थे, तो एक करेक्टर मेरी अमसा बनी, एक करेक्टर मेरी शिवरतिया बनी, और फिर उनकी कहानी दूसरों कहीं से आए, जैसे मैंने बताया आपको कि कटनी की हूँ मैं, तो कटनी में ना चूने के भट्टे बहुत होते हैं, तो चूने के भट्टों में जो लोग काम करते हैं, तो क्या होता है कि वहाँ उनको टीबी बहुत हो जाती है, तो वो जो सारी जो चीजें थी वो, उसके बाद में रेलवे लाइन पर जैसे गरीब लोग हैं वो कोयले बिन रहे हैं, कोयले के जो वैन निकलती ना कोयले गिरते हैं, तो वो कोयले बिनते बिनते ट्रेन से कट जाते हैं, कई बार उनको नहीं पता चलता था। तो ये जो मेरा जो एकदम मासूम सा मन था, ये बहुत मुझे परेशान करती थी ये चीजें, और वो फिर सब मेरी कहानी में ना, मतलब एक चीज वहां में जैसे बताया ना, एक घटना ये, एक घटना वो, तो ये जैसे कि जो मतलब मेरी कहानी में अमसा जो है वो गांव से शहर आती है, फिर वो इस तरह से उसकी और वो अमसा से मिलती है ये जो राइटर है, और वो चूने भट्टे के वहां जाती है, तो वो बोलती है कि दीदी हम ना कक्का भाई, क्योंकि मैं वहां की तो मुझे भाषा भी आती, दीदी हम कब ना चूने के भट्टे में काम करीबे। तो वो फिर वो बोलती, लेकिन जब दूसरी बार जाती तो देखती है कि वो अमसा खांस रही है बुरी तरीके से, तो वो बोलती कि तुमको क्या हो गया, तब वो कहती कि दीदी हम कहे थे ना कि हम अम्मा वाला काम कभी ना करेंगे, लेकिन हमारे घर में खाने को नहीं बचा, दद्दा भूखे मर रहे हैं, दीदी भूखी मर रही, तो क्या करें, काम तो करवे को पड़ा थे। तो वो सारी जो चीजें थी, तो वो मतलब वो मैंने वो भाषा वहां की, क्योंकि बचपन में उनके बीच में जाते थे। तो ये ना जो लेखक होता है ना वो बहुत ज्यादा ग्रहणशील होता है, और उसका ऑब्जर्वेशन बहुत शार्प होता है, और संवेदनाएं कहीं, और उस पर जो संवेदनाएं होती है ना, तो कहते ना जैसे कि हीरे पॉलिश कर दिया है, तराशती है संवेदनाएं, इस तरह से कहानियां हमारी बनती हैं। जैसे आपसे ही मैं बात कर रही हूँ, अब आपकी स्माइल पर ही मैं कुछ कविता लिख दूंगी तो ये तो देखिए क्या होता है कि नजर की बात है,
2: नजर नजरिया जो आपने कहा,
1: बिल्कुल हाँ।
2: जैसा आपने कहा था कि आपने बहुत कम उम्र में ही लिखना शुरू कर दिया था, तो क्या ऐसी कहानियां थी जिन्होंने आपको इंस्पायर किया, या फिर क्या कोई ऐसा क्षण था जिसने आपको इंस्पायर किया, या कहां से लिखने की शुरुआत इतनी कम उम्र में कैसे हो?
1: क्या हुआ था ऋषि जी कि बचपन में मतलब मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ था, अक्सर मैं साक्षात्कार में ये बात तो आती कि लोग पूछते हैं कि लिखना कैसे शुरू किया, क्या किसी ने, जैसे आपने पूछा क्या किसी ने इंस्पायर किया या कोई ऐसा क्षण आया, तो मेरे जीवन में एक बहुत बड़ी घटना घट गई थी। तो मतलब हम लोग पांच बहन थे, और मैंने अपना बहुत, दीदी लोगों ने मेरा नाम जल्दी लिखा दिया था, तो मैं, मम्मी पापा फार्म हाउस में रहते थे, तो मैं दीदी लोग के साथ यहाँ रहती थी, और मैं बहुत छोटी सी थी, तो मेरी दीदी जो थी सबसे बड़ी वो खुद 18 साल की थी जब उनकी शादी हुई थी, और वो मेरे लिए माँ समान थी कि मम्मी फार्म हाउस पे रहते थे मम्मी पापा। तो उसके बाद मतलब उन्होंने ही मुझे डांस वगैरह, हम लोग का पिक्चर हॉल हुआ करता था तो डांस वगैरह करती थी, तो उनने कहा कि इसको डांस सिखाया जाएगा, तब तो लिखने जैसा कुछ सोचा भी नहीं था, मैंने नहीं सोचा ही नहीं था, मतलब 5-6 साल की बच्ची क्या सोचेगी ना उस वक्त। तो मैं क्या करती थी, पिक्चर हॉल से आती थी, फिर वो लैट लगा के फिर गा के अंदर, तो बोले करती क्या अंदर ये, तो दीदी लोग ने देखा तो इसको डांस सिखाया जाएगा, और वो ही गा के सिखाते थे मुझे, क्योंकि क्लासेस नहीं थी, कथक बेस है लेकिन मेरे डांस का। तो खैर फिर वो दीदी की शादी बहुत जल्दी हो गई, 19वें साल के पहले ही, मतलब कहते हैं डाउरी डेथ थी उनकी, तो वो मेरे लिए बहुत शॉकिंग था, मतलब आज भी कई बार आंसू आ जाते हैं उनकी बात करते हुए मेरे आंखों में। तो उनसे जो छोटी दीदी थी उन्होंने कहा कि तुम्हारे मन में जो आता है ना याद करके लिखा करो, और डांस, शशि दीदी नाम था शशि, तो उनने कहा कि शशि को मतलब उनका मन था कि तुम डांस करो, तो मेरी जो प्रभा दीदी वगैरह थी उन्होंने मुझे लगा था डांस, तो मतलब मैंने कई सारे डांस में भी अवार्ड, सर्वश्रेष्ठ बाल कलाकार बहुत सारे जीते हुए हैं, ये सरस्वती माँ की कृपा है जो उन्होंने मुझे कला दे करके भेजा। और मैं कहती हूँ लिखना मेरे लिए सांस लेने जैसा, अब बोलती हूँ क्योंकि तब तो मालूम नहीं था मुझे। तो मैं जो भी मन में कुछ भी आता था पेंसिल से लिखती जाती थी उसको, फिर धीरे धीरे टीन एज की जब हुई तब तक मैं कहानियां लिखने लगी थी जी। तो उस टाइम्स ऑफ इंडिया का एक पब्लिकेशन था सारिका, धर्मयुग अगर आपने सुना होगा, सारिका, ये दोनों टाइम्स ऑफ इंडिया पब्लिकेशन हुआ करते थे। तो सारिका में मेरी पहली कहानी छपी नवांकुर विशेषांक में। उसके बाद तमाम जगहों से पत्र आने लग गए और बात और मंगाई जाने लग गई कहानियां, और मतलब उस समय मुझे अब तो सेलिब्रिटी बन गई, इतने सारे लेटर्स के बीच में छोटी सी अलका बैठी हुई पत्र पढ़ रही है सारे। खैर फिर वो एक सिलसिला शुरू हो गया आकाशवाणी जबलपुर और फिर तमाम जगह, फिर बॉम्बे भी गई, तो मेरे साथ में अच्छा ये हुआ क्योंकि मेरे पति वैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं लेकिन वो मेरे लेखन को बहुत पसंद करते रहे हमेशा से, तो उन्होंने कहा कि तुम लिखना बंद मत करो। और मुझे कुछ वहां पर जनसत्ता में सब रंग उनका आता था, तो शादी के बाद भी मेरा लेखन कभी ना रुका नहीं। तो यही वाली बात है कि आप दुख से या तो अपने आप को बना लीजिए या दुख में अपने आप को खत्म कर दीजिए, तो दुख ने मुझे बनाया है। जी इस तरह में लिखने लग गई, शब्दों में ढाल दिया अपने दुख को मैंने।
3: ये जो सेंटेंस है जी, दुख से या तो अपने आप को बना लीजिए या खत्म कर दीजिए, यही से वो जो आपका जो पहला टाइटल है शायद वो सिद्ध हो जाता है कि मुर्दे इतिहास नहीं लिखते। इतिहास वो लिखते हैं जैसे आप जैसे लोग जो जिन्होंने दुख से अपने आप को बना लिया। मुझे लगता है लाखों लोगों को दुख से निकालने के निमित्त बन गए
1: जी।
3: क्या इसके लिए फिर आपको ऐसा कुछ लगा कि हाँ मुझे और ट्रेनिंग करनी है या और कहानियों को समझना है? किसको मतलब आप पढ़ते किनको थे या कौन आपको बहुत पसंद, कौन किसका लेखन आपको बहुत पसंद था?
1: जैसे चित्रा मुद्गल जी का बहुत अच्छा लगता है मुझे। मधु कांकरिया इस समय जो है हमारे समय की, मतलब हम हमारे से बड़ी पीढ़ी की है, लेकिन मधु कांकरिया जी बहुत अच्छा लिखती है। उसके अलावा जैसे कि हरिशंकर परसाई जी को तो मैं खैर एक तरह से उनके लेखन को जीती हूँ। ज्ञान रंजन जी भी मुझे बेटी जैसे ही मानते थे और मेरा एक सौभाग्य रहा है कि मुझे इन सब से मिलने का मौका मिला है। मुक्ति बोध को मैंने पढ़ा है, अज्ञेय को मैंने पढ़ा है, तो कई बार जैसे बाबा नागार्जुन की कुछ कविताएं बहुत अच्छी लगती हैं। इसी तरह से अमरकांत मुझे बहुत पसंद थे, उनकी जिंदगी और जो क्या बहुत सारी। तो मतलब मैं ये नहीं बोल सकती कि मुझे एक कोई साहित्यकार पसंद है। कभी किसी की कुछ चीज अच्छी लगती है, कभी किसी की कोई चीज बहुत अच्छी लगती है। तो और आपको ना वो रास्ता जैसे बशीर बद्र उनकी आप शायरी सुनेंगे कि आप सुने कि हम बचपन में थे ना तो वो रखते थे उजाले अपनी यादों के, हमारे साथ रहने दो न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। और बहुत सारे है कि मतलब उनकी मतलब बार बार हम उनके बहुत सारे शेर हमें याद आते हैं। तो जो भी अच्छा मिलता है, और कई बार ये भी होता है आरुषि जी कि बहुत नाम नहीं होता है किसी का, लेकिन अचानक आप उठा के पढ़ते हैं तो अरे इतने ये लिख दिया, ये मैंने क्यों नहीं लिखा, तो ये होता है। और जैसे कि कई बार ये होता है कि जैसे ना जैसे अगर आप बोलेंगी तो मैं अपनी एक आध आपको रचना भी सुना दूंगी।
2: जी मैं एक्चुअली वो पूछने ही वाली थी कि कुछ पंक्तियां अगर आप सुनाएं अपने लेखन की हमें भी तो हमें बहुत अच्छा लगेगा।
1: तो पहले तो मैं बताती हूँ कि ना बताया जैसे मतलब हमेशा मुझे मेरे हस्बैंड कहते हैं और मैं ना मैंने मुझे लगता है कि आपका भी मुझे लग रहा है आपके अंदर का भी बच्चा हमेशा जिंदा रखती है आप। तो अपने भीतर के बच्चे को हमेशा जिंदा रखना चाहिए। तो मेरे पति हमेशा कहते हैं मेरे मम्मी पापा ने तुमको बड़ा करके नहीं भेजा। तो मैं कहती थी कि कहते हैं वो कि हम बड़े नहीं हुए, कहते हैं वो कि हम बड़े नहीं हुए, बड़े होना मतलब झूठ बोलो शान से मक्कार हो जाओ। क्या करें इस परिभाषा पे हम खरे नहीं हुए तो कहते हैं वो कि हम बड़े नहीं हुए।
2: वाह वाह वाह।
1: तो क्या हुआ कि मेरी बेटी अब तो बड़ी हो गई है, तो जब वो 5 साल की थी ना तो एक बार मेरे साथ जा रही थी। अच्छा वो वैसे मम्मा बोलती है लेकिन जब वो बहुत उसमें प्यार में होती है तो माँ बोलती है मुझे। और मुझे बहुत मतलब तो मैं लगती हूँ कि ना और सचमुच मुझे लगता है कि जो रिश्ते आपको जो खुशी देते हैं ना वो कहीं नहीं मिलती है। और मैं आपको 2 कविताएं इसलिए सुनाऊंगी कि आपने अगर परिवार चुना है तो पहले मैं वो सुनाती हूँ फिर मैं अपनी बेटी पे।
2: प्लीज प्लीज जरूर जरूर
1: जी। तो क्या सपने बन गए बोनसाई, कहते हैं कुछ लोग कि स्त्री जब बनती है माँ करती जाती है अपने सपनों को छोटा छोटा बहुत छोटा, मारती जाती है अपने सपनों को खुद बेमौत या हो जाते हैं उसके सपने बौने, बन जाते हैं क्या बोनसाई, बन जाते हैं बोनसाई। सोच का बवंडर उठा अभी तर उसके, क्या ये सच उसका भी है, क्या ये सच उसका भी है, हो जाने दिया है उसने अपने सपनों को बौना, बना दिया हरे भरे वृक्ष से बोनसाई। विचार मंथन चल पड़ा अंतस में, अगर ऐसा होता तो मिट चुका होता कब का वजूद उसका, उसने टटोला खुद के वजूद को महसूस किया, अरे वो तो वहाँ है मतलब उसका वजूद तो वहाँ है, बड़ा अजीब है व्यक्तित्व उसका, एक कोस्त्री विमर्श की बातें तमाम पर झेलती है यातनाएं भी तो क्या छद्म है उसकी बौद्धिकता, लेखन में विरोध के स्वर है मात्र दिखावा, तर्कों की मथानी से फिर मंथन वो करती है तब सांसारिक सच की सोच नवनीत से उतरती है, पत्नीत्व और मातृत्व का चुनाव उसका ही तो है, तो फिर शायद जायज है समझौते भी, यातना सहते हुए भी खुद को खुश रख पाती है, अपने वजूद से पहचानी जाती है, यानी नहीं होने दिया उसने अपने सपनों को बौना, जिजीविषा के पानी महत्वाकांक्षा की खाद और आत्मसम्मान की धूप से बचाया है उसने अपने सपनों को बोनसाई बनने से। तो अब मेरी बेटी मेरे साथ जा रही थी, एक बार 5 साल की थी तब, वो तो ऐसे आंख बंद करके एकदम बैठी थी, मैं उसको देख रही थी, अचानक उसने मुझे जो बोला तब ये कविता निकली, क्या बोला था इसमें आएगा। सुबह की सुहानी बयार सी है वो, अल सुबह की शीतल ओस सी है वो, उसे देखकर लगता है ऐसे भर ली हो भोर की भीनी खुशबू भीतर जैसे। उसका मीठा बोसा लगता है यूं सहला गया ठंडी हवा का झोंका जूं। चूमती जब मासूमियत से आंखों को मेरी, कितना नाजुक पिघलता सा है वो एहसास। उस रोज सुबह सुबह संग मेरे वो निकली नन्ही परी ने आंखें बंद कर ली अपनी, खो गई एक प्यारी सी दुनिया में। एंजल सी चमकती चेहरे पे उसके, अपनी छोटी छोटी बाहों का घेरा मेरे गले में डाल आंखों में सितारे भर कर कहा उसने, माँ माँ माँ मुझे सुबह बहुत अच्छी लगती है। अनहद नाच सब बज उठा अंतस में मेरे, मंदिर में बज गई हूँ घंटियां जैसे। कैसे महसूस कर पाती है मेरी नन्ही सी कली सुबह की पावन खूबसूरती, कितनी मधुर है ये अनुभूति। बड़े प्यार से फिर वो मुझसे सटी, सिर्फ सी पलकें बंद कर अपनी, झर झर झर झर झर झरते झरने सी आवाज में कहा उसने, सुबह कितनी अच्छी लगती है ना माँ, है ना माँ सुबह कितनी अच्छी लगती है ना। खिल उठी भीतर मेरे खुशियों की बीथियां, कितनी प्यारी होती हैं बेटियां आगोश में अपने भर कर। पेशानी उसकी चूम कर कहा मैंने, बेटी मेरी मुझे तो तू खुद सुबह सी लगती है, तू खुद सुबह सी लगती है।
2: क्या बात है। मतलब सच में ये जो आपने पंक्तियां कही हैं, हर माँ सुनेगी तो अपनी बेटी को, अगर वो उनसे थोड़ा सा भी दूर है तो मुझे लगता है वो उनके करीबी पल वो उनकी आंखों के सामने वैसे तो रहते ही हैं, लेकिन वो आंखों में आंसू बन के बह जाएंगे। इतने खूबसूरत हैं ये पंक्तियां। आपकी बेटी क्या कहती है जब वो आपकी कविता सुनती है?
1: मेरी बेटी अभी मतलब बेटा भी है मेरा, वो अभी जॉब कर रहा है और बेटी अभी लॉ कर रही है और फोर्थ ईयर में है। और अभी मैं आपको बताऊं कि पता नहीं मतलब कई बार हमको लगता है कि शायद पता नहीं वो उतना प्यार करती है, लेकिन अभी इधर में भोपाल में किसी कार्यक्रम से गई थी, यहाँ पर हूँ मैं 26 तारीख से, तो वो मुझे बहुत मिस कर रही है, तो रोज फोन करती है। तो मुझे लग रहा है कि काश मैं जल्दी चली जाती। खैर तो वो ना लॉ कर रही है। अच्छा एक बात अच्छी है कि वो इंग्लिश में बहुत अच्छा लिखती है, मुझसे अच्छा। बेहतर लिखती है और वो बहुत कम शब्दों में बहुत अच्छी बात कर लेती है। तो मैं कहती हूँ कि उसका नाम, वैसे हम लोग घर में मिष्टी बोलते हैं, वैसे उसका नाम शरण्या है।
2: अच्छा।
1: तो कई बार ना वो जब छोटी भी थी ना, तो जैसे मैं उसको लोरी सुनाया करती थी, तो वो मुझे अपनी गोद में सुला करके वैसे लोरी गाती थी। तो मैं कहती थी कि बेटी माँ बन जाती है, तो मतलब ये होता है। तो अभी भी ना कई बार मम्मा ऐसे नहीं करना, मम्मा वैसे करना है, तो मैं कई बार मुझे लगता है, और मैं भी उसको बोलने देती हूँ क्योंकि मुझे भी लगता है कि हाँ वो मेरी माँ बन करके मुझे उस तरीके से वो कर रही है। तो बड़ी प्यारी सी नाजुक सी है और अच्छा लिखती है और लॉ कर रही है, और उसका शुरू से ना बहुत ये मन था कि मैं इसमें रहूँ, मतलब जो जासूसी जो सीरियल होते थे, हाँ, इस तरह के जो होते थे वो देखा करती थी, तो उसको उसमें मतलब बहुत इंटरेस्ट आता था, तो उस तरीके से वो अब वो लॉ कर रही है।
2: क्या बात है। अच्छा इसीलिए उन्होंने वो प्रोफेशन बनाया उसको, और समाज की मदद के लिए जैसे वो एक उसको इंटरेस्ट को भी उन्होंने उसको इस्तेमाल किया। क्या बात है। तो वो क्या करते हैं, तो जब आपके घर वाले आपकी कविताएं सुनते हैं तो क्या आपको फीडबैक देते हैं, कैसा लिखा है ये कहते हैं, या क्या महसूस हुआ, कैसा मतलब पहले सबसे पहले जब आप लिखते हैं तो किसको सुनाते हैं आप?
1: आपको बताऊं, मैं सबसे पहले अपने पति को सुनाती हूँ।
2: अच्छा,
1: ठीक है
2: जी।
1: वो मेरे सबसे बड़े क्रिटिक हैं और वो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, लेकिन मैंने देखा कि साहित्य की समझ उनके बहुत अच्छी है, और मैं ना बहुत जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी अभी जैसे बोल के बता रही हूँ आपको, मैं बहुत जल्दी जल्दी बोला कर
2: जी।
1: तो मुझे कहते हैं कि थोड़ा ना थम थम के
2: आराम
1: से, है ना। तो उन्होंने मुझे एक तो ये सिखाया, दूसरा वो कहते थे कि तुम्हारा जो फोर्टे है वो तुम्हारी भावनाएं संवेदनाएं हैं, तो तुम अपने किसी के बोलने से ना उसको बदलो नहीं। और वो कई बार मुझे कहते नहीं ये चीज ऐसे अच्छी नहीं लग रही है, तो वो मैं उनको बताती हूँ। अच्छा कई बार ये भी होता था कि मैं अपने कुछ दोस्तों को भी बता देती थी, तो पता चलता था थोड़े दिन में मेरी चीज उनके नाम से आने लग गई। ये बहुत होता है आरुषि जी। मेरी तो आपको बताऊँ ये कविता है जो बहुत ज्यादा फेमस हुई है, द्रौपदी तुम्हें उठाने होंगे शस्त्र, तुम्हें ही बनना होगा सशक्त, नहीं आएंगे अब कोई कृष्ण, उसको चुरा के लोगों ने कर लिया, सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो अपना आएंगे गोविंद। ये मैंने लिखी थी कविता।
2: अच्छा उसमें तो शब्द बदल के किसी
1: बदल के, और ये मतलब एक मिनिस्टर है, नाम नहीं ले रही मैं यहाँ रेडियो पे, एक मिनिस्टर है, उन्होंने फिर एक और तो तमाम उसको बहुत सारे राजनेताओं ने उसको कोट किया। तो मेरा बेटा मुझे बोलता है कि मम्मा आप लिखते हो, आप इतना अच्छा लिखते हो, आप उसके लिए, तो मेरे पास में मेल है वो, जब मैंने पहले लिखी थी, भेजी थी, पेपर में छपी भी थी। अच्छा मैं एक और काम किया करती थी उस कविता को, हम तो जाते थे, हम मार्शल आर्ट वालों को लेकर के जाते थे, तो मार्शल आर्ट वाले जो थे वो वहां पे मार्शल आर्ट सिखाते थे लड़कियों को, एक मेरे साथ वकील जाते थे मेरे दोस्त, और मैं एक कविता गाती थी, बोलती थी। तो हम पूरी लड़कियों को, मैं कहती थी कि आप लड़कियों को इतना ट्रेन कर दो कि दो चार लोगों को से अपने आप को सेफ तो कर सके वो,
2: बिल्कुल।
1: तो ये मैं, मेरा ये पूरा का पूरा मोटो था। लेकिन खैर उसके बाद मेरे एक सीरियल को मेरा, मैंने लिखी थी कहानी तपस्या वाला था, वो क्या था, तपस्या थी उस सीरियल में, अब मैं सीरियल का नाम पता नहीं कैसे अचानक से अभी बात करते, तो उस पर सीरियल बन गया और वो मेरी कहानी की चोरी थी। तो खैर मुझे फिल्म राइटर एसोसिएशन में, मुझे मेरे फेवर में डिसीजन भी आया, पर बहुत कुछ ऐसा हुआ, पर ठीक है क्या किया जा सकता है, तो बहुत कुछ होता है। लेकिन और भी, जैसे कि मैं, अगर आप बोलेंगी तो आपको मैं एक दो चार शेर सुना दूं, अगर आप बोले तो।
2: जरूर जरूर, और शेर भी सुनना चाहेंगे, और साथ में जो आपने कहा ना कि लड़कियों को इतनी तैयार हो जाए, इतना मोटिवेट हो जाए कि वो खुद की रक्षा स्वयं कर सके। हाँ। तो अगर कोई ऐसी भी कविता हो तो भी हम जरूर सुनना चाहेंगे, अगर आप कोई।
1: जैसे कि मैंने वो जो द्रौपदी वाली थी ना, कि मतलब सुनो द्रौपदी शेर उठा लो, कि मतलब द्रौपदी अब जगह जगह पुकार रही है, लेकिन मतलब उसको खुद को ही सशक्त बनना होगा, तो ये तो है। लेकिन अभी फिलहाल ये है कि जैसे दूसरों को भी, कि मतलब हम कहते हैं कि अपने दिल और जान में रखना, नाम मेरा भी ध्यान में रखना, मुफलिसों को ना दो चांद तारे भले पाके उनके ध्यान में रखना, कि भाई आपके मन में एक दया भाव होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अपने किरदार, ये देखिए जैसे कि अपने किरदार को बहुत मजबूत इस बदलते जहान में रखना, ऐसे नहीं कि आप बह गए धारा के साथ में। तो मेरा शीर्षक भी मुर्दे इतिहास में लिखते, आपका अगर किरदार मजबूत है तो फिर आपको कोई बदल नहीं सकता है, कि इस बदलते जहान में रखना, तेरे कपड़ों पे जो है गर्दे सफर कामयाबी की शान में रखना। कई लोग कहते होता है ना कि जब बड़े बन गए तो भूल जाते हैं, आप अपनी जमीन से हमेशा जुड़े रहे, तो ये मैं कहती हूँ कि तेरे कपड़े पे जो है गर्दे सफर कामयाबी की शान में रखना, हमेशा याद रखो कि हम कहाँ से उठे, कहाँ पहुँचे हैं, और तुमको आकाश है छूना अगर, तुमको आकाश है छूना अगर, पंख अपनी उड़ान में रखना, अपने दिल और ध्यान में रखना। और ये जो आपने कहा कि, मुझे कई लोग कहते हैं कि तुम इतना मीठा बोलती हो कि मतलब हम तो बड़े अट्रैक्ट हो जाते हैं, मैंने कहा नहीं वो ऊपर वाले ने दे के भेजा है, तो ये शायद इस तरह है कि सुन के हो जाए जो फिदा तुम पर, सुन के हो जाए जो फिदा तुम पर, लुत्फ ऐसा जुबान में रखना, अपने दिल और ध्यान में रखना, अपने दिल और ध्यान में रखना। और कभी कभी होता है ना कि हम बहुत दुखी हैं तो हम बोल नहीं पाते हैं, तो अब जैसे अब तो बाबा है वो कोना, हमको कभी लगेगा तो हम बाबा को स्मरण करेंगे, तो कि रो सको जहाँ पे छुप छुप कर, रो सको जहाँ पर छुप छुप कर, ऐसा गोशा मकान में रखना, ऐसा कोना मतलब गोशा, ऐसा गोशा मकान में रखना, और वो गोशा आध्यात्मिक भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और ये के कम नहीं है, हालांकि मैंने अलका अपना इसमें तलफ़ुज़ जो होता है मक्ता जो कहते हैं, लेकिन मैं इसको भी बदल देती हूँ फिलहाल यहाँ की, कम नहीं है किसी से कोई, कम नहीं है किसी से कोई, दोस्तों ये गुमान में रखना, दोस्तों ये गुमान में रखना। तो आपने जैसे कहा तो मेरी कहानी थी बेटी
2: जी,
1: तो उसमें माँ अपनी बेटी के बारे में सोचती है, और वो पहले सोचती नहीं शादी, तो दूसरे कहते हैं भाई बेटी बड़ी हो रही शादी करा, तो बेटी को फिर बताने लगती है देखो तुम जाओगी एक राजकुमार जैसा लड़का होगा, तुम्हारा ध्यान रखेगा, और लड़की वो बेटी सपने पाल लेती है, शादी होती है, शादी होती है जब, तो वो जब आती है घर तो वो खुश नहीं है, मैके जब आती तब माँ को समझ में आता है कि उसको जो सपने बेटी को दे दिए हैं वो उसको हाथ में हाथ लेकर घुमाने नहीं लेकर जाता है, बहुत सारी जो चीजें,
2: राजकुमार आएगा,
1: राजकुमार आएगा, तो वो तो नहीं मिला उसको कि भाई नमक कम है तो भी बोलेगा है वो है, तब उसको समझ में आता है कि मैंने इसे गलत सपने दे दिए हैं, फिर वो उसको दूसरी तरह से कि एक एक कविता है कि हो जाती वो पयस्विनी जब वो माँ खुद बनती है तो महिला, तो वो बेटी को फिर अलग तरीके से समझाती है।
2: अच्छा।
1: आपकी, और वो प्रेग्नेंट है जब बेटी आती तभी भी खुश नहीं, तो फिर उसको अलग तरह से समझा के भेजती है, और कि मतलब आपकी बार अगर दुखी हो जाएगी तो मैं इसे नहीं भेजूंगी, लेकिन उसको मालूम है कि मैंने इसे ऐसा समझा दिया है क्योंकि मैंने उसे गलत ट्रेन किया था. तो ये जो हम संस्कार देते हैं ना, तो वो हमारे भीतर कहीं ना कहीं पनप जाते हैं. तो माँ जो बच्चे को सिखाती है वो बहुत सोच समझ के बताना चाहिए कि उसको आगे जाकर के भी एक घर संभालना है. तो वो उस तरह से ट्रेन करे कि वो समझ पे आए कि हाँ मेरे ऊपर जिम्मेदारियां आ रही, अब मैं वो बच्ची नहीं रह गई हूँ. बहुत बदलना पड़ता है. तो मुझे जो मेरी टाइप करते थे उनने कहा कि एक दिन मुझे कहा कि क्या लड़कियां सब सोचती कि शादी के बाद ऐसा होगा. मैंने कहा अमूमन तो सभी सोचती हैं.
2: अमूमन सभी सोचते
1: हैं. तो मैंने भी सोचा था. बोले अच्छा. तो मुझे एक दिन फोन किया, मैं आपको धन्यवाद कहना चाहता हूँ. मैंने कहा कि क्यों. बोले कि आपकी कहानी से मैं अपनी पत्नी की भावनाओं को समझने लग गया. मुझे बहुत अच्छा लगा. फिर एक दिन मैंने बोला कि मेरे कुछ कहानियां टाइप कर दीजिए. बोले आज आप मुझे माफ कर दीजिए, मैं नहीं कर सकता. मैंने कहा क्यों. बोले मैं आज अपनी पत्नी को डेट पर लेकर जा रहा हूँ और ये आपकी कहानी का असर है.
2: और इससे पहले शायद वो
1: हाँ तो वो
2: रियलाइजेशन उनको हुआ उससे.
1: एक्चुअली मतलब क्या होता है ना, कई बार ना जो दूसरे घर से लड़की आती है ना, पति समझ ही नहीं पाता है कि ये कितनी अंदर अपनी भावनाएं लेकर आई है,
2: उनके सपने क्या है,
1: सपने लेकर आई है ना. और आप जब तक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ही नहीं आप कायम कर पाते हैं. तो जब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है और हम एक दूसरे के साथ में साथ साथ कदम बढ़ा के चल रहे हैं ना, ये कोई नहीं सोचे कि मैं ये तो आई है मैं ही, क्योंकि एक शोविनिस्टिक मेंटालिटी
2: सोचते हैं इनको एडजस्ट करना है, ये आई है यहाँ से. मगर वो सोच उनके मन में क्या चल रही है वो सोच समझ ही नहीं पाए.
1: वही वाली बात. तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि उसके बाद उनको लगा कि अच्छा ये भी सपने लेके
2: बदलाव कितना
1: उसको समझना चालू कर दिया. तो मुझे लगता है कि मेरा लिखना सार्थक हो गया. और इससे मुझे बहुत सारे इस तरह के इंसिडेंट्स होते हैं, जैसे कई लोगों ने मुझे कहा कि आपको देख के हमने डांस करना सीखा, आपको देख कर, मतलब कटनी में पहले मैं मारवाड़ी हूँ, हमारे दादाजी नगर सेठ हुआ करते थे, तो लड़कियों को डांस वगैरह, इवन मेरे बाबा जी ने वैसे बहुत हमको फ्रीडम दे रखे थे. हमको कभी पता, आप आरुषि जी मैं बिल्कुल खुले दिल से बोलती हूँ कि मुझे कभी वो डिस्क्रिमिनेशन हमारे घर में नहीं हुआ,
2: लड़का और लड़की वाला.
1: हाँ लड़का अच्छा. लड़की वाला कभी नहीं हुआ. हम लोग पांच बहने थे पर कभी नहीं, ना बाबा जी ने, दादा जी ने, ना पापा ने, मम्मी किसी ने नहीं. तो फिर लेकिन वो लोग आए तो बोले डांस, तो उनने बोला भाई नगर सेठ की बेटी ने लोकचंद फुलचंद की पोती डांस करेगी, तो बोले अगर आपकी बेटी डांस करेगी पोती तो बहुत सी बच्चियों, तो उन्होंने हाँ कह दिया.
2: अच्छा कि हाँ. बाकी लोगों को भी और इंस्पिरेशन मिली.
1: हाँ तो उन्होंने हाँ कहा. और मैंने पहला डांस जो किया था वो था होठों पे ऐसी बात.
2: हाँ,
1: और उसके बाद में कारी कारी कारी अंधी आ रही थी रात नवरंग की, तो उसमें भी मुझे दूसरी बार किसी ने डरा दिया, अरे तुमसे तो बहुत बड़ी डांसर आ रही, तुम कह दी तो छोड़ दो. मैं रोई तो मम्मी ने कहा अब तो तेरी असली परीक्षा है बेटा, अब तो तेरे को जीतना ही. दीदी लोगों ने भी तो वो मैं फिर जीती, फिर मैं सर्वश्रेष्ठ बाल कलाकार बनी.
2: क्या बात.
1: तो ये मतलब हमेशा मुझे मतलब ये कि मुझे लोग फॉलो करते हैं, अच्छा अलका ने किया, उनकी पोती ने किया, अब हमारी बेटियों को भी,
2: हमारी बेटियों को भी करना चाहिए ना.
1: करना
2: एक सीख. क्या बात है. मुझे आपकी बातों से ना एक चीज और बहुत समझ में आई कि साहित्य कैसे जीवन को आसान बनाने में मदद करता है, कैसे एक दूसरे को समझने में मदद करता है. तो हम ऐसे बहुत लोग हैं जो पढ़ते नहीं है, मोबाइल में ही चले गए हैं जिंदगियां. तो अगर साहित्य के और नजदीक जाएंगे तो अपने आसपास वालों को भी और बेहतर समझ पाएंगे.
1: बिल्कुल सही बात है जी.
2: ये पढ़ना चाहिए और जी.
1: बिल्कुल. देखिए क्या होता है ना, आपने आप भी बचपन से पुस्तकें सबसे अच्छी दोस्त होती हैं. और मैं दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर में गई थी तो आज तक वालों ने एक इंटरव्यू किया था. उन्होंने कहा कि क्या आपको लगता है कि आजकल पुस्तकों का अस्तित्व खत्म हो रहा है. मैंने अगर ऐसा होता तो आप पुस्तक मेले में मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं और तमाम स्टॉल्स हैं और लोग खरीद रहे हैं किताबें और स्पेशली जाते हैं, और खास करके बच्चों के माता पिता जाते. मेरी बेटी भी बहुत पढ़ती थी, कि वो अंग्रेजी में पढ़ती लेकिन बहुत किताबें पढ़ती है. तो कई बार क्या होता है कि जैसे जब हम मोबाइल पे आजकल जो हम रील बोलते हैं ना, रील लाइफ में के कारण हम रियल लाइफ से दूर होते जा रहे हैं. और व्हाट्सएप, हम फेसबुक पे, अच्छा अभी हम परिचित हो गए, अच्छा आप में से कनेक्टेड है, अरे अलका जी आपकी तबीयत, ओ प्लीज गेट वेल सून, अपना ध्यान रखिएगा. ऐसे लगेगा आरुषि जी से ज्यादा तो मेरा कोई अपना है ही नहीं. लेकिन अभी मेरे घर में अगर कोई है और मैं आपको तो पूछ रही हूँ, आप मुझे पूछ रहे, लेकिन आपके घर में तो मतलब लोग लीस्ट वरीड होते हैं, सोचते भी नहीं कि घर में भी हमको वही चीजें करनी है. तो लेकिन जब हम पढ़ते हैं तो साहित्य हमें एक एक, एक भावना देता है. जैसे मेरी जिंदगी में बहुत सी चीजें हैं कि मैंने कहानियां पढ़ रही हूँ आलेख, जैसे मैंने परसाई जी को, उनको पढ़ करके मेरी चीजें बहुत भीतर बदला है.
2: जो
1: आप उसको उस तरह से जब पढ़ेंगे ना, आपको बहुत एक प्रेरणा मिलती है. कई बार
2: पर्सपेक्टिव भी मिलता है, एक नया एक नया पर्सपेक्टिव भी मिलता है,
1: पर्सपेक्टिव मिलता है, नया पर्सपेक्टिव मिलता है जिंदगी को समझने का,
2: समझने
1: का। कि हम तो अभी तक हम कूप में डूब बने रहते हैं, पर जब आप पुस्तकों को पढ़ते हैं, क्योंकि देखिए बहुत से लेखक जैसे वो क्या होता है कि उन्होंने पूरी राजनीति पढ़ी होती है, तमाम माइथोलॉजी पढ़ी होती है, तमाम वेद पढ़े होते हैं, या नहीं भी तो और जिंदगी को पढ़ा होता है, और वो उसको उसका सार उसमें लिखते हैं। तो आपको तो सार पूरा मिल गया ना एक जगह, तो जब आपको सार मिल रहा है तो आपको साहित्य बहुत कुछ देता है। साहित्य का अर्थ होता है सहित, जिसमें हित हो, सबका हित,
2: सबका हित हो,
1: तो साहित्य तो हित ही करेगा, तो साहित्य पढ़ना ही चाहिए।
2: अलका जी, मैं आपसे ये जरूर जानना चाहूंगी, जो युवा हमें सुन रहे हैं, अगर आप कुछ किताबें सजेस्ट करें कि उन्हें क्या पढ़ना चाहिए, कुछ कुछ किताबें।
1: देखिए आजकल एक तो सेल्फ हेल्प की बुक्स बहुत आ रही, रॉबिन समथिंग उनका ध्यान एग्जैक्टली ध्यान नहीं आ रहा, और रोंडा बर्न की भी, जैसे द मैजिक, और आप लोगों का भी साहित्य शायद जैसे अभी जीवन पलटने की कला है, तो ये तो एक अलग चीज है। लेकिन उसके अलावा जैसे कि बहुत सी अच्छी कविताएं आती हैं, हाँ नेगेटिव बहुत ज्यादा मत पढ़िए, और उसके अलावा जैसे कि हमारे जो बहुत सारे पहले के साहित्यकार हैं, जैसे मैंने इंग्लिश में भी एमए किया है, तो आप वर्ड्सवर्थ को पढ़ते हैं या शैली को पढ़ते हैं, बहुत बहुत सारी चीजें हैं ऐसे, तो मुझे लगता है कि उनको पढ़ना चाहिए। और आजकल के भी जैसे अब देवदत्त पटनायक जो आपके यहाँ शायद आ भी चुके होंगे, वो तो उन्होंने माइथोलॉजी को ना बहुत ही खूबसूरती से डिपिक्ट किया है। उनके एक हनुमान की रामायण है, पता है आपको? अच्छा, उन्होंने लिखी है, हाँ, कि हनुमान जी ने एक रामायण लिखी, तो वाल्मीकि जी को पता चला कि नारायण ने उनको बोला, नारद मुनि ने कहा कि आप जाइए एक बार हनुमान की रामायण देखिए, तो हनुमान जी की रामायण पता कहाँ लिखी थी, एक गार्डन में, एक बागीचे में, और केले के पत्तों में, इसमें उसमें उसमें, और वो वाल्मीकि जी पढ़ते जा रहे, रोते जा रहे, रोते जा रहे, तो हनुमान जी बोले क्यों रो रहे हैं आप ऐसे, तो बोले नहीं आपने जो लिख दिया मेरी रामायण कौन पढ़ेगा। आपने हनुमान जी ने क्या किया, उसको सारे को खा लिया पत्तों को, बोले क्या किया आपने इतना सब लिखा, बोले मेरे राम मेरे अंदर हैं, अब आपको हमेशा सब याद रखेंगे। तो इस तरह की जो आपको एक जगाने वाली अवेयरनेस जहाँ है वो सारी चीजें, और आजकल तो देखिए ये डिजिटल जमाना है, आप
2: बिल्कुल
1: AI दे देता है, गूगल को
2: आप डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन भी डाउनलोड कर सकते हैं, बहुत सारे नॉवेल्स भी, उपन्यास भी।
1: हम बॉम्बे में रहते हैं, मैं सोचती हूँ मैं अपनी लाइब्रेरी बहुत बना लूँ बड़ी, तो कहाँ रखूंगी मैं सारी चीजें, 3 BHK के फ्लैट में। अब आप ऑनलाइन करते जाए, किंडल पे पढ़ लीजिए, और उसमें देखिए कि सेल्फ हेल्प बुक्स, मुझे जैसे जिस समय मुझे जो पढ़ने का मन है कि आई एम फीलिंग लो, नहीं मुझे कुछ पढ़ना है, मुझे आध्यात्मिक कुछ पढ़ना है, तो सब कुछ तो आपके क्लिक में अवेलेबल है।
2: बिल्कुल,
1: क्योंकि मैं बोल दूंगी ये पढ़ो तो नहीं, क्या होता है जो इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है,
2: उनको क्या इंटरेस्ट है,
1: उनको क्या पढ़ना है, उनका क्या इंटरेस्ट है, तो जिसमें खुद की रुचि हो, बस आप ये मत पढ़िए कि आप दूसरों का बुरा करने का सोचें, अपने आप को आप कैसे ग्रो कर सकते हैं, कैसे इवॉल्व हो सकते
2: ऐसा
1: हैं,
2: कुछ पढ़िए,
1: कैसे बेहतर इंसान बन सकते हैं, जो कल से उससे बेहतर बनना है हमें, और बेहतर करते करते दूसरों को भी साथ में लेके चलना है, ऐसा कुछ पढ़िए।
2: बहुत सुंदर बात है, और चाहे कहानियां पढ़ें चाहे कविताएं पढ़ें, लेकिन और मुझे लगता है और संवेदनशील भी बनाती है हमें ये।
1: बिल्कुल, मैं एक छोटी सी लघु कथा आपको बता देती
2: हूँ। बिल्कुल,
1: अभी हाल ही में जैसे क्या होता है, और ये सचमुच में जब होता है ना, क्योंकि कहानियां हमें जिंदगी से मिलती हैं आरुषि जी, तो आजकल कैंसर बहुत कॉमन हो गया है, तो एक हस्बैंड वाइफ है, और वो जो वाइफ है वो सोच रही कि आज वो अक्षत, और लड़की का नाम है रंगोली, अक्षत आज कहाँ रह गया, अभी तक आया क्यों नहीं, आज उसने मुझे वीट जूस भी बना के नहीं दिया है। वो अपने कमरे में जाती है, तमाम वो सारी देखती, जहाँ उन दोनों की फोटोज हैं, यहाँ गए थे वहाँ गए थे, अच्छा वो देखती डेकोर पूरा उसके मन से, तो अक्षत ने कराया पूरा पर्ल कलर का, फिर वो देखती है कि कहीं पर्दे का हवा का झोंका आता है और उसके बाल उड़ते हैं, तो उसको याद आता है कि अक्षत कहता कि रंगोली तुम्हारे बाल कितने सुंदर है ना, एकदम मतलब मुलायम, वो ये रेशमी और ब्राउन कलर के, वैसे सब तो वो अपने आंखों पे उसके बाल भी छा लेता, तो कहती अक्षत बाल तुम्हारे भी तो कितने सुंदर, तुम रोमन गॉड जैसे दिखते हो, और अचानक वो सोचते सोचते दर्पण के सामने चली जाती है और देखती कि उसके सिर पे बाल नहीं है, क्योंकि केमोथेरेपी से बाल चले गए, तो 6 महीने पहले उसको कैंसर डिटेक्ट हुआ था, और इससे तो वो मतलब रोते रोते सो जाती, थोड़ी देर में उसको स्पर्श महसूस होता है, तो देखती अक्षत तुम कहाँ, अक्षत तुम्हारे बाल कहाँ आ गए, तो वो बोलता है नहीं वो चलो सॉरी चलो खाना भी लगा है और तुम्हारा वीट जूस भी बना हुआ है, तो तब वो देखती तो बोलता है कि बस वो मतलब उसको मतलब वो बहुत प्यार से सताता है, तो वो सोचती कि आज जो रंगोली है वो अक्षत के प्यार से सज गई है, मतलब ये कि पति जो है उसके लिए उसने अपने बाल भी, जब तक उसकी पत्नी के बाल नहीं आएंगे वो भी बाल ऐसे ही रखेगा. तो ये जो चीजें होती है ना कि मतलब एक पॉजिटिव संदेश मैं देना चाहती हूँ. आजकल मैं लघु कथाओं, मतलब मैं लघु कथा शोध केंद्र बॉम्बे की अध्यक्ष बनी हूँ हाल ही में, तो हम लघु कथाओं पर बहुत काम कर रहे हैं. और आजकल की लघु कथाएं जो एक संदेश देना चाह रही है वो बहुत पॉजिटिव संदेश देती हैं कि अब उसमें नेगेटिविटी नहीं हो. एक पॉजिटिव संदेश के साथ में अपनी लघु कथा को खत्म करिए. तो आजकल हम लोग वो कर रहे हैं.
2: कई बार हम सोशल मीडिया पे भी और अपने आसपास जिंदगी में बहुत चीजें देखते हैं लेकिन उन्हें भूल जाते हैं. कहते हैं ना आजकल की रात गई बात गई जैसे हो जाता है, एक न्यूज आई दूसरी न्यूज चली गई. लेकिन जब लघु कथा के रूप में हम उन्हें सुन रहे हैं तो मुझे लगता है वो छाप छूट जाती है, वो चीज फिर वो हमारे अंदर वो हमारा हिस्सा बन जाती है कहीं ना कहीं. बहुत प्रेरणादायक कहानियां हैं.
1: आपने जैसे बात की, आपको याद है ना बचपन में हम सब ने कहानी सुनी ना कि एक पिताजी थे, उन्होंने अपने बच्चों को बोला एक लकड़ी का गट्ठर दिया कि तोड़ो, है ना.
2: बिल्कुल.
1: तो वो कोई नहीं तोड़ पाए, जब अलग अलग करके तोड़ा तो तोड़ दिया. तो उन्होंने कहा यही चीज सिखा. तो कथा के माध्यम से वो बात हमेशा आपके जहन में, जैसे आपने कहा बिल्कुल वही बात है कि हमारे जहन में अंकित हो जाती है, हमारे अंदर अंकित हो जाती है, हमें याद आती है. मैं अपनी बेटी को ना बचपन में और बेटे को भी एक कहानी सुनाती थी. हम लोग मारवाड़ी हैं, हल्दी मल्दी सटवा सूट. अच्छा. कि सटवा सूट जो है वो थोड़ी सी बिटर है, दो बहनें हैं तो हल्दी मल्दी सबका भला करती है. तो जब हल्दी मल्दी अपनी नानी के घर जाती, सबको मिलती, सबका भला करती जाती, तो जब वो लौटती तो उसको बहुत सारे गिफ्ट मिलते. सटवा सूट भी कहती कि मैं जाऊंगी और सबको, तो जो भी बोलता क्यों मैं, क्यों वो तो थी हल्दी मल्दी, मैं हूँ सटवा सूट, मैं नहीं करती तुम्हारा काम. अब वो आती तो उसको कोई कुछ नहीं देता. तो मेरी बेटी आज भी, मम्मा मैं आपकी हल्दी मल्दी हूँ ना. तो ये हमें ना इस तरह की संस्कार कहानियों के माध्यम से हम अपने बच्चों को दे सकते हैं. और बिल्कुल आपने सही बात बोली कि आप भाषण देंगे ना कोई नहीं सुनेगा, उसको इंटरेस्टिंग वे में बता के कहिए तो आपको लोग जरूर सुनेंगे.
2: जरूर सुनेंगे. तो कहानियां और पढ़िए और सुनिए और सुनाइए, है ना. भारत की तो मतलब मुझे लगता है भारत में तो कहानियां बसती हैं हर कोने में.
1: बिल्कुल.
2: हर भाषा में, हर लोकगीत लोक कथा में बहुत कुछ है सच में. तो आपने आज हमें वापस मुझे लगता है जोड़ दिया, जहाँ से हम थोड़ा दूर भी निकल आए थे, तो वापस उन कहानियों की ओर अब बढ़ जाएंगे. अलका जी, क्या कोई और आपकी ऐसी कविता या कोई एक ऐसा हमारे श्रोताओं के लिए अगर आप शेयर करें?
1: बिल्कुल सुना दूंगी आपको. वैसे लता दीदी पर भी एक, जब लता दीदी तो गजल तो मैं गा के तरन्नुम में तो अभी नहीं सुनाऊंगी
2: जी,
1: पर एक है ना ये, आजकल हम पर्यावरण के लिए बहुत परेशान मतलब है. देखिए तो मैं सुना देती हूँ कि, क्योंकि मैं यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं सुनाऊंगी कि जहाँ पर कहीं पर नेगेटिविटी हो.
2: okay.
1: एक ये बॉम्बे में आतंकी हमला हुआ था, है ना. तो उससे मैं, अच्छा मैं एक चीज और बताती हूँ कि मैं जब बहुत दुखी होती हूँ ना और गुस्से में होती हूँ तो मेरे भीतर से कविता निकलती है, सिलसिलेवार जिंदगी कहानी बनती है. और मैं व्यंग भी लिखती हूँ, मेरे जैसे आपने व्यंग संग्रहों के नाम भी लिए, तो विसंगतियां व्यंग बन जाती है. तो जब ये आतंकी हमले हो रहे थे लगातार, अच्छा हमारे भी बहुत परिचित लोग थे जो उसमें मारे गए थे.
2: अच्छा.
1: तो उसमें मैंने एक सिम्बॉलिक कविता लिखी थी कि मैं उसको कुछ तरन्नुम में भी गा के थोड़ा सा वैसे बता देती हूँ. एक चिड़िया

बीच हरियाली छाई थी, खिले थे सुंदर फूल, तितलियां रंग बिरंगी उड़ रही थी उड़ रही थी। माँ तोती ने दरख्त पे बनाया एक घरवंदा, सुरक्षित रख कर बच्चे उसमें निकल गई लेने दाना। पर अचानक कहीं से आया एक कठफोड़वा, ये कठफोड़वा वो आतंकवादी है, चोंच

बच्चे चीखे डर डर के, तितली के पंख गिरे कट कट के, हरियाली बदली पतझड़ में, फैल गया आतंक, मिट्ठू न जाने कहाँ गुम हो गया, तितलियों ने उड़ना छोड़ा, हो गए फूलों के रंग सभी बदरंग के।

0: सच में वो उस इंसिडेंट ने, उस घटना ने हम सबको हिला दिया था, अंदर से झंझोर दिया था.
1: मुंबई का जो आतंकी हमला
0: था वो भूल नहीं सकते. और ये जो आपने कविता सिंबलाइज करके उसको जो वो हम भावनाओं को प्रकट किया, ये एक लेखक ही कर सकते हैं कि उस प्रकार से भी उस बात को कहा जाता है, हम सोच नहीं सकते. आपका बहुत बहुत धन्यवाद है अलका जी. मुझे लगता है आपकी इतनी कहानियां, इतनी सारी बातें हैं, अभी संभव नहीं है सब कुछ इन एक घंटे में समेट पाना, लेकिन फिर भी जो आपने जो आज सुनाया है वो हमारे सिर्फ आज तक नहीं, मुझे लगता है आगे तक वो प्रेरणा बन के हमारे साथ रहने वाला है.
1: मैं अगर एक मिनट होगा तो खाली आदर्श, हमने फिल्म लिखी थी और आदर्श पे फिल्म के ऊपर हमने नॉवेल लिखी थी.
0: अच्छा.
1: तो उसमें मैंने क्यों इसलिए बोल रही हूँ कि यहाँ पर उसमें एक न्यूक्लियर फैमिली, जो एकल परिवार होते हैं ना, एकल परिवार का बच्चा कैसे अपने आप को, कई बार तो हम बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग होने लगती, तो वो कुछ ऐसा होता है. तो ये जो है परिवारों को बचाना कैसे जरूरी, तो आदर्श फिल्म जो है उस तरह से वो मैंने लिखी थी और वो बहुत ही खूबसूरत फिल्म है. बल्कि मैं तो चाहूंगी मैं आपको लिंक भेज दूंगी अपनी,
0: जरूर जरूर,
1: तो आप वो देखिएगा. तो मुझे लगता है कि ना हम लेखकों का एक दायित्व ये भी है कि सिर्फ लिखने के लिए ना लिखें, है ना, एक कुछ ना कुछ बदलाव, और जो कृतित्व और व्यक्तित्व है ना लेखक का वो एक हो, ये मैं चाहती हूँ कि आप लिख कुछ रहे हैं कुछ वो मत करिए, जो आप है वो लिखिए, और समाज में बदलाव की चेतना के लिए जरूर लिखें. आप समाज सुधारक नहीं है हम, पर कोशिश करें कि कुछ तो बदले, कुछ तो अच्छा लिखे हम. तो बहुत अच्छा लगा मुझे आज आपके रेडियो मधुबन में, और क्योंकि यहाँ बहुत सारी पॉजिटिव वाइब्स हम लेकर जा रहे हैं और कोशिश करेंगे हम, कि प्रयास हमारा ये रहेगा कि हम आगे भी जुड़े रहें और अपने घरों में भी उसी शांति के प्रकाश को फैला सकें. आपकी मुस्कान बहुत प्यारी है, आपकी मुस्कान के लिए मैं आपको बाद में कविता लिख भेज दूंगी. बहुत बहुत आभार आपका.
0: अलका जी मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत कुछ सीखने को मिला, तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया, इतना समय आपने निकाला हमारे लिए.
1: बहुत बहुत आभार, धन्यवाद.
0: तो दोस्तों फिलहाल तो वक्त हो गया इजाजत लेने का, लेकिन मैं यकीनन ये कह सकती हूँ कि आज कुछ आप अपने साथ जरूर लेकर जा रहे होंगे, कुछ ऐसा जो आपको जीवन के सफर में मददगार साबित होगा. फिलहाल वक्त हो गया है आपसे इजाजत लेने का, मुलाकात होगी अगले एपिसोड में. रेडियो मधुबन सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए.

बचपन की सुरक्षा है एक खास जिम्मेदारी, इस पर कोई आंच नहीं आनी चाहिए। आपातकालीन स्थिति के साथ उन्हें लंबे समय के पुनर्वास के लिए मदद भी करता है चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर। बच्चे या बड़े जो उनकी सहायता करना चाहते हैं डायल कर सकते हैं 1098 अपने फोन से। सजग रहिए, सुरक्षित रहिए। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।

मैं हूं सुमन, साउथ इंडिया का एक्टर, और आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी जी का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

ओम शांति। आज है 25 अगस्त 2026 और आज हम सबकी प्यारी प्रकाशमणि दादी जी का स्मृति दिवस है, जब दादी जी ने अपनी संपूर्ण अवस्था को प्राप्त कर अव्यक्त वतनवासी बने। दादी प्रकाशमणि जी ने साकार बाबा के जाने के बाद इस ईश्वरीय यज्ञ की बागडोर संभाली और उस समय से लेकर के एकनिष्ठ होकर के हर कार्य यज्ञ का बहुत सुचारू रूप से चलाया और सभी यज्ञ वत्सों के सामने एक एग्जाम्पल बनकर के रही। दादी जी की विशेषताओं का वर्णन करे तो कभी अंत नहीं हो सकता, लेकिन आज दादी जी के पुण्य स्मृति दिवस पर हम सभी की बहुत हार्दिक भावपूर्ण भावांजलि कहो, श्रद्धांजलि कहो, हम दिल से अर्पित करते हैं और दादी जी को सदैव अपने आदर्श मानते हुए सदा उनके समान बनने का लक्ष्य रखते हैं। हर ब्रह्मा कुमारी का ये लक्ष्य जरूर रहेगा, हमें बनना है तो दादी जी जैसा बनना है, निर्मल पवित्र और सदा बाबा की याद में मगन। सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, बाप और वर्षे को याद करने में तुम्हारी कमाई भी है तो तंदुरुस्ती भी है, तुम अमर बन जाते हो। आज की मुरली से प्रश्न है, हृदय को शुद्ध बनाने की सहज युक्ति कौन सी है? उत्तर है, कहां भी रहो ट्रस्टी होकर रहो। हमेशा समझो हम शिव बाबा के भंडारे से खाते हैं। शिव बाबा के भंडारे का भोजन खाने वालों का हृदय शुद्ध होता जाता है। प्रवृत्ति में रहते अगर श्रीमद प्रमाण डायरेक्शन पर ट्रस्टी बनकर रहते हो तो वह भी शिव बाबा का भंडारा है, मन से सरेंडर है। ओम शांति। जन्म जन्मांतर आधा कल्प बच्चों ने सत्संग किए हैं, साधु संत पंडित आदि सब मनुष्य का सत्संग होता है, यह कोई भी मनुष्य का सत्संग नहीं। दुनिया में जहां सत्संग होता है मनुष्य का सत्संग है, लेकिन बाबा कहे यहां कोई मनुष्य का सत्संग नहीं है। इसको कहा जाता है रूहानी सत्संग। सुप्रीम रूह रूहों के साथ रूह रिहान अर्थात सत्संग करते हैं। सुप्रीम रूह रूहों के साथ रूह रिहान अर्थात सत्संग करते हैं। यहां तुम कोई मनुष्य से नहीं सुनते हो, न देवताओं से सुनते हो, तुम सुनते हो भगवान से। भगवान को हमेशा निराकार कहा जाता है और भगवान आते ही तब है जब बच्चों को भगवान भगवती बनाने के लिए पढ़ाना है। भगवान और भगवती का पद सिवाय भगवान के कोई दे ना सके, ये किसी की ताकत नहीं जो भगवान भगवती का पद किसी को दे सके, भगवान ही दे सकते हैं। तुम बच्चे जानते हो कल्प कल्प संगम युग होता है तो निराकार भगवान आकर हमको ज्ञान देते हैं, यह भी सिर्फ तुम ही समझते हो, दूसरा कोई मुश्किल समझ सके। शिव बाबा आते हैं जरूर, परंतु उनके बदले श्री कृष्ण को गीता का भगवान कह दिया है तो जरूर सबकी बुद्धि में मनुष्य तन ही आता होगा। तुम ही दैवी गुण वाले थे और अब आसुरी गुण वाले बने हो, फिर अब दैवी गुण वाले बनते हो। दैवी गुण वालों को ईश्वरीय संप्रदाय, आसुरी गुण वालों को आसुरी संप्रदाय कहा जाता है। अब निराकार बाप निराकार संप्रदाय अर्थात
आत्माओं को पढ़ाते हैं। इसलिए कहा जाता है ईश्वरीय संप्रदाय अथवा रूहानी संप्रदाय, जिन्हें रूहानी बाप आकर पढ़ाते हैं। अभी तुम रूह अभिमानी बनते हो। आज बाबा ने आत्म अभिमानी को एक नया शब्द दिया कि अभी तुम रूह अभिमानी बनते हो। हम आत्मा है, बाप हमको पढ़ाते हैं, कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। रूहों को ही पढ़ाते हैं, वही नॉलेजफुल है। और ऋषि मुनि आदि तो सब नेति नेति कहते गए, अर्थात हम रूह को नहीं जानते हैं। जब तक वह ज्ञान सागर सन्मुख न आए तो ज्ञान कैसे समझाएं? ये अच्छी रीति समझने की बातें हैं। हमको कोई मनुष्य नहीं पढ़ाते हैं, हमको बाप पढ़ाते हैं। वह है बेहद का बाप निराकार। यह भी बच्चों को समझाया है, साकार और निराकार दो बाप हर एक को होते हैं, एक रूहानी दूसरा जिस्मानी। रूहानी बाप ही आकर रूहों को पावन बनाते हैं। तुम जानते हो हम पावन थे, पतित बने, फिर पतित से पावन कैसे बनते हैं? चित्र भी सामने है। बाबा राय देते हैं कि घड़ी घड़ी चक्र के सामने जाकर बैठो तो बुद्धि में सारा ज्ञान आ जाएगा कि हम अभी संगम युग पर बैठे हैं और सभी अपने को कलयुग में समझते हैं। कलयुग को घोर अंधियारा कहा जाता है। अभी तुम हो संगम पर, अभी तुमको रोशनी है। सतयुग में फिर तुमको ये ज्ञान नहीं मिलता है। बाप जब आते हैं तभी घोर सोजरा होता है। ये संगम युग है ही कल्याणकारी युग। इन जैसा युग कोई होता ही नहीं। जबकि बाप आते हैं, सतयुग को कल्याणकारी नहीं कहेंगे। वहां किसका कल्याण नहीं होता है, कल्याण संगम पर होता है। सतयुग में तो है ही कल्याण, संगम पर कलयुग को सतयुग कल्याणकारी बनाते हैं। संगम पर ही बाबा आकर कलयुग को सतयुग कल्याणकारी बनाते हैं। तो अब तुम्हारा देखो कितना कल्याण होता है। सिर्फ बाप और वर्षे को याद करने में कितनी तुम्हारी कमाई है। कमाई की कमाई भी है और तंदुरुस्ती की तंदुरुस्ती भी है। तुम्हारा जीवन अमर बनता है। सतयुग में अमर पद को प्राप्त करते हैं। तुम्हारी कभी अकाले मृत्यु नहीं होती है। तो बच्चों को कितनी खुशी रहनी चाहिए, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि में सारी नॉलेज है। यहां तुम बच्चे आते ही हो तो पुरुषार्थ कर म्यूजियम में चित्रों पर समझाने के लायक बनना चाहिए। अपने को लायक बनाने के लिए 7-8 रोज बैठकर सीखो। प्रैक्टिस हुई झट भागा सर्विस पर, सर्विस करके फिर लौट आए। यह सीखना तो बहुत सहज है। चित्र को सामने देखने से ही बुद्धि में आ जाता है कि हम संगम पर बैठे हैं। आज की दुनिया में बहुत मनुष्य है, कल बहुत थोड़े होंगे। इतने ये सब वापस जाने हैं। अभी बाप स्वयं आए हैं, बच्चों की कितनी इज्जत रखते हैं। दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। रावण का देश पराया देश है ना। राम के देश में तो कभी रावण आ न सके। अभी तुम बच्चों की परवरिश तो बाप के हाथ में है। बस तुम्ही से खाऊं, अर्थात तुम्हारे ही भंडारे से खाऊं। तुम्हारी सारी परवरिश यहाँ ही होती है। कितनी प्यार से बाबा परवरिश करते हैं। जो सरेंडर हो जाते हैं उनकी परवरिश तो होती ही है, लेकिन जो मन से भी समझते हैं कि यह सब कुछ ईश्वर का है, बाप का है, मैं ट्रस्टी हूं, हम श्रीमत पर ही चलकर खर्चा आदि करते हैं,
ऐसे जो समझते हैं वह भी शिव बाबा के भंडारे से खाते हैं। शिव बाबा के भंडारे से खाने से हृदय शुद्ध होता है, ऐसे नहीं कि वह शिव बाबा के भंडारे से नहीं खाते हैं। बाप के डायरेक्शन पर चलने वाले भी जैसे बाप के भंडारे से ही खाते हैं। गृहस्थ में रहने वाले भी जो बाबा की श्रीमत पर एक्यूरेट चलते हैं तो वह जैसे कि बाबा के भंडारे से ही खाते हैं। जिस भंडारे से खाया वो भंडारा भरपूर कालकंटक दूर, उसके बाद तुम कभी भी अकाले मृत्यु को नहीं पाएंगे। इस समय ही शिव बाबा आते हैं, उनकी महिमा भी गाई हुई है, शिव जयंती भी मनाते हैं, परंतु उनका भंडारा कैसा होता ये कोई नहीं जानते हैं। बाबा भी बरोबर आते हैं ना, बच्चे जो भी आते हैं उनको शिव बाबा के भंडारे से खाना मिलता है। अच्छा, मेल सरेंडर होता है तो ठीक है, अगर वह सरेंडर नहीं होता तो माताएं क्या करें, क्योंकि कमाई है पति की। वह तो सरेंडर होता नहीं, वह तो जब आमदनी करे तब स्त्री खाए। हाँ, जोड़ा सरेंडर है तो फिर शिव बाबा के भंडारे से ही परवरिश हो सकती है। ये बाप बच्चों को अच्छी रीति समझाते हैं, बुद्धि में रखना है। हम बाप के पास बैठे हैं जब तक कर्मातीत अवस्था हो जाए। दिन प्रतिदिन हम अपने स्वराज्य के नजदीक आते जाते हैं। समय बीतता जाता है, तुम नजदीक आते जाते हो। समय धीरे धीरे बीतता जा रहा है और हम अपनी नई दुनिया के नजदीक आते जाते हैं। सतयुग के पहले वर्ष में, अब कितने वर्ष कहेंगे, सतयुग के पहले वर्ष में अब कितने वर्ष कहेंगे, अब कितना नजदीक आ गए हैं। बाप कहते, बच्चे अब तुम्हारा 84 का चक्र पूरा होता है। अब तुम्हारा 84 का चक्र पूरा होता है, तुमने अब 84 जन्म के चक्र को जाना है। चक्र को देखने से ही कहेंगे हम अभी संगम पर है। इस तरफ है कलयुग, उस तरफ है सतयुग। कल हम अपने सुखधाम में होंगे, दुनिया को पता नहीं है, वह तो बिल्कुल ही घोर अंधेरे में है। तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। बेहद के बाप से हम 21 जन्म की कमाई करते हैं, सदा सुख का वर्षा पा रहे हैं, ये खुशी रहती है। स्वर्गवासी बनना ये तुम्हारी ही तकदीर में है। स्वर्ग एक वंडरफुल चीज है, जैसे 7 वंडर्स दिखाते हैं ना, दुनिया के 7 अजायब भी दिखाते हैं ना, यह तो सबसे बड़ा वंडर है, सबसे बड़ी अजायब भी है। चित्र भी है वंडरफुल स्वर्ग के, यह लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक थे, इसलिए बाबा ने लिखा था, ऊपर में सूर्यवंशी का लिखो, उसके नीचे चंद्रवंशी का लिखो, तो आधा कल्प पूरा हो जाएगा। सूर्यवंशी चंद्रवंशी 1250 वर्ष, माना टोटल 1250 तो 2500 वर्ष, तो फिर लाखों वर्ष की तो बात ही उड़ जाए। वहां बाहुबल में कितना खर्चा होता है, यहां शुरू से लेकर अंत तक कुछ भी खर्चा नहीं होता। ये तो बाप और बच्चों का हिसाब है, खर्चे की बात ही नहीं है। यहां बच्चे आकर रिफ्रेश हो इसलिए मकान आदि बनाते हैं। बच्चों का ही पैसा है, सो भी कितने दिन तो पास हो गए, बाकी थोड़े दिन है, खर्चा कुछ भी नहीं। तुम जीवन मुक्ति पाते हो बिगर कौड़ी खर्चे। इसमें सिर्फ मेहनत की बात है। भगवान को तो सब भक्त याद करते हैं, परंतु ये नहीं जानते कि भगवान कौन है। भगवान को न जानने के कारण बहुतों को भगवान मान लेते हैं। अब तुम बच्चों को सच्चे बाप का परिचय देना है। तुम बच्चों को अथाह खुशी रहनी चाहिए। बेहद का बाबा हमको पढ़ाते हैं।
स्वर्ग का मालिक बनाने के लिए बाबा आकर स्वर्ग की स्थापना और नरक का विनाश कराते हैं। इसलिए महाभारत लड़ाई भी साथ में है। हर 5000 वर्ष बाद ये चक्र फिरता है। बाप भी कल्प कल्प कल्प के संगम युगे आते हैं। गीता में उन्होंने फिर युगे युगे लिख दिया है, सो भी 5 युग है, 5 बार आए। फिर 24 बार फलाना अवतार क्यों लिख दिया है? बाबा कहते हैं अगर युगे युगे आते तो 5 युगे तो 5 बार आए, फिर 24 अवतार कैसे हो गए? मनुष्य कितने यज्ञ तप तीर्थ आदि करते हैं, समझते हैं ये सब रास्ते भगवान से मिलने के हैं, परंतु भगवान के पास तो कोई भी जा नहीं सकते हैं। आधा कल्प कितना माथा मारा है, जन्म जन्मांतर फेरे लगाए यह किया, फिर भी बाप नहीं मिला। अभी बाप तुम बच्चों के कितना नजदीक है, तुमसे बात कर रहे हैं, तुमको समझा रहे हैं। तुम समझते हो कल्प कल्प हू बहू हम ऐसे मिलते हैं, जो कुछ बीता कल्प कल्प होगा, जो कुछ बीता बाबा के कल्प कल्प होगा, वही दादा जौहरी होगा, फिर उसमें ही बाबा प्रवेश करेंगे, फिर वही बच्चे आकर बाप के बनेंगे और फिर से स्वर्ग का वर्षा पाएंगे। यह बाप का तुम बच्चों के साथ अनादि अविनाशी पाठ कल्प कल्प ऐसे ही रिपीट होता रहता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, ये कल्याणकारी संगम युग है, इसमें हर बात में कल्याण है, कमाई ही कमाई है। बाप और वर्षे को याद कर 21 जन्म के लिए जीवन को अमर बनाना है। दूसरी पॉइंट, प्रवृत्ति में रहते मन बुद्धि से सरेंडर होना है, श्रीमत पर खर्चा करना है, पूरा ट्रस्टी होकर रहना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, सहयोग की शक्ति से असहयोगियों को सहयोगी बनाने वाले बाप समान परोपकारी भव। सहयोग की शक्ति से असहयोगियों को सहयोगी बनाने वाले बाप समान परोपकारी भव। सहयोगियों के साथ सहयोगी बनना ये कोई महावीरता नहीं है, लेकिन जैसे बाप अपकारियों पर उपकार करते हैं, ऐसे आप बच्चे भी बाप समान बनो। कोई कितना भी असहयोगी बने, आप अपने सहयोग की शक्ति से असहयोगी को सहयोगी बना दो। ऐसे नहीं सोचो कि इस कारण से ये आगे नहीं बढ़ता है। कमजोर को कमजोर समझकर छोड़ ना दो, लेकिन उसे बल देकर बलवान बनाओ। इस बात पर अटेंशन दो तो सर्विस के प्लान्स रुपी जेवरों पर हीरे चमक जाएंगे, अर्थात सहज प्रत्यक्षता हो जाएगी। आज का स्लोगन है, क्रोध का कारण है स्वार्थ व ईर्ष्या, यही चिड़चिड़ापन की जड़ है, पहले इसे ही समाप्त करो। क्रोध का कारण है स्वार्थ व ईर्ष्या, यही चिड़चिड़ेपन की जड़ है, पहले इसे ही समाप्त करो। आज का व्यक्ति इशारा है, अपवित्रता के बीज को भी समाप्त कर संपूर्ण स्वच्छ पवित्र बनो। उसके अंतर्गत बाबा कहते पवित्रता फाउंडेशन है, और फाउंडेशन का ब्रह्मचर्य व्रत धारण करना ये कॉमन बात है, लेकिन अभी आगे बढ़े हो तो बचपन की स्टेज नहीं, अभी तो वानप्रस्थ स्थिति में जाना है। मैं ब्रह्मचारी तो रहता हूं,
पवित्र तो है ही, सिर्फ इसमें खुश नहीं हो जाओ, मूल फाउंडेशन है अपने संकल्प को शुद्ध बनाओ, ज्ञान स्वरूप बनाओ, शक्ति स्वरूप बनाओ। फिर आज दादी जी की गुप्त पुरुषार्थ की संपूर्णता प्राप्त करने के लिए जो गुप्त पुरुषार्थ किया वह बातें लिखी है। संपूर्णता को प्राप्त करने के लिए दादी प्रकाशमणि जी का गुप्त पुरुषार्थ, 19वें पुण्य स्मृति दिवस निमित्त विशेष धारणाएं दादी जी की। पहली धारणा, दादी जी ने सब जवाबदारियां संभालते हुए लक्ष्य रखा कि मुझे सर्वगुण संपन्न, सर्व कलाओं में संपन्न, निर्विकारिता में भी संपन्न बन संपूर्णता की मंजिल को प्राप्त करना ही है। दूसरा, दादी जी ने मन वचन कर्म से डबल अहिंसक बन सबको सुख दिया और सुख लिया, मनसा से भी किसी आत्मा को न दुख दिया और न दुख लिया। तीसरी बात, दादी जी सदा एक बात की ही आकर्षण में रही, उन्हें किसी भी पुरानी वस्तु, व्यक्ति व तत्व ने अपने तरफ आकर्षित नहीं किया, सदा एक बाप की याद में रह अपनी सूक्ष्म वृत्तियों को भी एकाग्र किया। चौथी बात, सदा साक्षीपन की स्टेज में रह सदा साथी के साथ का अनुभव किया, उनकी दृष्टि वृत्ति में रूहानियत और अलौकिकता थी, उनके संस्कारों में इतनी रॉयल्टी थी जो उनकी आंख किसी में भी नहीं डूबी। पांचवी बात, उन्होंने किसी का अवगुण चित पर नहीं रखा, किसी के अवगुण नोट नहीं किए, सदा पर चिंतन, पर दर्शन और पर मत से मुक्त रह स्वचिंतन में रही। छठी बात, दादी जी ब्रह्मा बाप के समान सदा निर्माण रही, निराकारी और निरहंकारी स्थिति में रहने का अभ्यास किया, सदा स्वयं को सेवाधारी समझा, कभी अपनी महिमा स्वीकार नहीं की, किसी ने निंदा की तो घबराई नहीं और महिमा में खुश नहीं हुई, हर बात में अपनी स्थिति समान रखी। सातवीं बात, बाप दादा से मिली हुई दिव्य बुद्धि की सौगात को संभाल कर रखा, सदा समर्थ संकल्प किए, हर कर्म श्रीमत प्रमाण हो उसमें जरा भी मन मत व पर मत मिक्स न हो, दिव्य बुद्धि के आधार पर हर संकल्प बोल और कर्म हो, यही लक्ष्य रख संपूर्णता को प्राप्त किया। आठवीं बात, सदा एक बल, एक भरोसा, एक से ही सर्व संबंध, किसी तरफ भी झुकाव लगाव नहीं, सदैव भाई भाई की वृत्ति से सबको देखा और रहम दिल के गुण को धारण कर कमजोर आत्माओं में बल भरा, अपकारियों पर भी उपकार किया। नवीं बात, हर छोटी बड़ी परिस्थिति को नथिंग न्यू की स्मृति से पार किया, कोई भी दृश्य को देख क्यों क्या के प्रश्नों में उलझने के बजाय सदा साक्षी भाव को धारण कर सदा हर्षित रही। दसवीं पॉइंट, उनके हर बोल में रॉयल्टी दिखाई देती थी, कोई भी बोल साधारण नहीं बोला, उनके मुख से वही बोल निकले जो होने वाले हैं, ऐसे सिद्धि स्वरूप आत्मा के संकल्प भी सिद्ध होने कारण सहज ही संपूर्णता

वे निरंतर तपस्वी मूरत होकर रही। सदा यही स्मृति रही कि इस तपस्या से ही विश्व का कल्याण होगा, सुखमय संसार आएगा। 13वीं बात, दादी जी ने अंतिम समय को सामने देखते हुए सदा स्वचिंतन किया, स्व उन्नति के लिए रोज अमृत वेले बाबा से मीठी मीठी रूरिहान की, बाबा के महावाक्य का गहराई से अध्ययन किया, बाबा के साथ बाबा की मुरली से अटूट प्यार रहा। 14वीं बात, दादी जी ने अपनी संपूर्ण स्थिति बनाने के लिए देह भान से परे रहने का अभ्यास किया। उनकी बुद्धि में सदा यही रहा कि हम विश्व कल्याण के निमित्त है, हमें स्व की स्थिति ऊंची, एकाग्र, एकरस अथवा संकल्पों से परे निरसंकल्प बनानी है, तब हम इस पुरानी दुनिया से उड़कर बाबा के पास वतन में जाकर बैठेंगे। 15वीं पॉइंट, सदा इसी लगन में रही कि मुझे बाबा की यादों में रह सबको संतुष्ट करके सभी की दुआएं लेनी है। कोई भी आत्मा कभी मेरे से डिस्टर्ब होकर बद्दुआ न दे, इसका पूरा पूरा ध्यान रख सबके दुआओं की पात्र बने। 16वीं पॉइंट, सदा एक ही लक्ष्य सामने रहा कि मुझे संपन्न फरिश्ता व कर्मातीत बनना है, ये पुराना तन छोड़ फरिश्ता बन अव्यक्त वतन वासी बनना है। ये सेवाएं तो दिन रात चलती रहेगी, मुझे सेवा के साथ साथ स्वयं पर सूक्ष्म अटेंशन रख पास विद ऑनर बनना है। 17वीं बात, दादी जी सदा सर्व विघ्नों से पार निर्विघ्न अवस्था में रही, एकांत में बैठ अपने आप को सूक्ष्म चेक करके अपनी कमी कमजोरियों को, आत्मरूपी हीरे के दाग को संपूर्ण समाप्त कर अमूल्य हीरा बन गई। 18वीं बात, स्वयं को संपूर्ण पावन लाइट माइट से संपन्न बनाने के लिए आंतरिक वैराग्य वृत्ति द्वारा सब बातों से उपराम रह अपनी सूक्ष्म दृष्टि वृत्ति को संपूर्ण पावन बनाया, पुराने संस्कारों की प्रकृति को पराजय कर प्रकृति जीत बन बाबा की गोद में समा गई। और 19वीं बात, मैं बाबा की हूं, मुझे बाबा के समान संपूर्ण बनना ही है, इसलिए सूक्ष्म देह अभिमान को, स्वयं के संस्कारों को, मान शान व महिमा को, बुद्धि व आदतों को संपूर्ण समर्पण किया और बाप समान बन अव्यक्त वतन वासी बन गई। दादी जी ने इस तरह से अपनी संपूर्णता को प्राप्त किया और आज 19 साल बीत गए, विश्वास भी नहीं होता कि इतने साल निकल गए। अच्छा, स्वयं में दृढ़ संकल्प करें कि हमें भी इन बातों को, इन शिक्षाओं को, इन धारणाओं को अपने जीवन में धारण करते हुए